آخر. كل نفس بما كسبت رهينه.

وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل و

0: एक चोर कई बार चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। कई बार उसको सजा भी भुगतना पड़ी। बार बार चोरी करने, गिरफ्तार होने और बार बार सजा भुगतने की जिंदगी से जब वो तंग हो गया तो उसने चोरी करने से तौबा कर ली और बाकी जिंदगी शराफत से गुजारने का अहद किया। इस तरह वो दरवेशों की टोली में शामिल हो जाता है। अब दरवेशों के पास ऐसी तो कोई चीज न थी जिसे चुराया जा सके, लेकिन वो अपने आदत से मजबूर होने के सबब दरवेशों की चीजों को इधर उधर किया करता। जब कोई दरवेश सो जाता तो वह एक दरवेश की गठरी को दूसरे दरवेश के पास और दूसरे की गठरी को पहले दरवेश के सर के नीचे रख देता। दरवेशों की जब आंख खुलती तो वह अपनी अपनी गठरियों को ढूंढते और परेशान हो जाते। उसका रोजाना का यही मामूल था। एक दिन जब दरवेशों को उसकी इस हरकत का पता चल गया तो उन्होंने इसका सबब पूछा कि तू ऐसा क्यों करता है। उसने जवाब दिया कि दरवेश होने से पहले मैं चोर था, अगरचे मैंने चोरी करना छोड़ दी है मगर अपनी पुरानी आदत से मजबूर हूँ। मैं चोरी तो नहीं करता, बस हेरा फेरी कर लेता हूँ। उसका ये जवाब सुनकर दरवेश कह बैठा, चोर चोरी से गया तो क्या हेरा फेरी से भी गया। इसी को अरबी में कहते हैं अबू तो बे मैं ये जूज यान पबा, यानी इंसान अपनी फितरत आदतों को आसानी से नहीं बदल सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे। उसकी बुनियादी तबीयत या आदत वैसी की वैसी रह जाती है, यानी किसी आदत के छूटने पर भी उसका कुछ ना कुछ असर बाकी रह जाता है। इस तरह बुरी आदतों के कुछ असरात रह रह कर जाहिर होते हैं।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूँ? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, अक्सर लोग समझते हैं कि गाड़ी का ब्रेकडाउन सिर्फ एक

टेक्निकल मसला है लेकिन असल में ये एक इमरजेंसी सिचुएशन भी बन सकती है खासकर जब आप हाईवे या रश वाले एरिया में हों ऐसे में सिर्फ अपनी गाड़ी को ही ठीक करने पर नहीं बल्कि अपनी और दूसरों की हिफाजत पर भी तवज्जो देना जरूरी है अगर आपने पहले से इमरजेंसी आइटम्स जैसे रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल टॉर्च पावर बैंक और फर्स्ट एड किट अपनी गाड़ी में रखी हो तो ऐसे वक्त में आप ज्यादा बेहतर रिएक्ट कर सकते हैं ट्रैफिक सेफ्टी सिर्फ हेलमेट और सीट बेल्ट तक महदूद नहीं है हर सूरत हाल में सोच समझ कर अमल करना जरूरी है गाड़ी खराब हो जाए तो हमेशा अपनी और दूसरों की हिफाजत को तरजीह दें आमतौर पर लोग पैनिक हो जाते हैं जब गाड़ी रास्ते में अचानक बंद हो जाती है लेकिन अगर आप इजी रहें और कुछ सिंपल कदम उठाएं तो आप और आपके साथियों की जिंदगी महफूज रह सकती है आइए जानते हैं कुछ जरूरी स्टेप सबसे पहले कोशिश करें कि गाड़ी को सेफ साइड पर ले जाएं ऐसा करने से आप कानून की कार्रवाई से भी बचते हैं गाड़ी की हैजार्ड लाइट्स को ऑन कर दें ताकि दूसरे लोग आपकी पोजीशन देख सकें अगर आप सड़क पर हैं और गाड़ी साइड पे ले जाना मुमकिन ना हो तो आप गाड़ी से बाहर निकलकर रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल गाड़ी के पीछे 10 से 15 मीटर दूर रख दें और आप खुद सेफ जगह पर खड़े हो जाएं इमरजेंसी नंबर 999 पर फौरन कॉल करें ये मत भूलिए आपकी जिंदगी किसी भी गाड़ी या ट्रैफिक से ज्यादा कीमती है ड्राइव सेफ सोचिए समझिए और महफूज रहिए FM 107 कहता है कि आपकी आगाही और एहतियात ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके घर वालों की जिंदगी बचा

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। बच्चा खाना नहीं खाता, सब्जी नहीं खाता, इसे जो फिश की महक नहीं अच्छी लगती, इसे मीट से चिढ़ है, ऐसी बातें हर दूसरे घर में सुनाई देती हैं। बड़े तो खाना खाते हैं मगर सब्जी पराए नाम। और इसी तरह से दूसरी तमाम चीज़ें जिनमें कि बहुत ही ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो ज़रा हम इग्नोर कर देते हैं। मगर हमें अपना जो तर्ज फिक्र है या जो सेहत का ख्याल रखना है उसकी तरफ ज़रूर तवज्जो देना है, क्योंकि बच्चे फिर पेरेंट्स को ही रोल मॉडल बना रहे होते हैं। बच्चे के खाने ना खाने या बेतरतीबी से खुराक का इस्तेमाल करने की वजह भी वालिदैन ही होते हैं। अब ये कि आप ये कह रहे होंगे कि वालिदैन ही होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने आप को ज़्यादा मैनेज करना है। अब ये कि वजन और कद का हिसाब जरूर रखें, हमेशा ऐसा तर्ज जिंदगी अपनाएं जिसकी मदद से बच्चे का वजन और कद एक तनासुब से बढ़ता रहे। अगर किसी बच्चे का वजन ज्यादा हो रहा हो और कद ना बढ़े तो मसला हो सकता है, और अपने डॉक्टर से फिर आप BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स की सतह से मुतालिक जो भी मालूमात हैं वो आप जरूर लीजिए। 20 से 30 के दरमियान अगर BMI रहे तो वही ठीक रहता है। और अगर आपके बच्चे का वजन रुका हुआ है या सतह से नहीं ज्यादा हो पा रहा तो भी तशवीश की अलामत जाहिर होगी। ये गजाई कमी या कोई और वजह भी हो सकती है, तो इसके लिए आपको कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, और जो भी जो आपके फिजिशियन है वो आपको बताएं तो आप उन टेस्टों को जरूर करवा लीजिए। आमतौर पर यह ख्याल है कि अगर बच्चा टीन एज में दाखिल हो गया है तो उसे बाकायदा चेकअप की जरूरत नहीं, जबकि समझदार वालिदैन ना सिर्फ बच्चों का वजन कद बल्कि उनके सर की गोलाई, दांतों की सेहत, सीने के मुमकिन मसाइल, भूख लगने या ना लगने जैसी जो कैफियत होते हैं उसके मुतालिक जानने की भी कोशिश करते हैं। वो डॉक्टर से विरासत में मौजूद बीमारियों को भी नहीं छुपाते और बहुत सारे सवालात जो हैं वो भी करते हैं। तो अपने बच्चों से मोहब्बत का सबूत दीजिए, उन्हें मतवाजन और हल्की गिजाओं के इस्तेमाल की हिदायत कीजिए, और सख्ती से वर्जिश करने पर जरूर आमादा कीजिए। बच्चे होमवर्क या स्विमिंग दोनों दिलचस्प जो एक्सरसाइजेस हैं उनमें आप कोशिश कीजिए कि हिस्सा लें, और इनसे वजन कम करने में मदद भी मिल सकती है, और इस तरह से जो बेवक्त खाना है उससे भी वो दूर रहेंगे, क्योंकि सेहत ही सबके लिए अहम है, खासतौर पर हमारे बच्चों के लिए जो कि फ्यूचर हैं। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107 दिल से देसी।
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: प्यारे बच्चों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नेहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी।
1: दोस्तों, एक छोटी सी बस्ती में एक प्यारा और शरारती कबूतर रहता था जिसका नाम था कालू कबूतर। कालू को हर वक्त नए एडवेंचर्स और मस्ती करने का शौक रहता था, लेकिन सबसे ज्यादा कालू को एक चीज का बहुत शौक था, वो था बस चलाना। बस्ती के लोग उसे अक्सर कहते थे, कबूतर और बस का क्या ताल्लुक, बस चलाना इंसानों का काम है। मगर कालू के दिल में बस चलाने की लगन की इतनी गहराई थी कि वो अक्सर ख्वाब में भी अपने आप को एक बड़ा ड्राइवर हैट पहने हुए और बस चलाते हुए देखता था। एक दिन सुबह सुबह बस ड्राइवर, जो अपने काम में बहुत पंचुअल था, बस्ती के लोगों को बस में लेकर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने अपनी बस एक कोने में खड़ी की और कहा, साथियों, मैं बस 10 मिनट के लिए चाय पीने जा रहा हूँ, कोई बस के पास मत जाना। जब ड्राइवर गया तो कालू ने मौका देख लिया। वो एकदम से उड़कर बस के करीब आ गया और बोला, यही तो वो पल था जो मैं कब से ढूंढ रहा था। कालू ने बस के पास खड़े बच्चों से कहा, अरे भाई, मुझे सिर्फ एक बार बस चलाने दे दो प्लीज, सिर्फ एक छोटी सी राइड, प्रॉमिस करता हूँ सब ठीक रहेगा। बच्चे हंसते हुए बोले, कालू, तुम तो कबूतर हो, तुम कैसे बस चलाओगे? कालू ने जवाब दिया, अरे मुझे सब कुछ आता है, मैं उड़ सकता हूँ, गाना गा सकता हूँ, तो फिर मैं बस भी चला सकता हूँ ना। लेकिन कालू को इस बात पर सबने मिलकर मना कर दिया, नहीं कालू, बस चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। कालू ने अपनी तरकीब बदलने की सोची। वो बोला, अच्छा जी, ऐसी बात है, अगर तुम मुझे बस चलाने नहीं दोगे तो बस मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। वो बस के सामने खड़ा हो गया और सबसे कहा, अगर तुम मुझे बस चलाने नहीं दोगे तो बस मैं यहाँ चीख चीख कर सबको तंग करूंगा, तुम सबके कानों में दर्द कर दूंगा। लेकिन बच्चों ने कहा, जो मर्जी कर लो कालू, हम तुम्हें बस चलाने की इजाजत नहीं देंगे। कालू बड़ा चालाक था, उसका दिमाग फौरन चलने लगा और उसने सोचा, अगर ये लोग नहीं मानते तो मुझे खुद ही कुछ

करना पड़ेगा। वो मौका देखते ही बस के अंदर घुस गया और ड्राइवर सीट पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने बस का बटन दबाया, बस ने एक जोरदार आवाज निकाली और कालू बस की जोरदार आवाज सुनकर फौरन से डर गया और फुर्र करके उड़ गया। उसने सोचा, ये काम तो सच में मुश्किल है भाई। शायद लोग सही कहते हैं कि बस चलाना सबके बस की बात नहीं होती। अभी कालू ये सोच ही रहा था कि ड्राइवर वापस आया और देखा कि कालू बस के अंदर छुपा हुआ है। ड्राइवर साहब हंस के बोले, कालू मियां, तुमने मेरे कहने के बावजूद भी बस चलाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें ये बात सीखनी चाहिए थी कि हर काम सबके लिए नहीं होता। ये बात सुन के कालू बड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला, माफ कर दें भाई, मुझे लग रहा था कि बस चलाना आसान होता है, मगर ये काम तो बहुत मुश्किल है। ड्राइवर ने कहा, कालू, तुम्हारे सपने अच्छे हैं, लेकिन हर काम करने के लिए तैयारी और ट्रेनिंग की जरूरत होती है और ऐसे कामों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, तभी से कालू ने कभी भी बिना सोचे समझे कोई काम करने की कोशिश नहीं की। उसने सीखा कि ख्वाब देखना अच्छी बात होती है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए सबक और मेहनत जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, उसने ये भी सीखा कि बस चलाना ड्राइवर साहब का काम है, कबूतर का नहीं। तो दोस्तों, बात याद रखिएगा कि हर काम का एक माहिर होता है और बिना ट्रेनिंग के कोई मुश्किल काम करना कोई समझदारी का काम नहीं होता।

0: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी, दिल से देसी।
1: Absolute cinema.
0: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
2: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है। एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। सवाल ये है कि इन हालातों में इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है, किस तरह इकोनॉमी बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासिर होती है। इकॉनमी के बुनियादी तसव्वुरात और वैल्यूज से मुतालिक जरूरी मालूमात जानने के लिए समाप्त कीजिए स्पेशल सेगमेंट इकॉनमिक कॉन्सेप्ट्स।
2: दोस्तों, आपने बजट वर्ड कई बार सुना होगा। बजटिंग हर लेवल पर होती है, फिर चाहे घर को चलाने के लिए बजटिंग करना हो या फिर मुल्क को चलाने के लिए बजटिंग करना हो। बजट का मतलब होता है पैसों की सही प्लानिंग करना, यानी कितने पैसे कमाना है और कितने खर्च करना है। सोचिए, आप अगर महीने के 10,000 कतर रियाल कमाते हैं तो आप ये जरूर तय करते हैं कि हमें कतर रियाल 3,000 घर का खर्चा, बिजली पानी, रेंट पर खर्च करना है, 3,000 और मिसलेनियस खर्चे, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग वगैरह, आउटिंग वगैरह, इसके लिए आपने रख लिए। वहीं पर कतरी रियाल 2,000 फैमिली या फिर पेरेंट्स को अपने मुल्क भेजते होंगे और यकीनन 2,000 कतरी रियाल की आप बचत करते होंगे। यस, ठीक इसी तरह से गवर्नमेंटल लेवल पर भी प्लानिंग की जाती है कि कितने पैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स पर लगाने हैं और ये पैसा कहाँ से आएगा। वैसे आपको बता दूं कि गवर्नमेंट को टैक्सेस और दूसरे रिसोर्सेस से जो है रेवेन्यू जनरेट होता है, जो वो इस तरह से खर्च आगे करते हैं। यानी कुल मिलाके बजटिंग की बात की जाए तो खर्चे और आमदनी में गुड बैलेंस बनाए रखना ही बजटिंग है। यानी बजटिंग को और बहुत सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करूं तो पैसों की प्रॉपर बैलेंस्ड प्लानिंग बजटिंग कहलाती है। चलिए जी, आज आपने अच्छे से समझ लिया कि आपको किस तरह से बजटिंग करनी है। वेल, आज के लिए इतना ही। अगली इकोनॉमिक टर्म के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेंगे। ख्याल रखिए अपना और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आपने सुना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमी के उसूलों और स्ट्रेटेजी को समझने से हम ना सिर्फ अपनी जाती या कौमी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं बल्कि आलमी सतह पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के आज के इस सेगमेंट से आरजे नाजिया को दीजिए इजाजत। दोबारा मुलाकात होगी इकोनॉमी के किसी खास और नए जाविये से। फी अमानिल्लाह।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, वमन युति रसूल फकद अता अल्लाह, यानी जो रसूल की इताअत करे उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत को मजबूती से थामने और उस पर अमल करने की अशद ताकीद फरमाई है और उससे गफलत बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुख

माता की याद दिलाती है जुड़वा बहने। यहाँ जुड़वा बच्चे अपनी एक जैसी आइडेंटिटी की वजह से किसी को भी परेशान कर सकते हैं। और 1984 के ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजर्स को भी ऐसा ही कुछ सामना करना पड़ा था। पुएर्टो रिको की मैडलिन डी जीसस और उनकी जुड़वा बहन मार्गरेट दो इवेंट्स में रजिस्टर हुए, लॉन्ग जंप और 4x400 मीटर रिले। लेकिन मैडलिन अपने पहले मुकाबले के दौरान जख्मी हो गई। वो रिले में हिस्सा नहीं ले सकती थी, जिसकी वजह से उनकी टीम को बाहर कर दिया जाता। कोई मसला नहीं, मैडलिन ने एक मंसूबा बनाया, यानी एक आइडिया उनके पास आया और मार्गरेट को क्वालिफाइंग हिट इवेंट के लिए शामिल किया। अपनी जख्मी बहन की हमशक्ल होने के तहत मार्गरेट ने अपनी बहन की जगह लेने के लिए कदम रखा और 10 अगस्त को मार्गरेट ने क्वालिफायर के दूसरे मरहले में ना सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि टीम को फाइनल के लिए क्वालिफाई भी किया। अर्जेंटीना के अखबार ला नेसियोन के मुताबिक एक जर्नलिस्ट को इस चाहल का पता चल गया था और टीम को कंपटीशन से बाहर कर दिया गया। बहनें जानती थी कि वो अलग नहीं है, लेकिन खूबसूरती का निशान यानी ब्यूटी स्पॉट मार्गरेट के गाल पर था और उसी से उनकी चोरी पकड़ी गई।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं लाइफ हैक्स अपनी एफ अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। Yes, जनाब, FM 107 पर मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता, बैक विद अनदर राउंड ऑफ लाइफ चेंजिंग हैक्स। तो रेडी हो जाओ, वाह भाई वाह मोमेंट्स के लिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो पहला हैक है फॉर ऑल माय ब्यूटीफुल लेडीज, ह्यूमिडिटी हेयर टेमर। उफ, ये कतर की ह्यूमिडिटी और हमारे बाल, एक अलग ही लव हेट स्टोरी हो जाती है कि नहीं? बाल ऐसे फ्रिजी हो जाते हैं जैसे करंट लग गया हो। तो इसका सिंपल सा सलूशन है, एक स्प्रे बॉटल में थोड़ा सा पानी लीजिए और उसमें बस चंद ड्रॉप्स आपका फेवरेट एसेंशियल ऑयल, चाहे वो लैवेंडर हो, रोज हो, वो डाल दीजिए। उसे अच्छे से शेक कीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए और जब भी लगे बाल बेकाबू हो रहे हैं ना, हल्का सा स्प्रे कर लीजिए। दिस नेचुरल रेमेडी आपके हेयर स्टाइल को इंटैक्ट रखेगा और फ्रिज को कहेगा बाय बाय। यस, बिल्कुल नेचुरल और खुशबूदार तरीका है, तो क्या बोलते हो, सही है ना? अब इसी के साथ अगले हैक की तरफ हम रुख करते हैं। सो ये तो गर्मी का ना साथी है, यस, रीयूजेबल आइस पैक्स फ्रॉम राइस। यार कभी ना चोट लग जाती है या बस गर्मी में थोड़ा सा कूल डाउन होने का ना मन करता है, अब ऐसे में अगर हमें आइस पैक नहीं मिला तो फिर क्या करना है? इतना करना है कि एक पुराना साफ सुथरा सा मोजा लेना, यानी कि सॉक्स लेना है, उसमें कच्चे चावल भरने हैं, ऊपर से नॉट लगा देनी है और सीधा फ्रीजर में रख देना है। थोड़ी देर में आपका DIY रीयूजेबल आइस पैक रेडी हो जाएगा। ये गर्मी में ठंडक भी देगा और छोटी मोटी चोट पर भी अगर आप रख लेंगे तो परफेक्ट होगा। और सबसे अच्छी बात, इसमें आइस के मेल्टिंग जैसी झंझट नहीं रहेगी कि बार बार आप उसे हटाएं फिर यूज करें। तो ये बड़ा ही हैंडी सोल्यूशन है, बिल्कुल जीरो वेस्ट। तो ये थे आज के दो और सिंपल से बट सुपर इफेक्टिव हैक्स फ्रॉम योर वेरी ओन ए फॉर अमिता। ठीक है, तो इनको जरूर ट्राई करना और मुझे बताना कि कैसे इन्होंने आपके लिए काम किया। कीप शाइनिंग एंड स्टे हाइड्रेटेड। फॉर मोर लाइफ हैक टिप्स, Stay tuned to FM 107, Dil Se Desi.
2: Maximum music, maximum fun.
0: On FM 107, Dil Se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: Assalamualaikum listeners, आप सुन रहे हैं ग्रीन पाथ, एक ऐसी जर्नी जहां हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की बेहतरी, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और कतर के विजन 2030 के गोल्स की रोशनी में। हर रोज एक नई बात, एक नई सोच और छोटे छोटे हैबिट्स जो बना सकते हैं एक बड़ा फर्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। पानी एक ऐसी रिसोर्स है जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हम अपनी डेली लाइफ में पानी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आज हम 10 सिंपल टिप्स शेयर करेंगे जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो वाटर सेविंग फॉसेट्स लगवाएं जो पानी के फ्लो को कम करते हैं। अगर आपके फॉसेट या पाइप में लीक है तो उसे फौरन से ठीक करवाएं, वरना पानी ज्यादा जाया होगा। लॉन्ग ड्यूरेशन शावर्स अवॉइड करें, आप सिर्फ 5 से 7 मिनट में भी शावर ले सकते हैं। अपनी वॉशिंग मशीन को फुल लोड में यूज करें ताकि पानी का इस्तेमाल कम से कम हो। अगर आप डिश वॉशर यूज करते हैं तो हैंड वॉशिंग से ज्यादा पानी बच सकता है। घर के रूफ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं। घर के प्लांट्स को सुबह सुबह या शाम में पानी दें ताकि पानी ज्यादा एवोपरेट ना हो। गार्डन का पानी देने के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज करें जो पानी को डायरेक्टली रूट तक पहुंचाता है। याद रखिए, छोटे छोटे चेंजेस का बिग इम्पैक्ट हो सकता है। पानी की बचत हम सबकी जिम्मेदारी है। तो लिसनर्स, ये था आज का सफर ग्रीन पाथ पे। अगर आपको हमारी बात मीनिंगफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक याद रखिए, हर छोटी सी ग्रीन चॉइस बन सकती है बड़ा पॉजिटिव चेंज। खुद भी बदलें, औरों को भी इंस्पायर करें। अल्लाह हाफिज़।

0: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामने किराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस हलके में हम उस दुश्मन के बारे में गुफ्तगू करेंगे जिसे हम भूल जाते हैं। कुरान मजीद जब इंसान के दुश्मनों का जिक्र करता है तो सिर्फ उन दुश्मनों की बात नहीं करता जो हमें दिखाई देते हैं, बल्कि उस दुश्मन की तरफ भी मुतवज्जह करता है जो नजर तो नहीं आता लेकिन हमारी जिंदगी के हर गोशे में मुदाखलत करने की कोशिश करता है। आज की नशिस्त में हम अल्लाह ताला के इस फरमान पर गौर करेंगे, इन शैतान लकुम अदुवुन फत्तखिदूहु अदुवा, बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है लिहाजा तुम भी उसे अपना दुश्मन समझो। सामने किराम, इंसान फितरी तौर पर अपने दुश्मन को पहचानता है। अगर कोई कौम, कोई ग्रोह या कोई शख्स बार बार हमें नुकसान पहुंचाए तो हम उसके बारे में मुहतात हो जाते हैं, हम उसकी बातों पर आसानी से यकीन नहीं करते, उसकी चालों से बचने की कोशिश करते हैं और हर वक्त होशियार रहते हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि जब दुनिया का हर इंसान अपने जाहिरी दुश्मन से खबरदार रहता है तो फिर हम अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी शैतान के बारे में इतने गाफिल क्यों हो जाते हैं? कुरान सिर्फ ये नहीं कहता कि शैतान दुश्मन है, बल्कि हुक्म देता है कि दुश्मन को दुश्मन ही समझो, दुश्मन को दोस्त मत समझना। यानी सिर्फ मालूमात की सतह पर ही नहीं बल्कि अमली रवैया भी जरूरी है। जिस फौज को मालूम हो कि दुश्मन सरहद पर खड़ा है लेकिन वो बेफिक्री से सो जाए तो उसका अंजाम क्या होगा? बिल्कुल यही मामला हमारी जिंदगी का भी है। शैतान कोई आम दुश्मन नहीं, वो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से इंसान का दुश्मन रहा है। उसने अल्लाह ताला के सामने ये कहा था, मैं ज़रूर तेरे बंदों को तेरे सीधे रास्ते से बहकाने की कोशिश करूँगा। ये दुश्मन न थकता है, न छुट्टी लेता है, न रिटायर होता है। सामने किराम, कुरान हमें बताता है कि शैतान मुख्तलिफ रास्तों से इंसान के करीब आता है। कभी गुनाह को खूबसूरत बनाकर पेश करता है, कभी नेकी को मुश्किल बना देता है, कभी दिल में वसवसे डालता है और कभी मायूसी पैदा करता है, और कभी इंसान को इस कदर मसरूफ कर देता है कि वो अल्लाह को याद ही नहीं करता। अब जरा हम अपनी जिंदगी पर नजर डालें, क्या कभी ऐसा हुआ कि इबादत का वक्त आया और अचानक सुस्ती महसूस होने लगी? क्या कभी कुरान खोलने का इरादा किया और फौरन कोई और मसरूफियत याद आ गई? क्या कभी मामूली बात पर घर में झगड़ा पैदा हो गया? क्या कभी कोई गुनाह बहुत छोटा और मामूली महसूस होने लगा? ये सब वो रास्ते हैं जिनसे शैतान इंसान के करीब आने की कोशिश करता है। सामने किराम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान के खतरे को उस कदर अहम समझा कि एक मरतबा रात के वक्त अपनी ज़ौजा मोहतरमा सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ जा रहे थे।

लेकिन इससे उसकी हकीकत नहीं बदलती। वो ये दावा भी कर सकता है कि उसे आप और आपके खानदान की खुशहाली और भलाई के सिवा कुछ मतलब नहीं, मगर उसके बावजूद वो आपका दुश्मन ही रहता है। ये जरूरी नहीं कि हर दुश्मन अपने गर्दन में एक तख्ती लटकाए फिरे जिस पर लिखा हो हम तुम्हारे दुश्मन हैं। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको एक अजीम नेमत अता फरमाई है जिसका नाम है अकल। उसके लिए न कोई कीमत अदा करनी पड़ती है और न कोई माहाना फीस। इस अकल का काम यही है कि वो हकायक का जायजा ले, दावों और हकीकतों में फर्क करे और दोस्त और दुश्मन की पहचान करे। लेकिन जिस लम्हे इंसान अपनी मर्जी से इस अकल को मुअत्तल कर देता है, अपने दुश्मन से गाफिल हो जाता है और उसकी चालों को नज़रअंदाज करने लगता है, बल्कि उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेता है, तो दर हकीकत वो उस लम्हे अपने आप को उसका आसान शिकार बना देता है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम शैतान की दुश्मनी को इतनी संजीदगी से क्यों नहीं लेते। अल्लाह ताला ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर हुक्म दिया, इन शैतान लकुम अदुवन फत्तखिदूहु अदुवा, बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, बस तुम भी उसे अपना दुश्मन बनाओ। गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने महज इत्तला नहीं दी बल्कि एक अमली हिदायत अता फरमाई है कि शैतान के साथ दुश्मन जैसा ही रवैया इख्तियार करो। और जैसे कि एक मिसाल हमने पहले भी पेश की थी कि आखिरकार वो कौन सी फौज होगी जो ये जानते हुए भी कि उसके दुश्मन उसकी सरहदों पर खड़े हैं इत्मीनान से सो जाए। फिर उस शख्स का क्या हाल होना चाहिए या हो रहा है जिसका दुश्मन सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी के अंदर तक नफूज कर चुका है, यानी उसकी ज़िंदगी में दाखिल हो चुका है, उसके घर के माहौल पर असरअंदाज हो रहा हो, उसके ख्यालात और जज्बात को मुतासर कर रहा हो और उसकी रूहानी फिजा को आलूदा करने की कोशिश कर रहा हो, यही वो दुश्मन है जिससे कुरान हमें बार बार खबरदार करता है और जिसकी दुश्मनी को समझना हर मोमिन के लिए ज़रूरी है। सामिन किराम, हम उस दुश्मन से कैसे गाफिल हो सकते हैं जिसकी दुश्मनी हमें नस्ल दर नस्ल वर्से में मिली है, जो हमारे पहले बाप आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से इंसान का दुश्मन चला आ रहा है। ये कोई मामूली दुश्मन नहीं बल्कि गैर मामूली सलाहियतों वाला दुश्मन है। उसने अल्लाह ताला से अर्ज किया था, ए मेरे रब, मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे जब लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हें मोहलत दी जाती है, यानी ये ऐसा दुश्मन है जो इंसानों की नस्लों के साथ साथ जिंदा रहेगा। उसका खतरा उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक जमीन पर आखिरी इंसान मौजूद है। सामने किराम, ये वो दुश्मन है जो हर लम्हा आप पर नजर रखता है। वो आपकी जिंदगी के उन गोशों तक पहुंचने की कोशिश करता है जहां किसी और की रसाई नहीं होती। कुरान कहता है, वो और उसका लश्कर तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। उसके साथी भी हैं, उसके मददगार भी, कुछ ऐसे जिन्हें आप देख नहीं सकते और कुछ ऐसे जो इंसानों में से होते हैं। मुमकिन है आप उन्हें जानते हों, उनके साथ उठते बैठते हों, बल्कि बाज़ औक़ात उनसे मानूस भी हों, मगर वो आपको अल्लाह के रास्ते से हटाने का जरिया बन सकते हैं। कुरान इसीलिए फरमाता है, वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, के शैतान के नक्श कदम पर, शैतान के कदमों की पैरवी न करो, उसके नक्श कदम पर न चलो। और कीजिए, अल्लाह ताला ने शैतान की पैरवी के हवाले से नहीं कहा बल्कि शैतान के कदम का जिक्र किया है, क्योंकि शैतान इंसान को एक ही दिन में गुमराह नहीं करता, वो आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलता है, पहला कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, और आखिरकार इंसान को ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां उसे अपनी गलती भी गलत नहीं लगती।

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोस्तों समुद्री सफर के दौरान ऑयल प्लेटफॉर्म से दूर रहना कानून की पाबंदी और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आवाम को याद दिलाती है कि वो समुद्र में मौजूद ऑयल प्लेटफॉर्म्स चाहे वो बड़े हों या छोटे उनके करीब जाने से परहेज करें ताकि आप किसी भी कानूनी कार्रवाई का शिकार ना हों। 2004 के कानून नंबर 8 के तहत जो के मैरीटाइम पेट्रोलियम और गैस इंस्टॉलेशंस की हिफाजत से मुताल्लिक हैं, आर्टिकल नंबर 3 के मुताबिक कोई भी अनऑथराइज्ड शख्स किसी भी समुद्री फैसिलिटी के 500 मीटर के दायरे के अंदर नहीं जा सकता है। और इसी कानून के आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया है समुद्री फैसिलिटीज के 500 मीटर के अंदर मछलियां पकड़ना या फिशिंग गियर छोड़ना मना है। मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में वाजे किया है कि इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त जुर्माने और कैद की सजाएं दी जा सकती हैं। आपका ऑफशोर पेट्रोलियम इंस्टॉलेशंस के मुख्तलिफ ऑक्सिलरी यूनिट्स के करीब ना जाना आपको कानूनी कार्रवाइयों से महफूज रखता है। FM 107 आपसे कहता है कि अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए हमेशा होशियार रहिए। कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत तदब्बुर और फहम कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

Assalamu alaikum and good morning. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे महवेश खान और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश होंगे, मजे में होंगे। 6:01 तकरीबन आप कह सकते हैं 2 मिनट होने ही वाले हैं, तो हमारी घड़ी में ये टाइम हो गया है और 9 बजे तक मेरा और आपका साथ रहना है स्टूडियोज़ में। इंशाल्लाह आज भी हम बहुत कुछ करेंगे, बहुत सारी खबरें, बहुत सारी अपडेट्स मेरे पास मौजूद हैं आपसे शेयर करने के लिए और साथ ही आप लोग भी शेयर कर सकेंगे। जब मैं टॉपिक आपको बताऊँगी कि आज का हमारा क्या टॉपिक है, उसके हवाले से आप अगर जब चाहेंगे तो इंशाल्लाह ताला कॉल कर लेंगे। अच्छा, मैं इसलिए थोड़ा सा मतलब हंसी क्योंकि मुझे खुद देखना पड़ेगा कि आज का हमारा टॉपिक है क्या, फिर मैं आपको बता दूं। तो खैर जी, आज का सिलसिला भी मतलब वही है और आप कॉल करने के लिए नंबर्स जो हैं वो मैं आपको बताती चलूं। पहले सबसे पहले 4434377 पे आप मुझे कर सकते हैं कॉल, और अगर आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है तो उसके लिए नंबर है 6622107। दोनों मैसेज इस पे आपको आसानी और आराम से हमें कीजिए कॉल और शामिल होइए या फिर आप मैसेज कीजिए, आपकी मर्जी है। तो आज के, हाँ आज का मैंने थोड़ा सा सोचा कि टॉपिक वैसे कुछ और था लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा मतलब बदल दिया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसा ना हो कि सिमिलर से साउंड कर रहा हो ना, तो फिर वो मज़ा नहीं आता, लोगों के जहन में बात भी नहीं आ रही होती। तो आज थोड़ा सा मतलब कुछ थोड़ा सा वो है, क्या कहना चाहिए, हटकर सवाल है, थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट भी है। और इसमें यह है कि उन तमाम लोगों के लिए खासतौर पर जो कि ड्राइव करते हैं, जो कि गाड़ी में, या फिर ये भी हम कर सकते हैं ड्राइव, आई थिंक हाँ ये रखना यही चाहिए क्योंकि फिर वो बात ख़त्म हो जाएगी अगर हमने कुछ और टॉपिक को बना दिया। तो आज आपने बेसिकली कन्फेस करना है वीर्डेस्ट थिंग जो कि आप जब गाड़ी में बिल्कुल अकेले हो तो वो करते हो, ठीक है। मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ लोग बहुत गाने गाने के शौकीन होते हैं तो वो मुमकिन है कि गाने गाते हों, कुछ लोग जो है वो और कोई मतलब जो है ना हाथ पैर हिलाना शुरू कर देते हों, कोई ऐसी चीज़ है आपकी जो आपको लगता हो कि आप जो है ना जब अकेले गाड़ी में होते हैं तो वो आप करते हैं, ये आप मुझे बताइएगा। थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ेगा, उसके बाद फिर जवाब देना पड़ेगा, इतना कोई बड़ा मसला नहीं, लेकिन थोड़ा सा अच्छे मज़ेदार आंसर होंगे तो मज़ा आएगा। तो मैं वेट करूंगी आप लोगों की कॉल्स का, मैसेजेस का। जैसे ही आप लोगों को मौका मिलता है तो डेफिनेटली आप कॉल भी कीजिएगा और मैसेज भी कीजिएगा। अच्छा, इसके साथ ही आज मुझे थोड़ा सा वेदर जो है ना थोड़ा निस्बतन बेहतर लग रहा है, लग रहा है कि आज थोड़ी सी गर्मी मुझे लग रहा है कि कल के मुकाबले में कम है। अभी थोड़ी देर के बाद जब हम वेदर अपडेट आपको बताएंगे तो फिर पता भी चल जाएगा कि क्या आज का सिलसिला है मौसम का। खैर जी, अब हम आ जाते हैं उस सिलसिले की तरफ जो कि मैंने थोड़ा मतलब जो ना शुरू किया हुआ है। तो असकार की तरफ जाने से पहले हम शामिल कर लेते हैं एक अच्छी सी तहरीर जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मैंने सोचा आपसे शेयर करें। और वो आज हम बात करेंगे बेसिकली कुरान मजीद, आप लोगों को पता है कि कुरान मजीद का आगाज़ जो है वो सूरह फातिहा से होता है और सूरह फातिहा एक दुआ है। तो अब कभी मतलब हम में से किसी ने सोचा कि क्यों मतलब इसी सूरत से आगाज़ होता है कुरान मजीद का, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से से नहीं होता जबकि वो पहले इंसान थे, नमाज के हुक्म से भी नहीं होता या फिर हलाल और हराम के अहकामात से भी नहीं होता, क्यों? कुरान का आगाज़ इन अल्फाज से होता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। यानी हिदायत का सफ़र शुक्रगुजारी से शुरू होता है क्योंकि जो दिल अपने आप को हर नेमत का हकदार समझता हो वो हिदायत को कबूल करने में दुश्वारी महसूस करता है। अल्लाह ताला तारुफ करवाते हैं अपना, अर्रहमान अर्रहीम, नहायत मेहरबान है, बेहद रहम फरमाने वाला। सज़ा का ज़िक्र करने से पहले, जहन्नुम का ज़िक्र करने से पहले, अहकामात का ज़िक्र करने से पहले अल्लाह ताला ने ये बताना ज़रूरी समझा कि वो नहायत मेहरबान और बेहद रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ताला चाहता है कि हम सबसे पहले ये जान लें कि वो कौन है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, अर्रहमान अर्रहीम, लामहदूद रहमत वाला, खुसूसी मेहरबानी फरमाने वाला। उसके बाद फरमाया मालिक यौमिद्दीन, रोज़ जज़ा का मालिक। एक मोमिन अल्लाह की तरफ से इसके बाद, ये सुनने के बाद दो परों के साथ

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار الصبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: Right, welcome back. آپ سن رہے ہیں سمر مارننگ FM 107 پہ وتھ آرجے محمد خان. اور اب سلسلہ یہ ہے کہ میں آپ کو ویدر کے بارے میں بتا دیتی ہوں. اچھا, جیسے میرا اندازہ تھا نا کہ مطلب دیکھ کے اب ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے, کسی حد تک ہم بھی ویدر کو پریڈکٹ کر لیتے ہیں. تو آج کا ویدر جو ہے وہ مناسب ہے, کل کے مقابلے میں 33 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. کل سے تھوڑا سا گرا ہے, بہت زیادہ تو نہیں لیکن خیر تھوڑا مطلب کم ہوا ہے. اور 46 تک آج جائے گا تو دوپہر کے وقت میں وہی ہوگا کہ پیک آورز جب ہوں گے تو آپ کو تھوڑا سا احتیاط رکھنی ہے. اب 10 بجے کے بعد پھر ویدر تھوڑا سا گرم ہونا شروع ہو جائے گا, لیکن اس وقت جو ہے نا نسبتاً اتنی دھوپ کی شدت نہیں ہے جتنی کل محسوس ہو رہی تھی. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ کہ سورج تو نکلا رہے گا اور اس کے ساتھ ہیومیڈیٹی بھی جو ہے آج کتنی ہے یہ میں نے چیک نہیں کیا, یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہیومیڈیٹی کتنی ہے. ڈرائنس تھوڑی سی کم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہاں, 13% اور ہیومیڈیٹی کم ہو گئی ہے, یعنی اور زیادہ ڈرائی ویدر آپ کو فیل ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے سلسلہ ایئر کوالٹی بھی ماڈریٹ ہے. چلے جی, تو یہ کچھ ویدر اپڈیٹس تھیں. اور آپ نے ویسے ہی خیال رکھنا ہے اپنا, جیسے آپ کو مطلب جو ہے نا بتایا جاتا ہے بار بار. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ محسوس نہیں ہوتا بندے کی, لیکن اچانک سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے. کبھی ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے پانی آپ کم پی رہے ہیں, نہیں اتنا محسوس کر رہے, سورج کے نیچے بہت دیر تک کھڑے ہوئے ہیں, تو اندر سے ہمارا ظاہر سی بات ہے مطلب نا خون کھولنا شروع ہو جاتا ہے, اس کے بعد طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو خیال رکھنا ہے بھائی, پانی پیتے رہنا ہے اور جتنا ہو سکے شیڈڈ ایریاز میں رہیں, گاڑیاں بھی اپنی ویسے ہی پارک کریں. اور کام اگر مطلب کوئی بھی ہے آپ کا, ویسے تو کوشش کریں کہ نہ ہی نکلیں. اکثر لوگوں کو تو جو باہر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو یہ اسی لیے مطلب کام جلدی شروع ہو جاتا ہے, جیسے بھائی ہمارے بتا رہے ہوتے ہیں کافی سارے کال کر کے کہ 3 بجے اٹھ گئے تھے, 3 بجے چلے گئے تھے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب اتنی شدت نہ ہونا سورج کی تو اس وقت ہی کام ہو, پھر اس کے بعد بریک مل جاتا ہے تو اس کو اچھے طرح سے فالو کریں. کیونکہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو کہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو کام ہے وہ ذرا جلدی ختم کر لیں, بیچ میں بریک کیوں آ رہا ہے یہ سب, لیکن یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہی ہے. تو اپنا خیال رکھیں, پانی کا استعمال صحیح طرح سے کرتے رہیں, شیڈڈ ایریاز میں رہیں, غیر ضروری طور پہ باہر گھومنے پھرنے سے گریز کریں. میسیجز آپ کے ابھی کچھ دو لوگوں کے ہی آئے ہیں, تو آپ لوگ اٹھے نہیں ہیں یا کیا سین ہے؟ وہی کال کریں, میسیج کریں. اچھا, توفیق کا میسیج ہے الوکرا سے, سلام کہتے ہیں. السلام علیکم, کیا حال چال ہیں توفیق بھائی آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. اس کے ساتھ ہی جی میسیج ایک اور ہے, اور یہ کس کا ہے؟ یہ عامر ہے, اور عامر کہتے ہیں سلام, گڈ مارننگ آرجے محمد خان, اگین عامر فرام کشمیر, اور آئی وانٹ ٹو سے آئی ایم یور بگ فین. بہت بہت شکریہ, تھینکس اے لاٹ, آئی ایم لسننگ یو فرام دوحا. اچھا, دوحا میں ہی ہیں, صحیح ہے. اور driving on the way to Dukhan, I used to listen every day Pulse of Quran from you without missing a single episode. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ عامر, کہ آپ کو اچھا لگتا ہے شو, اچھا لگتا ہے میرا شو, پسند ہے آپ کو, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. جی, تو کالر آ گئے ہمارے ساتھ. ہیلو, السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
1: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت؟ جی الحمدللہ, بالکل خیریت. آپ بتائیں, آپ کے یہاں خیریت؟
2: الحمد للہ. آپ بولتے ہیں 3 بجے اٹھتے ہیں, ہم تو 1 بجے اٹھ کے 2 بجے بس میں بیٹھ کے اسٹارٹ کر کے.
1: سچ میں مطلب 1 بجے بھی اٹھ رہے ہیں آپ؟
2: واللہ.
1: اچھا, تو سوتے کتنے بجے ابھی؟ وہ اچھا آپ نے بتایا تھا نا پہلے, مجھے لگ رہا ہے کہ سونے کی ڈسٹربنس ہو رہی ہے, لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ایسے ہی. ہاں, تو ابھی کچھ لوگوں کو عقل آئی یا نہیں آئی؟
2: بس چل رہے دن گزارنا پڑتا ہے.
1: ٹھیک ہے, تو ان کی ڈیوٹی آورز الگ ٹائم پہ ہیں کیا؟
2: जी हमारे में बस चार आदमी है, तीन आदमी का सेम है, एक आदमी का अलग।
1: अच्छा अच्छा सही सही। तो फिर अभी आप एक बजे आते हैं तो कब से कब तक आपका काम चलता है?
2: हमारा 2 बजे से गाड़ी खुलता है, 3 बजे से ड्यूटी स्टार्ट होता है, तो 9 बजे तक ड्यूटी है।
1: अच्छा,
2: साढ़े 9 में बस में बैठते हैं, फिर बस आराम से घूमते, फिर 1 बजे का इंतजार करते हैं रात का।
1: चले सही सही, यानी मेरे साथ आपकी भी ड्यूटी खत्म हो जाएगी। हाँ
2: जी।
1: अच्छा एक ये बात बताएं कि फिर दोपहर को सोते नहीं है जाके? सही सही। अच्छा लेकिन ये एक बात है वैसे कि आपकी जो नींद रात के वक्त में पूरी होती है ना, दोपहर में आप कितना ही सो जाएं सुस्ती रहती है आपको, है ना?
2: जी जी जी। फिर 9 बजे रात को बिस्तर पकड़ लेता हूँ।
1: अच्छा फिर दोबारा से सो जाते हैं।
2: लाइट जलाओ, मुश्किल नहीं पर हल्ला गुल्ला नहीं करे।
1: सही सही। तो तकरीबन पूरा दिन सोते हुए गुजर रहा है आजकल। सही है सही है। और बताएं भाई,
2: आपका शुरुआत है ना प्रोग्राम, मैंने बहुत सुना एक साल से। पर आपका प्रोग्राम का शुरुआत है जो दिन से होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगा है।
1: बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ मुझे लगता है कि अस्कार हमने चलाने होते हैं ना, तो अस्कार से पहले थोड़ी सी कुछ ऐसी बात हो जाए तो वो फिर जरा मतलब थोड़ा अच्छा लगता है।
2: इससे मुझे एक चीज और याद आया।
1: जी जी।
2: आलिम से मैंने सुना था तो कोई कहता है मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, कोई कहता है मैंने कुरान पाक खत्मी की कर रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ पर एक आलिम ने कहा था कि देखो अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि तुम नमाज पढ़ो मैं तुम्हारे साथ हूँ, रोजा रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कुरान पढ़ो मैं तुम्हारे साथ हूँ, बल्कि मैं उसके साथ हूँ जो हक बात करता है और जो सबर करके रहता है।
1: बेशक।
2: हमें इससे पता चला इंसान को कुछ भी हो जाए हक बात करना चाहिए और सब्र रखना चाहिए, तो उसके साथ अल्लाह ताला जरूर इंसाफ करता है और साथ में रहता है।
1: बेशक बिल्कुल ऐसे ही। बेसिकली ये देखिए कुरान पढ़ने का जो हमें हुक्म है ना, तो वो इसलिए है कि ये एक ऐसी किताब है जिसमें सारे अल्लाह ताला ने हमें तरीके बताए कि हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है, मतलब उसमें हमें बताया। हाँ नहीं नहीं, मैं आपकी बात समझ गई। जी जी, मैं यही बात कह रही थी आपसे कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सब्र रखना पड़ता है, सब्र बड़ी मुश्किल चीज़ होती है लेकिन आपको सब्र करना पड़ता है। अब जैसे हमसे कोई अगर समझे अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहा, कोई रूड है, हमें वहाँ पे सब्र करना पड़ता है। और कहीं मतलब कोई भी चीज़ है, कोई ऐसा मामला हो रहा है जो कि हमें नागवार गुजर रहा है लेकिन हमें लगता है कि अभी मतलब जो है हम कुछ कर नहीं सकते हैं इस कंडीशंस में, आप हक बात कहें लेकिन बहुत सारी जगहों पे ना दूसरों की बेरुखी, बद अखलाकी और बहुत सारी चीज़ों पे हमें एक अपने तौर पे सब्र करना चाहिए। अल्लाह ताला सबको हिदायत देने वाले हैं।
2: एग्जाम्पल अभी हमारा कंपनी को 1 बजे रात को उठना है, ड्यूटी जाना है, उसकी बात हम मानते हैं लेकिन भारत में तो सबको पता है कि नमाज फर्ज है, वजह फर्ज है, तो इस चीज को हम लोग मतलब थोड़ा सा दरकिनार कर चुका है। अल्लाह के हुक्म नहीं मानते, इंसान का हुक्म हमको मानना पड़ता है।
1: बिल्कुल।
2: ताकि हम ये नहीं करेंगे तो हमको फिनिश कर देगा, एक कर देगा, जबकि सब जानता है कि रोजी रोटी का मालिक अल्लाह है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही।
2: कोशिश कर रहे हैं, बस कहते हैं ना कहावत में कि बूंदे बूंद से तलाव भरता है। अगर डायरेक्ट अगर आप उसमें पानी गिरा दोगे तो एक तो तलाव टूट भी सकता है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल सही है। नहीं आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें जो है ना हो जाती हैं, नियत की भी बात होती है और आपको अल्लाह ताला से दुआ भी करनी होती है, मेहनत करनी होती है थोड़ी, तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें हो जाती हैं, अल्लाह ताला आपके हक में आसान करे। अच्छा ये बताएं भाई नूर कि अगर कभी जैसे गाड़ी में आप बैठे हुए हैं अकेले, सही है, मतलब आप कंपनी की गाड़ी में जा रहे हैं अकेले हैं, बिल्कुल इंतज़ार कर रहे हैं अभी लोगों का, तो क्या करते हैं टाइम पास करने के लिए?
2: टाइम पास करने के लिए तो मैं बस खामोशी से बस अपना कुछ, अब तो आदमी कहेगा अपना बना के बोल रहा है, बस आराम से जितना आता है कलाम पाक के बारे में कोई तस्वीर पढ़ना चाहे दूसरी पढ़ना।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो अपना आँख बंद करके पढ़ता रहता हूँ।
1: सही सही, ऐसा नहीं होता कोई वियर्ड चीज नहीं होती कुछ। अच्छा कम करते हैं, बात कम करते हैं, सही सही।
2: बात तो बहुत कम थी, आवाज से मुझे बहुत मतलब एलर्जी है।
1: अच्छा
2: कोई आदमी
1: सही है, ठीक है।
2: मैं तो किसी आदमी को मैंने बस में मोबाइल बोला बोलाता था तो मैंने बंद करा दिया।
1: अच्छा
2: बंद कर नहीं करेगा, मैं ला के स्पीकर डाल दूंगा बस में।
1: अच्छा
2: से बस कम्प्लेन से बंद करो आराम से, देखने का टाइम में देखो। अब 1 बजे रात को उठते हैं, 2 बजे जाते हैं बस में, इससे सोने का टाइम है, सो जाओ आराम से, 1 घंटा का सफर है।
1: सही है सही है, चलें बिल्कुल सही। और
2: कोई टॉपिक है आज का?
1: जी जी आज का टॉपिक मैंने यही वाला सवाल किया था, गाड़ी का।
2: अच्छा हाँ चलो फिर तो मैंने दे दिया।
1: चलें ठीक है, चलें बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपकी कॉल का, थैंक यू जी, ख्याल रखिएगा।
2: मैं तो सोचता था कि मैं लास्ट में कॉल करेगा पर आपने बोला तो कॉल करूं।
1: हाँ नहीं ना सोचा करें ना, मतलब शुरू में मेरे पास बेसिकली होता है जरा ज्यादा टाइम, तो मैं चाह रही होती हूँ कि इस वक्त में जरा ज्यादा कॉल आते हैं, फिर बाद में क्या होता है अगले घंटे में गाने भी होंगे और बाकी चीजें भी होंगी, फिर इतना मौका नहीं मिलता। नहीं अभी तो कोई नहीं। हाँ चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी आपकी कॉल का, ख्याल रखिएगा अपना, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। राइट, तो हमारे साथ हमारे कॉलर थे, और आप लोग भी जो लोग भी सोच रहे होते हैं कि बाद में कॉल कर लेंगे वो पहले ही कॉल कर लिया करें, ठीक है। चले जी तो हम बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की तरफ।
3: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
5: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस, और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
4: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360, कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में,
5: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
4: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
5: दोस्तों लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें, ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।
6: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी एक एहसास उनकी जबानी हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी दोहा डायरीज जहां हर कहानी बनेगी यादगार
5: दोस्तों मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके दरवाजों के करीब खड़े ना हों खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो स्टेशन्स के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं स्टेशन्स के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है
3: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
1: Right, welcome back. आप सुन रहे हैं FM 107 Summer Morning with RJ Mahavish Khan और आज है भाई 10 जून 10 जून ही है ना पता है मुझे लग रहा था पता नहीं क्यों आज ये 11 जून है लेकिन आज 10 जून है तो 10 जून को होता क्या है दुनिया भर में आपको बताती चलूं कुछ इंटरेस्टिंग डेज आज भी मनाए जाते हैं और कुछ जगहों पे मतलब कुछ अलग तरीके से कल्चरली भी ऑब्जर्व किया जाता है सेलिब्रेट किया जाता है तो आज का सबसे जो यूनिक जो देखा जाए डे है वो है वर्ल्ड आर्ट नोवाओ डे इसकी काफ़ी अजीब सी प्रोनाउंसिएशन मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे बोलते होंगे लेकिन फिर मैंने चेक किया नोवाओ डे जो एक एक तरह से जो ना इंटरनेशनल आर्ट और आर्किटेक्चर स्टाइल को सेलिब्रेट करता है और ये 19th सेंचुरी के आखिर और तकरीबन 20th सेंचुरी के शुरू में बहुत ही ज़्यादा कभी मशहूर डे हुआ करता था मतलब इसको बहुत जोश व खरोश के साथ और बड़े अहतमाम के साथ इस दिन को मनाया जाता था अच्छा ये दिन जो है उन अजीम आर्किटेक्ट्स को भी याद करता है जिन्होंने इस स्टाइल को दुनिया भर में पहचान दी और आई थिंक ये जो नोवाओ है ना

0: ये कोई स्टाइल है, हाँ ये पेंटिंग वगैरह का होगा, मुझे तो इसका आइडिया नहीं है। जो लोग पेंट करते होंगे और आर्टिस्ट होंगे बाकायदा, तो उन लोगों को इसका अंदाज़ा होगा, क्योंकि कुछ अलग सा नाम है इसका। खैर जी, तो अब इन्होंने क्या हुआ कि हाँ, तो ये उस स्टाइल को जो दुनिया भर में इन्होंने पहचान दी है इस स्टाइल को आर्ट के, तो उनके लिए ख़ास तौर पर मनाया जाता था, उनको ट्रिब्यूट दिया जाता था। और इसमें स्पेन के लेजेंडरी आर्किटेक्ट हैं एंटोनी गाउडे, और इसके साथ ये हंगरी के हैं आर्किटेक्ट ओडॉन लेक्नर, तो ये भी शामिल है इसमें। तो उनके डिजाइंस अगर देखा जाए तो आज भी यूरोप और दुनिया भर के कई शहरों में आर्ट और आर्किटेक्चर की पहचान इनको माना जाता है, तो ये उनकी याद में बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ ही 10 जून को यूनाइटेड स्टेट्स और नॉर्थ अमेरिका में आज जो है नेशनल आइस टी डे के तौर पे इस दिन को मनाया जाता है, और ये दिन समर के पॉपुलर कोल्ड ड्रिंक आइस टी को सेलिब्रेट करता है, जो गर्मी में एक तरह से रिफ्रेशमेंट का सबसे मशहूर जरिया है। अच्छा, और लोग आज के दिन मुख्तलिफ फ्लेवर्स की आइस टी को इंजॉय करते हैं और समर वाइब्स को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने आइस टी जो है वो ट्राई की है? आप लोगों का दिल चाहा है सुन के कि आइस टी है तो पीनी चाहिए, देखें ज़रा, मतलब आइस टी होनी चाहिए, कभी ट्राई की है ये मुझे बताइएगा। अच्छा जी, इसके साथ ही आज पॉर्टिकल डे भी है, और डिया डे पॉर्टिकल इसको कहा जाता है, और ये पॉर्टिकल का नेशनल डे है जो मुल्क की तारीख, कल्चर और नेशनल आइडेंटिटी को ऑनर करता है। और पॉर्टिकल के लोग जो हैं इस दिन पर पैरेड्स और कल्चरल इवेंट्स, सेलिब्रेशंस वगैरह का एहतमाम करते हैं। और इसके साथ जी आज एक और दिन है बड़े मज़े का, वो ये कि एक इंटरेस्टिंग इन्वेंशन को भी आज के दिन याद किया जाता है, और वो है बॉल पॉइंट डे। ये डे उस इनोवेशन को सेलिब्रेट करता है जिसने राइटिंग को आसान और मॉडर्न बनाया। तो इस इन्वेंशन को हंगेरियन इन्वेंटर लेज़लो बेरो, इनका नाम है, उनके भाई ने डेवलप किया था, जो आज भी दुनिया भर में डेली यूज़ होता है। और मेरा ख्याल है कि बड़ा वाकई आसान होता है इंक पैन के मुकाबले में लिखने में, पहले कलम इस्तेमाल होते थे फिर बॉल पॉइंट। और ये एक तो ये भी है कि ये इनोवेशन ना सिर्फ ये कि लिखना आसान है और राइटिंग स्टाइल बेहतर हुआ है, बल्कि उसके साथ ही ये मुझे लगता है कि जब ये इंट्रोड्यूस हुआ होगा तो चीप भी हुई होंगी काफ़ी प्राइजेस। अभी इस वक्त देखें आपको काफ़ी आसानी से मिल जाता है ना पेन, और काफ़ी कम कीमत में मिल जाता है, लेकिन उस वक्त कलम तराशो ये करो और वो सब कुछ तो महंगा होता होगा, हर किसी की रसाई में नहीं होता होगा, लोग इजीली अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे। तो गुड, ज़बरदस्त, तो ये दिन इस तौर पे भी मनाया जाता है। इसके साथ ही आज का दिन जो है वो नेशनल एग रोल डे भी है, इसके तौर पर मनाया जाता है, और ये एक चाइनीज़ और अमेरिकन कुजीन है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है बेसिकली। और साथ ही फाउंडर्स डे ऑफ, अच्छा ये वाला रहने देते हैं, ये एवी है। अच्छा जी, तो ये था कुछ मतलब जो आज जो मुख्तलिफ किस्म के दिन जो दुनिया भर में मनाए जाते हैं 10 जून को, वो हमने आपसे शेयर किए। और मैसेज है मेरे पास, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सलमान, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? सब ठीक ठाक। और जी अस्सलाम वालेकुम अर्जुन महावश, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन वंडरफुल शो, और प्लीज़ मेरा एक सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा, आँखें खुली, और डेडिकेटिंग दिस टू ऑल लिसनर्स वेकिंग अप राइट नाउ, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक्स अ लॉट। और ये मैसेज है हमारे पास, ए लिखा हुआ है इनका नाम में, ए आपका नाम क्या है मुझे बताएं। और इसके साथ आंखें खुली हो या हो बंद, मोहब्बतिंग का सॉन्ग उसकी बात करें, ये भी थोड़ा सा कंफर्म कर दें ताकि मुझे आइडिया हो जाएगा। तो फिर अभी तो नहीं, आपको पता ही होगा कि इस आवर में हमारे गाने नहीं होते, लेकिन अब बस 20 मिनट ही बाकी रह गए, तो उसके बाद फिर मैं आपके लिए ये वाला ट्रैक जो है वो प्ले कर दूंगी, सुनते रहिएगा। ये ना आप पहुँच जाएँ अपने ऑफिस और फिर उसके बाद सोचें अभी तक चलाए नहीं, तो आप सुनते रहिएगा, ठीक है? और इसके साथ ही साथ मेरे पास है मैसेज, सलाम मैडम, हाउ आर यू, टुडेज टॉपिक, आज का मैंने सवाल ये किया है कि ऐसा कोई वियर्ड काम जो आप गाड़ी में करते हो, ठीक है? अच्छा थोड़ा सा मैं बता दूं, हो सकता है कि लोगों को समझ में ना आ रहा हो कि क्या बोले। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बोलने की बहुत आदत है, और मैं जब गाड़ी में अकेली होती हूं मैं जब भी बात करती हूं, मतलब अपने आप से बातें करती हूं। तो ऐसा कुछ है कि आप इस तरह कुछ करते हो, जैसे कोई भी गाड़ी वाड़ी जा रही है, कुछ हो रहा है, मुझे किसी ने जो ना जगह नहीं दी या फिर कहीं पे कुछ हो गया, तो मैं अपने आप से ही बोलती रहती हूँ, मुझे कोई और नहीं चाहिए। गाड़ी में जब अकेली होती हूँ तो मैं शायद ज़्यादा बातें करती हूँ। तो इस तरह की कोई वियर्ड चीज़ है जो आप भी गाड़ी में करते हो, गाना गाते हो या कुछ और करते हो, ठीक है? जब आप गाड़ी में अकेले होते हैं या आप अकेले में होते हैं तो क्या करते हैं, कुछ वियर्ड ऐसा हो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं 4434377 पे। और साथ ही साथ आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 4666221107। रीट, तो आपके मैसेजेस और वगैरह का मैं इंतजार कर रही हूँ और साथ ही फिर हम आ जाते हैं इस वक्त ट्रैफिक अपडेट की तरफ। अच्छा, आज मैंने सर्च कर करके देखा, क्योंकि वैसे पता नहीं चल रहा होता अगर आप वैसे ही अपडेट्स वगैरह सर्च करने की कोशिश करो तो इतना आइडिया नहीं होता। लेकिन खैर, मुझे जो मिला था पहले सर्च करने पर वो ये था कि आज मोटरिस्ट के लिए गुड न्यूज़ है, वो ये कि लेटेस्ट जो रोड अनाउंसमेंट है वहाँ पे कहीं पे भी कोई मेजर सिटी वाइड ट्रैफिक अलर्ट्स या इमरजेंसी या रोड क्लोजर जो है रिपोर्ट नहीं हुआ आज अशकाल की तरफ से। खैर जी, कुछ जो चीज़ें हैं वो ये कि उम लगबा इंटरचेंज यहाँ पे रात के वक्त में थोड़ा मतलब रोड इसको बंद किया हुआ था, जो कि आप समझ लें कि साउथ बाउंड ट्रैफिक जो कि आ रही है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो यहाँ पर रात में क्लोजर था लेकिन इस वक्त अभी आपको खुला मिलेगा और ये 12 जून तक इसी तरह से रात के वक्त में यहाँ पे काम होगा। इसी तरह से नाइट टाइम क्लोजर आपको अलगराफा में भी मिलेगा और ये अलहतीम स्ट्रीट और अलगाबिया स्ट्रीट पे होगा और ये भी रात के वक्त में ही काम किया जाएगा। और वैसे वेस्ट सिमिस्मा स्ट्रीट जो है यहाँ पे भी एक रोड इंटरसेक्शन पे टेम्पररी ट्रैफिक डाइवर्जन रहेगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात करनी है। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि फिर मैंने सर्च कर करके देखे मुख्तलिफ एरियाज, यहाँ से कॉर्निश, यहाँ से वेस्ट बे, यहाँ से कतर फाउंडेशन, मुख्तलिफ जगह, तो वाकई मुझे हैरान की हुई कि कोई किसी तरफ भी कोई ट्रैफिक जैम नहीं है, आज बिल्कुल फ्लो में चल रही है ट्रैफिक, तो ज़बरदस्त, ग्रेट। तो आप जो है इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और मैं भी बड़े आराम से पहुँच गई हूँ वैसे, मतलब आराम से वक्त से थोड़ा 5 मिनट पहले मतलब ड्राइव करके पहुँच गई हूँ, तो आज किसी किस्म का रोड जैम तो वाकई नहीं है। अगर आप लोग भी हमसे शेयर करना चाहते हैं रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट्स तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, उसके लिए आपको नंबर पता है हमारा, तो कॉल कीजिए, इंतजार ना कीजिए और इस वक्त बढ़ते हैं एक और ब्रेक की तरफ।
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ।
2: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
3: दोस्तों, समंदरी सफर के दौरान ऑयल प्लेटफॉर्म से दूर रहना कानून की पाबंदी और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आवाम को याद दिलाती है कि वो समंदर में मौजूद ऑयल प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो बड़े हों या छोटे, उनके करीब जाने से परहेज करें, ताकि आप किसी भी कानूनी कार्रवाई का शिकार ना हों। 2004 के कानून नंबर 8 के तहत, जो कि मैरीटाइम पेट्रोलियम और गैस इंस्टॉलेशंस की हिफाजत से मुताल्लिक हैं, आर्टिकल नंबर 3 के मुताबिक कोई भी अनऑथराइज्ड शख्स किसी भी समुद्री फैसिलिटी के 500 मीटर के दायरे के अंदर नहीं जा सकता है। और इसी कानून के आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया है, समुद्री फैसिलिटीज के 500 मीटर के अंदर मछलियां पकड़ना या फिशिंग गियर छोड़ना मना है। मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में वाजे किया है कि इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त जुर्माने और कैद की सजाएं दी जा सकती हैं। आपका ऑफशोर पेट्रोलियम इंस्टॉलेशंस के मुख्तलिफ ऑक्सिलरी यूनिट्स के करीब ना जाना आपको कानूनी कार्रवाइयों से महफूज रखता है। FM 107 आपसे कहता है कि अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए हमेशा होशियार रहिए। कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान, इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
4: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग RJ महविश खान के

0: जी राइट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आपको एक दफा फिर से समर मॉर्निंग आप सुन रही हैं और मैं आपके साथ यहाँ पे आपकी आरजे माविश खान और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और कॉल करने के लिए तैयार होंगे, तो प्लीज़ कॉल कीजिए 4434377 पे। हम वेट कर रहे हैं आपकी कॉल्स का, बहुत ज़्यादा लेट ना कीजिएगा वरना फिर ये होगा कि आपकी कॉल लेने का टाइम नहीं बचेगा। तो ये सवाल मैंने किया है, अगर इसका जवाब नहीं भी समझ में आ रहा तो वैसे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, कुछ इधर उधर की खुद से कोई बात करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। तो कॉल भी कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कीजिए और उसके साथ देखती हूँ कि मेरे पास किसका मैसेज आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और ये मैसेज मुझे हिशाम ने किया है। हिशाम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, क्या हाल चाल हैं, ठीक ठाक हैं आप? और एक और है और ये है मज़र ख़ान, और मज़र ख़ान कहते हैं कि इन्होंने कुछ शायरी वेरी भेजी हुई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, माही मैम भी बोला है, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और कहते हैं कि तुमने गिरते हुए पत्तों को तो देखा होगा, अपनी हर सांस वो टहनी पे गवा देते हैं, कितनी बेरहम शजर हैं नए पत्तों के लिए, पुराने पत्तों की वफाओं को भुला देते हैं। ओए होए, गुड, जबरदस्त, अच्छा शेर था। मैंने थोड़ा सा गौर किया, मैंने फिर उसके बाद समझ में आया कि अच्छा क्या मतलब है शेर का। जी उसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू का एक और मैसेज है मेरे पास, और ये किसका है, ये है यूसुफ। यूसुफ क्या हाल चाल है आपके, ठीक ठाक हैं? चलिए जी भाई, आप मैसेजेस और कॉल्स कीजिए क्योंकि इस वक्त मुझे जो है वो काफ़ी मतलब दिल चाह रहा है आप लोगों से बात करने का, तो कीजिए कॉल भी और मैसेज भी कीजिए। और उससे पहले कि आप कॉल करें, हम एक और न्यूज़ आपसे शेयर कर देते हैं, बल्कि शो की पहली न्यूज़ होगी ये, और वो ये कि कतर की मिनिस्ट्री ने, यहाँ पे जो औकाफ है उन्होंने ये एक ऐलान किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, और वो ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ मॉस की जानिब से मुतारफ़ करवाई गई है एक एप्लीकेशन जिसका नाम है मिंबर, ये स्मार्ट एप्लीकेशन है। और इस प्लेटफॉर्म के जरिए जुमे के खुतबे जो हैं वो सिर्फ मस्जिद तक महदूद नहीं रहेंगे अब, बल्कि लोग उन्हें किसी भी वक्त कहीं पे भी किसी भी जगह पर एक्सेस कर सकेंगे। और ये जो मसाजिद का डिपार्टमेंट है उसके डायरेक्टर शेख अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज सल्थानी के मुताबिक, मेंबर ऐप वीकली खुतबे को एक मुसलसल और इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस में तब्दील कर देती है। और उन्होंने कहा कि अब लोग सिर्फ जुमे के खुतबे सुनकर ही नहीं बल्कि पूरे दिन हफ्ते उस पैगाम और मालूमात से फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में मज़ीद मैं आपको डिटेल बताती हूँ, लेकिन एक कॉलर आगे हैं, होल्ड पर हैं, तो पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: जी कौन बात कर रहे हैं?
1: जी मैं आमिर बात कर रहा हूँ।
0: जी आमिर कैसे हैं?
1: मैंने इससे पहले मैसेज भी की थी।
0: हाँ हाँ मैं समझ गई, आमिर कश्मीर से, राइट?
1: एग्जैक्टली, आप ठीक है? अच्छे
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। आप बताएं कैसे हैं, कैसा खास हुआ सुबह का?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो रोज आपका शो सुनता हूँ।
0: अच्छा, गुड, थैंक यू।
1: एग्जैक्टली, इससे पहले जब मेरी ड्यूटी होती थी मैं 6 बजे घर से निकल रहा था, तो एग्जैक्टली 6 बजे आपका प्रेयर ऑफ कुरान होता, तो दैट मेक्स माय डे। एग्जैक्टली,
0: बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको अच्छा लगता है। मेरे ख्याल 5 बजे के करीब चलता है ना पल्स ऑफ कुरान, राइट?
1: Exactly. मतलब वही 5:30 like that.
0: हाँ हाँ हाँ हाँ, सही सही, बहुत right. शुक्रिया, आपको अच्छा लगता है। और आमिर ये बताएं कि आप ड्राइव करते हैं?
1: सॉरी,
0: ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं?
1: ड्राइव, यस यस, मेरी ड्यूटी अभी दुकान में होती है, तो मैं ड्राइव करते करते लकीली आपका शो इस टाइम आता है 6 to 7।
0: सही। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि गाड़ी में आप अकेले हो तो कोई ऐसी वियर्ड आदत, कोई भी ऐसी चीज, गाने गाते हो, कुछ करते हो, कुछ ऐसा वियर्ड है आपके साथ?
1: ऐसे तो मतलब कुछ भी नहीं है, बट एक बात मैं कहना चाहता हूँ जो मेरे साथ मतलब रिपीटेडली हुआ है, आपका शो एंजॉय करते करते, या आपका शो या फिर क्या कौन से आपसे
0: कबीर,
1: यस एग्जैक्टली, तो शो सुनते सुनते मैंने एग्जिट मिस किया हुआ है।
0: अच्छा, ओके, मतलब भूल जाते हैं, रेहान कहीं और चला जाते हैं, राइट?
1: एग्जैक्टली, दो तीन बार मुझे हो गया ये।
0: ओ सही सही।
1: तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, स्पेशली आप लोगों का मैं इतना बड़ा फैन हूँ ना, तो मैं आपको हमेशा सर्च करता रहता हूँ, तो FM 107 स्टाफ, FM 107 शो, हाउ दे रिकॉर्ड, हाउ दे इंटरेक्ट विद द पीपल, ऐसे में शो आपका देख रहा होता हूँ।
0: अच्छा,
1: एग्जैक्टली।
0: तो आपने हमारी ऐप है हमारे आपके पास?
1: नहीं, एग्जैक्टली, मेरी
0: नाउ के नाम से है। जी जी, QMC नाउ के नाम से हमारी ऐप है, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हम आप

0: आपको अगर आप जैसे सर्च करते हैं हमें तो हम आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, हमारे नामों से अकाउंट्स भी हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, तो मिल जाएंगे हम आपको क्योंकि शौक है ना, मेरे साथ भी होता था कि जब मैं खुद रेडियो सुना करती थी तो आरजेएस का होता है कैसे करते होंगे क्या होता होगा, तो उस वक्त में हमारे मतलब जब मैं सुनती थी ना तो उस वक्त में एक मैगजीन आया करता था, बस सिर्फ और सिर्फ वो एक सोर्स थी हाँ, कि जिससे हम उन लोगों को मतलब होता है ना ये ऐसे बोलते हैं दिखते कैसे होंगे कैसे होंगे,
1: तो वो स्क्रिप्टेड होता है या क्या होता है फॉर एग्जांपल आपको मतलब कैसे ये लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आज उनका नया प्रोग्राम है, उन लोगों का आज नया टॉपिक है, कैसे वो रेडी करते होंगे टॉपिक्स को, सो आई रियली अप्रिशिएट फॉर योर ग्रेट जॉब मैम.
0: थैंक यू सो मच आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको अच्छा लगता है, आप पसंद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. और बताएं और कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बस आपकी दुआ, मैं आपको विश करना चाहता हूँ कि आप ये शो अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी बहुत अच्छे से मतलब जैसे आप हमें अपने ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं हमेशा ऐसे करते रहे, माय बेस्ट विशेस आर विद यू.
0: थैंक यू सो मच आरजे महवेश, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. और आमिर मैं आपकी कॉल का इंतजार करती रहूंगी, आप जरूर जब भी फ्री हुआ करें जरूर कॉल किया करें.
1: जरूर. एंड वन मोर थिंग, सॉरी फॉर टेकिंग योर लॉन्ग टाइम.
0: नो नो नो प्रॉब्लम.
1: मैं आपका शो लास्ट जून 2025 से देख रहा हूँ. अच्छा. तो तब से लेकर अभी तक मैं सोच रहा हूँ कि आपको कॉल करूँ कॉल करूँ कॉल करूँ कॉल करूँ बट आज नहीं रहा गया, आज मैंने डायरेक्ट ड्यूटी पहुंच कर पार्क की गाड़ी, चलो सोचते आज कॉल करते बात करते आज
0: चले. बहुत ही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, लेकिन ये कि अब तक कॉल क्यों नहीं किया था?
1: कॉल मैंने इसीलिए नहीं किया था मैम, जब मैं ऑफिस पहुंचता था ना तो उस टाइम तक आपका शो खत्म हो गया होता.
0: ओके ओके ओके, सही सही. चलें खैर कोई बात नहीं, आपने आज बात की बहुत अच्छा लगा और आइंदा भी बस कॉल करते रहिएगा आप.
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आई विल डू माय बेस्ट. थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे.
0: हैव अ ग्रेट डे टू यू टू. थैंक यू सो मच, बाय बाय.
1: मोस्ट वेलकम. अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. राइट, तो हमारे साथ थे आमिर और काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं हमारे बहुत ही अच्छे लिसनर जी, और इस वक्त कोई और है हमारे साथ तो पूछते हैं कि कौन है. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
2: हाँ जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू
0: जी.
2: कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताएं आप कैसे हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र. सुबह आपका प्रोग्राम आंखी आपके प्रोग्राम चलता हुआ सुनते हुए आंख खुलती है हमारी.
0: सही सही, तो सुबह का आगाज तो आज भी इंशाल्लाह अच्छा ही हो गया होगा, मजेदार सा हो गया होगा.
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
0: जबरदस्त जबरदस्त.
2: और आप सुनाए कैसी हैं? आपकी इंडिविजुअल आप कंपेयरिंग कर रही हैं. बड़ी बात है. पहले महवेश खान के साथ नहीं आप माशाल्लाह.
0: नहीं मैं खुद ही तो महवेश हूँ, मैं खुद ही तो हूँ.
2: नहीं मैंने कहा इंडिविजुअल करने में क्या आपको परेशानी वगैरह?
0: अच्छा नहीं, पता है क्या मेरा जो मामला है ना, मैं हमेशा प्रेफर ये करती हूँ कि मेरा सोलो शो हो, मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल रहती हूँ उसमें क्योंकि हमेशा हमने किया ही सोलो है ना, तो इसलिए. लेकिन ये क्या मज़ा आता है जब कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ हम हैं किसी के साथ हैं कंबाइंड शो हैं, तो उसमें भी मज़ा आता है. और नाजी के साथ क्योंकि मेरी दोस्ती बहुत अच्छी है तो इसलिए इंजॉय करते हैं हम. लेकिन वैसे मैं खैर अगर देखा जाए ना शो करने में, तो मैं सोलो ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि मैं बेहतर शो कर लेती हूँ. एक आदत बन जाती है
2: आपको ऐसे ही सोलो जो है ना करने शो करने की और आपको तरक्की दे.
0: बहुत बहुत शुक्रिया. और ये बताएं भाई कि आप गाड़ी चलाते हैं, कभी गाड़ी में अकेले होते हैं तो कभी ये हुआ है कि कोई आप कोई वियर्ड हरकत करते हो? जैसे मैं अपनी बता रही थी कि मैं बोलती हूँ ना तो मैं अपने आप से बातें करती रहती हूँ, मतलब गाड़ी में भी इसने ये क्यों कर दिया, इधर से क्यों गुजर गया.
2: अमूमन मैंने लोगों को देखा है वो ड्राइव करते हुए जैसे किसी ने कोई हरकत की आगे पीछे, तो वो शीशा बंद होता है. आपको पता है यहाँ की ड्राइविंग का सारा हिसाब का, तो वो अंदर ना बैठे हुए यानी मुंह हिल रहा होता है. आप देखेंगे दूर से तो उनका मुंह हिल रहा है, वो एक्चुअली वो गालियां दे रहे थे. आपने बगैर इंडिकेटर के आपने गाड़ी जो है ना वो की है आगे आपने की है बगैर इंडिकेटर के, लाइन से हटे हैं आप और वो पीछे से आ रहा है और उसको ये चीज बहुत बुरी लगी है. उसका आप देखेंगे मुंह हिल रहा है, इसका मतलब ये कि वो आपको गालियां दे रहा है.
0: अच्छा सिर्फ मुंह हिलने तक बात नहीं रहती मेरे साथ, तो ये होता है या शायद मैं अपनी धुन में इतना ज्यादा चल रही होती हूँ ना कि वो मुंह हिलाते होंगे मुझे पता नहीं चलता, तो वो बकायदा आगे

0: गाड़ी थोड़ी मैं मोबाइल देख रही हूँ, लेकिन उनको इतना एहसास भी था मेरा कि मुझ पे उस पे गुस्सा करेंगे।
1: असल में मैंने देखा ख्वातीन बहुत यानी तरीके से ड्राइव करती है,
0: हाँ, तो है ना, तो वही तो मतलब हाँ, मैं भी हाँ, कभी वैसे नहीं यूज कर रही होती, लेकिन अब सिग्नल पे रुके हुए हैं तो देख लिया मोबाइल थोड़ा, तो वो
1: बेगम जो है वो हाँ, रेडियो नहीं चला देती, कहती है नहीं रेडियो बंद करो
0: डाइवर्ट हो जाएगा माइंड।
1: ये ड्राइविंग का फूल है माशाल्लाह, नहीं अच्छी बात है पर इस लिहाज से मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, ड्राइविंग स्कूल वाले होते हैं अब जो स्पीकिंग लोग होते हैं वो उन बच्चों को जो इंस्ट्रक्टर दिया जाता है वो किसी और जुबान का दे दिया जाता है, उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको। ये चीज उनको क्लियर करनी चाहिए कि अगर वो लैंग्वेज बैरियर आएगा तो वो कैसे सीखेगा, उसको किस तरह पता चलेगा चीजों का।
0: हाँ ये है, सही बात है, मतलब लैंग्वेज का वाकई एक मसला होता है आपके साथ, आप जो जबान बोलते हैं ना तो आपके जो भी इंस्ट्रक्टर हो या जो भी वो उसी जबान वाला होना चाहिए तो बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होती है।
1: जी हाँ जी हाँ जी हाँ।
0: बल्कि इस हवाले से खलील साहब एक हमारी भी जैसे चल रहा है ना कि हमारी जबान उर्दू है, लेकिन आप देख रहे हैं कि अब अगर देखा जाए हमारे पूरे साउथ एशिया में कि इंग्लिश में ही सारा सिलेबस वगैरह है, तो उसमें भी कहते हैं कि हम लोग इसीलिए आजकल साइंटिस्ट और ये सारे ना नहीं आ पा रहे हैं हमारे हैं, क्योंकि हमारी जबान में हमारा कोर्स नहीं है, सिलेबस हमारा हमारी जबान में मौजूद नहीं है, तो होना चाहिए।
1: जी हाँ बिल्कुल, बस अब मैं क्या कह सकता हूँ, हमारे हमें जो है ना वो है कि ना हम तीन में ना तेरह में, बस वो मिसाल देते हैं ना एक, तो हमें तो लैंग्वेज के बैरियर ने मारा हुआ है, वरना तो ऐसा कोई मसला है नहीं। और जिस तरह मैंने पहले भी आपसे कहा था आजकल की बच्चों की राइटिंग अल्लाह बचाए भाई इतनी खराब है कि मैं खुद हैरान होता हूँ कि यार तुम लिखते क्या हो, समझ नहीं आती हमें।
0: सही बात है, सही बात
1: ये चीज क्लियर साफ होनी चाहिए, राइटिंग से ही तो आदमी की इमेज का किस तरह पता चलेगा।
0: हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब ये वाकई काम करना चाहिए इसके ऊपर, और स्कूल्स को भी और सब लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जो एक लिखने का होता है ना बच्चों का, मैं देखती हूँ एक तो लिखवाया भी बहुत कम जाता है उस तरह से जैसे हम लोग
1: तो
0: लिखा करते थे, वो चीज नहीं
1: दुनिया भी अब वो पेपरलेस हो गई, हर चीज ऑनलाइन, हर चीज ईमेल पे आ जाएगी, आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगी, इस तरह की चीजें, तो वो राइटिंग बच्चों की बिल्कुल खत्म हो गई है।
0: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए जी खलील साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ख्याल रखिए अपना, बस हमने अब जिंगल ब्रेक पे जाना है तो मैंने सोचा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा।
1: बहुत खुशी हुई आपसे मिलके,
0: बिल्कुल मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, थैंक यू जी, ख्याल रखिएगा, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। रेट लिसनर्स, और इसी के साथ हम चलते हैं अपने जिंगल की तरफ।

0: FM 107. Time check.
1: राइट, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं वरुण 7 FM और हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातहू.
1: जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: यूसुफ.
1: यूसुफ, क्या हाल चाल हैं आपके?
2: अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह.
1: जबरदस्त जबरदस्त. जी यूसुफ, तो अभी मैसेज भी किया था ना मेरा ख्याल है आपने.
2: जी जी जी
1: जी जी जी. तो क्या कहना चाहेंगे यूसुफ?

0: बस अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआ सलाम करना है, बस ये बात है, सबको सलाम देना है बस।
1: सही सही, चलें सबकी तरफ से आपको वालेकुम सलाम। और ये बताएं भाई कि आप गाड़ी में जब कभी अकेले होते हैं तो कोई ऐसी आपकी आदत है जो थोड़ी सी अजीब हो?
0: मेरे गाड़ी में मैं अकेला, मैं 24 घंटे में बिजी होता हूँ गाड़ी में जब बैठता हूँ।
1: अच्छा हाँ, नहीं बिजी तो होते हैं, लेकिन अकेले होते हैं कभी, जैसे अकेले में गाड़ी चला रहे होते हैं, अकेले बैठे होते हैं?
0: जी जी।
1: अच्छा तो मतलब कोई ऐसी चीज है जैसे आप कुछ अकेले में अपने आप से बातें करते हो, गाने गाते हो, कुछ ऐसा है?
0: नहीं नहीं,
1: कुछ भी नहीं है।
0: नहीं नहीं।
1: ओके ओके, सही है। और भाई और बताएं, और कुछ और कहना चाहेंगे या फिर इजाजत लें आपसे?
0: नहीं बस अल्लाह का शुक्र, बस मेरे दोस्त लोग को सबको सलाम देना है। मैं मुल्क गया था, अभी मुल्क से आया हुआ है, अभी 3 दिन हो गया।
1: हाँ सही सही
0: जी,
1: चलें गुड, जबरदस्त। तो कहाँ गए हुए थे आप, मतलब मुल्क कौन सा?
0: बांग्लादेश
1: से हैं। अच्छा अच्छा सही सही, गुड जबरदस्त। तो बांग्लादेश में जो है आप कहाँ रहते हैं?
0: मेरा इलाका बरिशल।
1: बरिशल सही सही, चलें भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए, ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज़। राइट, तो हमारे साथ हैं हमारे कॉलर यूसुफ, और कमगो हैं लग रहा है, काफ़ी कम बात करते हैं, तो आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पे शामिल हो सकते हैं हमारे साथ। मैंने आज सवाल आपसे थोड़ा सा वियर्ड किया है कि गाड़ी में जब अकेले होते हैं तो उस वक्त क्या एक्टिविटी होती है, क्या करते हैं? अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं वो जो खबर थी वो मैं मुकम्मल कर लूँ। मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे जो मसाजिद का जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से एक ऐप मुतारिफ़ कराई गई है, उसके थ्रू अब आप घर पर भी आराम से किसी को वक्त एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें ये बताया ये गया है कि वीकली खुतबे को मुसलसल और इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस में अब तब्दील कर दिया गया है, और अब जो है वो जुमे के दिन का जो खुतबा आपने पूरे हफ्ते बल्कि उसका पैगाम और मालूमात से फ़ायदा उठाएंगे, और इसमें कई एडवांस्ड AI फीचर्स भी शामिल किए गए हैं। सबसे अहम जो फीचर है वो है रियल टाइम इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसके ज़रिए अरबिक में दिए जाने वाले लाइव फ्राइडे जो सर्मन्स हैं वो फ़ौरन से इंग्लिश टेक्स्ट में तर्जुमा हो सकते हैं। और इससे मतलब गैर अरबिक, यानी मतलब अगर आप नहीं समझते अरबिक ज़बान, तो वो लोग भी जो खुतबे का पैगाम है वो आसानी से समझ सकेंगे। और इस ऐप में अरबिक और इंग्लिश दोनों ज़बानों में समराइज्ड पॉइंट्स भी दस्तियाब होंगे, जहां खुतबे के अहम नकात बुलेट पॉइंट्स की सूरत में आपको दिए जाएंगे। और इसके अलावा कॉन्टेंट को मुख्तलिफ ऑडियंसिस के लिए सिम्प्लीफाई भी किया गया है, जिसमें जैसे बच्चे, खवातीन, मुसाफिर, नॉन अरबिक स्पीकर्स शामिल हैं। और एक और जो इसमें दिलचस्प फीचर मौजूद है वो है AI पावर्ड क्वेश्चंस एंड आंसर सिस्टम, और वो ये है कि किसी शख्स को खुतबे के किसी पहलू में कोई उसके बारे में सवाल करना चाहता है तो वो जो है ऐप के ज़रिए सवाल कर सकता है, और AI उसी खुतबे के कॉन्टेंट की बुनियाद पर जवाब फ़ौरन से फराहम करेगा। तो ये जो मेम्बर ऐप यूज़र्स हैं वो फ्राइडे प्रेयर की स्ट्रीमिंग देखने की सहूलत भी इनको मिलेगी साथ में, और पुराने जो खुतबे हैं उनका मुकम्मल डिजिटल आर्काइव भी मौजूद होगा, जहां लोग पहले दिए गए सर्मन्स को दोबारा पढ़ या सुन सकते हैं। तो औकाफ के मुताबिक ये प्लेटफॉर्म ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए मुफीद साबित होगा जो सफ़र, सेहत या ज़बानी रुकावटों की वजह से मसाजिद नहीं जा सकते। इसके अलावा गैर मुस्लिम अफराद भी इसके ज़रिए ऑथेंटिक और ऑफिशियल सोर्स से इस्लाम के बुनियादी उसूलों को समझ सकेंगे। तो ये है, और मुस्तकबिल में औकाफ इस एप्लीकेशन को AI पावर्ड लाइव ऑडियो ट्रांसलेशन भी शामिल करने का इरादा रखता है, जिससे खुतबे मुख्तलिफ ज़बानों में फ़ौरन से सुने जा सकेंगे। तो ये बड़ी अच्छी सी चीज़ है, मतलब ये वाकई होता है हमारे साथ भी कि हम जब जाते हैं तो हमें, क्योंकि हमारी उस तरह की अरबिक नहीं है तो हमें नहीं समझ में आता कि खुतबे में क्या बात हो रही है, क्या कहा जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि जिसके थ्रू सब लोग जो बात खुतबे में की जा रही है, जो पैगाम है, उसको बड़ी आसानी के साथ समझ सकेंगे। तो गुड, और इसके साथ ही हम बढ़ते हैं म्यूजिकल ट्रैक की जाने, वापस आते हैं थोड़ी देर में। आप सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।

0: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
1: गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो। याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें। अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते। आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है। फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है। ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती हैं। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे। सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ, एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, अक्सर लोग समझते हैं कि गाड़ी का ब्रेकडाउन सिर्फ एक टेक्निकल मसला है, लेकिन असल में ये एक इमरजेंसी सिचुएशन भी बन सकती है, खासकर जब आप हाईवे या रश वाले एरिया में हों। ऐसे में सिर्फ अपनी गाड़ी को ही ठीक करने पर नहीं बल्कि अपनी और दूसरों की हिफाजत पर भी तवज्जो देना जरूरी है। अगर आपने पहले से इमरजेंसी आइटम्स जैसे रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल, टॉर्च, पावर बैंक और फर्स्ट एड किट अपनी गाड़ी में रखी हो तो ऐसे वक्त में आप ज्यादा बेहतर रिएक्ट कर सकते हैं। ट्रैफिक सेफ्टी सिर्फ हेलमेट और सीट बेल्ट तक महदूद नहीं है, हर सूरत हाल में सोच समझ कर अमल करना जरूरी है। गाड़ी खराब हो जाए तो हमेशा अपनी और दूसरों की हिफाजत को तरजीह दें। आमतौर पर लोग पैनिक हो जाते हैं जब गाड़ी रास्ते में अचानक बंद हो जाती है, लेकिन अगर आप इजी रहें और कुछ सिंपल कदम उठाएं तो आप और आपके साथियों की जिंदगी महफूज रह सकती है। आइए जानते हैं कुछ जरूरी स्टेप। सबसे पहले कोशिश करें कि गाड़ी को सेफ साइड पर ले जाएं। ऐसा करने से आप कानून की कार्रवाई से भी बचते हैं। गाड़ी की हैजार्ड लाइट्स को ऑन कर दें ताकि दूसरे लोग आपकी पोजीशन देख सकें। अगर आप सड़क पर हैं और गाड़ी साइड पे ले जाना मुमकिन ना हो तो आप गाड़ी से बाहर निकलकर रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल गाड़ी के पीछे 10 से 15 मीटर दूर रख दें और आप खुद सेफ जगह पर खड़े हो जाएं। इमरजेंसी नंबर 999 पर फौरन कॉल करें। ये मत भूलिए, आपकी जिंदगी किसी भी गाड़ी या ट्रैफिक से ज्यादा कीमती है। ड्राइव सेफ, सोचिए, समझिए और महफूज रहिए। FM 107 कहता है कि आपकी आगाही और एहतियात ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके घर वालों की जिंदगी बचा

0: राइट लिसनर्स, समर मॉर्निंग में एक दफा फिर से हम आपको कहेंगे वेलकम बैक. मैं हूँ, मेरे साथ एक कॉलर हैं, तो उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. गुड गुड मॉर्निंग मैम.
0: गुड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह,
0: जबरदस्त जबरदस्त.
1: टॉपिक
0: आज थोड़ा सा अलग है. आज मैंने ये पूछा है कि जब कभी गाड़ी में अकेले होते हैं तो क्या करते हैं. कोई ऐसी अजीब सी हरकतें जो की हो कभी?
1: नहीं नहीं, फिल वक्त तो काम ही ऐसा है कि अगर गाड़ी में अकेले हैं तो अभी इत्मीनान से सबसे पहले तो एफएम सुनते हैं.
0: अच्छा.
1: और अगर ऑन ड्राइव पे हैं, अगर ऑन ड्राइव पे रहेंगे, किसी सिग्नल पे खड़े हैं, तो प्लान करते रहते कौन सा ट्रैक पकड़ू, कहाँ से इजी पड़ेगा, कहाँ ट्रैफिक नहीं मिलेगा, कहाँ से जल्दी पहुँच जाऊंगा, इस तरह से रहता है. बाकी अगर कुछ ऐसे घर से कुछ अगर समझ लो कुछ व्हाट्सएप या कुछ कॉल ऐसा कुछ आया हो, अगर कुछ वहाँ कुछ हैपेंड हुआ हो, तो उसके बारे में कुछ थिंकिंग चलता रहता है दिमाग में कि कैसे क्या कैसे क्या कैसे क्या, तो उस तरह से रहता है. बाकी तो रोजमर्रा नॉर्मली है, लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ ट्रैफिक लाइट पे सिग्नल पे कि पीछे सिग्नल ग्रीन हो गया है, बंदा आगे गया ही नहीं.
0: हाँ.
1: ज्यादा फिर हॉर्न मारे तो एकदम जल्दी से निकल गया.
0: हाँ.
1: जब ओवरटेकिंग करके दूसरे सिग्नल पे आगे जब आमना सामना हुआ साइड ग्लास पे, बंदा नहीं बंदी थी.
0: हाँ.
1: तो अपना ग्लास में ना मेकअप कर रहे थे वो.
0: हाँ, ये भी लोग करते हैं, ये भी करते हैं.
1: ध्यान नहीं रहता कि ग्रीन हो गया है, लेकिन जल्दी जल्दी अपना है ना, मतलब ऑफिस का टाइम होगा जो भी, मतलब एक अच्छा ब्रीफिंग में जाना होता होगा ना.
0: हाँ.
1: तो इसी वो जगह राइट है, लेकिन ग्रीन सिग्नल हो गया.
0: हाँ, आपने पहले वो मिस्टर बीन और फिर बाद में वो गोविंदा की फिल्म थी ना, आई थिंक हीरो नंबर वन थी, जिसमें वो पूरे गाड़ी में तैयार हुए थे. तो वो भी है,
1: मतलब रहता है इस तरह से. तो मेरा तो ज्यादा यही रहता है कि अपना जो मेरे को ड्यूटी दिया उसको कंप्लीट करके देखी, जितना जल्दी शॉर्टकट ट्रैक पकड़ूं. और फिर ऑन रनिंग में रेडियो ऑन रहता है, तो फिर ये हमारे जो कैमरे हैं ना, बड़े बड़े कैमरे हैं ना, तो इसकी ज्यादा फिक्रमंद रहता हूँ मैं. हाँ, इससे बचाया जाए ना. हाँ, क्योंकि एक बार मेरे को क्या पता, लास्ट मेरे ख्याल है 3 years बिफोर, एक ही रोड पर और दो मेरे को है ना फाइन गिरे. एक तो फ्लाइट मार गया था, एक फ्लाइट मार के मैंने देख लिया और स्पीड था, लेकिन सेम ट्रैक और बिटवीन ओनली 4 minutes का है ना ये था जब.
0: अच्छा.
1: डिटेल्स मैंने देखा ना. हाँ, ये गैप था और सेम ट्रैक में. मैं बोला ये कैसा हो गया, तो फिर मैं मदीना खलीफा में जाके पूछा, तो वो बोले वो है ना रिडार होगा आपका, उधर रिडार मारा होगा. तो मैंने बोला
0: पता चला कि क्यों मतलब पड़ा फाइन,
1: और ये ओवर स्पीड है ना. ओवर स्पीड है तो अपना ओवर स्पीड का 500 है ना, 1000 हो गए, लेकिन तो फिर है ना 500 में. हाँ, और एक तो आज ये भी फाइन लगा लुसेल में, ये जो ट्रमे चलती है ना अंदर अंदर, फाइन था जिस तरह मोबाइल का 1000 फाइन है ना, माफ नहीं होता है ना, वो भी नहीं होता. वो टायर है ना जो टर्निंग होता है ना, सिग्नल ग्रीन है, जो सिर्फ पट्टा उस तरफ था, जो टायर का पट्टा है ना थोड़ा सा उस तरफ था, उसके अंदर नहीं था, उसके अंदर नहीं था, थोड़ा उस तरफ था. और वहां से वो ट्रम का भी कुछ ये है ट्रैक है, तो बोलते इस वजह से है ना डायरेक्ट कैमरे से ना मारा है, तो ये तो उधर लुसेल में ऐसे ही. अरे मैं बोला बाप रे, अभी और कहां बच चुका मैं. टोटल कॉन्सेंट्रेट है ना, यही रहता है बस, तो
0: फाइन ना पड़ जाए.
1: फाइन ना पड़ जाए और सेफ ड्राइविंग का, और उसके बाद थिंकिंग है कभी, मतलब है वो तो है ही, जो भी होगी, लेकिन जो सीरियस तो उसको फिर है ना आते रहती है दिमाग में, लेकिन बहुत मतलब से ना यही है कि बस क्या करें, अल्लाह करी, बस यही बोल सकते हैं और क्या, अल्लाह ही बात मेरा, क्या अल्लाह के मन में ही है. लेकिन वो जो बड़ा मैंने जो सीन देखा ना मैंने, मतलब ग्रीन हो गया और जब तीन तीन क्या बढ़ रही नहीं आगे, बंदा तो आगे बंदी थी, बंदा नहीं बंदी थी वो तो.
0: होता है अक्सर. मैं गुस्से में जा रही होती हूँ, क्या यार इसके समझ में नहीं आ रही आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, तो पता यही चलता है कि वो कोई खातून ही बैठी हुई होती है. ये होता है.
1: तो उनका एक मतलब बड़ा ये रहता है यार, मैं बोला कम से कम गाड़ी में तो मैकअप नहीं होना चाहिए ना, गाड़ी में तो इजी चॉइस है. बहरहाल बेहतरीन टॉपिक है और एक फुल एनर्जी के साथ है ना मैनु श्याम, आप जो सुबह का जब ये कर रहे हो ना जॉब कर रहे हो ना, एक्सीलेंट है, सुपर एक्सीलेंट है, लग ही नहीं रहा है. मतलब कभी भी स्टार्टिंग का जब मैं सुनता था ना गुड मॉर्निंग आपका बहुत पहले है गुड मॉर्निंग, तो बिल्कुल मतलब उस तरह में आपके जो मैसेजेस का जो स्टाइल वगैरह जो था ना, और उससे भी आपको बड़ी बात की ना कि मुझे गुस्सा बहुत आता था, तो मैंने उस टाइम पे कि आपको ना नोट किया था मतलब किसी ऐसे मैसेज वगैरह पे ना, तो आप है ना डांट देते थे बिल्कुल. और एक चीज है ना माजरत के साथ मैं बोलूंगा, बहुत मतलब बोलना चाहिए क्या नहीं, आपकी जब वालदा मतलब फोर्थ हो गए थे ना उस टाइम पे, लेकिन आपने प्रोग्राम किया था, आपने प्रोग्राम किया था, तो सब लोग बैठे थे कि इस तरह मतलब एकदम सोच एकदम मतलब ना, तो फिर आपने ना रिप्लाई किया था

0: उससे आपने प्रोग्राम मतलब किया था ना, तो वो भी मतलब एक बहुत मतलब अप्रिशिएट है उसमें कोई डाउट। और तो फीमेल जो जॉब करते हैं ना सुपर एक्सीलेंट है। और अपना सामे मैम की हंसी रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने, क्या किया?
1: ऐसे ही
0: रिटायरमेंट, अच्छा रिटायरमेंट ले लिया है उन्होंने। तो बहुत उनका भी एक अपना एक ये था, मतलब कोई मतलब एक ये जो फीमेल का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना लिस्नरों के साथ, कोई भी नया मैंने मार्क करता हूँ ना, देखते रहता हूँ, बार बार नोट करता हूँ, कोई एक नया पहली बार भी मतलब ये करता है ना, पार्टिसिपेट करता है, कॉल करता है, इतना अच्छा मतलब कोऑर्डिनेट और रिस्पॉन्स मिलता है ना कि मतलब बंदा सोचता है कि कितने अरसे से हम एक दूसरे को जानते हैं। ये क्वालिटी ना फीमेल आरजे में देखने मिलती है।
1: अच्छा।
0: सब अपनी अपनी जगह है, मतलब बेस्ट ही है अपने अपने हिसाब से, और टाइम का भी तकाजा रहता है के तो किसी को किसी से तुलना तो नहीं कर सकते, लेकिन बेस्ट बोलेंगे ना जहाँ तक मैं सेटिस्फाई हूँ और मैं मुतमइन रहता हूँ ना, और मुझे एक मतलब एक लगता है ना कि पार्टी मैंने सफेद किया, और इसको मतलब एक एक टाइम ये फिक्र रही थी कि आज ये प्रोग्राम मतलब सुनना है, रेडियो ऑन करना है जाते ही।
1: चले भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आप लोगों का साथ होते हैं जिसकी वजह से एनर्जी भी आपको फील होती है और हमारा भी दिल लगा रहता है। अगर किसी दिन एहसास हो ना कि कॉलर्स नहीं है, मैसेजेस नहीं आ रहे, तो उस दिन फिर अपना मूड भी नहीं होता।
0: जी यही मतलब एक है ना फीमेल में मैंने देखने लिया, इससे पहले भी आपके प्रोग्राम में ना गैप होता था ना, आप बाकायदा मैसेज करते थे कि आज क्या बात है, मैसेज नहीं आ रहे, कहाँ वो कहाँ है। हाँ, तो ये सब चीजें ये एक एक्सलेंट मतलब जो क्वालिटी है ना, ये मतलब फीमेल में मुझे मिली है देखने के लिए।
1: बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको अच्छा लगता है, हम सब लोगों की तरफ से शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। ख्याल रखिएगा शहजाद सलीम, और जब भी कभी हुआ करे बता दिया करे, मैं कॉल कर लूंगी आपको, ठीक है? चले जी, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। रईस, तो हमारे साथ एक और कॉलर हैं और मैं ये सोच रही हूँ कि उनको भी ले लेते हैं जल्दी से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह।
1: जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं?
2: अल्लाह का शुक्र, खैर खैरियत से, बस रात परेशानी में गुजरी।
1: अच्छा, किस तरह की परेशानी?
2: बस बस हो जाता है कभी कभी, इंसान को पता नहीं होता, लेकिन कहता है वही इतनी बड़ी परेशानी, लेकिन बाद में होता नहीं है कोई परेशानी, तो परेशानी सर पे उठा दी।
1: सही सही होता है, होता है।
2: जी, और आप सुनाएं कैसी है? माशाल्लाह, प्रोग्राम ठीक चल रहा है आपका? माशाल्लाह,
1: अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह।
2: आफ्टरनून में हम लोग मैं और निका बात कर रहे थे।
1: अच्छा।
2: तो मैंने कहा यार अगर सुबह का टाइम है, मुझे नहीं पता था।
1: अच्छा।
2: तो हाँ, बस थोड़ा सा आइडिया था मुझे कि नाजिया के साथ आप कर रही हैं, तो फिर आजकल फिर बात हो रही थी आफ्टरनून में, मैंने कहा देखता हूँ मैं सुबह जो है ना फिर कॉल करता हूँ।
1: सही सही, चलें, गुड, अच्छी बात है कि आपने कॉल कर ली। और ये बताएं कि गाड़ी तो चलाते रहते हैं, गाड़ी में कभी ऐसा होता है कि कोई मतलब वियर्ड सी बात, मतलब जो यूजुअली ना हो, लोग करते हो? अब जैसे मैंने अपना बताया है कि मैं बोलती हूँ, तो मैं गाड़ी में भी अपने आप से भी बोलती भी जाती हूँ, अब मैंने ये करना है, मैं उधर जाना है, ये ले लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, तो आपके साथ ऐसा कुछ है क्या?
2: असल में मैं जब गाड़ी चलाता हूँ ना, मैं भी वो बस दिमाग बोलता नहीं हूँ मैं वैसे, यानी कि बाद लोग खुद भी अपने आप से बातें कर रहे हैं।
1: मेरे साथ है ना ये?
2: हाँ, नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ ऐसा, मैं सिर्फ दिमाग मेरा घूमता रहता है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी घर जाके अगर कहीं भी जा रहा हूँ तो उसके बाद यहाँ जाऊंगा, तो उसके बाद फिर टाइम बच जाएगा, वो सिलसिला चलता रहता है।
1: सही,
2: और
1: सही।
2: कभी कभी आपके जहन में, ये मेरे साथ ही होता है, ऐसे सवालात आ जाते हैं कि वो बड़ी यूनिक किस्म के होते हैं रिलेटेड, तो अगर मैंने किसी से, आपको पता है हमारा तो वो चलता रहता है ना कुरान से रिलेटेड, ये वो, तो सडनली कोई ऐसा जवाब आ जाता है ना, वो फिर मैं पता क्या करता हूँ, अपने मोबाइल पे ही वो वॉइस नोट करके ना दूसरे नंबर पे भेज देता हूँ, ताकि ये याद रहे कि मैंने ये सोचा था और इस पे मैंने काम करना। तो वो बड़े वैल्यूएबल चीजें होती है जो सडनली आपके दिमाग में आती है और कहते हैं हाँ यार इसका जवाब तो ये है, तो वो बस मसरूफ रहता हूँ, बस इन्हीं तौर पे कहीं जाते हैं।
1: सही हो गया, चलें, गुड, जबरदस्त। और भाई और कुछ कहना चाहेंगे?
2: जी बस ये अभी भाई अभी ट्रैफिक के हवाले से माशाल्लाह काफी अच्छी बातें कर रहे थे, तो बस बाज ऐसे भाई भी देखे हैं।

0: मैंने अपने, अब देखें क्या, देखता रहता हूँ कि जब जा रहे हो ना हम, आगे सिग्नल है, सिग्नल अभी ग्रीन है ठीक है, लेकिन वो भाई इतने शरीफ होते हैं, वो पहले स्लो कर लेते हैं कोशिश होती है उनकी कि बस ऑरेंज हो और हम रोक लें। और मैंने कई मरतबा उनको हॉर्न दिया, मैंने कहा भाई अब भी तो चलो ना, अब भी तो ग्रीन है लेकिन वो जो है ना, और मोस्टली ऐसे लोगों की गाड़ी पीछे से लगी हुई होती है।
1: हाँ ये तो है लेकिन उनको कभी फाइन लग चुका होगा ना सिग्नल के ऊपर, तो हर बंदा थोड़ा सा डरा रहता है, फाइन बहुत ज्यादा है ना उस सिग्नल का।
0: नहीं फाइन अपनी जगह, एक चीज ओपन है भाई, तुम जा सकते हो। अब देखिए ना, मैं भी इसमें आपको बताऊं, एक मिनट का है आपके पास और 30 सेकंड्स में आप अपने सिग्नल तक पहुंच जाओगे, लेकिन उससे पहले आप 45 मिनट की ड्यूरेशन बना दो तो सिग्नल तो बंद हो गया ना। पीछे वाला आ रहा होता है वो पीछे हॉर्न भी देगा, कुछ भी करेगा, भाई साहब ने नहीं हटना, और रखता भी मेन रोड पे ही गाड़ी है वो, मेन ट्रैक पे। तो ये इस तरह की जो है ना, बड़ी ये डेंजरस होती है, ये डेंजरस चीजें होती है। और बाकी ये है कि रफ ड्राइव नहीं करनी चाहिए, और मोबाइल का स्पेशली जो है ना, मैं क्योंकि पिछले दिनों भी मुझे 500 का फाइन पड़ा।
1: अच्छा
0: तो उन्होंने, आपको पता है वो, यानी ऊपर करके ना कैमरा लगाए होते हैं, तो फोन मैंने पिक कर लिया, और मजे की बात वो भी अनिका से बात कर रहा था, तो वो जो है ना, फिर उन्होंने वो उसमें डिस्काउंट भी नहीं है, वो पूरा पूरा देना पड़ा फिर मुझे। तो मोबाइल में ये है कि 2-3 बार मेरा एक्सीडेंट होते हुए बचा भी है।
1: अच्छा अच्छा
0: क्योंकि वो फिर अटेंशन जो है ना, हम लोग पता है सबसे खतरनाक काम क्या करते हैं, हम मोबाइल पे ना मैसेजेस जो शुरू करते थे ना वाइल्ड ड्राइविंग, तो वो ज्यादा डेंजरस होता है। चले कॉल ली, ब्लूटूथ हो गया, लेकिन हम करते हैं वहीं से साथ सामने देख रहे थे, साथ ही अपनी फिंगर के साथ मैसेज भी कर रहे थे, वो बहुत डेंजरस चीज होती है। थोड़ी सी अटेंशन इधर हुई तो गाड़ी कहीं से कहीं चली जाती है।
1: बिल्कुल ऐसे।
0: तो ये है कि अपने वो 5 मिनट बचाने के लिए, ये ना हो कि हम अपने पूरा महीना जो है ना हॉस्पिटल में गुजार दें।
1: एग्जैक्टली।
0: तो बेहतरी यही है कि वो कहते हैं ना, आराम से चले जाओ लेकिन पहुंच जाओ जल्दी में, ये ना हो कि लंबे काम खराब हो जाए, फिर वहां पे भी ना पहुंचो कहीं और पहुंचो।
1: सही बात है, बिल्कुल वाकई ख्याल रखना चाहिए ड्राइव के दौरान खासतौर पर, तो ये बिल्कुल सही बात है।
0: चले बस, आज मैं सुनता हूँ थोड़ी देर तक आपका प्रोग्राम, और भी
1: बिल्कुल जी, थैंक यू,
0: बहुत अच्छा लगा, और
1: मुझे भी बहुत अच्छा लगा।
0: रोज होते हैं प्रोग्राम?
1: जी जी जी जी, रोज टॉपिक होते हैं। तो अभी हमें जाना है एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। काफी कॉल्स आ रही है, मैं देख रही हूँ आप कॉल्स शुरू हो जाती हैं, मुझे गाने लगाने होते हैं तो कॉल करते रहे, लेकिन थोड़ी देर के बाद कर लीजिएगा, अभी हम एक गाना सुन के वापस आते हैं।

0: Number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahi bhi. Aap sun sakte hain. FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website, urduradio.qa or download the app, QMC Now.
4: FM 107 par apna business advertise karne ke liye. Aaj hi raabta karein.
5: Aaj hi raabta karein.
4: Hamari Qatar Media Corporation ki marketing team se. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
6: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है ये दिन हमारे लिए खुशियां मनाने बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है आइए जुमे की रूहानी खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
7: दोस्तों आपका ट्रेन से मुताल्लिक ट्रैफिक साइंस और सिग्नल्स का ख्याल रखना आपकी पब्लिक सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी दिखाता है हमेशा होशियार रहें और इन तदाबीर पर अमल करके सबकी हिफाजत को यकीनी बनाएं आइए कुछ जरूरी एहतियात जानते हैं कीप क्रॉसिंग क्लियर ट्रैम के क्रॉस होने वाली जगह को हमेशा खाली रखें इसे ब्लॉक करना मुसाफिर के लिए खतरा पैदा करता है और सर्विस में रुकावट बन सकता है ट्रैमवे लुक बोथ वेज ट्रैम दोनों तरफ से आ सकती है क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देखना जरूरी है ट्रैम ओनली लेन ये लेन्स सिर्फ ट्रैम के लिए होती हैं ड्राइवर्स को चाहिए कि इनमें गाड़ी ना चलाएं शेयर ट्रैम एंड व्हीकल लेन्स ऐसे एरियाज में गाड़ी एहतियात से चलाएं और हमेशा ट्रैम को तरजीह दें कीप द क्रॉसिंग एरिया क्लियर ट्रैम के गुजरने वाली जगह को हमेशा साफ और खुला रखें अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए ट्रैफिक रूल्स और रोड एटिकेट का पाबंद रहना जरूरी है FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है
8: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
9: Right, welcome back. Good morning to all of you. आप सुन रहे हैं Summer Morning with Archie Mahavish और मैं यहाँ आपके साथ एक दफा फिर से आ गई हूँ. काफी कॉल्स आ रही थी मुझे ब्रेक के दौरान तो अगर अभी आप कॉल करना चाहते हैं तो आप कॉल कीजिए शामिल हो जाएं हमारे साथ. आज मैंने आपसे सवाल किया है कि ऐसी कोई भी वियर्ड हरकत जो आप मतलब करते हो और गाड़ी में जब अकेले होते हो तो उस वक्त आप वो हरकत करते हो तो वो आप मुझे बता सकते हैं शेयर कर सकते हैं. मैंने अपना बता दिया है कि मैं मतलब बोलती हूँ अकेले में बातें करती हूँ. अच्छा और मुझे किसी ने कहा था कभी कि कुकिंग शो करने का ना तो मैं वैसे खाना भी इसी तरीके से बनाया करती थी. अब तो खैर काफ़ी कम कर दिया मतलब कि इतना ज़्यादा बोलना अपने आप से वरना ये होता था कि अकेले में एक अपना कुकिंग शो चल रहा होता था. अब ये डालना है अब ये करना है तो ये सारा सिलसिला चलता था. खैर जी हम देखते हैं हमारे साथ एक कॉलर. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो क्या हो गया. हेलो आवाज़ नहीं आ रही.
10: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
9: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں آپ کے.
10: اللہ کا بڑا احسان ہے. آپ سنائیے خیریت ٹھیک ٹھاک ہیں.
9: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر.
10: ماشاءاللہ ون آف دی بیسٹ آر جے مہوش خان.
9: بہت شکریہ
10: جو سب کو جگا کے رکھ رہی ہیں.
9: بہت بہت شکریہ بھائی.
10: سب کو ہوش میں لا کے رکھ رہی ہیں. وہ ہوا کیا کہ تھوڑی دیر تقریباً یہ میری 16 نمبر کال ہے جو میں ٹرائی کر رہا ہوں کرنے کے لیے.
9: اچھا اچھا اچھا صحیح.
10: اور آج جو آپ کا سوال تھا کہ مطلب کہ اکیلے گاڑی میں بیٹھ کے میں اتنا ہنسا میں اتنا مسکرایا ہمارے محترم بھائی خلیل بھائی میں ان کو نہیں جانتا لیکن ان کی بات سن کے कि वो आरजे महवेश खान को ही पूछ रहे हैं कि उन वो आरजे महवेश खान के बारे में तो
9: कह रहे आपके साथ तो पहले महवेश खान होती थी
10: तो बड़ा हंसा, मतलब ये भी आज एक नई कहानी या पहेली आप इसको कह सकती हैं अच्छे रसों में माशाल्लाह
9: जी।
10: तो मुस्कुराहट किसी भी इंसान के जरिए हो वो सदका जारी भी है और वो बड़ी शिक्षित भी है।
9: बिल्कुल सही,
10: आई रियली डू इट।
9: बिल्कुल जी बिल्कुल। आप बताएं आप क्या करते हैं, गाने गाते होंगे आप तो
10: नहीं अच्छा बेसिकली देखिए पता क्या बात है कि बेसिकली लोगों को पता है कि आर्टिस्ट है तो मतलब पता नहीं, लोगों के जहन में बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें होती भी हैं, लेकिन अगर तो मैं फैमिली के साथ हूँ अपनी तो डेफिनेटली आई रियली एंजॉय दैट कि मतलब मैं मौसीकी सुनता हूँ क्योंकि मैं खुद भी यहाँ पर कई जगह पे डिबेट भी करता हूँ, तकरीर भी करता हूँ, शोज में भी जाता हूँ, अरेंज भी करते हैं, उसमें हम लोग एंकरिंग भी करते हैं, कई दफा हो जाता है इस तरह
9: जी जी।
10: तो लेकिन पर्सनल अगर मैं अपनी बात करूं गाड़ी में तो मेरी मोस्टली मेरी वो ऑफिस की है या मेरी पर्सनल, उसमें हमेशा तिलावत लगी रहती है बेसिकली मोस्टली। अच्छा उसके बाद क्योंकि इतना टाइम फिर मुझे कभी फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी जगह पर मुझे एंकरिंग करनी है या किसी जगह पर मुझे कुछ मजमून पे बात करनी है या किसी शोज में बात करनी है तो वो फिर गाड़ी में ही मैं प्रैक्टिस करता हूँ।
9: सही ठीक हो गया, मतलब गाड़ी में आप बोलते भी जाते हैं।
10: नहीं नहीं नंबर मतलब मेरे रूट्स ऐसे हैं ना कि दुकान के रूट्स हैं यहाँ पर, किसी को नहीं, हर बंदा अपने हाल में जा रहा है मस्त, किसी को नहीं पता कौन पागलोज हरकतें कर रहा है किसी को नहीं दिखता
9: सही
10: तो फिर दूसरा अगर किसी प्रोग्राम में कुछ परफॉर्म करना हो तो एक छोटा सा माइक मैंने रखा हुआ है और ब्लूटूथ के जरिए म्यूजिक प्ले करके तो बस माइक को जरा थोड़ा नीचे रख के उस पर प्रैक्टिस करते जाते हैं।
9: अच्छा ग्रेट, जबरदस्त, मतलब पूरे एहतमाम के साथ सिंगिंग करते हैं, ऐसे नहीं करते
10: नहीं देखिए सिंगिंग वो क्योंकि प्रॉपर करनी है, देखें अभी मतलब लट से के आप आरजे हैं तो आपके पास देखें एक अच्छा टेबल है, चेयर है, एक अच्छा माइक है, हेडसेट है, उसके बाद आवाज क्लियरिटी होनी चाहिए, सुनने वाले को आपकी समाज जानी चाहिए, तभी आप वो प्रॉपर करती है ना। अगर उसके अंदर कुछ डिस्टॉर्शन होगी, कुछ रेजेज या मतलब कुछ हेडफोन ठीक नहीं है तो यू फील डिस्टर्ब, आपको डिस्टर्बेंस होगी।
9: ये तो है।

0: ये बिल्कुल है।
1: हाँ, तो बस ये हमारी चीजें हैं। और बाकी जिंदगी में बड़ा मजा आता है। कई लोग होते हैं जिस तरह, मतलब अपने अपने जिस तरह आपकी बात को मैं सुन रहा था, सुन तो मैं कंटिन्यूसली रहता हूँ, लेकिन वो कॉल से माशाल्लाह इतनी खलकत आपको, जिस तरह आपने कहा था कि मुझे आपने कॉल करनी है, मैं तो सोच रहा हूँ कि नंबर 2-4 होने चाहिए और वे दोनों कानों पे आपके फोन होना चाहिए।
0: हाँ ये है। अच्छा, सुबह में जब मैं ज्यादा इंतजार कर रही होती हूँ जावेद साहब, उस वक्त आ नहीं रही होती कॉल, क्योंकि उस वक्त जरूरत भी होती है ना, गाने भी नहीं चला सकते और ये होता है अभी भी आए हैं थोड़ा सा, मतलब थोड़ा एक आ जाए जरा ना, लेकिन उस वक्त कॉल्स नहीं आ रही होती हैं, तो ये मसला है। काफी देर तक तो इंतजार करना पड़ता है।
1: डिपेंड करता है ना, देखिए ना अभी मतलब फॉर इन साइड सिटी आजकल जो यहाँ पर रूल और रेगुलेशन है, लोग उनको भी फॉलो करते हैं। ऑफ भी है कि मतलब कहीं रडार में या कहीं कोई वैसे नंबर या कोई बैड या मतलब कहीं डाइवर्ट उसका जहन ना हो जाए, बहुत सी चीजों को इंसान सोचता भी है ना। दिल किसका नहीं करता, जो कॉल कर रहा है आपको तो डेफिनेटली, मैं अगर आपको मेरी 60 नंबर की कॉल है तो आप सोचिए कि मैं कब से सोच रहा हूँ कि यार मैं फोन करूँ, मैं कब से सोच रहा
0: हूँ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत एफर्ट होती है और मैं खुद भी देख रही होती हूँ कि कोई कॉल होल्ड पर हो या हम बात कर रहे हो तो बीच में इतनी कॉल आ रही होती है, बाज़ औक़ात मैं होल्ड पर ले लेती हूँ, बाज़ औक़ात नहीं लेती, लेकिन मुझे पता चल रहा होता है कि मुसलसल लोग कॉल्स कर रहे हैं।
1: बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल बड़ी मोहब्बत है लोगों की, बड़ी मोहब्बत है और बड़े, और जितने भी कॉलर्स बात करते हैं आप यकीन कीजिए कि हर शख्स की जुबान से बड़ी खूबसूरत बात और बड़े अच्छे लफ्ज और नई चीज सुनने को और सीखने को मिलती है।
0: बिल्कुल ऐसा ही,
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल।
1: और मैंने कभी भी, मतलब मैं आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दोहा, लेकिन मैंने कभी भी, मैं पुराने आरजेस को भी जानता था, सबको जितने भी हैं, लेकिन अभी रिसेंटली जो जमाने के हिसाब से जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं और जितने भी नए इशू पे आप बात करते हैं, जितनी भी अवेयरनेस दे रहे हैं ना, नो डाउट मैं मतलब उसके लिए शायद लफ्ज अप्रिशिएट ही कह सकता हूँ, उसके अलावा तो मेरे पास कुछ है नहीं, क्योंकि नो वर्ड्स से।
0: बहुत शुक्रिया भाई, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप लोग पसंद कर रहे हैं।
1: पसंद मतलब है कि लोग यहाँ पर, कल मेरी सरोवर भाई से बात हुई, वो भी कह रहे यार 2-3 दिन से बाजो भाई आपका फोन नहीं आया, तो मैं आई डू ट्राई, मैं अपनी तरफ से ट्राई ही कर रहा हूँ, लेकिन माशाल्लाह इतनी कॉल्स हैं और खुशी होती है कि यार इनका फोन बिजी जा रहा है। हाँ। माशाल्लाह बिजी जा रहा है, बिजी जा रहा है, ये भी खुशी है हमें चीज की, बेशक बात ना हो हमारी, लेकिन खुश है कि यार फोन बिजी जा रहा है।
0: ये मोहब्बत है आप लोगों की, बिल्कुल वाकई, मतलब जो है ना वो लोग इतने जुड़े हुए हैं और इतना ज्यादा ख्याल भी कर रहे होते हैं, ये ख्याल है बेसिकली कि आपको अच्छा लग रहा है कि चलो मेरी कॉल नहीं भी मिल रही तो दूसरों की कॉल्स आ रही है।
1: बिल्कुल ऐसे ही है। बहरहाल मैं आज पूरा दिन खलील साहब, अगर वो मेरी बात को सुन रहे हैं तो मेरी तरफ से उनको सलाम भी, और उनकी बात पे मैं हंसता रहूंगा और मैं खुद भी तलाश कर रहा हूँ कि आरजे मेविशा मेरी बहन कहाँ, मैं खुद भी तलाश करूंगा।
0: जी खलील भाई ने काफी मासूम से हमारे कॉलर है, बहुत मजे से बोलते
1: हैं। देखिए वो मासूमत, हम भी तो मासूम, हम हाँ, कौन से मतलब जालिम है।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल बेसाख्ता अंदाज होता है।
1: अल्लाह खुश रखे आपको।
0: बहुत शुक्रिया आपका,
1: अल्लाह आपको खुश रखे, अल्हम्दुलिल्लाह।
0: आमीन सुमा आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, ख्याल रखिएगा अपना, थैंक यू जी,
1: अल्लाह
0: हाफिज। रोही जी तो हमारे साथ, हमारे बहुत ही जबरदस्त कॉलर, और उसके साथ ही एक और है, इनको काफी देर से मैं ये नंबर नोट कर रही हूँ कि ये कॉल हमारे पास आ रही है और ड्रॉप हो रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन बात करें?
2: मुनीबा
0: बात कर रही हूँ। अच्छा हाँ मुनीबा, मैंने आपको भी कॉल बैक भी किया था, वही वाला नंबर है ना ये? हाँ, मैं क्योंकि देख रही थी, मैंने कहा नंबर नोट कर लेती हूँ, काफी देर से मुसलसल कॉल मुझे नजर आ रही थी, फिर मैंने किया उस वक्त, लेकिन आपने
2: आज बारी नहीं आ रही, आपसे बात कर पाने की ना बारी नहीं आ रही हमारी।
0: अच्छा मुनीबा, ये तो मुझे पता है कि आप गाड़ी ड्राइव करती हैं, मैंने आज पूछा है कि कुछ वियर्ड ऐसा है जो आप करती हूँ?
2: वेल वियर्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन ये मेकअप वाली बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। आप घर से निकलते हुए जल्दी जल्दी में बच्चों के साथ मेकअप आप नहीं कर सकते, मैंने जॉब भी की थी ना स्कूल टीचिंग की, आप यकीन करें मेकअप का परफेक्ट टाइम है।
0: तो क्या पता शहजादा सलीम को कभी आप ही भी नजर आई हो।
2: लेकिन मेरा नहीं ख्याल क्या है, ऐसा कभी हुआ होगा, लेकिन बहरहाल आप यकीन कीजिए सिर्फ दो चीजें, एक वो जो ब्लैक आई पेंसिल होती है और एक लिपस्टिक, फुल मेकअप हो जाता है।
0: हाँ बिल्कुल ऐसे ही, हम लोगों का यूजुअली यही होता है। अच्छा तो हो जाता है, मतलब सिग्नल पे खड़े होके ये दो काम हो जाते हैं, परफेक्टली हो जाते हैं।
2: आप यकीन कीजिए नेल भी फाइल हो जाते हैं, अगर नेल कटर रखा हो तो।

0: जबरदस्त।
1: वैसे भी लेडीज जो होती है ना, उनका मल्टीटास्किंग माइंड होता है।
0: हाँ, ये तो है। ये बिल्कुल बात सही है।
1: ब्रेन मल्टी डायमेंशनल होता है। मेरे सिस्टर जो है ना, वो हमेशा ऐसे मुझे बोला करते थे, पता नहीं लेडीज ड्राइव करते हुए इतने काम कैसे कर लेते हैं। तो फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा हमारा और आपका ब्रेन जो है ना, उसमें स्ट्रक्चर डिफरेंस है।
0: हाँ बिल्कुल ऐसा,
1: ये समझिए आप।
0: बाकी वाकई ये बात सही है, क्योंकि मेरा अपना भी एक्सपीरियंस रहा है। मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं गाड़ी चलाते हुए, खाना खाया है, खिलाया है, सब कुछ किया है।
1: छोटे बच्चों के साथ तो ज्यादा मल्टीटास्किंग होती है।
0: हाँ।
1: आपको बिल्कुल अपने बच्चों के चाइल्डहुड के हवाले से याद करें तो वाकई सब वियर्ड काम किए थे। तो वह तो बाजू का किसी घर की फैमिली मेंबर के पास या हाउस हेल्पर के पास जो है ना, जो बच्चा होता है, मां ड्राइव कर रही होती है और बच्चे को बस अम्मा चाहिए होती है, फिर कहीं गाड़ी पार करके बच्चे को भी टाइम देना पड़ रहा होता है।
0: बिल्कुल ऐसे
1: बच्चा चुप कर रहा था कि गाड़ी चले।
0: बिल्कुल वाकई
1: काम भी किए हुए। बिल्कुल ऐसे ही,
0: बिल्कुल सही बात।
1: एक साइड जो है अभी मेरा ख्याल था ज्यादा सही नहीं है, जो फाइन की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। वाकई फाइन जो है ना, वो बड़े इन्होंने कर दिए हैं, काफी स्ट्रिक्ट रूल्स कर दिए हैं, जो कि एक लिहाज से अच्छा भी था।
0: हाँ।
1: कि अगर आप रूल्स को फॉलो करें और एहतियात से गाड़ी चलाएं तो सबके लिए बेहतर ही होता है। लेकिन जब बाकी फाइन देना पड़ता है तो बड़ा मुश्किल लगता है। और आपको पता है मेरे जो ससुर साहब है ना, सबके गाड़ियों के नंबर उनको याद है, और वो बहुत रेगुलर और बहुत जो है ना माशाल्लाह सक्सेसफुल और नाइस पर्सनालिटी है उनकी। लेकिन जब उनका फोन आता है कि भाई आपकी गाड़ी का भैया फाइन पड़ा है, तो आप यकीन कीजिए वो जो कॉल होती है ना,
0: बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि वही मतलब ना, एक गैर जरूरी अमाउंट आपको लगता है, चाहे वो मतलब 200 भी जा रहा हो, लेकिन गुस्सा आ रहा होता है उस पे कि क्यों, मतलब क्यों इतनी बेहतियाती कर दी।
1: उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी। माँ उसको बताना, माँ को ध्यान नहीं रहा है ना, क्योंकि वो ड्राइव कर रही है ना, आपको पता कितनी ट्रैफिक के साथ आप उस वक्त बाहर बिजी होते हैं। गाड़ी के अंदर की डिटेल्स आपने नोट की थी, और छोटा बच्चा है, मतलब 12 का है, 11 का है, उसको ध्यान नहीं रहा और आपको फाइन पड़ गया। और आपको सुसर फोन करके बता रहे हैं भाई सीट बेल्ट नहीं पहनी, मुझे पे करना पड़ रहा है। माँ के दिल से क्या बीतेगी।
0: सही बात है, बाकी ये है बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं। अभी पिछले दिनों मुझे भी एक फाइन पड़ा था, जो मुझे समझ में आज तक नहीं आया। अच्छा, मैंने कॉल भी किया ना, मैंने कहा पूछूं तो पता तो चले कि किस चीज का फाइन पड़ा है, ताकि मैं आइंदा से एहतियात करूं, लेकिन नंबर ही नहीं उठाया उस वक्त मेरा किसी ने। और मेरे दिमाग में मुसलसल रही कि ये पता चलना चाहिए फाइन पड़ा किस चीज का है। मुझे अपने तौर पर लग नहीं रहा कि मुझसे कोई गलती हुई है।
1: जो रूल्स और रेगुलेशन है ना, दीज आर ऑलवेज टू मेक थिंग्स बेटर इफ यू फॉलो देम। तो ही हमें बुरे लग रहे हो, लेकिन फॉर द यू नो फॉर द कम्युनिटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी ऑफ द पीपल हु आर ऑल यूजिंग यू नो ऑल द व्हीकल्स एंड मूविंग देयर कार्स इन दैट ट्रैफिक, उन सबको उस सब सिस्टम को बेटर बनाने के लिए रूल्स है। हमें हो सकता है हमें बहुत मुश्किल लगे, हो सकता है हमें बहुत नागवार लगे, लेकिन उनको फॉलो करने में ही हमारा भला है, बहुत अच्छा हो जाता है इससे। और कोशिश करनी चाहिए बेहतर होने की। बाकी जब फाइन देना पड़ता है तो जो आपके दृष्टि है और जब आपको तो देना पड़ता है वो आपको कॉल करते हैं, तो जो हमारे वो तो सारा हमारे गो थ्रू दैट। इससे यह है कि उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप खुद को अपनी ड्राइविंग को इम्प्रूव करें, ज्यादा हियरिंग हो जाए, ज्यादा कॉशियस हो जाए। और इसी लिए मेरा ख्याल ये सब चीजें जो है ना वो
0: बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल वाकई हमें एहतियात खुद से करनी चाहिए। बुरा लग रहा होता है लेकिन हमारी भलाई के लिए है, तो हमें इस चीज को समझना चाहिए। बिल्कुल चले अमरी भाई, ये बताएं, हाँ इससे पहले कि हम बात खत्म करें, ये बताएं एग्जाम्स कैसे हो रहे हैं बच्चों के?
1: बच्चों के एग्जाम्स तकरीबन फाइनल की तरफ जा रहे हैं,
0: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: आप ये मत पूछा करें कि बच्चों के एग्जाम कैसे जा रहे हैं, आप ये पूछा करें जितने बच्चे उतने आपके एग्जाम है।
0: सही बात है, मैं आप ही के लिए दुआ कर रही हूँ कि जल्दी से एग्जाम्स हो।
1: जब उनको पढ़ा पढ़ो के शाम को, जब मैं अक्सर शाम में को थोड़ा सा टाइम निकाल के ग्रॉसरी के लिए जाती हूँ, और जाके उनको दुखें सुना रही होती हूँ अपने, और वो कह रहे होते हैं पता नहीं कितने नालायक बच्चे हैं। मैं कहती हूँ मेरे सारे बच्चे 95 प्लस लेते हैं, लेकिन उसको लाने के लिए सारी मेहनत मुझे करना पड़ती है, चाय के कप और मुश्किल एग्जाम में रात को पैनाडॉल।
0: सही बात है, नहीं भाई।

0: बड़ी बात है कि इतना मतलब माशाल्लाह से हर बच्चे के साथ लगना, क्योंकि मेरे अपने साथ ये मामला है मुरीबा कि मैं ना पढ़ा नहीं सकती, मैं पढ़ने में अच्छी रही हूँ लेकिन मुझसे पढ़ाया नहीं जाता, तो ये मैं शुरू से मतलब ना थोड़ी देर बैठूंगी मैं इरिटेट हो जाती हूँ, मेरी बात समझ में नहीं आ रही ना, मुझे होता है कि यार ये समझ क्यों नहीं रहा, तो मैं थोड़ी देर के बाद इरिटेट हो जाती हूँ। तो बहुत बड़ी बात है भाई, वो तमाम माएँ जो अपने बच्चों को खुद पढ़ाती हैं, बहुत बड़ी बात है।
1: नहीं, मैं समझ पाती हूँ कि लड़कों को पढ़ा

0: प्लग इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रिजल्ट आए सब बच्चों का हर दफा
1: पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
1: जो छोटा वाला है वो तो हमेशा 98 प्लस लेता है
0: माशाल्लाह
1: और जो बड़े दोनों मैंने 90 से तो सबकी अब परसेंटेज आती है और मैं उनको ये कहती हूं परसेंटेज मैटर नहीं करती मैटर ये करती है कि तुम लोगों की स्टडीज को लेके करियर को लेके क्या हैबिट्स डेवलप हो रही है क्या टारगेट्स डेवलप हो रहे हैं तुम लोग इसको प्रायोरिटी क्या दे रहे हो मैं मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स को इस चीज पे फोकस करना चाहिए आपको परसेंटेज और नंबर्स को छोड़ देना चाहिए आपने अपने बच्चों को फोकस बनाना है गोल ओरिएंटेड बनाना है हार्डवर्किंग बनाना है अपनी स्टडीज को करियर को लेके उसको आप उनको नॉलेज और लर्निंग का प्रोसेस बनाएं और हर सब्जेक्ट के अंदर मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लेती हूँ अच्छे से पढ़ा लेती हूँ तो मेरे बच्चों की बड़ी ख्वाहिश होती है मेरी हमारी अम्मा ना हमारे स्कूल आ जाए बस मैंने घर में तुम लोगों को पढ़ाया जो घर में स्कूल खुला होता है वो काफी नहीं है क्या
0: गुड जबरदस्त यानी आप तो बहुत ही बेहतरीन टीचर्स हैं कि वो टीचर्स की जगह भी आपको जाते हैं
1: बस उनको ये होता है कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ नहीं आता इवन जो सबसे ज्यादा टीचिंग का आपको पता है एक सब्जेक्ट है अल कुरान तो मेरे चूंकि यानी अपनी सारी एजुकेशन के अलावा मुझे ना एक कुरान और दीन की जो लर्निंग है ना वो मैं बाय व्हाट्सएप ऑनलाइन कोर्सेज जो है ना वो कंटिन्यू रखती हूँ
0: अच्छा गुड जबरदस्त
1: मतलब अपनी जो एक जिसे कहते हैं ना कि एक आपकी स्टूडेंट लाइफ लर्निंग थी ना वो एक डिग्री के बाद खत्म हो जाती है लेकिन ये जो दीन को पढ़ना पढ़ाना सीखना इससे आपको जैसे क्या से कहते हैं आपका जो अल्लाह का अल्लाह से आपका ताल्लुक है ना वो रिन्यू होता है इससे कुरान से जो आपका ताल्लुक है ना तो इसकी आपको पर्सनल लर्निंग रखनी चाहिए
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है
1: ये मेरा जाती कॉन्सेप्ट है लेकिन इसका उम्मीद है कि इसका सबको फायदा होता होगा
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: इससे आपकी जो है ना रूहानी तरबियत अल्लाह से ताल्लुक दीन से ताल्लुक अल्लाह की किताब से ताल्लुक और बच्चों को भी बताते हुए फिर तो जो अल कुरान है ना उसको पढ़ा पाना जो है ना ये बहुत ब्लेसिंग है कि आपको आप कुरान सुन रहे हैं और आप उसे समझ पा रहे हैं
0: अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त बहुत अच्छी बात है वाकई और सबको ही कोशिश करनी चाहिए
1: एग्जैक्टली आपकी कोई भी जुबान है आप कुरान को ना थोड़ा थोड़ा करके लर्न करना सीखे अल्लाह ताला इस किताब को आपके लिए आसान कर देता तो आप यकीन कीजिए मुझे लिटरेचर पढ़ने का बहुत शौक है लेकिन जो चीज इस किताब में है ना जो वोकैबुलरी है जो कूजे में दरिया बंद किया हुआ है जो मैसेजेस हैं जो इसका अंदाज है मेरे मियाँ को भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है उन्होंने पालो कोएलो से लेके पता नहीं कौन कौन सा जो है लिटरेचर जर्मन वो क्या क्या क्या कलेक्शन है और क्या क्या चीजें मेरी नजर से गुजरती हैं लेकिन ये किताब जो है ना इसका वाकई कोई मैच नहीं है ये किसी इंसान के
0: बिल्कुल ऐसे ही मुनीबा चलिए जी अब हमें बढ़ना है जिंगल की तरफ जी जी हमें जिंगल की तरफ
1: पढ़ना पढ़ा सकना बहुत ब्लेसिंग है इसकी तरफ जरूर आना चाहिए
0: बिल्कुल जी और मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे पूछूंगी डिटेल में लेकिन अभी हम जिंगल की तरफ चलते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया
1: बिल्कुल बहुत लंबी कॉल हो गई है चलिए
0: बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है ख्याल रखिएगा अपना थैंक यू जी अल्लाह हाफिज़

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107

राइट लिसनर्स, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं एफएम 107 शो है समर मॉर्निंग, और एक दफा फिर आपको वेलकम भी कहेंगे. वक्त हुआ है 8:03 और मेरा और आपका साथ 9 तक है, यानी 2 गुजर चुके हैं और पता भी नहीं चला. अच्छा जी, आ जाते हैं हम एक अपडेट की तरफ, और मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी मईशत के हवाले से एक हौसला अफजा खबर सामने आई है, और वो ये है कि बैन अलावामी माली इदारों ने मुल्क की इकतसादी परफॉर्मेंस पर इत्मीनान का इजहार किया है और ग्रोथ फोरकास्ट को बेहतर करार दिया गया है. अच्छा, ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने पाकिस्तान की मईशी जो हालत है, सूरत हाल है, उसमें बेहतरी को तस्लीम करते हुए GDP ग्रोथ प्रोजेक्शंस में इजाफा किया है. और इसके साथ दोनों इदारों का ये कहना है कि पाकिस्तान चंद सालों से जो दरपेश माशी चैलेंजेस थे उससे निकलकर मुस्तहकम इक्तसादी रास्ते पर गामजन नज़र आ रहा है. और ADB और IMF के जो अंदाज़ों के मुताबिक मौजूदा फिस्कल ईयर में पाकिस्तान की रियल GDP ग्रोथ 3.5 से 3.6% तक रहने की तवक्को है, और इस बेहतरी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रिकवरी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में इजाफा और सप्लाई चेन की नॉर्मलाइजेशन ने अहम किरदार अदा किया. तो ज़बरदस्त भाई. और एक और नुमाया पहलू इन्फ्लेशन में कमी भी है. कुछ अरसे पहले रिकॉर्ड महंगाई का सामना करने वाला पाकिस्तान अब इन्फ्लेशन को 5 से 7.2% के दरमियान लाने में कामयाब होता नज़र आ रहा है, और माहरीन के मुताबिक इन्फ्लेशन में ये कमी स्टेट बैंक को मॉनेटरी पॉलिसी में नरमी लाने का मौका फरहम कर सकती है. तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान के हवाले से, कि वैसे काफ़ी ऐसी बातें भी हो रही होती हैं, लेकिन ये जो इंटरनेशनल न्यूज़ है उसके हवाले से अगर देखा जाए तो इकॉनमी काफ़ी हद तक बेहतर होती नज़र आ रही है, और अल्लाह करे ऐसा होता रहे, काफ़ी हद तक जो है ना इस्तेकाम आ जाए अगर मुल्क में, क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत है. काफ़ी एक मुश्किल वक्त पाकिस्तान ने देखा है और देख भी रहा है. तो खैर जी, अच्छी उम्मीद के साथ इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतरी करे हमारे मुल्क में, सभी के मुल्कों में इंशाल्लाह ताला, और सब जितनी भी जहाँ की भी आवाम है खुश व खुर्रम तरक्की की राह पे गामजन रहे. राइट, और मेरे पास मैसेजेस हैं तो उनकी तरफ आ जाती हूँ मैं. और मैसेज है भाई किसका, ये देख लेते हैं. व्हाट्स द कॉलिंग नंबर? 4434377. कैन आई बी अ पार्ट ऑफ टुडे शो? बिल्कुल, क्यों नहीं भाई. और ये इनका नाम प्राइम डिलीवर है. ओके, आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं. तो पूछने वाली क्या बात है. 4434377. इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम आरजे मैम. और ये जो है इंडिया हैदराबाद से अहमद मुस्तफ़ा ख़ान हैं, और कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं, और कहते हैं मेरा एक फेवरेट सॉन्ग कर दीजिएगा. अच्छा, ये तो मैं चला चुकी हूँ. अच्छा, दोबारा से ही वाला मैसेज किया. हाँ, ये वाला मैंने चला दिया ना, और डेडिकेट भी किया था किसको डेडिकेट किया था, ये देख लेती हूँ भाई कहाँ चला गया. हाँ जी, इन्होंने डेडिकेट किया है ये सॉन्ग टू ऑल लिसनर्स. ओके सही है. चलें, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका. इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम आवश खान मैम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग. और मैं अकेले गाड़ी में मेरे पसंद के सॉन्ग रहते हैं ना, तो वो सॉन्ग को गुनगुनाता रहता हूँ, और क्रिकेट को भी देखता हूँ, और ताली बजाता रहता हूँ. ओके वाओ, ज़बरदस्त, क्या बात है भाई, ज़बरदस्त. तालियाँ बजा के इन्जॉय करते हैं. अच्छा, काफ़ी दिनों से ना हमारे एक दो कॉलर्स नहीं आ रहे. एक तो मुबीन बुखारी कहाँ है, गायब हुए हैं बिल्कुल. मुबीन बुखारी का मैसेज नहीं आ रहा मुझे. इन चीज़ों से वो याद आ गए, क्योंकि वो बकायदा डांस करते हैं. कोई अच्छा गाना लग जाता है तो बकायदा हमारे पास इमोजीज आ रहे होते हैं डांस के. तो मुबीन बुखारी कहाँ हैं आप? अगर उनका कोई जानने वाला दोस्त वगैरह कोई सुन रहा है तो उनको ज़रा जगाए, उनको बताए कि हम सुबह में आ रहे हैं, तो वो नज़र ही नहीं आ रहे काफ़ी दिनों से. और एक सैयद भाई भी काफ़ी अर्से से गायब हैं, क्योंकि वो भी अभी गाने की जब मैं बात करी थी तो मुझे याद है कि वो कोई गाना मैंने लगाया था, वो गा गा के उन्होंने गला ही ख़राब कर लिया था अपना, तो वो भी गायब हैं. तो भाई अगर आप भी सुन रहे हैं तो कॉल कीजिए और बताइए कि गाड़ी में आप क्या करते हैं, गाने गाते हैं या कुछ और करते हैं. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक. और ये अख्तर अली का मैसेज, अख्तर अली आप बताएं कैसे हैं, ठीक हैं. और जसविंदर सिंह काला हमें कहते हैं गुड मॉर्निंग मैडम जी. अच्छा, खुद लिखा हुआ है दिल से काला, और फिर मैं बोलूँगी तो फिर बोलेंगे कि जो ना नहीं, मैंने तो ये नहीं लिखा था, आपने ये क्यों पढ़ा, आपने खुद लिखा हुआ है. दिल के तो आप बड़े साफ हैं जसविंदर सिंह काला, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपके मैसेज के लिए. और इसके साथ ही शहजादा सलीम कहते हैं कि भाई सुपर इन्फॉर्मेशन, वसीम भाई को कह रहे हैं ग्रेट. और इसके साथ और भी काफ़ी सारे मैसेजेस हैं हमारे पास, कॉल भी करना चाहें तो कॉल जरूर कीजिए, जल्दी से शामिल हो जाएं शो में. वरना फिर ऐसा करते हैं, बल्कि अभी एक सॉन्ग ब्रेक ले ही लेते हैं, फिर वापस आते हैं, क्योंकि काफी देर हो गई बोलते बोलते.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दुहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 से सिर्फ FM 107 पर। स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
3: आप सुन रहे हैं FM 107।
0: दिल से देसी।

0: Right, welcome back. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद अर्जुन भविष खान और मैं आपके साथ अभी मौजूद हूँ. कुछ थोड़ी देर का टाइम और है हमारे पास जिसमें हम खूब सारी बातें करेंगे आपसे. अच्छा, स्पोर्ट्स के हवाले से हम देख लेते हैं थोड़ी बहुत खबरें जो दुनिया भर की हैं, हल्की हल्की हम आपसे शामिल करते रहते हैं. सबसे पहले तो कतर में नई फुटबॉल जो सीज़न की तैयारियाँ ज़ोर शोर से चल रही हैं. कतर स्टार्स लीग के क्लब अपने स्क्वाड्स को मजबूत बनाने में इस वक्त जो है वो काम कर रहे हैं, सरगर्म हैं और कई टीम्स ने प्री सीज़न ट्रेनिंग कैंप्स का आगाज भी कर दिया है. कोचेस और मैनेजमेंट्स नए सीजन के लिए स्ट्रेटजीज फाइनल कर रहे हैं, जबकि सपोर्टर्स भी नए जो साइनिंग्स और टीम प्रिपरेशन पर नज़र रखे हुए हैं. तो ये चल रही है भाई कतर में. और फुटबॉल के अलावा कतरी एथलीट्स भी आने वाले रीजनल एथलेटिक्स और स्विमिंग चैम्पियनशिप्स के लिए सख्त ट्रेनिंग कर रहे हैं. स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ को उम्मीद है कि कतरी प्लेयर्स रीजनल लेवल पर बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करेंगे. पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट से ने आने वाले जो इंटरनेशनल सीरीज़ टूर्नामेंट्स की तैयारियां शुरू हो गई हैं. सेलेक्टर्स डोमेस्टिक क्रिकेट और फ्रेंचाइज लीग में प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस का जायज़ा ले रहे हैं ताकि मुस्तकबिल के स्क्वाड्स का इंतखाब किया जा सके. और अभी जो है कई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इस वक्त दुनिया भर की मुख्तलिफ T20 लीग्स में हिस्सा ले रहे हैं, जहाँ उनकी परफॉर्मेंसेस फैंस और सेलेक्टर्स दोनों की तवज्जो मार्केट का मतलब जो मरकज़ बनी हुई है, लोगों की फैंस की तवज्जो का मरकज़ बनी है. अच्छा, कल ही ना मुझे इस पर हंसी इसलिए आ रही थी, कल ही मैंने एक रील देखी जिसमें वो किया हुआ था, क्या कंपटीशन कह सकते हैं, तकाबला किया हुआ था अभी के क्रिकेटर्स और जो पहले के क्रिकेटर्स थे. तो उसमें देखा जाए, मुझे लगता है वैसे सिर्फ क्रिकेट की ही बात नहीं है, क्रिकेट में तो खैर ये बहुत ही ज़्यादा कुछ डाउनफॉल आया है, लेकिन अगर देखा जाए ना मतलब पहले वाले जितने भी लोग थे, आप जितना जितना पीछे चले जाओ आपको लगेगा कि हर जगह पहले कुछ मतलब अलग लोग थे. पहले अलग राइटर हुआ करते थे, क्या मतलब ज़बरदस्त किस्म के राइटर्स हैं पहले के, जो आप देखो इतने बड़े बड़े नाम. और फिर उसी तरह के अदाकार हुआ करते थे, उसी तरह के जो है वो क्रिकेटर्स हुआ करते थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी होते थे. जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हर तरफ जो ना जवाल आ रहा है, लग ये रहा होता है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं?
0: गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह. ये आपके जो लास्ट कमेंट्स हैं इसमें मैं किसी हद तक इत्तेफाक इसलिए करूँगा कि पहले लोग मेहनत करते थे, पढ़ते थे, फिर आइडियाज़ आते थे. देखिए, आपके पास टाइम भी होता है आइडियाज़ के लिए, जो आप उसको फिर सोचते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, लिखने वाले या शायर. तो हम मोबाइल में बिजी हैं, बाकी कुछ काम AI को दे दिया है. हाँ, कुछ AI ने खुद ले लिया है.
0: हाँ, और तो पहले अब मैंने जो रील देखी थी उस पर जैसे हमारे जो क्रिकेटर्स थे, इमरान खान, जावेद मियादाद, इंजमामुल हक, वसीम अकरम, शुएब अख्तर, मतलब ऐसे ऐसे नाम ना. तो अभी इस वक्त में वो, मैं तो खैर क्रिकेट बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ, मुझे बिल्कुल बहुत अरसे से कोई इंटरेस्ट नहीं है ना कोई उम्मीद है, तो अब वो वाली चीज़ नहीं है. और फिर वो पहले वाले जो उनका बोलने का अंदाज़ और सब कुछ भी अलग हुआ करता था. अभी मैंने एक रील देखी थी, बड़े मज़े की थी, ये आई थिंक शाहिन शाह आफरीदी, उनको किसी ने बताया अपना नाम कि मेरा नाम फैज़ मुबारक है आई थिंक, तो आगे से कह रहे हैं आपको भी ईद मुबारक. कुछ मामला जो है ना कुछ अजीब सा हो गया.
1: इमरान खान के ज़माने में पाकिस्तान की टीम दुनिया की सबसे पढ़ी लिखी टीम थी, और एक गेम हमेशा इंस्टीट्यूट से निकलती है ना, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि आपकी तालीम के साथ तरबियत भी होती है. जब क्रिकेटर कहे ना कि मैं पढ़ने नहीं गया था, मैं खेलने गया था, तो समझो अलमिया शुरू हो गया. स्कूल से भागने वाले या पढ़ाई से भागने वाले बोले हम खेलने लग गए.
0: यहाँ पे ना जुल्कर्नैन साहब, मेरी एक अपनी राय है, हो सकता है कि लोग इससे इख्तलाफ भी करें. आप अगर देखें ना पहले, अगर आप इस इंडस्ट्री देखें, आप पहले क्रिकेट देखें, आप पहले कहीं पे भी देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे ना सब जगहों पे इलीट क्लास का एक तरह का राज था. मतलब जितने भी एक्टर्स वगैरह, मतलब आपको सारे के सारे ना बहुत ही बड़ी क्लासेस के लोग नज़र आते थे और सब कुछ, तो उनकी एक वाकई क्लास थी जो पता चलती है, चाहे वो क्रिकेटर्स हों और चाहे कोई भी हों, चाहे वो आपके शोबिज़ के लोग हों. अब लोगों को जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनको मौका मिला, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड कम हो गया.
1: आप उसमें ये जैसे इदारों से आते थे, जैसे अब मैं अगर स्पोर्ट्स की लूँ, हॉकी में हसन सरदार हबीब पब्लिक स्कूल में था, हालांकि बड़ा अच्छा हमारा सेंट्रल फॉरवर्ड था, उसको कहा कि आप इतने इतने जबरदस्त, उन्होंने कहा जी हमारा इसमें गेम खेलना लाजमी था, एक अच्छी चीज थी। तो मैंने इसको ना समझ लें शौक से नहीं लिया कि मैं, मुझे था कि अब खेलना ही है तो चलो मैं इसको खेलता हूँ, तो इसमें खेलता खेलता मेरी इतनी गेम अच्छी हो गई। तो आप ये तो बात सही है कि उन इदारों के पास फैसिलिटीज थी, मैदान थे, वो थे, आम स्कूलों का हाल किया, बैठने को जगह नहीं और कुछ नहीं, इन चीजों
0: फिर आईक्यू भी हाई होता था मतलब लोगों का ना इस वजह से, क्योंकि वो ऐसी जगहों से हैं, उनको एक प्रिविलेज बैकग्राउंड था उनका, तो उनकी बातें उनकी सारी जो चीजें हैं ना उन पर एक अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं सिर्फ खेल की बात नहीं करी, मैं हर जगह की बात कर रही हूँ। अब जैसे एक्ट्रेसेस देखें हमारी, पहले मरीना खान, शहनाज शेख, मतलब आप देखें ना, मतलब पता चलता है बोलेंगी तो एक अलग ही एक फील आती है, शहाना अंदाज और सब कुछ, तो उसके पीछे उनका कहीं ना कहीं ना जो एक बैकग्राउंड है वो भी बड़ा मैटर करता है।
1: अच्छा, फिल्मों के बारे में क्या ख्याल है? ड्रामा तक तो सही है।
0: फिल्में भी जो पहले वहीद मुराद थे ना, देखिए वो भी मतलब कितना बड़ा एक नाम रहा है, अभी तक भी वहीद मुराद का नाम हो रहा होता है, तो वो मयार गिरता रहे।
1: ये तो कुछ बंदे भी हो गए, कुछ खवातीन का भी नाम लेना। तो इसलिए हमेशा परफॉर्मिंग आर्ट्स या हर जगह हर में आप हर लोगों को तालीम के साथ लोगों को एक स्पेस मिलनी चाहिए।
0: हाँ।
1: हर एक का ख्वाहिश करता है कि वो भी लाइमलाइट में आए, वो भी मशहूर हो, उसके पास भी हो। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये जो रह गया ना, वही मुराद की आप हिस्ट्री थोड़ा समझती हैं, उनकी पूरी फैमिली पहले से फिल्म इंडस्ट्री से
0: इंडस्ट्री में थी,
1: यस थी, डिस्ट्रीब्यूटर थे, बना रहे थे, कर रहे थे, दे आर वेल नोन और रिच फैमिली, और उनके पास अंदर की चीज थी। अगर आप एक और चीज देखें, आजकल ड्रामा इंडस्ट्री में जिनके बच्चे आ रहे हैं, दे आर इजी एक्सेस थ्रू देयर पेरेंट्स, कि उनके बच्चों को दूसरों को कुछ जानता पहचानता नहीं है, तो वो उनको ग्रेजुअली ट्रेन कर लेते हैं। आप कई ऐसे स्टार या समझ लें जो एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं, उनके बच्चों के आप अर्ली टाइम देखें, और जो नया आ रहा होगा उसको तो बड़ी वो कहते हैं ना डांट डपट, और तुम आ गए, तुम ये नहीं,
0: बस ये देखना चाहिए इनको कि जिसके पास टैलेंट है उसको आप दो मौका। आप जैसे अभी की जो देखा ना तीसरी या चौथी जनरेशन है, अहद रजा मीर, आसिफ रजा मीर, उससे पहले उनके वालिद हुआ करते थे, तो वो एक अच्छा इजाफा है, बहुत अच्छा, वो उस बंदे में टैलेंट है। लेकिन अगर बच्चे में टैलेंट ही नहीं है उसको जानबूझ के नहीं दूसरों के ऊपर अजाब बनाओ, लेकिन हाँ अगर है टैलेंट तो हाँ आप लेकर आ सकते हो। मैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बिलीव नहीं करती कि नहीं बच्चे नहीं आने चाहिए, नहीं होना चाहिए, चीज़ अच्छी हो हम देखें तो अच्छा लगे।
1: नहीं बिल्कुल आना चाहिए, वाई नॉट दे मेक इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट में आप पॉलिश हो जाते हैं। और देखें जब हम लोग स्टडी करते हैं या देखते हैं ना, यूरोप में स्टूडेंट स्कूल लाइफ में बच्चों की काउंसलिंग की जाती है, मतलब फिल्ट्रेशन, कि ये बच्चे में ये टैलेंट है, ये मैथ है, ये आर्टिस्ट है, ये स्पोर्ट्स है या वो है, फिर उसको उस तरह पॉलिश कर लेते हैं।

0: यानी फॉर एग्जांपल आप अपनी क्लास में देखें, कोई बच्चा बोलने में बहुत अच्छा है तो कोई भागने दौड़ने में बहुत अच्छा है, पता चलता है गेम होंगे तो पता चलेगा क्या है। इसी तरह आप किसी को देखें, किसी की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, तो मकसद है कि एक टैलेंट हंट होना चाहिए हर एक को, उसकी उसके मुताबिक अगर आप वो करेंगे। अब वैसे मुझे मेडिकल या उससे रिलेटेड चीज़ों का मुझे बड़ा शौक था, या मैं अभी भी पढ़ता हूँ करता हूँ कुछ है, लेकिन मेरा इंजीनियरिंग की साइड पे बड़ा माइंड था, मुझे टेक्निकली तोड़ जोड़ ये वो था। अल्लाह ने मुझे उस तरफ चांस दिया, मैं हो गया। अगर मैं दूसरी तरफ जाता तो शायद इतना शाइन ना करता। तो आपको आपकी डायरेक्शन में अगर वो चांस मिलता है, आइंस्टाइन को आप देख लें क्या था, तो इसलिए आप पॉलिश हो जाते हैं। और गेम हमेशा हर जगह स्कूल में होनी चाहिए, उनके पास बच्चों का माइंड फ्रेश होता है, उनकी एनर्जी आपस में बॉन्डिंग होती है, और उसके अलावा उनको बिहेव करना आता है, हेल्दी भी है, और ये सबका हक है। ये अमीर गरीब या ये नहीं है कि उनको, क्योंकि एक हेल्दी चीज़ है कि हेल्दी चीज़ वो खरीद लेते हैं, गरीब ना स्कूल जा सकता है। सबसे पहले तो मैं यही समझता हूँ, तालीम, सेहत और तीन चीज़ें हैं, अब तीसरी मुझे ज़हन नहीं आ रही। ये स्टेट का हर बच्चे को इक्वल राइट है, एक बच्चा जो उस स्टेट में है उसको इक्वल राइट है। तो बाकी आज क्या मौजू चल रहा है, थोड़ा सी
1: आज हमारा ये था, आज हमारा मौजू ये था कि गाड़ी में आप जब अकेले होते हैं तो कुछ ऐसा वियर्ड जो कि आप करते हो, जैसे मैंने अपना बताया, मैं सबको इसलिए बता रही हूँ कि एकदम से समझ भी नहीं आएगा बंदे के, कि मुझे चूंकि अपने आप से बातें करने की शुरू से आदत है। एक तो रीज़न ये है कि मैं 5.5 साल तक अकेली ही रही हूँ घर पे, भाई बहन नहीं थे मेरे, तो मुझे शुरू से आदत पड़ी हुई अपने आप से बात करने की, तो मैं गाड़ी में भी करती हुई जाती हूँ। तो आपके साथ कुछ ऐसा है?
0: नहीं, मैं गाड़ी में हूँ तो, या अगर आप लोगों का प्रोग्राम हो वो लगा लेता हूँ तो, या फिर कुरान चैनल है वो लगा लेता हूँ तो उसमें फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर बाकी सफ़र भी इतना नहीं है, दाएं बाएं देखते बालते गाड़ी चलाते ऑफिस पहुँच जाते।
1: सही हो गया, मतलब आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप शेयर कर सकें?
0: नहीं, मेरी ऐसी हैबिट नहीं है आपस में बातें करने की ये, बल्कि मेरा जो बड़ा बेटा है वो बचपन में इसी तरह ही था, वो खेल रहा है कूद रहा है ना, गाड़ी भी चला रहा है तो वो उससे खुद भी बातें कर रहा है, मैं तुझे ऐसे चलाऊंगा तो उसको टक्कर मारना वो करना। उसको कहते थे चल तू गाड़ी तो चला रहा है लेकिन इससे बातें क्या कर रहा है।
1: मेरे पप्पा तो कभी कभी परेशान हो जाते थे, मुझे देखते थे ना, कहते थे ये सही तो है लेकिन वो होता है मतलब कुछ चीजों में। अभी तक मेरी आदत है, जैसे मैं पहले खाना बनाती थी तो उस वक्त हमारे नीचे का फ्लोर हुआ करता था, उधर जहाँ पे किचन था, तो मैं अकेली होती थी, तो क्योंकि मैंने बहुत अर्ली कुकिंग शुरू कर दी थी, मैं काफी दफा बता चुकी हूँ, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब रहती थी, तो बाकायदा मैं इंजॉय करके अपना पूरा कुकिंग शो चलाती थी कि अब हम ये डालेंगे फिर ये होगा फिर ये होगा, तो मतलब एक अपने आप को मैं एंटरटेन खुद ही कर लेती हूँ, आज तक कर लेती हूँ।
0: नहीं, अक्सर ऐसा होता है, और बच्चे गुड़ियों से भी खेल रही हों या हादसों पे जो जिनके पास कंपेनियन या वो ना हो अकेले हों, तो ये एक नेगेटिव चीज़ नहीं है। वो ये अब मुझे याद नहीं कि मेरी बहन या कोई मुझे याद है खेल रही हो ना, मैंने तुम्हें कपड़े पहना दिए, अच्छे हो गए, तुम बड़ी अच्छी लग रही हो, तो गुड़ियों से खेलते हुए, तो ये एक बुरी चीज़ नहीं है। आप एक्सप्रेस कर रही हैं, और आज अल्लाह ताला आपके पापा को जन्नत नसीब करे, अगर वो देखते तो बोलते कि ये ही गुड़िया मेरी जिस तरह बातें कर रही है, पूरे जमाने से बातें कर रही है।
1: हाँ, नहीं वो तो उन्होंने मुझे काफी अर्से तक देखा है, पहली दफा ऑडिशन के लिए भी मुझे वो खुद ही लेके गए थे साथ में, तो ये कि अंदाजा उनको हो गया था कि भाई ये बातूनी जो है ना बातें कर करके रेडियो पहुंच गई है, तो ये हो जाता है। चले जी, थैंक यू सो मच जुल्करन साहब, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? चले जी, थैंक यू। अच्छा जी, तो अब हम मूव करते हैं, हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो मैं आज कुछ आपके लिए डायलॉग्स लेकर आई हूँ, आपने मूवी बतानी है, ठीक है? चले जी, तो हम चलते हैं इस गाने की तरफ।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूँ? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक

0: आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: जी मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए क्या, जबरदस्त ट्रैक, बहुत ही अलग सा गाना है वैसे ये। चले जी आगे हम एक दफा फिर से वापस और मैसेजेस पढ़ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद आपकी कॉल्स की तरफ आते हैं और फिर आप देखते हैं आपसे कुछ डायलॉग दूंगी, मूवी आपने कैसे करनी है। गुड मॉर्निंग, रविंद्र सिंह सिद्धू ने कहा है मुझे UAE से, बहुत बहुत आपको भी गुड मॉर्निंग और सलाम माही मैम, हैप्पी वेंसडे मॉर्निंग, आई एम बिजी मैम। ओके सुरजी थैंक यू, लेकिन आपने इतना बिजी माहौल में भी मुझे मैसेज कर दिया, थैंक यू जी। और मेरी बारी कब आएगी, अल्लाह अल्लाह सही है, जब दो औरतें मिल जाती हैं तो कयामत आ सकती है लेकिन उनकी बातें ख़त्म नहीं हो सकती। ये कौन है भाई, ये मज़र खान। मज़र खान आपने कॉल की थी क्या, आपने कॉल की थी, अगर कभी नहीं मिल रही हुआ करें ना आप लोग कॉल कर रहे हो तो मुझे एक मैसेज कर दिया करें कि मुझे कॉल बैक कर लें, नंबर भी बता दिया करें, अगर वही है तो मैं कर लूँगी कॉल, ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, गुड मॉर्निंग मामा जी कैसे हैं आप, और आप कहते हैं होप वेल, वेलकम टू समर मॉर्निंग, दिल से देसी, हैप्पी वेंसडे मॉर्निंग आपको भी। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज बुध का दिन तो आ ही गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, मावज खान ढेर सारी दुआओं के साथ आता आप, ग्रेट शो और बहुत बहुत दुआएं आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, खातिम हुसैन का मैसेज था ये। और इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम मैम कैसे हो आप, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं, क्या हाल चाल हैं। इमरान बी का मैसेज है, इमरान अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपनी भी खैर खैरियत बताइएगा। गुड मॉर्निंग का मैसेज किया था मोहम्मद जुल्करनैन ने। और इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम, और कहते हैं कि फजर साला इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर डे, या अल्लाह फॉरगिव माय सिंस, या अल्लाह फुलफिल माय ड्रीम्स, या अल्लाह गिव मी सक्सेस, या अल्लाह ब्लेस माय पेरेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरी हार्ट बीट, एवरी ब्रेथ और एंड एवरी साइलेंट ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह। ओके हाँ गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और ये कहा है किसने, ये कहते हैं हमें, अच्छा नाम नहीं लिखा है इन्होंने, ठीक है। और इसके साथ ही जी गुड मॉर्निंग माही जी, यू हैव अ वंडरफुल ब्लेस्ड डे, ओके ओके थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ हैं हमारे पास मावज जी, अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग, ब्रेक लेना भूल गए कब, ओके 8 बजे, हाँ वो थोड़ा सा क्योंकि मैं चाह रही थी कि कॉल अप क्योंकि हो गई ये बात तो रख के फिर उसके बाद लेंगे ब्रेक। और प्लीज़ पिकअप इम्पॉर्टेंट है, ओके आपने कॉल किया हुआ है अभी तो उठा लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन?
1: नाम तो सुना होगा।
0: हाँ आसिफ।
1: Yes, man, sorry.
0: कैसे आसिफ,
1: मैं तो सोचा था ये स्टाइल करूंगा आज मैं,
0: ये वाला। सही, मैंने पहचान लिया आपको। तो गेम खेलेंगे क्या? पहले तो ये बताएं कि गाड़ी में क्या होता है, गाड़ी में क्या होता है, गाड़ी में आप तो बैठे रहते हैं, आपकी गई भी होती है मैडम अंदर, ठीक है, तो आपका तो बहुत सारा जो टाइम है वो गुजरता है गाड़ी में अकेले बैठे हुए, तो क्या करते हैं आसिफ ऐसा जो बहुत अलग हो?
1: मैं गेम खेलता हूँ बहन, मेरे को बहुत पसंद है गेम खेलना, मतलब
0: गेम खेलते रहते हैं
1: अपने। हाँ। दो फोन है मेरे पास, तो एक फोन में गेम खेलते रहता हूँ, एक फोन में बस कॉलिंग वगैरह रहता है।
0: हाँ।
1: नहीं तो अगर गेम से बोर हो गया तो फिर मैं मूवीज देखता हूँ, मेरे को मूवी बहुत पसंद है।
0: अच्छा अच्छा सही सही। अच्छा एक बात बताएं, गाड़ी में बैठे रहते हैं काफी काफी देर तक इंतजार वगैरह करना पड़ता है, तो गर्मी ज्यादा होती है तो मसला तो होता होगा ना थोड़ा, मतलब इतना ज्यादा देर गाड़ी में बैठे रहो तो?
1: नहीं बहन मतलब इतना भी नहीं बैठता हूँ, मतलब
0: अच्छा इतना भी नहीं बैठते,
1: यानी एक घंटा बैठ गया गाड़ी में एसी ऑन करके तो बहुत हो गया। समटाइम क्या होता है मैं वॉक कर लेता हूँ, कभी कुछ करता हूँ, मतलब डिपेंड करता है ना मैम के मतलब कौन है इस टाइम पे, मेहमान जी है तो मतलब समझ में आता है, अरे भाई अपनी पब्लिक अपनी
0: बहन आई बैठ जाओ भाई कोई मसला ही नहीं है,
1: 4 घंटे फ्री के मिलेगा क्या बात है, बाकी सरोवर भाई के टाइम पे तो 1.5 घंटा चल, 1 घंटा चल जाता है,
0: आधा घंटा बर्दाश्त कर ले बड़ी बात है।
1: ये भाई ऐसा ना करो आजकल,
0: सुन रहे होंगे भी खबरें बना रहे होंगे सुन रहे होंगे वो।
1: सुन रहे होंगे तो आ बोले तो बताता हूँ मैं। जी
0: जी
1: मेरे को एक फोन आया आपकी तरफ से।
0: अच्छा
1: जी, मगर वो लोग कह रहे हैं कि टुमारो पिकअप करने, फिर मैं बोला कि मैं आज सफर जा रहा हूँ मैम सॉरी, तो बोले कि अभी आके पिकअप कर लो, मैं बोला अभी तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्या करूँ मैम?
0: आए ना लेके जाए,
1: मेरे पास लोकेशन नहीं, वो वाउचर है उसका मतलब क्या, मतलब रेस्टोरेंट में जब भी खाना खाना है सिर्फ।
0: नहीं नहीं लोकेशन चाहिए ना, लोकेशन अभी भेजते हैं आपको, आप कह रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोकेशन ना भेजें, भेज दिया आपको, ठीक है आ जाइए लेके जाए, जा रहे हैं ना वेकेशन पे, उससे पहले लेकर जाए,
1: तो भाई बनता है
0: ना। और छोड़ना नहीं चाहिए, मुफ्त में जो चीज मिले वो छोड़नी नहीं चाहिए,
1: वो हम लोग के उधर एक कहावत है, मुफ्त के चंदन, मुफ्त के नंदन, घिस में चंदन, ऐसा कुछ है वो।
0: सही है, जरूर लेके जाइएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: लोकेशन तो भेज दिया आपको, ठीक है। अच्छा हाँ, आज मैं ना एक डायलॉग पूछूंगी, पहला वाला आसान है, ठीक है, तो देखती हूँ कि आप डायलॉग से मूवी पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते। फेमस है, पहचान रही है मुझे लगता है, ठीक है। खुद ही बताऊंगी, मैं सुनाऊंगी नहीं, खुद ही अपनी ही आवाज में सुनाऊंगी, ठीक है। तो डायलॉग है, हाँ डायलॉग है, गौर से सुनिएगा। लाइफ इज अ रेस, अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई और तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। सोचें सोचें सोचें।

0: भाग मिल्खा भाग
1: नहीं नहीं ये नहीं है भागने का आया तो आपने कहा भगा दो नहीं रेस नहीं है लाइफ इज अ रेस ठीक है अच्छा थोड़ा एक और एक एक और हिंट देती हूँ ठीक है ये एक बाप अपने बेटे को बोल रहा है
0: ओके
1: लाइफ एक रेस है अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा
0: ये मैं सुना हूँ एक एक सेकंड बहन एक सेकंड एक सेकंड अरे ये मुंह पे नहीं आ रहा है बहन क्योंकि आप ना म्यूजिक के साथ में अगर कुछ ऐसा मतलब होता ना मोमेंट के लिए दे रहे आप अपनी वॉइस में बता रहे ना तो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया मतलब मैं भी जी कौन सी मूवी डायरेक्ट करके आ गया
1: अच्छा चलिए कोई मसला नहीं है कोई मसला नहीं है आप सोचिएगा आराम से ठीक है तो आसिफ बस हार जीत का तो कोई मसला ही नहीं है ना कौन सा आप हार जाएंगे कौन सा कोई इनाम मिल जाना था जो रह गया है ना ये तो सिर्फ फॉर फन है ठीक है चले तो फिर अपना जरूर वो आके गिफ्ट लेके जाइएगा ठीक है चले दी और बेस्ट ऑफ लक और खुश रहें हमेशा थैंक यू जी थैंक यू अल्लाह हाफिज़ ख्याल रखिएगा रही जी तो हमारे साथ एक और कॉलर हैं बहुत ईजी डायलॉग है मुझे पता है कि पहचान लेंगे लोग हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: गुड मॉर्निंग
1: गुड मॉर्निंग राज कैसे हैं राज
2: बढ़िया बढ़िया मैडम
1: जबरदस्त आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए तो भाई बाएं हाथ का खेल है जी थ्री इडियट गुड जबरदस्त बिल्कुल बिल्कुल थ्री इडियट भाई चाचा एक और पूछती हूँ अब मूवी का नाम बताना है ठीक है सही है बहुत फेमस डायलॉग है बहुत ही ज्यादा इमोशनल फेमस डायलॉग है आज मेरे पास बंगला है गाड़ी है बैंक बैलेंस है तुम्हारे पास क्या है
2: दीवार
1: ओए होए होए क्या बात है भाई मतलब आपने रटा हुआ है आपको सांस भी नहीं लेना पड़ता बता देते अच्छा अच्छा इसके अलावा क्या है इसके अलावा मेरे पास सही नहीं ये वाला नहीं पूछती भी समझ जाएंगे आप ये वाला पूछती हूँ कभी हार मत मनाना हार तब होती है जब इंसान खुद हार मार देता है कभी हार मत मनाना हार तब होती है जब इंसान खुद हार को मान लेता है नहीं नहीं समझ में आया राज अच्छा वैसे जबरदस्त भाई मतलब आप इतनी जल्दी एक तो ये पता है क्या होता है कि आपको पता भी होती है बाज़ोका लेकिन आप जब कॉल पे होते हो एकदम से एक प्रेशर होता है ना तो उसमें आप जितनी अच्छी तरीके से बता लेते हो बड़ी बात है भाई
2: कॉल भी होता है और I am driving also
1: अच्छा अच्छा ड्राइविंग कर रहे हैं तो मुझे फिर उसका भी आंसर देना आपके ड्राइव कर रहे हो अकेले में तो कभी कुछ ऐसा वियर्ड है जो आप करते हो गाना गाते हो कुछ भी
2: अगर मैं गाऊंगा तो लोग भाग जाएंगे
1: सही लेकिन मसला नहीं है वो कहते ना मतलब गाना किसी को आता हो ना आता हो लेकिन वो गाता जरूर है कभी ना कभी तो गाया ही होगा तो उसमें अच्छा ही अब मतलब वो नहीं है बस गाना होता है चले तो गाना ही गाते हैं यानी आप
2: या बट आई डू दैट इन द कार
1: ओके सही है चले थैंक यू सो मच राज बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का थैंक यू हैव अ गुड डे थैंक यू बाय बाय टेक केयर राइट जी राइट तो राज जो है वो तो हमेशा ही यस कर लेते हैं अगर आप लोगों के किसी के समझ में आया है ये वाला डायलॉग जो मैंने अभी बोला तो आप लोग इसका भी आंसर दे सकते हैं कुछ मैसेजेस मेरे पास आए हुए उनको मैं देख लेती हूँ थ्री इडियट फॉरन से कहा था ये कौन है इन्होंने आरिफ आरिफ पहचान गए थे फॉरन से थ्री इडियट इसके साथ ही और जो है ये हैं भाई हमारे उम करके नाम है उम इज इन्होंने भी थ्री इडियट पहचान लिया था अस्सलाम वालेकुम कहते हैं राज इज चैंपियन एज ऑलवेज ओके और मावा जी आप कल पूछ रहे थे गेम शो से के ताल्लुक से तो आई वुड से कि इजी गेम T30 थीम आर्टिस्ट और आर्ट वगैरह खिलाइए सेम एज वेद वेद ना बहुत अच्छा खिलाता होगा मैंने सुना तो नहीं है क्योंकि मुझे आइडिया है तो जिसमें सिर्फ आपको कोई एक्टर का नाम बोलना है लिस्नर ने उस एक्टर के कोई भी फिल्म का नाम बोलना है जो भी 30 सेकंड में ज़्यादा बोलेगा वो विनर होगा अच्छा मतलब समझ नहीं पा रही आपको नाम बोलना है एक्टर का और लिस्नर ने उस एक्टर की कोई भी फिल्म का नाम बोलना है हाँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ओके ओके ओके आप ट्राई करें सारे लिस्नर्स को ये गेम पता है और बड़े फेमस और पसंदीदा भी है।

0: है ये गेम सभी का, चले चलें ट्राई करती हूँ मैं इंशाल्लाह। और ये डायलॉग की फिल्म बोलना है जो भी आपने पूछा, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ये डायलॉग की फिल्म बोलना है, तो कोशिश करते हैं वो भी मैं लेकर आऊँ, जो कह रहे हैं ना वो भी इंशाल्लाह ताला करते हैं, ये तो इजी है ये मैं कर लूँगी। अच्छा जी, फातिमा कहती है नाइस शो, थैंक यू फातिमा, जो जीता वो सिकंदर ये वाला नहीं है, ये मूवी नहीं, लेकिन है कोई ऐसी मूवी, मतलब ये मैं थोड़ा सा बता दूँ कि स्पोर्ट्स मूवी है कुछ, ठीक है अब कुछ समझ में आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कि वैसे अज़र हुसैनी सैयद का मैसेज था, तो कॉल कर सकते हैं आप मुझे, शामिल हो सकते हैं, जल्दी से कॉल कीजिए ताकि हम जो है आपकी कॉल ले लें। एक दफ़ा फिर मैं डायलॉग जो है वो बता देती हूँ आपको, कभी हार मत मानना, हार तब होती है जब इंसान खुद हार मान लेता है। अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है, वो ये कि इसमें ना एक्सेंट थोड़ा सा कुछ चेंज होगा, क्योंकि ये जो मूवी है इसमें जो लोग दिखाए हैं, अब एक और क्लू दे देती हूँ मैं, दूंगी नहीं दूंगी, कॉलर आ गए, चलिए देखते क्या पता बताई दे। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: जी शहजाद सलीम।
1: हाँ जी, मेरा आंसर तो है चक दे इंडिया।
0: चक दे इंडिया नहीं,
1: लगाया मैंने।
0: अच्छा मैं एक और बता देती हूँ आपको, इसका क्लू शायद आप समझ जाएं, गांव की बेस्ड फिल्म है, विलेज बेस्ड फिल्म।
1: हाँ लगान, लगान।
0: आहा, ना
1: लगान नहीं है,
0: लगान नहीं है।
1: एक और क्या हो सकती है,
0: एक और क्लू, एक और। अब्बा ने कहा है,
1: अब्बा ने कहा है।
0: हाँ अब्बा ने कहा है ये डायलॉग, गांव, अब्बा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड फिल्म है।
1: अच्छा नहीं नहीं बता पाऊंगा।
0: बायोग्राफी है, बायोग्राफी है, रियल रियल स्टोरी है, रियल स्टोरी है।
1: नहीं सोचना पड़ेगा,
0: चले सोचे सोचिए सोचिए, ठीक है। बहुत शुक्रिया शहजादा सलीम आपकी कॉल का, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। रईस तो हमारे साथ शहजादा सलीम थे, अगर आप लोगों के जहन में आ रही है, कुछ लोगों के दिमाग में आ गई है भाई, आ गई है, कुछ लोगों ने गेस कर लिया है, बिल्कुल सही। अली रजा भाई एबटाबाद की तरफ से आपको सलाम, वो भी शो सुन रहे हैं, अली रजा भाई को मेरी तरफ से कहिएगा वालेकुम सलाम, और देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे?
2: मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
0: जबरदस्त जी, तो बताएंगे डायलॉग का आपको समझ में आया, कौन सी मूवी का है?
2: ये तो मूवी का नहीं, ये तो एक बंदे ने, हमारा एक हीरो है, एक लीडर है, उसकी का ये डायलॉग बिल्कुल रिसेंटली, और वो प्रैक्टिकल डायलॉग है।
0: कौन सा? ये जो मैंने बोला
2: जी जी, ये बिल्कुल, ये हर था इंसान तब है जब वो हार मान जाता है।
0: ये किस बंदे ने बोला है?
2: ये तो हमारा एक अजीम इंसान है, इमरान खान जिसका नाम है।
0: अच्छा अच्छा, उन्होंने बोला है, ओके
2: सही। ये इमरान खान का बिल्कुल,
0: अच्छा मेरा ख्याल है उन्होंने भी मूवी देखी होगी, उन्होंने भी मूवी देखी होगी, उन्होंने कहा होगा ये डायलॉग बोल देता हूँ।
2: उसके साथ जो हो रहा है पॉलिटिक्स में, बिल्कुल वो भी मूवी से कम नहीं है।
0: हम पॉलिटिक्स की तो बात नहीं करते हैं, लेकिन नाम बताएं भाई अपना, अपना क्या नाम?
2: नहीं है? मुझे बताएं, मुझे बताएं, सॉरी मैंने पॉलिटिक्स का नाम लिया, लेकिन सॉरी पॉलिटिक्स का नाम यहाँ नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये जो डायलॉग है वो वही बोलता है ना, इंसान का जब वो हार मान जाता है, तो फिल्म का तो मुझे बताते हैं, सो सॉरी।
0: चले मसला नहीं, नाम बता दें अपना, हम दूसरे कॉलर की तरफ बढ़ते हैं।
2: मुदस्सर है।
0: मुदस्सर, मुदस्सर, ओके जी, थैंक यू मुदस्सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। रईस तो लोगों ने भाई, जिन लोगों ने मैसेज टाइप किया वो जल्दी से बता दें, ताकि फिर हम, अभी कॉल थी लेकिन वो ड्रॉप हो गई है अभी अभी, तो देखते हैं थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे आखिर की तरफ, मतलब शो वाइंड अप करना है, तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपकी, जल्दी से कॉल आ जाए किसी की, कोई बता ही दे अपने मुँह से, मैं ये चाह रही हूँ, तो जल्दी से कॉल कीजिए और बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। काफ़ी लोगों ने लिख लिख के भेज रहे हैं सब लोग, लेकिन फ़ोन करके भी बता दें थोड़ा अच्छा हो जाएगा। राइट, एक कॉलर हाँ आ गए, चलो वरना मैं सोच रही थी मैसेज पढ़ ही दूं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम कॉलर, ओके ये तो लिख के भेजा था, सही बताएंगे। जी
3: यूसुफ बात, कैसे हैं?
0: यूसुफ बात, मैं बिल्कुल समझ गई थी, कैसे हैं यूसुफ आप? ठीक है
3: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह।
0: तो आप बता ही दे जो लिख के भेजा है।
3: दंगल।
0: दंगल, राइट आंसर, राइट आंसर, बिल्कुल सही, जबरदस्त। वो जब शहजादा सलीम कह रहे थे लगान, मैं बोलने वाली थी कि इन्हीं की है।
3: मैं सेकंड, आपके सेकंड पॉइंट में पहचान गया, अब्बा कह रहे हैं।

0: अब्बा कह रहे हैं
1: गांव के बेस पे है ना
0: हाँ नहीं अच्छा आपने वो जो आइडिया दिया मुझे वेद के गेम का तो इंशाल्लाह वो फिर मैं वो कर सकती हूँ वो इजी है
1: हाँ बहुत इजी है कोई भी फिल्म बता सकते हैं आप और सभी का बहुत पसंदीदा भी है बहुत बार खिलाए भी हैं और बहुत स्कोर
0: सिर्फ एक्टर का नाम बताना है उस पे वो फिल्म बताएंगे
1: कोई भी एक फिल्म बताएंगे जो सबसे ज्यादा बताएंगे ना
0: अब मसला ये है कि अगर मुझे फिल्म ना बताओ तो
1: कोई लिसनर्स बता देंगे बहुत सारे लिसनर्स हैं
0: चले ठीक है तो हम ये इंशाल्लाह करते हैं ठीक है मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में गेम्स बेहतर करूंगी क्योंकि मैंने इस वीक रियलाइज किया है कि कुछ बेहतरी होनी चाहिए ठीक है
1: जी
0: इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ थैंक यू जी वालेकुम अस्सलाम राइट तो बिल्कुल जी राइट आंसर यही था दंगल और मोहम्मद यूसुफ ने भी लिख के भेजा था ये और उसके साथ ही दंगल मुझे लिख के भेजा था किसने ये है कमालुद्दीन शेख बिल्कुल सही और इसके साथ ही इरशाद ने भी कहा दंगल इरशाद आपका भी आंसर सही था सिराज ने कहा सुल्तान ओके नहीं सुल्तान नहीं है और इसके साथ ही नसीम कहते हैं कितनी चाहत दिल में छुपाए बैठे हैं ये गाना सुनना ये आप भी कोई डायलॉग बता रहे और दंगल एक और भाई ने बोला था और ये कौन है ये हैं अभी तो मैंने इनका नाम पढ़ा था अजहर हुसैनी सैयद इन्होंने भी बिल्कुल राइट आंसर दिया था नसीम ने नहीं किसी और ने बोला हुआ दंगल चले रही थैंक यू सो मच आप सब लोगों की कॉल्स का आप लोगों के मैसेजेस का इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होनी है मेरी कल और कल कितनी मतलब अच्छी बात है कि कल जो है वीकेंड भी है तो इंशाल्लाह ताला कल का वीकेंड का शो होगा और हम उसको काफ़ी इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला तो अभी मैं आखिरी ट्रैक चला के जा रही हूँ ये जो नसीम ने का सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है नसीम मैं समझ गई थी इतना मेरा आई क्यू है मैं समझ जाती हूँ तो इंजॉय कीजिए ये ट्रैक सुनते रहें FM 107 दिल से देव सी मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय

0: कंपनियों के हिस्स की कीमतों में इजाफा हुआ जबकि दो कंपनियों के हिस्स में कमी हुई और तीन कंपनियों ने अपनी साबका बंद कीमत बरकरार रखी। सामान खबरों के इस मरहले में अब आप समाप्त कीजिए स्पोर्ट हेडलाइंस।
1: स्पोर्ट हेडलाइंस विथ मोहम्मद अमीन।
2: अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे इंटरनेशनल में 86 रन से शिकस्त देकर तीन मैचेस की सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल कर ली है। बारिश से मुतासर इस मुकाबले में मुसद्दिक हुसैन ने करियर के बेहतरीन 86 रन नॉट आउट स्कोर किए जबकि नाहिद राणा ने 4 विकेट हासिल करके बांग्लादेश की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के आगाज़ से पहले मेक्सिको के प्रेसिडेंट क्लॉरिया शेनबॉम ने एक अहम फैसला करते हुए दारुल हुकूमत के फेडरल मुलाज़मीन को घर से काम करने की हिदायत दी है। साथ ही जुमेरात को वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीबात के दौरान ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए तालीमी इदारों में क्लासेस भी मुअत्तल कर दी गई हैं। पोर्चुगल की वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों को उस वक्त गैर मुतवक्क झटका लगा जब कुबा में मगरीबी साहिल के करीब समंदर में 6.1 शिद्दत का जलजला रिकॉर्ड किया गया। इस जलजले के झटके फ्लोरिडा के कुछ इलाकों में भी महसूस किए गए। वर्ल्ड कप फुटबॉल से कबल दोस्ताना मैचेस में स्पेन ने पेरू को 3-1, फ्रांस ने नॉर्दर्न आयरलैंड को 3-1 और अर्जेंटीना ने आइसलैंड को 3-0 से मात दी। और टेनिस की अजीम खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने 4 साल के रिटायरमेंट के बाद कामयाबी के साथ वापसी की है। अमेरिकन लेजेंड ने विक्टोरिया मोबोको के साथ मिलकर क्वींस क्लब टूर्नामेंट के पहले राउंड के डबल्स मुकाबले में फतेह हासिल की और अपनी यादगार वापसी का आगाज किया। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही। आप सुन रहे FM 107। अब आप न्यूज हेडलाइंस समाप्त फरमाइए।
1: FM 107 पर न्यूज हेडलाइंस विद मोहम्मद नफीस।
0: वजीर आजम वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी और अमरीकी सेनेटर क्रिस फॉन हॉलैंड के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दद उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर मम्लकत बराए उमूर दिफा शेख सऊद बिन अब्दुलरहमान अल थानी और कतर के दौरे पर आई हुई स्वीडन की वज़ीर खारजा मारियम आलमीर ने मुलाकात के दौरान खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल अमन इस्तेहकाम और दिफाई शोबे में तआवुन समेत दीगर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। कतर और माइक्रोनेशिया के ने न्यूयॉर्क में वाक़ कतर के मुस्तकिल वफ्द के दफ्तर में सफारती ताल्लुकात के क़याम के लिए मुश्तरक एलामिये पर दस्तखत करते हुए बाहमी दोस्ती और तआवुन को फ़रोग देने और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए अक़वामे मुत्तहिदा के उसूलों की पासदारी करने के अज़्म का इजहार किया। इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया में कतर के सफीर डॉक्टर सुल्तान बिन मुबारक साद अद्दौसरी से उनकी सफारती असनाद उसूल की। इस्लामी तआवुन की तंजीम ने इसराइली कनेस्ट के फिलिस्तीनी टैक्स फंड्स को जब्त करने के दायरे कार में तौसीअ के कानून की मजम्मत करते हुए इसे बैन अल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया और फिलिस्तीनी रुकूम की फौरी गैर मशरूत बहाली का मुतालबा किया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि ईरान की जानिब से अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर गिराए जाने के बाद अपने दिफा के लिए ईरान पर फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए गए हैं। सामाइन इसी के साथ उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला नशरी अपने अख्तिताम को पहुँचता है। स्टूडियो से हमारे

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोज़मर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामने किराम, खाना सिर्फ जिस्म की जरूरत पूरी करने का नाम नहीं, ये खाना अल्लाह की नेमत है और नेमत का अदब भी होना चाहिए। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के आगाज से लेकर इख्तिताम तक ऐसे आदाब सिखाए हैं जो जिस्मानी सेहत, रूहानी तरबियत और माशरती मोहब्बत तीनों का जरिया बनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सामिन किराम, इस्लाम ने दाई जानिब को इज्जत और शरफ अता फरमाया है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पीने के लिए दाएं हाथ को इख्तियार करने की तालीम दी। एक सहाबी नकल करते हैं कि जब वो छोटे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहे थे, उनका हाथ पूरे बर्तन में घूम रहा था तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बच्चे, अल्लाह का नाम लो, दाएं हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ। ये सही बुखारी की रिवायत है और यह हदीस बच्चों की तरबियत के लिए भी एक अजीम नमूना है। जैसे कि इस हदीस से यह भी समझ में आता है कि अपने सामने से खाना यही सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अदब सिखाया हमें कि इंसान अपने सामने से खाए, इससे दूसरों के हकूक का ख्याल रहता है और खाने के दौरान नज्म व एहतराम बरकरार रहता है। एक छोटा सा अदब सामने कराम, जरा तसव्वुर कीजिए कैसा माशरती हुसन पैदा करता है। मजीद खाने की सुन

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। मुबारक मुस्तफ़ा कतर के मशहूर फुटबॉलर्स में से एक हैं, जिन्होंने 1990s और 2000 के दौरान नेशनल टीम और क्लब फुटबॉल में नुमाया परफॉर्मेंसेस दी। वो एक टैलेंटेड मिडफील्डर और फॉरवर्ड के तौर पर जाने जाते थे और अपनी क्रिएटिविटी, पासिंग और गोल स्कोरिंग सलाहियत की वजह से फैंस में बहुत मकबूल हुए। मुबारक ने ज्यादातर अपना क्लब करियर अल अरबी क्लब और अल खोर के साथ गुजारा, जहां उन्होंने कई इंपॉर्टेंट मैचेस में शानदार खेल का मुजाहरा किया। दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी कामयाबी कतर की कौमी टीम के साथ

0: 107 दिल से देसी।
1: बराहे करम गर्मियों के दौरान गाड़ियों में आग लगने के खतरात से बचने के लिए जरूरी सेफ्टी गाइडलाइंस का ख्याल रखना इंतहाई अहम है। आप सबके लिए हमारी दुआ है कि ये गर्मियां महफूज और एक्सीडेंट फ्री गुजरें। गाड़ी को आग के खतरात से महफूज रखने के लिए चंद अहम बातों पर जरूर अमल करें। सबसे पहले मोबाइल फोन्स या किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को गाड़ी के अंदर छोड़कर ना जाएं, क्योंकि गाड़ी में ज्यादा गर्मी हो जाने की वजह से इनमें आग लग सकती है। हमेशा अपनी गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें, जो इमरजेंसी के वक्त फौरन इस्तेमाल हो सके। किसी भी किस्म का एक्सप्लोजिव मटेरियल या जल्दी जलने वाली चीजें जैसे परफ्यूम्स, लाइटर्स या केमिकल्स गाड़ी में रखने से परहेज करें। और वहीं रेडिएटर में कूलेंट को बाकायदगी से चेक करते रहें, ताकि ओवरहीटिंग से बचा जा सके और इंजन महफूज रहे। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी सेफ्टी आपकी पहली डिफेंस होती है। याद रखें, छोटी सी एहतियात बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फौजी शफीक। आज हम बात करेंगे जिसका ताल्लुक बराह रास्त दिल की सेहत से है और वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही अक्सर अफराद इसे नुकसानदेह समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कोलेस्ट्रॉल एक चिकनाई नुमा मादा है जो हमारे जिस्म के लिए जरूरी भी है।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान, पहचान सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: सलाम अलैकुम, FM 107 पर मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ। वैसे जनाब, अगर एक पल के लिए आप मेरे साथ हैं तो एक छोटी सी एक्सरसाइज कीजिए। जस्ट क्लोज योर आईज फॉर अ सेकंड, कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए। लेकिन प्लीज, अगर आप ड्राइव वगैरह कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा ना करें। जस्ट कीप योर आईज ऑन द रोड और एक लंबी गहरी सांस लें। बताएं मुझे, क्या आप कुछ महसूस कर पा रहे हैं? क्या कोई खुशबू आपको आ रही है? वो ताज़ा बनी हुई कॉफी की खुशबू, या फिर क्या आपका दिमाग ऑलरेडी 5 कदम आगे दौड़ रहा है और आप गाड़ी चला रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में एक लिस्ट चल रही है कि बच्चों के स्कूल बैग्स पैक हो गए, लॉन्ड्री का सेकेंड रिंस क्या वो मैंने किया, और वो नैगिंग वाली फीलिंग होती है ना कभी कभी कि शायद मैं फ्रिज के लिए दूध लेना, सब्जियां लेना कहीं भूल तो नहीं गई। अगर ये सब आपके दिमाग में चल रहा है तो वेलकम टू द क्लब, यू आर नॉट अलोन। वेल, आज FM 107 पर हम शुरू कर रहे हैं हमारा एपिसोड 2 ऑफ मेरी पहचान। और आज का ये जो हमारा मुद्दा है जिस पर हम बातें करने वाले हैं, वो हमारे घरों के उस हिस्से के बारे में है जिसे हम अक्सर देखना भूल जाते हैं, और मैं उसे कहती हूँ द इनविजिबल ऑफिस। सोचिए जरा, एक ऐसी कंपनी की CEO हैं आप, ठीक है, जहाँ की आप ही शेफ हैं, आप ही ड्राइवर हैं, आप ही अकाउंटेंट हैं, और सबसे जरूरी आप ही वहाँ की प्राइमरी थेरेपिस्ट भी हैं।

इसकी खासियत पता है क्या है? इसमें कोई पेचेक नहीं मिलता, यहाँ कोई एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हमें नहीं मिलता। हम इसे बहुत प्यार से कहते हैं लुकिंग आफ्टर माय फैमिली, घर संभालना। बट टुडे लेट्स कॉल इट जो एग्जैक्टली ये है, द अनपेड लेबर ऑफ लव, वो काम जो कभी नोटिस होता ही नहीं। अगर खाना टेबल पर है तो सब नॉर्मल है, अगर कपड़े कबर्ड में है तो किसी को कुछ नहीं दिखता, पर अगर एक दिन कपड़े धुले नहीं तो पूरा घर पूछता है आज कपड़े कहाँ हैं? क्या कमाल की बात है हाँ? हम सदियों से इस रोल को इतना नेचुरल बना चुके हैं कि हमें लगता है कि ये तो औरत की फितरत है, इट्स अ ड्यूटी। पर जनाब, ड्यूटी और लेबर में एक बहुत बारीक लाइन होती है। जब एक माँ सुबह 5 बजे उठकर लंच बॉक्स तैयार करती है तो वो सिर्फ खाना नहीं बना रही होती, वो मैनेजमेंट कर रही होती है, वो न्यूट्रिशन मैनेज कर रही होती है, टाइम मैनेज कर रही होती है, अपने बच्चे के इमोशंस को मैनेज कर रही होती है कि ताकि वो स्कूल जाकर आराम से मजे से इस खाने को खा सके। फिर क्यों सोसाइटी सिर्फ उस मैनेजर के बारे में बात करती है, उसको वाहवाही देती है जो एक ग्लास बिल्डिंग के एक शानदार ऑफिस में बैठता है? क्यों उसे वैल्यू नहीं करती जो हमारा घर चला रही है? चलिए फिजिकल काम की बात तो साइड में रख देते हैं, लेट्स टॉक अबाउट मेंटल लोड। मेंटल लोड वो होता है जो दिखाई नहीं देता पर दिमाग को थका देता है। ये याद रखना कि किस बच्चे को किस दिन स्पोर्ट्स गेयर चाहिए, ये याद रखना कि हस्बैंड की एलर्जी की दवाई कब खत्म हो रही है, ये याद रखना कि घर में गेस्ट आ रहे हैं तो उनके टेस्ट का खाना क्या होगा। इसे साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कॉग्निटिव लेबर। यस, आप घर में बैठी हैं, शायद सोफे पर बैठी हैं, कॉफी पी रही हैं, पर आपका दिमाग तब भी ऑफिस में है। आप प्लान कर रही हैं कि कल का मेन्यू, अगले महीने का बजट और साल भर की छुट्टियां कैसी होंगी। दिस इज अनपेड, अनसीन एंड ऑफन अनअप्रिशिएटेड। आज मेरी पहचान में हम उन सब इनविजिबल सीईओस को सल्यूट करना चाहते हैं जो कतर के हर घर को एक परफेक्ट मशीन की तरह चला रही हैं।

लेकिन आज मैं सिर्फ बोलूंगी नहीं, मैं आपकी कहानियां सुनना भी चाहती हूँ। आज हम सिर्फ ये नहीं पूछ रहे हैं आपसे कि आप क्या करती हैं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हाउ मच डू यू कैरी दैट नो वन सी, वो कौन सी चीज है जिसका बोझ काफी है और कोई नहीं देख पाता, वो कौन सा ऐसा काम है जो आप रोज करती हैं, शायद थक कर करती हैं, पर आपको लगता है कि काश काश कोई सिर्फ एक बार कह देता कि मैं देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, थैंक यू फॉर डूइंग दिस। क्या वो लॉन्ड्री है जो कभी खत्म नहीं होती, क्या वो रोज की आज खाना क्या बनेगा ये वाली टेंशन है, या बच्चों का होमवर्क है, क्या है वो, सोचिए इस बारे में और मुझे मैसेज कीजिए 6622107 पर 6622107 एंड बताइए मुझे कि वो कौन सा काम है जो आप हर दिन करती हैं और कोई एक्नॉलेज नहीं करता। देखिए आपके मैसेजेस जब मुझ तक पहुंचते हैं ना, तो मुझे समझ में आता है कि हमारी ब्यूटीफुल लेडीज ये शो सुन रही हैं और डेफिनेटली ये विमेन ओरिएंटेड शो है, मेरी पहचान, लेकिन इसके अलावा भी जो लोग हमें सुन रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं और आप मैसेज करके हिस्सा लेना चाहते हैं, देन 6622107 पर ज़रूर हमें मैसेज करें। आपके सारे मैसेजेस को रीड किया जाएगा, समझा जाएगा और अगला एपिसोड जो होगा वो उन्हीं पर बेस्ड होगा, क्या कहते हैं। तो ज़रूर हमसे शेयर करें और हमारे साथ बने रहें FM 107 पर, दिल से देसी।

वेलकम बैक टू मेरी पहचान. आप सुन रहे हैं एफएम 107. मैं हूं आपकी फरमीता. अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं ना, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा ये शो बड़ा ही खास है. आज दूसरा एपिसोड है और आज हम बात कर रहे हैं उन इनविजिबल सीईओज की जो बिना किसी सैलरी या छुट्टी के पूरे घर का काम करती हैं, पूरा घर चलाती हैं. तो दोस्तों, कुछ वक्त पहले ना एक फिल्म आई थी, अगर आपको ध्यान हो. इस फिल्म का नाम है द ग्रेट इंडियन किचन. अगर आपने नहीं देखी तो मैं कहूंगी प्लीज देखिए. ये OTT प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है और ये कोई टिपिकल बॉलीवुड मसाला या फिर यूं कहें गाने और ड्रामा नहीं है. इस फिल्म में सिर्फ काम है. यस, सिंक में पड़े बर्तन, स्टोव पर चढ़ाई हुई चाय और फर्श पर चलती हुई झाड़ू. इस फिल्म का जो साउंड डिजाइन है ना, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे घरों का होता है. वो प्रेशर कुकर की सीटी, वो मिक्सर ग्राइंडर का शोर, पर फिल्म देखते वक्त एक अजीब सा अनकंफर्टेबल एहसास होता है. आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि हम पहली बार स्क्रीन पर वो देख रहे होते हैं जो हर रोज हमारे घर में होता है और हम उसे इग्नोर करते हैं. द एंडलेस सोल क्रशिंग साइकिल ऑफ द सिंक. वो स्टोव, वो फ्लोर, वही बर्तन जो आज साफ हुए कल सुबह फिर बर्तन होंगे. और ये लूप जो कहते हैं ना, कभी भी खत्म होने वाला नहीं लगता है. हमारे कल्चर में ना एक बहुत ही अलग तरह की सोच है. हमने सेक्रीफाइस को औरत का गहना बना दिया है. यस, बचपन से हम सुनते आते हैं माँ तो त्याग की मूरत होती है, घर की औरत सब संभाल लेती है. हमने सेक्रीफाइसिंग मदर और आइडल हाउसवाइफ को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, इस टाइटल को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि हम भूल ही गए हैं कि वो भी एक इंसान है. शी इज अ ह्यूमन विद लिमिटेड एनर्जी. हमने आपकी थकान को ना एक बैच ऑफ ऑनर बना दिया है. जब कोई कहता है कि मेरी मम्मी तो बीमार होने पर भी ना हमारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाती है, तो हम इसे तारीफ समझते हैं. नहीं, थिंक अबाउट इट. क्या ये तारीफ है या उस इंसान पर एक प्रेशर है? हमने एग्जॉशन को प्यार का नाम देकर एक्नॉलेज करना ही छोड़ दिया है. हम भूल जाते हैं कि बैच ऑफ ऑनर से कमर का दर्द ठीक नहीं होता. अभी एक बात बहुत ध्यान से सुनिए. हाँ, द लोड इजंट ऑलवेज फिजिकल, जिसका जिक्र मैंने किया. जरूरी नहीं कि आप दिन भर थक रही हैं तो ही सिर्फ आपके ऊपर लोड है. ये जो मेंटल लोड जिसका हमने जिक्र किया, कॉग्निटिव लेबर जो कि 2400 घंटे हमारे दिमाग में चलता रहता है कि बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, उसकी यूनिफॉर्म प्रेस करनी है, उसका होमवर्क कराना है, दादी की जो विटामिन की गोलियां हैं वो खरीदी हैं कि नहीं, फ़ोन का बिल पे किया कि नहीं, बिजली का बिल पे किया कि नहीं, फ्रिज में कोई चीज़ ख़त्म तो नहीं हो गई, और छोटा बच्चा है अगर टॉडलर है तो वो क्यों रो रहा है, उसके पास कौन सी चीज़ की कमी हो गई, या क्या मतलब ये जो लिस्ट है ना, ये जो याद रखने का काम है, ये सबसे ज्यादा थकाने वाला होता है. एंड आई ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम थिंग. लेकिन हम अपने आप को सुपर वुमन समझते हैं, इसलिए नहीं कि ये सारे काम हमें करने होते हैं. हमें सुपर वुमन बना दिया गया है. मतलब आई पर्सनली फील कि सुपर वुमन हर कोई बनना चाहती है, टू डू समथिंग डिफरेंट. लेकिन हमारी फैमिली समहाउ ये अज्यूम कर लेती है कि यार ये तो सब संभाल लेगी. फैमिली को लगता है कि ये जो दूध फ्रिज में आता है ये खुद आ जाता है, ये कचरा घर से बाहर खुद चला जाता है. मतलब सारी चीजें अपने आप हो रही हैं. They don't see the CEO behind the management. Well, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे पूछा था कि कौन सा ऐसा काम है जो आपको रोज थका देता है एंड यू रियली वॉन्ट कि उसे एक्नॉलेज किया जाए. तो काफी मैसेजेस आए जिनमें से कुछ मैं पढ़ना चाहूंगी. तो मुझे फातिमा का मैसेज है जो कि अलवकरा से लिखती है कि अमिता, मैं रोज रात को अगले दिन का मेन्यू सोचती हूँ और सबको लगता है कि खाना बनाना मुश्किल है, पर मुझे लगता है क्या बनेगा ये सोचना सबसे बड़ी टेंशन है. जो मैं सोचती हूँ तो थक जाती हूँ. सी फातिमा, आई कैन टोटली फील यू. मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि आप किस दौर से गुजर रही हैं, लेकिन क्या ये सब समझते हैं? क्या ये फातिमा के घर वाले समझते हैं? पहले यहाँ पर सारा का मैसेज है जो कि अलखोर से लिख रही है. कहती है कि मेरे बच्चों को लगता है कि उनके सॉक्स की एक मैजिक जगह है जहां से वो रोज उन्हें उठा लेते हैं या उन्हें सॉक्स वहां मिल जाते हैं. उन्हें नहीं पता कि उन्हें धोकर सुखाकर फोल्ड करके वहां रखने में कितना वक्त लगता है. एग्जैक्टली, लॉजिक बहुत सिंपल है कि अगर दिखता नहीं तो काम नहीं है, है कि नहीं? बट ये भी गलत है.
अब आते हैं राहुल के मैसेज पर. अच्छा, यहाँ पर हमारी मेरी पहचान में एक शख्स का भी मैसेज आया जो कह रहे हैं कि अपनी वाइफ के लिए बेसिकली मैसेज कर रहे हैं और कहते हैं कि आज का शो सुनकर एहसास हो रहा है कि मेरी वाइफ शायद सच में थक जाती है, जबकि मैं कहता हूँ कि तुम तो सारा दिन घर पे ही रहती हो. ओहो, अब से मैं उसे थैंक यू कहूँगा, वो भी हर दिन. यू नो व्हाट राहुल, यू जस्ट मेड माय डे. और यही मकसद है हमारे आज के शो का कि ये जो हम कहते हैं ना कि जब हम टीम की बात करते हैं, जब हम टीम की बात करते हैं तो घर के सारे सदस्यों को, सारे लोगों को हम गिनते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस टीम को जो इतना ज़्यादा मोटिवेट कर रही है अपने डिफरेंट डिफरेंट एफर्ट्स से, वो हमारे घर की ब्यूटीफुल लेडी है, तो उसका शुक्रिया अदा करना तो बनता ही है. सो आज की सोच बस इतनी सी है कि लेट्स स्टॉप ग्लोरिफाइंग द बर्न आउट. समझ रहे हैं ना आप कि थक जाना कोई गुनाह नहीं है.

में जाएं या अपने कमरे में जाएं तो एक बार रुकें और मिरर में अपने आप को देखें, एक्नॉलेज करें अपने एफर्ट्स को. अगर कोई नहीं देख रहा है ना तो भी अपने आप को एक्नॉलेज करना जरूरी है कि आई सी यू, मैं आपको देख सकती हूँ कि जो आप हर मिनट एफर्ट डालती हैं इस घर को और खूबसूरत बनाने में. वल आगे हम बात करने वाले हैं कि इस थकान का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है. हाँ, मेंटेनेंस ब्रेक क्यों लेना चाहिए. हाँ, तो कहीं ना जाए, बने रहें मेरी पहचान ये खासम खास शो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ FM 107.

0: आप सुन रहे हैं मेरी पहचान ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं एफएम 107। मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और मेरी पहचान इस खासम खास शो में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। पर आज हम बात कर रहे हैं द इनविजिबल सीईओ के बारे में। अभी हमने मेंटल लोड की बात की, लेकिन चलिए अब थोड़ा जमीन पर आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल टोल, आपका शरीर, आपकी सेहत। ठीक है, ये बात बताएं कि कब कब ऐसा होता है कि आपको लगा कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, आपकी आंखें थकान से बंद हो रही हैं, पर आप अपने आप से कहती हैं कि बस ये लास्ट सिंक साफ कर लेती हूँ फिर बैठूंगी, ये काम कर लेती हूँ फिर बैठूंगी, बच्चों का बैग पैक कर लेती हूँ, उनका होमवर्क करा लेती हूँ, मतलब ये जो लिस्ट है ना खत्म नहीं होती। और हमने अपने दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन सेट कर दी है, दैट इज रेस्ट मस्ट बी अर्नड। हमने मान लिया है कि आराम करने का हक तभी मिलता है जब पूरा काम खत्म हो जाए। बट लेट्स बी रियल फॉर द सेकेंड, क्या किचन का काम हमेशा खत्म हो जाता है? नहीं ना, जब तक घर में जिंदगी है काम रहेगा। तो अगर आप किचन साफ होने का वेट कर रही हैं ताकि आप 5 मिनट सुकून से बैठ सकें, तो शायद वो वक्त कभी आएगा ही नहीं। और हम कहीं भी रहें, और अगर हम कतर की लाइफस्टाइल की ही बात करें, बहुत फास्ट भागती है कि नहीं? तो हमें इसका ख्याल रखने की बहुत जरूरत है। आप एक ब्रिज हैं अपने बच्चों की इंटरनेशनल स्कूलिंग और अपने पीछे छूटे हुए रूट्स के बीच की। आप ब्रिज हैं अपने हस्बैंड की स्ट्रेसफुल ऑफिस लाइफ और एक सुकून भरे घर के बीच की। ये जो इमोशनल ब्रिज बिल्डिंग है ना, ये बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है। और हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि जब हम अपने घरों से दूर होते हैं, अपनी फैमिली से दूर होते हैं, तो हमारे पास वो नानी दादी वाला सपोर्ट सिस्टम नहीं है और उसका वक्त नहीं है। तो जो सारा वेट है ना, वो फिजिकल इमोशनल आपके अकेले कंधों पर होता है। और हम अपने आप को इतना पुश करते हैं ना एक परफेक्ट होस्ट बनने के लिए, एक परफेक्ट मदर, एक परफेक्ट वाइफ बनने के लिए। और इस रेस में परफेक्शन जो होता है ना, वो हमारे लिए जो होता है, हमारी बॉडी का जो परफेक्शन होता है, वो हम भूल जाते हैं। एंड ये भूल जाते हैं कि आवर बॉडी इज नॉट अ मशीन। मशीन को भी ऑयलिंग की जरूरत होती है जनाब, मशीन को भी थोड़ा ठंडा होना पड़ता है, स्विच ऑफ होना पड़ता है, ताकि वो वापस से उतनी ही तेजी से, एनर्जी से काम कर सके। आप समझ रहे हैं ना? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास एक लग्जरी गाड़ी है, ठीक है, और आप उसे सलवा रोड पर रोज चला रहे हैं, लेकिन आप उसकी सर्विस नहीं करते हैं, तो क्या होगा? एक दिन इंजन ब्रेक डाउन हो जाएगा। वही लॉजिक आप पर भी अप्लाई होता है। हम लेडीज मेंटेनेंस ब्रेक स्केड्यूल नहीं कर पाती। हम ब्रेक तब लेती हैं जब हम बीमार पड़ जाती हैं, जब बॉडी गिव अप कर देती है। रिमेंबर दिस, अगर आपने खुद के लिए वक्त नहीं निकाला, तो आपकी बॉडी एक दिन खुद वो ब्रेक चुन लेगी, एंड दैट विल बी अ ब्रेक डाउन। समझ रहे हैं ना आप? वो बैकएक जो आप इग्नोर कर रही हैं, वो थकान जो आप एक कप चाय से दबाने की कोशिश कर रही हैं, वो आपकी बॉडी का सिग्नल है। आपकी मैजिक को सिर्फ ड्यूटी का टैग क्यों दिया जा रहा है? क्यों हम कहते हैं कि ये तो माँ का फर्ज है, या ये तो हमारी लेडीज कर लेंगी? फर्ज तभी पूरा होगा जब आप सेहतमंद होंगी, बिकॉज अ रेस्टेड वुमन इज अ पावरफुल वुमन। जब आप थकी हुई होती है ना, तो आप सिर्फ सरवाइव कर रही होती हैं, लेकिन जब आप आराम, अच्छे से आराम कर लेती हैं, तब आप थ्राइव कर रही होती हैं। हाँ जी। वेल, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेजेस आते जा रहे हैं 666-22107 पर। मैंने एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछा है, क्या आप मुझे बताएं कि ऐसी वो कौन सी चीज है जो आपको बहुत थका देती है, या जब आप करती हैं तो आपको लगता है कि काश कोई उसे एक्नॉलेज करे। तो अभी मुझे मेहर लिखती है कि अमिता, मैं अक्सर रात को ना रोते हुए सोती हूँ। क्यों, क्या हो गया भाई? कहती है क्योंकि बदन एकदम टूट रहा होता है, दर्द बड़ा ज्यादा हो रहा होता है, और फिर वही 6 बजे का अलार्म बज जाता है, तो सुबह उठना

0: होता है, घर के सारे काम करने होते हैं, एंड द लिस्ट इज बिग. सो आई जस्ट वांट टू से कि काश कभी वो सुबह कोई और उठ जाए. ओ हो मेहर, आई रियली विश कि आपके घर वाले ये सुन रहे हो एंड दे शुड एक्नॉलेज इट. और जिस तरह से हम भी वीकेंड एंजॉय करते हैं ना, हर कोई वीकेंड एंजॉय करता है, ऐसे ही लेडीज को भी वीकेंड एंजॉय करने का हक है, तो उन्हें भी छुट्टी मिलनी चाहिए. वेल, अगला मैसेज है तेजल का. वो कहती है कि मुझे गिल्ट होता है जब मैं बैठी हूँ और मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते हैं और मुझे लगता है कि मुझे काम करते हुए दिखना चाहिए. ओ हो, ये क्या कह दिया आपने. यही गिल्ट तो हमें ले डूबता है. इसीलिए ऐसा ना सोचें. जाहिर सी बात है, आप भी काम करके घर का बैठी हैं, या हो सकता है अगर आप वर्किंग वुमेन हो तो हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड से पहले ऑफिस घर आई हो, तो भी आप जस्ट आके बैठी हैं, सडनली आपके हस्बैंड आ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि नहीं कुछ करना चाहिए. नो, आप दोनों इंडिविजुअल्स हैं और आप दोनों की बॉडी है जो थक जाती है, सो यू नीड टू रेस्ट. ये आपको समझना पड़ेगा. वेल, आई एम वेरी सर्टेन कि इस सेगमेंट में बात करके आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि रिस्पेक्ट इज नॉट जस्ट अबाउट वर्ड्स, इट्स अबाउट एक्नॉलेजिंग योर स्पेस. अपने परिवार को सिखाइए कि आप एक रिसोर्स नहीं है जो कभी खत्म नहीं होगी. ठीक है, यू आर द हार्ट ऑफ द होम, आप घर की जान है. और अगर ये जो हार्ट है, ये जो हार्ट बीट है, इसकी अगर रुक गई तो पूरा शरीर रुक जाएगा. मेंटेनेंस ब्रेक को अपना हक बनाइए. स्केड्यूल कीजिए, जैसे बच्चों की क्लासेस आप स्केड्यूल करती है ना, जैसे आप ग्रोसरी की शॉपिंग की लिस्ट बनाती है, वैसे ही अपना रेस्ट टाइम भी बनाएं. और इनफैक्ट अपनी नोट में या अपने मोबाइल फोन्स पर लिखें कि अपना नाम लिखें और लिखें कि मेरा रेस्ट टाइम इतने टाइम से इतने टाइम तक होगा या इस दिन होगा. क्योंकि मैंने कहा ना, एक ऐसी औरत जो आराम से अपनी लाइफ जी रही है, जो आराम करती, लाइक अ रेस्टेड वुमन, वही दुनिया बदल सकती है. एक थकी हुई औरत बिल्कुल उस लाइट बल्ब की तरह है जो कभी भी फ्यूज हो सकता है. अब चॉइस आपकी है. आगे हम बात करने वाले हैं छुपी हुई मैं, जो कि हमारे शो का एक बहुत ही शानदार सेगमेंट है. तो आपने कहीं नहीं जाना है, बने रहना है हमारे साथ FM 107 पर, दिल से देसी.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.

वेलकम वंस अगेन. आप सुन रहे हैं शो मेरी पहचान. मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ FM 107 पर और आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है. वैसे हम शो के उस मोड़ पर हैं जहाँ हम सबसे जरूरी सवाल आपसे पूछने वाले हैं और वो सवाल ये है कि इन सब जिम्मेदारियों के बीच यानी कि कुकिंग क्लीनिंग पेरेंटिंग वो लड़की कहाँ है जो कभी खुलकर हंसा करती थी. वो छुपी हुई मैं कहाँ है. आपको याद है शादी से पहले या बच्चों से पहले आपको क्या पसंद था. शायद आपको गजलें सुनना अच्छा लगता था या फिर आपको लॉन्ग ड्राइव्स पसंद थी या आप पेंटिंग करना पसंद करती थी या आपको शायद बिना किसी वजह के अपने दोस्तों के साथ घूमना पसंद था. आज वो लड़की शायद घर की धूल में और लॉन्ड्री के ढेर में या फिर ऑफिस और घर के बीच कहीं दब गई है. सो हाउ डू वी शिफ्ट द स्केल्स. कैसे हम सीन को और भी ज्यादा सही बनाएंगे. कैसे बने हम द हेल्प से द हार्ट ऑफ द होम. तो लेडीज ये शुरू होता है कि हम इनविजिबल को विजिबल करें. अगर आप दिखाई नहीं देंगी कि आप क्या कर रही हैं तो किसी को कभी एहसास नहीं होगा. तो लेट्स रिक्लेम योर आइडेंटिटी. पहली चीज द चोर ऑडिट. यानी सुनने में बहुत फॉर्मल सा लग रहा है पर ये बहुत सिंपल है. एक दिन अपनी फैमिली के साथ बैठिए, हस्बैंड बच्चों के साथ या जो भी आपकी फैमिली में है, गुस्से में नहीं शिकायत के मूड में नहीं बल्कि एक कैजुअल कॉफी चैट स्टाइल में एक लिस्ट बनाएं. राइट डाउन एवरीथिंग दैट हैपेंस इन द हाउस सुबह 5 से लेकर रात 10 बजे तक, मतलब जब तक हर कोई सो नहीं जाता. टिफिन पैकिंग से लेकर स्क्रैप बुकिंग तक, बिल पेमेंट से लेकर ग्रॉसरी लिस्ट बनाने तक. आप सरप्राइज हो जाएंगी कि आपकी फैमिली के आधे मेंबर्स को तो ये पता ही नहीं होगा कि कचरा वॉक करके कहाँ फेंकने जाते हैं. सच में. तो जब वो ये लिस्ट देखेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि कई बार जब नहीं बोलते थे मम्मी आप तो घर पर ही रहते हो, हाँ ये कहना वो भूल जाएंगे और एक्चुअली उनको लगेगा कि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी को चलाने वाली मैनेजर हैं. लिटरली विजिबल कीजिए अपने एफर्ट्स को. दूसरी बात, और ये शायद सबसे मुश्किल है, रिजाइन फ्रॉम द मैनेजर रोल. हाँ, हम औरतों को ना एक आदत होती है कि हम हर प्रॉब्लम को नोटिस होने से पहले ही फिक्स कर देते हैं. दूध खत्म होने वाला है, आप पहले ही ले आएंगी. बच्चों का प्रोजेक्ट कल सबमिट करना है, आपने पहले ही तैयार करवा दिया है. लिसन टू मी केयरफुली. कभी कभी दूध खत्म होने दीजिए. कभी कभी ये लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई फ्रिज में ये आइटम अब नहीं है, लेकर आना है. अगर आप

पर आग को लगने से पहले ही बुझा देंगी तो फैमिली को कभी पता ही नहीं चलेगा कि कोई प्रॉब्लम थी। उन्हें जिम्मेदारी लेने का मौका दीजिए। जब तक उन्हें कमी महसूस नहीं होगी, उन्हें कभी कीमत महसूस नहीं होगी। समझ रहे हैं आप? Stop being a firefighter for a day. हाँ जी। And then comes the me hour. हाँ जनाब, ये बहुत important है। अब बहुत सी ladies कहेंगी, अमिता हम सोते तो हैं। नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। It's not just about sleeping. Me time का मतलब होता है कि हमारी body भी बिल्कुल refreshed रहनी चाहिए। मी आवर वो है जो आप उस लड़की के लिए निकालती हैं जो पेंटिंग करती है, या फिर कॉर्निश पर यूं ही एक कॉफी लेकर बैठना चाहती है, या दांव में एक राइड लेना चाहती है, या कतर की शामें इतनी खूबसूरत होती हैं कभी कभी अकेले वॉक पर जाना चाहती है ताकि वो स्काईलाइन को देख सके जहां पर कोई फोन कॉल्स ना हो, कोई ये चीज दिमाग में ना चल रही हो कि भाई खाने में क्या बनाना है कि नहीं। ये ब्रेक लेना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमको हमारी इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलेगा, प्लस हमें हमारी पहचान वापस ढूंढने में आसानी होगी। कल जाते जाते मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहती हूँ। इस हफ्ते सिर्फ एक काम डेलीगेट कीजिए, जस्ट वन, ठीक है? लेट समवन एल्स हैंडल आपकी ग्रोसरी लिस्ट। आपके हस्बैंड को बोले कि बच्चों का होमवर्क करा लें। अगर आप वर्किंग भी हैं तो घर के काम डिवाइड करने में कोशिश करें। मतलब ये छोटी छोटी सी चीजों को आगे बढ़ाएं। और सबसे जरूरी बात, अगर वो आपके तरीके से ना भी हो, ऐसा होता है ना कि अरे हमारे तरीके से नहीं करेगा, कोई बात नहीं जाने दीजिए, तो भी होने दीजिए। अगर बर्तन थोड़े टेढ़े रखे जा रहे हैं, पराठा थोड़ा गोल नहीं बन रहा है, फ्रिज के आइटम खत्म हो रहे हैं, या उसी ब्रांड की चीजें नहीं आ रही जिसकी आप लाती हैं, किसी और की आ रही है, हो जाने दीजिए। फिर देखिए आपको कितना रिलैक्सेशन मिलता है और आप कितनी ईज आउट होती हैं। वेल, जाते जाते मेरी टॉप टिप्स है इस हफ्ते की, द पावर ऑफ आस्क, यानी कि आपकी जो फैमिली है वो माइंड रीडर्स नहीं है। अगर आप थकी हैं तो बोल दीजिए, मैं थकी हूँ, कहना कोई गुनाह थोड़ी ना है। बता दीजिए उनको कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, आपने खुद करना है कि नहीं। एक्नॉलेज योरसेल्फ, दूसरी टिप। अगर आज किसी ने थैंक यू नहीं कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके एफर्ट्स वेस्ट चले गए। आपको खुद को सराहना है, आपको खुद को कहना है कि यस थैंक यू टू माई सेल्फ, मैंने आज पूरे घर को खूबसूरत बनाया, मैंने अपनी लाइफ में आज ये कमाया, मैंने आज ये किया। यस, आपको अपने आप को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। और तीसरा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आउटसोर्स द गिल्ट। भाई गिल्ट को कचरे के डिब्बे में डाल दो कि अरे मतलब मैं बड़ी दुखी हो जा रही हूँ, अरे अगर मैं बैठी रहूंगी तो मुझे गिल्टी फील हो रहा है। नो, आपको हेल्प की जरूरत है और आपको रेस्ट की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से आज मेरी पहचान में हमने बात की है अपनी अहमियत को और भी ज्यादा समझने की, और मेरे ख्याल से आपको जरूर आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हर हफ्ते मेरी पहचान में कुछ इस तरह की खासम खास बातें होंगी जिसका हम जिक्र करेंगे, और आज जैसे हमने कहा कि आप अपनी लाइफ की CEO हैं, ठीक है, तो इस चीज को भूलना नहीं। ऐसी हजारों बातें हैं जो हम शायद कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। तो मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसी कोई बातें जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहती हैं, 666-22107 पर 666-22107, और बताना चाहती कि अमिता मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ और आप अपने शो के जरिए क्या इसे प्रेजेंट कर सकती हैं, तो वो सजेशन, वो फीडबैक्स भी आप हमसे जरूर शेयर कर सकते हैं। And on this note, मैं कहूंगी कि 666-22107 is our number, इसे जरूर नोट करें और इस पर अपने messages को non-stop आने दीजिए, ठीक है? और जाते जाते हमारे जो social media platform है FM 107 का, वहाँ भी आप जुड़ सकती हैं, RJ अमिता को भी social media पे ढूंढ कर आप messages वगैरह कर सकती हैं। तो आप भूलेंगी तो नहीं ना कि आप अपनी लाइफ की CEO है, ब्रेक लेना इम्पोर्टेंट है, लोगों को अपना काम डेलीगेट करना इम्पोर्टेंट है, और अपनी जो मुस्कुराहट है ना उसे वापस लाना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप मुस्कुराएंगी तो पता है क्या होगा, रिंकल्स कम आएंगे। चलें, ख्याल रखें, और अगले हफ्ते आपकी मेरी मुलाकात होगी फिर से मेरी पहचान के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं.

0: वुमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं एफएम 107
2: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check।
2: हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडियो की घड़ी में 11:02
3: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
2: तो जनाब, दुनिया भर में समर को सेलिब्रेट करने के लिए काफ़ी तरीके हैं और समर को सेलिब्रेशन के तौर पर मनाया भी जाता है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हम गर्मी गर्मी करते रहें और इससे परेशान होते रहें। बात करें अगर स्वीडन में, तो मिड समर फेस्टिवल होता है जहां लोग डांस करते हैं, फ्लावर्स वगैरह पहनते हैं, बाकायदा उनके ड्रेस बनाए जाते हैं और इसके अलावा आउटडोर पार्टीज़ वगैरह इंजॉय भी करते हैं। वहीं अगर जापान में हम देखें तो समर के दौरान फायरवर्क्स फेस्टिवल वगैरह होते हैं जो रात को रोशनी और रंगों से भर दिए जाते हैं। स्पेन और दूसरे यूरोपियन ममालिक की अगर बात करें तो इनके बीच फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं जहां पे बोनफायर्स वगैरह भी सीजन का हिस्सा होते हैं। लोग मिलकर म्यूजिक, फूड और सेलिब्रेशन का मजा लेते हैं। तो भैया, यही समर का असली मैजिक है कि इसको एंजॉय किया जाए। लेकिन सारी चीजों में कहीं ना कहीं एक चीज कॉमन होती है और वो क्या है? वो है साहब खुशी।

हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला और अपने दिन को बेहतरीन इस वक्त तब्दील कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सुबह से सबने अपनी चीजों को मना लिया होगा, किसी को जिस चीज की जरूरत होगी उसने वो चीज पा भी ली होगी और अच्छी ही हो इंशाल्लाह ताला, मैं तो ये कहता हूँ। बाकी ये है कि साहब अगर मजीद दिन अच्छा करना है तो फिर बहुत आसान तरीका है, सरवर मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर है, आइए मेरे साथ जुड़ जाइए और अपने बाकी के दिल को जो है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना लीजिए। जहां पे तरीके कुछ मुख्तसर से हैं प्रोग्राम का हिस्सा बनने के, और वो ये कि आपने हमें मैसेज करना है 666-22-107 पे, और वहीं हमें कॉल कर सकते हैं आप 443-443-77 पे और मेरे साथ जुड़ सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो भाई क्या हुआ आज खास, ये भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ खास दिन है, बर्थडे है या एनिवर्सरी है या कोई और मौका है तो वो भी आप मेरे साथ मिलके मना सकते हैं, एक दूसरे को विश कर सकते हैं। और वहीं ट्रैफिक की अपडेट भी आप मुझे दे सकते हैं। अब आजकल काफ़ी सिलसिले चल रहे हैं रोड पे, कहीं स्कूल बंद हैं, कहीं एग्जाम्स चल रहे हैं, कहीं कुछ डिफरेंट औकात में ट्रैफिक बदल भी जाता है। तो ये तमाम चीजें मिलके मेरे साथ आप बता सकते हैं, एक दूसरे को समझा सकते हैं और किस तरीके से बेहतरीन बनाना है।

0: आगे का दिन, तो ये भी हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। हस्बे मामूल बिल्कुल आज टॉपिक भी है, मुद्दा भी है, अपडेट्स भी हैं, आपके लिए एंटरटेनमेंट भी है, जहां पे हम गेम शेम खेलेंगे और एक दूसरे का दिन बेहतर बनाने की कोशिश भी करेंगे। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, या कोई मेरे साथ जुड़ गया है तो उसको भी प्रोग्राम में शामिल करके आगे बढ़ते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। क्या बोलती दोहा की पब्लिक।
0: ओ हो हो हो, जाते जाते हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं, इधर से गुजरा था सोचा सलाम करता चलूं। आसिफ भाई सबको ये शेर सुनाते हुए
1: बहुत खूब भाई, दिन बना दिया भाई। क्या बात है भाई। भाई एक और बार प्लीज भाई, रिक्वेस्ट है फॉर मी।
0: अरे ये तो बहुत आम और खास गजल है जो सभी जानते हैं कि हुजूर आपका एहतराम करता चलूं, हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं, इधर तो गुजरा था सोचा सलाम करता चलूं। एक और शेर आपको बहुत अच्छा इसका पसंद आएगा कि अब ये जिनके हवाले से वो आप समझ जाएंगे कि उन्हें ये जिद कि मुझे देख कर किसी को ना देख।
1: क्या बात है,
0: उन्हें
1: क्या बात है?
0: उन्हें ये जिद कि मुझे देख कर किसी को ना देख, मेरा ये शौक कि सबसे कलाम करता चलूं।
1: हाय हाय भाई, क्या बात है मेरा भाई, कैसा बस पैसा ही पैसा।
0: क्या हाल चाल है आसिफ भाई, और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल रेडी होंगे छुट्टी पे जाने के लिए।
1: बिल्कुल, मैं मतलब मेरा दिल कर रहा है कि भाई मैं अभी टिकट कैंसिल करा के सरोवर भाई के साथ में ज्वाइन हो जाऊं बस।
0: नहीं नहीं यार, अरे भैया ऐसा जुल्म नहीं करने का यार, छुट्टी
1: नहीं भाई, जो ये जो तुमने दो शायरी बोले ना भाई, देखो ऐसा लगता है कि भाई मेरा तो दिन बन गया भाई आज।
0: शायरी तो आपको भेजते रहेंगे, एक बात का वादा लेके जाना है आसिफ भाई कि इंशाल्लाह जाने के बाद भी जब भी वक्त मिलेगा तो हमसे कनेक्ट रहना है, और तरीका आपको मैंने बता ही दिया है, सभी जानते हैं।
1: मालूम है भाई आपका, माशाल्लाह उनको पूरा प्रोसीजर मालूम है। एक बात और बोलना चाहता हूँ भाई, मेरे साथ में आज क्या हुआ मालूम, आज सुबह जब मैं उठा तेरी कसम ऐसा लगा।
0: क्या क्या लगा भाई?
1: तूने मुझे याद किया रे।
0: अच्छा जी, तो ऐसा क्या कुछ खास हुआ है क्या?
1: अरे भाई आज मतलब मेरे को मतलब ऐसा फील हुआ मॉर्निंग में, सर्वर भाई ने मेरे को याद किया।
0: अच्छा यार,
1: मतलब ऐसा फील हुआ,
0: हिचकियां ज्यादा आ रही थी।
1: हिचकियां ज्यादा आ रही थी भाई, मैं बोला क्या हो गया, तो मैंने 3 दिन का नाम लिया। मैं बोला देखता हूँ, पहले फैमिली नहीं रुक रही है, फैमिली नाम नहीं रुक रही है, फिर बोला मेरा एक दोस्त है उसका नाम लिया, तो मेरे मुंह से सरोवर भाई निकला। सरोवर भाई यार क्या है यार?
0: अरे मेरा भाई कैसा यार, आसिफ भाई में पैसा ही पैसा इंशाल्लाह ताला। आपने कहा मैंने 3 जिन का नाम लिया, मैंने कहा जिन का नाम लिया तो यार मुझे क्यों याद कर रहे हैं, साथ में जन कहना चाह रहे थे। तो चलिए साहब, आपको ये एहसास तो है कि मैं आपको याद कर रहा हूँ, देखिए कितनी अच्छी बात।
1: जी जरूर। सरोवर भाई मेरे को एक और चीज है, मेरे को फोन आया आपके इधर से।
0: अच्छा, अरे ये तो इनाम मिल गया इसका मतलब?
1: नहीं मतलब मैं पॉसिबल नहीं है, मैं आ नहीं सकता भाई, पॉसिबल नहीं है मेरे पास, मैं क्योंकि मैं आज सफर जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी मैं ड्यूटी पे हूँ, मैडम को लास्ट ड्यूटी है मेरी, उसके बाद में मैंने सोचा समझा, बाद में फिर मैंने एक डिसीजन लिया हूँ।
0: अच्छा,
1: कल आपको शाम तक खबर मिल जाएगी।
0: अरे मगर ये अच्छी खबर है यार, और सभी लोगों के लिए भी भाई, देखिए कल भी लोग पूछ रहे थे कि भाई हमारा इनाम, तो आप देखें आसिफ भाई का इनाम जो है,
1: इनाम मिल गया भाई,
0: कॉल आ चुकी
1: है। कल बुला रहे थे वो लोग मुझे, तो बोले थे टुमारो कम, बट मैं बोला मैडम पॉसिबल नहीं हो सकता, मैं आज भी पॉसिबल नहीं हो सकता मेरे से, मगर मैं फिर भी ट्राई करूंगा।
0: अच्छा चलिए यार, अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला करे, और अगर ऐसा है तो आप किसी को नॉमिनी बनाकर भी जा सकते हैं, ये भी एक तरीका है कि आप बता दें।
1: वो हो गया है बस इंशाल्लाह आपको शाम तक खबर मिल जाएगी।
0: वेरी गुड, हो गया ये तो। चलिए बहुत बहुत मुबारक हो भाई आसिफ भाई, और तमाम उन लोगों को जिनको कॉल गई है, उम्मीद करते हैं कि काफी लोगों को कॉल गई होगी, और इंशाल्लाह ताला जिनके प्राइजेस अभी तक नहीं मिले थे उनको भी मिल जाएंगे। और जैसे कि हमने कहा था,
1: मेरे को तो हंसी इस बात पे आई, अगर बाय चांस समझो मैं अगर वाउचर वो ले लेता तो 500 रियाल का खाना मैं कौन सी जगह में फिट करता, मेरे को बताओ। मैं बोला ये कौन सी जगह में फिट होएगा 500 रियाल का खाना,
0: मगर चलिए
1: शक्ल देखेगा,
0: खुशी तो अपनी जगह है यार आसिफ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको आप बिल्कुल आने के बाद इस्तेमाल कीजिएगा, खैर से जाइए खैर से आइए, ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी, और अल्लाह ताला आपका सफर आसान करे। एक वादा आपसे लेना है जाने से पहले, पूछिए क्या?
1: बोलिए भाई। क्या
0: भाई? सफर में दुआ जरूर कीजिएगा हमारे लिए, खुसूसी
1: बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल,
0: मेरा

0: भाई, मेरा भाई।
1: और आप पूछ रहे थे भाई ट्रैफिक का हालचाल।
0: हाँ बिल्कुल, उसमें आ जाते हैं। और आज जैसा कि हम हमेशा नॉर्मल और सिंपल सादी बात करते आते हैं, तो आज का हमने हिसाब किताब ये रखा है भाई कि आपकी जिंदगी में रिश्तेदारों का कितना दखल है। आज हम वो बात करने वाले हैं। कभी कभार बहुत सारी हमें सीख मिलती है, कभी कभार हमें बहुत सारे मशवरे मिलते हैं, कभी कभार हमारी जिंदगी काफी सीधी हो जाती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि हम दिली दिल में सोचते हैं कि कहां से आ गए चाचा इस वक्त ये बात लेके, समझ रहे। तो वो सारी चीजें आज हम शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, और यही टॉपिक रखा है कि रिश्तेदारों का आपकी जिंदगी में कितना दखल है, कितनी मशवरे उनसे लिए जाते हैं, वालदेन आपके उनसे कितना सीखते हैं, कितना समझते हैं, या फिर खुदा ना खास्ता कितनी परेशानियां हो रही हैं। तो ये सारी चीजें हम शेयर करना चाह रहे हैं आज।
1: बिल्कुल भाई, सरोज भाई, मेरा सबसे पहला एक आपका जो सवाल है बहुत प्यारा सवाल है, और इस सवाल से मैं एक बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे तजुर्बे से आपके रिश्तेदार यानी आपके चाचा, खालू, फूफी, फूफा, एक्स वाई जेड जितने भी है ना, आपसे बहुत मतलब लगाव करते वो, क्योंकि आप उनके औलादों में से गिनती होते।
0: क्या बात
1: तो
0: है?
1: अगर आप उनके साथ में बिहेवियर अच्छा रखोगे तो वो लोग आपके साथ में बहुत अच्छा बिहेवियर रखोगे। अगर आप उनके साथ में एक रुपए का बिहेवियर भी नहीं रखोगे तो वो आपको बिल्कुल भी कहीं नहीं गिनेंगे।
0: वेरी गुड।
1: तो मेरा मानना ये है कि मैं अपने खानदान में मतलब एक अनमोल हीरा हूँ, एक अनमोल हीरा, क्योंकि मुझे हर कोई पसंद करता है, क्योंकि मेरा मतलब बात करने का लहजा उन लोगों से सबसे अलग है, और मैं छोटे बड़ों में बहुत फर्क नहीं करता हूँ, मैं सबको में एक तरीके से
0: सभी को इज्जत देके, और
1: सभी को इज्जत जी मेरे जैसे चाचा है, मेरे वो मेरे चाचा है थोड़े कड़क टाइप के, तो वो अच्छा। जो मेरे चाचा कड़क टाइप के, तो मैं उनसे डरता भी हूँ, और बाकी कभी कभी वो मेरे को कुछ समझाते भी है कि बेटा नहीं, आगे जाके तुम्हारे को ऐसा करना है तो ऐसा तुमको मिलेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है ना थोड़ा भाई, मैं अपने चाचा को समझाता हूँ, चाचा आप तो ये कर रहे हो ना ये गलत है, आप ये मत करो, क्योंकि ऐसा ना प्रॉब्लम होगी हमारे को। तो ऐसा हमारे खानदान में
0: तो यार ये तो बहुत बड़ी बात है कि चाचा सुन रहे हैं, वरना चाचा और सुन ले, और वो भी भतीजे की, वो भी छोटा।
1: सच्ची भाई, मैं चाचा मेरे पापा को बोलते मेरे बेटे की बात ना मैं सुनता हूँ तो मेरे को
0: बड़ी
1: अच्छा
0: बात है यार, बड़ी बात है।
1: मेरे पापा
0: अगर आपका मशवरा बड़े लोग ले रहे हैं आपके खानदान के, तो इसका मतलब वाकई आप इस लायक हैं कि आपकी बात सुनी जाए और आपकी बात पे अमल किया जाए, ये बहुत अच्छी बात है, वरना तो छोटों को वैसे भी साइड में कर दिया जाता है। बट ये चीज दर्शाती है, ये चीज बताती है, ये चीज एक्सप्लेन करती है इस बात को कि माशाल्लाह आप वाकई इस लायक हैं कि आपकी बात सुनी जाए और उस पे अमल भी किया जाए। क्या बात है यार आसिफ भाई। तो आसिफ भाई फिलहाल के लिए आज के लिए इजाजत भी, और आपको बहुत सारी मुबारकबाद भी, और सुकून के लिए दुआ भी कि इंशाल्लाह ताला आप खुशी खुशी
1: जाएं। बहुत प्यार मिला भाई तुम लोगों से, मुझे बहुत प्यार मिला मेरे को, ऐसा मतलब आप लोगों के साथ में रहकर ना मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मतलब मैं अकेला हूँ। मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम इधर कतर में आया था, मेरा कहना यह है कि मैं फर्स्ट टाइम इधर कतर में आया था, मुझे कुछ नॉलेज वगैरह नहीं थी, मगर मैं एक साल से पिछले ईयर से ना मैं आप लोगों के साथ में जब ज्वाइन हुआ ना, तो मैंने अपनी सारी टेंशनें दूर कर दिया, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत टेंशन में रहता था, बहुत मतलब गम में जिंदगी, मगर जब से मैं आप लोगों के साथ में जुड़ा हूँ ना भाई सरोवर, मेरा दिन बन जाता है, रात बन जाती है, सुबह मॉर्निंग बन जाती है, आप लोगों के साथ में मुझे बहुत मजा आता है भाई। मेरे मतलब आप लोग ना मतलब एक तरीके से मेरे क्लोज फ्रेंड जैसे लगते हैं मेरे को, बाकी तो मेरा कोई फ्रेंड है ही नहीं इस टाइम पे, जस्ट क्लोज फ्रेंड तो कोई भी नहीं है, बट आप लोगों के साथ में मुझे अच्छा लगता है। आप हो गए, महवीर जी हो गए, कबीर भाई हो गए, मतलब आप लोगों के साथ में ना मेरे को बहुत अच्छा फील होता है कि मतलब आप लोगों को ना सल्यूट है भाई, आप लोगों ना मतलब इंसान को बना के रखते हो, क्या अपना बना के रखते हो, उसको फील नहीं होने देते हो कि भाई ये बंदा कोई टेंशन में रहे या गैर है, नहीं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप लोगों ना लिसनर लोग को अपना बना के रखते हो, तो मेरा एक ही कहना है भाई आप लोगों से, जियो दिल से भाई।
0: मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ रिपीट कीजिए,
1: आई लव
0: FM 107,
1: आई लव FM 107, क्या भाई 107,
0: दिल से
1: देसी।
0: खैरियत से जाइए, खैरियत से आगे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। तो ये थे प्यारे प्यारे आसिफ भाई हमारे साथ, और इनके जानिब से जो पैगाम मिला वो तो मिला ही, बट ये मैसेज के इनामात जो हैं वो सबको मिलना शुरू हो गए हैं, तो आप लोग भी बेफिक्र हो जाइए, जिन जिन के इनाम अभी तक नहीं मिले वो उन तक बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर एक और साहब या साहिबा हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।

0: स्पेशली खाला का, मामू से ज्यादा तो खाला वगैरह का होता है, हमारे यहाँ तो ऐसी था। तो इस ये बड़ा मसला हो जाता है कि भाई खाला और चचा और मामू और आप समझ रहे हैं फुप्पो, तो किसकी सुने और किसकी ना सुने, उधर से अलग मशवरे आ रहे होते हैं, इधर से अलग मशवरे आ रहे होते हैं, और बीच में छोटी सी जान।
1: असल में खादिम भाई ने डिफाइन किया है ना कि जिस आपके मामू बैठे हुए और वालदा भी आपकी बैठी हुई है, उन्होंने आपको बात बताई है मामू ने, तो आप उनको कैसे एक्सप्लेन करें, अगर आपको अच्छी लगती है तो ठीक है, अगर नहीं लगती तो बोलते हैं आप दोनों ठीक है, बट ये है कि ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है। तो हर इंसान जो है अपनी फैमिली से बड़ा प्यार करता है, इसी तरह वालदा जो है आपकी वो अपनी फैमिली से ज्यादा प्यार करती है, जैसी बात है। तो उन्होंने वो देखना है कि अगर मेरा बच्चा इनकी बात नहीं मान रहा तो उनको वो डिसहार्ट फील होता। तो इस वजह से आप वो जना इख्तियार करें या वो अल्फाज इख्तियार करें जिसमें आप,
0: अरे तो हथियार भी तो वो इस्तेमाल करे जाती है, अम्मा कभी ये नहीं कहती आने दे चचा को बता दी अभी, मामू से कहूंगी खाला से तेरी गर्दन घुटवाऊंगी, ये बात नहीं सुनी मेरी, तो ये भी तो होता है ना। तो अब ये सिर्फ उसी तरफ का मामला चल रहा होता और मामू उसके बाद तो भाई साहब कौन सुनना, धैतड़ी और धैतड़ी। अम्मा ने पूरी इजाजत दे दी तो अब तो पिटना ही पिटना है। मगर मेरा मानना यह है कि जो चचा ताया मामू से जिसने अपनी थोड़ी गार्निशिंग करवाई है, डेंटिंग पेंटिंग करवाई है, वो फिर बाद में भी मोहब्बत करता जरूर है उस लड़के की, अगर हम बात करें तो ये तो है। खैर
1: बचपन की भाई, बचपन की खाई में अभी बहुत काम आती
0: है।
1: कोविड के बाद आपको वो चीजें याद आती हैं, यार ये बचपन में हमने काम किया था तो इससे मार पड़ी थी, तो अभी आके समझ में आता है कि भाई आप बाकी इस काम से दूर रहे हो तो बेहतर रहे हो।
0: सही, मार कहीं ना कहीं काम जरूर आती है। क्या बात है भाई। चलिए साहब, हमजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना ज़रूरी वक्त निकालने के लिए, आप इतना मशगूल होते हैं, और कहूँगा यही भाई कि ज़रा पानी वगैरह पे ख्याल रखिए, क्योंकि आप दिन भर बाहर मसरूफ़ होते हैं, धूप ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो ज़रा पानी वगैरह पीते रहिए इंशाल्लाह, ठीक है।
1: आपसे पहले, सबसे पहले जिस भाई की कॉल आई थी जो अपनी कंट्री वापस जा रहे
0: हैं, ओके आसिफ भाई जी,
1: वो आपने उनको स्पेशली दुआ के लिए कहा है सफर के दौरान।
0: जी जी,
1: मैं ये पूछना चाहता था, खैर है स्पेशली दुआ के लिए, वो भी सफर के दौरान, वैसे भी बना नॉर्मली अल्लाह पाक पूछ रहे कि आप लोगों को।
0: हाँ नहीं, बिल्कुल बेशक हर वक्त दुआ हो सकती है, बट एक सिलसिला है और एक प्रैक्टिस है, और ये है भी कि सफर के दौरान, क्योंकि दुआएं कबूल भी होती हैं।
1: बस्ती वाला बंदा हूँ तो मुझे ना शरारत सोचती रहती है, मैं सोच रहा था मैं शायद भाई अल्लाह पाक के तो ज्यादा करीब जा रहे जहाज से, वहां पे भाई वो लग ज्यादा कटी से सोच लेंगे तो आप दुआ कर दिए।
0: अल्लाह के करीब हो, थोड़े अल्लाह के करीब आप ज्यादा होंगे तो वहां से जरा दुआ करते। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया साहब, और बहुत ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमजा, थैंक यू सो मच। आप भी खुश रहिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ओके, तो यहाँ पर सन एंड साउंड इस वक्त जारी और सारी है, जहाँ पर सन तो अपनी इस वक्त हाल अहवाल बता ही रहा है, और साथ में साउंड में आपका भी हाल अहवाल मुझे पता चल रहा है। फिलहाल ब्रेक की जानिब चला जाए या आप लोगों से बात कर ली जाए, चलिए बात कर लेते हैं, कॉलर से और बात करते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। हेलो, सलाम अलैकुम।
2: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
0: क्या कहने भाई,
2: शाकिर भाई
0: क्या हाल चाल है, नवेद भाई खैरियत से हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है।
0: क्या कहले भाई, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आज आपका दिन है, आप ही बोलिए।
2: हाँ, तो कुछ बोलने वाला था लेकिन अब मौका नहीं,
0: अब नहीं बोलूंगा, अब नहीं बोलूंगा। और नसीम भाई खैरियत से हैं? दिन कैसा रहा अभी तक का, कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला खैर करे। ओके, तो आज के मौजू पे आ जाते हैं, क्योंकि हमें अब अजान भी होने वाली है, तो आगे इंशाल्लाह ब्रेक लेना है। रिश्तेदारों के प्रेशर के हवाले से बात चल रही है, तो कितना दखल है आपकी जिंदगी में उन लोगों का, इसमें कुछ शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं?
2: मेरा हाल एक पिंजरे जैसा है।
0: पिंजरे जैसा?
2: पिंजरे में मेरा हाल,
0: हाँ हाँ,
2: एक पिंजरे में बंद चिड़िया जैसा है।
0: अच्छा,
2: लोग आ रहे हैं, नोच रहे हैं, ऐसा है। बना नहीं, बनाऊंगा
0: मैं। नहीं, वो तो समझ गया, मगर जो हाल बयान करना चाह रहे हैं आप रिश्तेदारों की तरफ से, वो तो बड़ा खतरनाक बयान कर रहे हैं।

0: रहे हैं आप भाई, टेंशन वाली बात हो रही है ये तो।
1: सही बात
0: है, चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्योंकि इजाजत लूंगा, एक ब्रेक लेना है और अजान के लिए हमें बढ़ना है नसीम भाई, तो इंशाल्लाह ताला वापस जरूर तशरीफ लाइएगा, तीन का दम भी खेलेंगे आज आपके साथ और इंशाल्लाह जुड़िएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो भाई ये थे हमारे साथ हमारे प्यारे प्यारे नसीम भाई, अब बढ़ते हैं आगे और कितना कहूं मैं तो कहता ही रहता हूं, चलिए फिर भी आप कह रहे हैं तो आपके कहने पे कहता भी रहूंगा। फिलहाल एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग, सोनू निगम श्रेया घोषाल, बहुत ही खूबसूरत गाना। टीका ठीक है दिन में और सूरज के नीचे तो बनता ही है यार। मैं अगर कहूं तुमसा हसी, कायनात में है ही नहीं यार, ये आप सबके लिए कह रहा हूं मैं। तो फिलहाल एंजॉय कीजिए ट्रैक सरोज मिर्जा के साथ FM 107 दिल से।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: वेदर का हाल 107 देनाल।
3: भाई 43 डिग्री हो रखा है इस वक्त का टेम्परेचर, और ये जो ब्लैक एंड व्हाइट है उसकी बात हो रही है। फिर वही कहूंगा कि ऐसा ना हो आप सुनने के बाद, सरवर भाई कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ पे 50 डिग्री हो रखा है, गाड़ी के अंदर उबल रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है, जो लिखित में है वो बता रहा हूँ। फील्स लाइक भी 43 है। हवाओं की रफ्तार 10 किलोमीटर पर आर के हिसाब से चल रही है। ह्यूमिडिटी इज ऑन 16%। होता यही है भाई कि जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी एग्जांपल दिया था कि अगर मैं किसी शेड के नीचे हूँ तो थोड़ा टेम्परेचर पे असर पड़ेगा, किसी शेल्टर में हूँ, किसी शेड के नीचे हूँ, पेड़ की छाँव में ही क्यों ना हूँ। उसके बाद अगर मैं अंदर किसी बिल्डिंग के हूँ तो एक अलग है। फिर उसके बाद अगर मैं एसी के सामने बैठा हूँ तो और फर्क है। तो इसी तरीके से अगर आप गाड़ी में बाहर होंगे या टीका टीक धूप के नीचे आपकी गाड़ी खड़ी हुई है तो भाई वो तो उबलेगी ही उबलेगी और टेम्परेचर ज्यादा ही दिखाएगी। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या कहा है QMD ने, आइए वो भी जान लेते हैं। कतर में सख्त गर्मी के दिन शुरू जो हो चुके हैं उसके हवाले से, एक सितारा है जो निकलता है और जब ये सारी पहचान जो है गर्मी के हवाले से बातचीत शुरू हो जाती है, ज्यादा हवाले दे रहा हूँ आज मैं, जहां पे अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो अच्छी बात है, अगर मैंने इसका गलत नाम लिया है तो माजरत चाहता हूँ। प्लेयडिस इस सितारा जो है या स्टार जो है जिसे अरबिक में अल थुराया कहा जाता है या थुराया कहा जाता है, ये जो है आ जाता है आसमान में और इसके साथ साथ शदीद गर्मी का आगाज शुरू हो जाता है। कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक आने वाले चंद दिन साल के सबसे ज्यादा गर्म दिन होंगे और इस दौर की मुद्दत तकरीबन 13 दिन की होती है जब ये सितारा निकल आता है। घबराइए मत, इसको निकले 2 दिन हो चुके हैं, वैसे आने वाले 13 दिन जो है ये बरकरार रहेगा, जिसके चलते जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है और शुमाली मगरबी हवाएं जो हैं जिन्हें हम अल बवारी कहते हैं या अरबी में कहा जाता है, जोर और शोर से चलती रहती हैं। रिवायती तौर पर कहा जाता है कि शदीद गर्मी का आगाज ये जो सितारा है जो मैंने नाम बताया थुराया या प्लियाडिस, ये जब तुलू होता है यहां से शुरू होता है और इसका इख्तिताम जो है सुहेल सितारे के तुलू पर होता है। तो भैया सुहेल का इंतजार बहुत ज्यादा जरूरी है और हम सभी कर रहे हैं। सुहेल भाई कहाँ हो, आ जाओ कॉल पे तो बात कर ही लो, कम से कम 443-443-77 में आपका इंतजार तो आसमान में भी हो रहा है। बहरहाल इन दिनों के दरमियान के जो दिन हैं वो साल के सबसे ज्यादा गर्म दिन समझे जाते हैं या जाने जाते हैं और इसके मुताबिक कतर में जो टेम्परेचर है अब वो भैया 43-44 डिग्री तक जो रहने वाला है वो चल ही रहा है, मैंने आपको बता भी दिया है। अभी का भी टेम्परेचर इतना ही है, जो थोड़ा बहुत अभी आगे शायद 1-8 डिग्री और भी फर्क आ जाए या 2 डिग्री का फर्क आ जाए 44-45 तक शायद पहुंच सकता है, क्योंकि अब ठीक ठीक गर्मी वक्त शुरू हो रही है, बजने वाले हैं दिन के 12 और देखते हैं कि फिर इंशाल्लाह दिन कैसा रहेगा। उम्मीद यही है कि सबका दिन अच्छा गुजरे और किसी को भी किसी तरीके की परेशानी ना हो। भाई आइए साहब अब आ जाते हैं आप लोगों की मैसेजेस की जानिब। आप हजरात ख्वातीन जो मैसेज हमें भेजना चाहते हैं उनके लिए नंबर बता देता हूं, नंबर है 6662217666 107 पे आप अपने मैसेजेस वगैरह हमें भेज सकते हैं और यहां से करते हैं शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, कैसे गुजर रही है गर्मी के, कैसे गुजर रहे हैं गर्मी के दिन? बड़े अच्छे गुजर रहे हैं। कौन है हमारे साथ? हमजा भाई हमारे साथ हैं। ओके, क्या ये वही हमजा भाई हैं जिन्होंने हमसे बात भी करी थी? अस्सलाम वालेकुम भाई, भाई कैसे हैं? कहते हैं वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हमजा खोखार या खोखर, मैं माजरत चाहता हूँ यार, तो वो हमजा अलग है, ये हमजा अलग है, ये बात तो समझ में आ गई, या ये वाकई तीसरे हमजा थे जिन्होंने हमसे बात करी थी सुबह सुबह? तो यार ये तो क्लियर करो, वो वाले हमजा भाई मैसेज जरूर भेजो जिन्होंने बात करी थी। दो हमजा भाई तो हमारे सामने हैं इस वक्त। ओके बढ़ते हैं आगे, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, खूब सारे गुलाब हैं यार, मैं देखने में मुझे समझ में नहीं आया ये पहले है क्या, बड़े ही खूबसूरत और प्यारे से गुलाब भेजे। कहते हैं मुझे भी आज कॉल आई है सरवर भाई, लेकिन अभी तक लोकेशन नहीं आई। हाय हाय हाय, इनाम निकल रहे हैं सबके माशाल्लाह भर भर के। यार लोकेशन तो इट्स वेरी इजी, कतर मीडिया कॉरपोरेशन अगर आप इंटरनेट पे लिखेंगे तो आप सीधे हमारे पास चले आएंगे, आपको आराम से लोकेशन मिल जाएगी और उसके बाद आपको बताया होगा कि आके किससे मिलना है, किससे बात करनी है। शफीक हमारे साथ हैं, तो शफीक भाई बहुत बहुत मुबारक पहले तो यार, और इंशाल्लाह तशरीफ भी लाइए। कहते हैं सलाम सरवर भाई, आसिफ भाई को ऑफिस में भी बुला लो, किसी और की जरूरत नहीं। क्यों बोलते ज्यादा है कि आसिफ भाई? मिस्टर जैदी हैं हमारे साथ, जैदी साहब आप भी तो तशरीफ लाइए, वो तो तशरीफ ला चुके, पता तो चले कि आप भी कैसी और कितनी बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज भेजने के लिए मिस्टर जैदी। कहते हैं भाई सुन रहा हूँ हमजा भाई, नसीम भाई

0: की वॉइस अंदर से निकली है। आप बिल्कुल दिल से ही बात करते हैं, शायरी भी अच्छी सुनाते हैं। खादिम भाई हमारे साथ यहाँ पर वॉइस नोट भेजा है और खैर मैंने शायद जवाब दे दिया था, अभी और भी कुछ भेजा है। मतलब खत्म हुआ तो मुझे छोड़ गया वो शख्स, फकत ये कहकर अब हम आपके कुछ नहीं लगते। अरे यार खादिम भाई यार, अभी इतनी प्यारी बातें करके गए थे, वैसा शेर सुना के, मतलब शेर बहुत अच्छा है, शेर बहुत ऊंचा है, मगर दिल तो ना तोड़ो। खैर दिल भेज दिया उन्होंने, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु। सरूर भाई ढेर सारी दुआओं के साथ आदाब, व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कहते हैं हा हा हा ना, मैं वाउचर वाला हमजा हूँ जिसे कॉल भी नहीं है अब तक, स्टिल वेटिंग। ले भैया, दो हमजा भाई को कॉल आ चुकी है वाउचर की, तीसरे हमजा भाई को अभी भी नहीं आई है बेचारे। यार हमजा भाई देखो यार, आ जाएगी यार, आ जाएगी, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला आपको भी जल्दी आ जाएगी। बाकी तो हमजा भाई ले गए प्राइज, आपको भी मिल जाएगा। ओके अस्सलाम वालेकुम, हम सब के प्यारे सरवर भाई, आए हाय हाय हाय हाय, शर्मा गया मैं। अल्लाह आपको हमेशा सेहत दे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अच्छी सेहत दे यार, इसी का तो मसला पड़ा हुआ है। शेख अजहर लव यू फ्रॉम हैदराबाद, क्या बोलते हैं शाबाश शेख अजहर। अजहर भाई यार कहाँ हैं आप यार, एक अरसा गुजर गया, तीन चार, क्या हो ना भाई, अब इतनी मोहब्बत करते हम आपसे फिर भी आप इधर नहीं आते, क्यों ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ। रमेश यादव सरवर जी, ओहो सुबह भेजी थी चाय, अब मिली है मुझे, नहीं चलो सुबह ही है यार, गुड मॉर्निंग ही है तो अच्छा है, हैव अ नाइस डे। ओके कहते हैं नहीं खाली सरवर जी लिखा हुआ है असल में फोन आ रहा है किसी का, तो मैं वो उठाने में बिजी हो गया, मगर कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, क्या हो गए कनेक्ट। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किसी का नहीं भाई, शेख अजहर अपड़ बुबित पर सजले का फोन नहीं है।
0: क्या बात है भाई, क्या बात है, अकबर बिन तवर बोले तो खोद डाले। अकबर भाई आए थे यहाँ पे और उनके साथ काफी अच्छा वक्त गुजरा मेरा, जानी भाई अकबर भाई पिछले दिनों आए हुए थे यहाँ और सिराज अंसारी साहब का इवेंट था तो उसमें मुलाकात हुई थी। बहरहाल काफी अच्छी मुलाकात रही माशाल्लाह, वो भी खाने पीने के शौकीन है तो उससे याद आया और आपने जिक्र किया। अजहर भाई कैसे हैं और कहाँ हैं इतने दिनों से आप
1: भाई? आपने पुकार
0: हम चले आए, जान हथेली पे मत लाना
1: है एक दूसरे के दिल में।
0: नहीं मैंने कहा आप कहेंगे जान हथेली पे ले आए, मैंने कहा डबल का मीठा लेते आते तो जरा आराम हो जाता है, गर्मी भी नहीं, पड़ नहीं, रही है।
1: जान जान की, जान जान की जगह है, हथेली हथेली की जगह है सरवर भाई, हम दिलों के, हमारे दिलों में वो मोहब्बत अलग है।
0: क्या बात है और क्या कर दी बात भाई ने। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और सब अच्छा होगा
1: इंशाल्लाह। आपको सुन रहे थे,
0: अरे सर, अरे अरे अरे अरे अरे अरे मेरा भाई कैसा, अजहर भाई पे पैसा ही पैसा।
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपकी ज़बान आमीन करे,
0: आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। तो अजहर भाई मसला रिश्तेदारों के हवालों से हो रखा है आज के दिन, क्या है कितना दखल है रिश्तेदारों का आपकी जिंदगी में, चचा ताया मामू खाला, कभी कुछ सीखने के लिए मिला, कभी कुछ जोर जबरदस्ती हुई, कोई ऐसा वाकया या इसके हवाले से कुछ भी जो बात करना चाहते हैं आप, अगर करना चाहते हैं तो?
1: करना चाहते हैं तो, मगर करना तो चाह रहा हूं मैं किसी के बारे में।
0: अच्छा,
1: क्योंकि दुख वाली चीज ना है हर चीज। नहीं बिल्कुल, आप बात जो भी बोले अच्छी टाइम बोले, आप करना चाह रहे हैं तो बोले। आप
0: खानदानी प्रेशर, खानदानी प्रेशर में है इस वक्त अजहर भाई, ऐसा ही है क्या? कोई सुन भी रहा होगा हमें, कोई खाला चचा?
1: सुने सुने नहीं सुने सुने खाली वाली सुने तो हम आपको क्या करना है, नहीं सुने तो हमारे को क्या करने का है, एक ही डायलॉग बोल रहा
0: हूँ। बहुत टूटे हुए लग रहे हैं भाई, बहुत टूटे हुए लग रहे हैं भाई, दिल बहुत टूटा हुआ।
1: ऐसा वैसा दिल नहीं टूटे हुआ है, वो दिल टूटा तो टूटा, यानी बोलना तो खैर नहीं चाहिए। अल्लाह मेरे वालिद की मगफिरत करे, अल्लाह उनको जन्नत में आला साला मुकाम नसीब करे,
0: आमीन या रब्बुल आलमीन।
1: तो हर हर कोई बोलते ना लोच के खाए बोलते ना, वो दास्तान नहीं है। खैर मैं बोलना नहीं था,
0: नहीं आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। हाँ नहीं बिल्कुल, अल्लाह ताला गरीके रहमत करे और अल्लाह ताला, देखिए यही यही मसले मसाइल होते हैं कि हम लोग एक दूसरे से बात शेयर भी करते हैं और ऐसी सारी चीजें कि इंसान, मुझे बींग सरवर मिर्जा अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे जाने के बाद फौरन मेरे बारे में क्या बात कर रहा है जो दिन दो को मैंने एक साथ छोड़ा है, और मेरे दुनिया से जाने के बाद मुझे किस तरह याद कर रहा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए भैया गलतियों की माफी भी मैं सभी से मांगता रहता हूँ, अभी भी मांग रहा हूँ, और

0: किसी को लगता है कि नहीं मांगी है तो वो मुझसे डायरेक्ट कह सकता आ जाओ भाई इधर आके मुझसे माफी मांग लो। तो यही कुछ तरीके हैं कि जिससे इंशाल्लाह फलाह हासिल होगी, उम्मीद तो यही है। बाकी अल्लाह ताला खैर और आफियत का मामला सभी के साथ करने वाले हैं।
1: अभी आप जो बात बोले सरवर भाई, हाँ। गलती मांगना आप बोले कि जैसे भाई आजा मैं गलती मांग ले तो बोल दे, ये गलती दिल से मानना ये बहुत बड़ी इंसानियत है, ये बहुत बड़ी इंसानियत, बहुत बड़ी अखलाक है।
0: सही।
1: लेकिन जब दिल से जब एक दूसरे के दिल को जब तकलीफ दे देता
0: है उसके
1: बारे में पूछो मत, अल्फाज नहीं है उसके बारे
0: में। अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां,
1: सरवर भाई को भी काटे तो भी जो है ना, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, आप एग्जाम्पल शेख महबूब अली का खून निकलता, अजहर को भी काटे तो शेख महबूब अली साहब का खून निकलता, लेकिन वो खून से ही जो है ना, अगर वो खून से ही जो है ना दूसरे के ऊपर वो खून के छींटे जब गिर जाएंगे ना, वो तकलीफ का दिल है।
0: काफी यार भावुक कर दिया आपने अजहर भाई, और दुखती रख पे हाथ रख दिया, मैंने माजरत चाहता हूँ। खैर बहरहाल अब जरा सा माहौल को बदल देते हैं और आ जाते हैं, क्योंकि आज आप अभी तक हमारे साथ तीन का दम नहीं खेले हैं, मुझे जहां तक याद आ रहा है। सही है,
1: मैं फिर कभी
0: खेलूंगा अजहर भाई, आप बहुत आसान है, बहुत आसान है, भागने नहीं दूंगा, बार बार कॉल करूंगा, पूरे दिन पीछे लग जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं घर तक।
1: मतलब आप ये स्टोरी के बारे में याद बोल के इंशाल्लाह मैं कल फोन करता हूँ आपको।
0: अरे सुनो तो सही, सुनो तो यार अजहर भाई, बात तो
1: सुनो सरवर भाई,
0: बहुत
1: कैसे दिल हाजिर है, हम हाजिर है, जान हाजिर नहीं है,
0: बहुत आसान। अरे सुनो बहुत आसान,
1: सुनो जी,
0: अरे सुनो साहब तुम मेरी बात तो सुनो यार,
1: ऐसा नहीं सरवर भाई, अरे सुनो जी,
0: जी सुनो जी, ये तीन सवाल है उनके जवाब देना बस, बहुत ही आसान है, तीन सवाल है, आसान, बहुत ही आसान, उसके जवाब देना, दैट्स इट, नहीं दे पाए तो कोई ऐसी,
1: चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं, जब यहाँ तक आए तो फिर दम तोड़ के छोड़ के जाएंगे या तोड़ के जाएंगे, चलो आ जाओ देख लेंगे जो हो सका वो बात की बात।
0: ओके ओके ओके, चलिए भाई तो शुरू करते हैं। कतर में इस वक्त सबसे बेहतरीन गेम तीन का दम जो चल रहा है, सबका दम भरा हुआ है। तो पहला सवाल आपकी तरफ आ रहा है, वो कौन सी चीज है जो आपकी जरूरत की होती है, जो रोजमर्रा,
1: भाई पहले सवाल ही थी भाई साहब ने, पहले सवाल ही ये कर दिया तो भाई फोन काट दे रहा
0: हूं। अच्छा अच्छा अच्छा
1: आखिरी में, अच्छा अच्छा आखिरी में पूछना है सवाल।
0: आसान आसान आसान आसान, ये भी आसान था, आपने पूरा सुना नहीं। अच्छा चलिए वो बिल्कुल वैसी वाले पूछ लेता, उसका मतलब आप सुन रहे हैं तीन कदम, खेल नहीं रहे जान पूछ के यार, क्यों यार अजहर भाई, इट्स वेरी इजी यार। पंखा पंखा हवा देता है या पानी?
1: हवा।
0: वेरी गुड। किताब पढ़ते हैं या खाते हैं?
1: बिल्कुल पढ़ते हैं।
0: ठीक है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे लोग यार बोलने तो दो यार
1: भाई, पूछो भाई, पहले पूछने का आखिर में पूछ रहे, फर्क क्या है?
0: ऐसी कौन सी चीज है जिसे लोग काटते हैं, पीसते हैं, बांटते हैं, मगर खाते नहीं है?
1: काटते हैं, पीसते हैं, खाते नहीं
0: है, बांटते भी हैं, काटते भी हैं उसको, उसको पीस भी रहे हैं, उसको बांट भी रहे हैं, लेकिन खा नहीं रहे।
1: टाइमर खत्म हो गया।
0: घड़ी घड़ी को छोड़ दे, मैंने इसमें अब टाइम लगाना टाइम लगाना इसीलिए बंद कर दिया है, इसका जवाब दीजिए। अरे अजहर भाई
1: नया था भाई, बहुत देर से नया था, जबड़े दर्द करे।
0: ओके चलिए कोई बात नहीं, ये मैं जवाब ओपन नहीं करूंगा इसका जब तक मुझे मिल नहीं जाता, क्योंकि फिर मेरे सवाल जो हैं कहां, इतने सवाल अभी तक, एक हफ्ते 10 दिन हैं, कितने 2 हफ्ते हो गए, मैं 56 सवाल पूछ चुका हूं भाई, जिनके सिर्फ सही 7 जवाब आए, ओनली 7। तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया यार, अव्वल तो आप तशरीफ लाए और आपको सता लेते हैं, हम हिम्मत इतनी कर लेते हैं, आप बहुत प्यारे हैं, हमेशा अपना ख्याल रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए।
1: आप कमी से हम प्यारे,
0: आए
1: हमारे से तो आप प्यारे
0: हैं,
1: इसीलिए तो हम प्यारे सरवर भाई बोले।
0: मोहब्बत है यार अजहर भाई, मोहब्बत
1: मोहब्बत है, रेस्पेक्ट है, शहर में इज्जत है आपकी।
0: अरे सर अल्लाह ताला है सबसे बड़े और सबको माफ भी करें और सबके साथ खैर भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच,
1: जज़ाकअल्लाह खैर।
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, तीन का दम इस वक्त शुरू हो गया है और वहीं हम बात कर रहे हैं आज रिश्तेदारी के हवाले से भी, कि रिश्तेदारी का कितना दखल है आपकी जिंदगी में, क्या सीन है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: लीजिए साहब, बज गए 12, बल्कि 12 बज के सही 2 मिनट।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ, सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: बिल्कुल भाई, अभी सफर आधा हुआ है और आधा सफर हमारा और आपका जारी और सारी है। घड़ी में 12 बज के सही 2 मिनट हो रहे हैं और इस वक्त सन तो अपनी जगह बरकरार है और साउंड जो है कतर में इस वक्त आप लोगों की गूंज रही है, इसीलिए यहां पर सन एंड साउंड में हम एक साथ जुड़ते भी हैं, बैठते भी हैं, बात भी करते हैं। यार ये क्या हो रहा है, मैं ढूंढना चाह रहा हूँ असल में हैप्पी बर्थडे विश, वो मुझे नहीं मिल रही। यहाँ पर किसी की बर्थडे है, उनका पयाम आया हुआ है, तो आइए पहले हम अपने चैंपियन के साथ जुड़ जाते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। हेलो, सलाम अलैकुम।
2: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
1: अहलन मसहलन, कौन है हमारे साथ?
2: मोहम्मद अय्यूब बलोच बात कर रहा हूँ।
1: अय्यूब भाई,
2: नाराज बलोच।
1: यस, काफी दिनों बाद तशरीफ लाए, कैसे हैं? खैरियत से हैं।
2: मैं नाराज हूँ ना, आपको बताया, नाराज बलोच।
1: नाराज बलोच, ओ आई एम सॉरी, मैं सुन नहीं पाया यार, क्या हो गया? खैरियत है क्या? मुझसे नाराज हैं
2: आप दोनों से? जो बरना वो प्रोग्राम छूट गया, मैं फोन नहीं करना चाह रहा, जैसे आज ड्यूटी से निकल गया तो फोन किया मैं।
1: हम दोनों से प्रोग्राम छूट गया, मैं समझा नहीं।
2: आपका नाजिया का।
1: ओके तो आप नाराज हो गए, और इतने नाराज हो गए कि तशरीफ ही लाना छोड़ दिया, ऐसा क्यों यार?
2: क्या करें, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं सरोर भाई।
1: यार नहीं, ऐसी बात नहीं, हम तो आपको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, समझते भी हैं और आपसे मोहब्बत भी करते हैं भाई, ऐसी कोई बात थोड़ी है।
2: अल्लाह आप लोग का जिंदा खैर दे, मैं मजाक कर
1: रहा हूं। आमीन। नहीं, मुझे बिल्कुल मालूम है सर,
2: अल्लाह का शुक्र। आज मैं सुना नहीं कुछ है
1: सर, आज खानदान के हवाले से बात चल रही है, रिश्तेदारों के हवाले से बात चल रही है, रिश्तेदारों का प्रेशर आपकी जिंदगी में, रिश्तेदारों का दखल कितना है और क्या रहा है, उसके हवाले से कुछ अगर बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो
2: ना पूछो, मेरी इंतहा मौत है।
1: ओए,
2: ना पूछो, मेरी इंतहा मौत है, वो मुजरिम हूँ जिसकी सजा मौत है।
1: ओए, इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा, अब अगर दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। बड़े टूटे भाई, रिश्तेदारों से लड़के आ रहे हैं बलोच भाई।
2: बस जिंदगी सिखा देता है हर चीज, हर गलती हर सिखा देता है। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का ऐसा नहीं है, ज्वाइंट फैमिली अच्छा है सब माशाल्लाह। यहाँ कतर में सब लोग बहुत मदद करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, वो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबको बहुत कुछ दिया हुआ है इधर, सब लोग तो बहुत मदद नुसरत करते हैं। छोटी छोटी गलतियां तो हर जगह हो जाती है, जहाँ बर्तन ज्यादा है वहाँ तो कन कना भी आवाज तो आती रहती,
1: आवाज तो आती रहती है, म्यूजिक तो बजता ही है। वैसे आप की पैदाइश यहीं की है कतर की?
2: मैं समझ गया था,
1: इसलिए रिश्तेदार भी यहाँ पर होते हैं और
2: हमारा बड़ा फैमिली है, बड़ी फैमिली है,
1: माशाल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे।

0: सबको एक दूसरे के साथ रखे और इसी तरीके से आप लोग हंसते बोलते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो भाई अयाज भाई जरा सा गेम की तरफ चलते हैं, तीन का दम खेल लीजिए हमारे साथ।
1: अयाज भाई कौन है?
0: नाराज बलोच भाई हमारे साथ गेम खेल लो। रेडी है तीन का दम के लिए?
1: बताए
0: चलिए
1: बोले।
0: ओके तो सवाल यहाँ पर जरा सा निकाल लेता हूँ मैं। अब अलग अलग सवाल भी लाने पड़ते हैं ताकि ऐसा ना हो कि तैयारी करके आए। अभी तक आपने सुना तीन कदम अभी खेला तो नहीं है? खैर आपने, आई एम वेरी श्योर।
1: नहीं मैंने, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं सिर्फ फोन करता हूँ, चलता हूँ।
0: अच्छा नहीं, यार इतना ज्यादा बेइज्जत कर दिया एकदम से। सुन तो लो बात, मतलब चलते फिरते प्रोग्राम सुना आपने तीन कदम किसी को खेलते हुए?
1: सुना है, सुनता हूँ, डेली सुनता हूँ।
0: अच्छा तो ऐसे बोलो ना यार, आपने शुरू में कह दिया टाइम ही नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो सरवर भाई है? ओके देन चलिए। फुटबॉल गोल होती है या चौकोर?
1: गोल।
0: ओके क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं मैदान के अंदर?
1: 11 होते हैं।
0: अगर आप रेस में दूसरे नंबर वाले को ओवरटेक कर लेते हैं तो आप कौन से नंबर पे आ जाते हैं? वेरी गलत। यार दूसरे नंबर वाले को ओवरटेक कर लेते हैं तो कौन से नंबर पे आ जाते हैं, ये सवाल है।
1: तो पहले वाले को क्रॉस करना चाहिए।
0: नहीं बताऊंगा आज मैं भी नसीम भाई बन जाऊंगा, ये कहूंगा नहीं बताऊंगा। जब तक जवाब नहीं आ जाता मैं ओपन नहीं करूंगा। खैर चलिए आपने कोशिश अच्छी करी और बहुत शुक्रिया भाई कि आप तशरीफ लाए। इसी तरह याद करते रहिए, तशरीफ लाते रहिए और अपना ख्याल भी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ठीक है, दुआ में याद रखिए।
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हाँ जी तो यहाँ पर आपका तीन का दम जारी और सारी, और यहाँ कोई मेरे साथ जुड़ भी रहा है तो बिल्कुल गाना सुनने से पहले। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, कौन है हमारे साथ?
2: कैसे हैं भाईजान?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
2: बढ़िया सर।
0: खैरियत से आवाज आ रही है?
2: बिल्कुल सर।
0: कितनी आवाज बदल लो रमेश भाई, मैं पहचान के ही मानूंगा। लंच से पहले आवाज दूसरी, लंच के बाद आवाज दूसरी, मॉर्निंग आवाज दूसरी। नहीं वैसे आपकी आवाज है बहुत प्यारी, मैं आपको बता दूं, कभी ट्राई किया है आपने अपनी आवाज के सिलसिले में कुछ करने का, रेडियो वगैरह या कहीं और? हैं? आवाज है अच्छी आपकी, मालूम है एकदम जबरदस्त फिल्मी हीरो वाली जैनी वाली आवाज है आपकी। ये क्या बात है भाई, खैरियत से हैं रमेश यादव साहब?
2: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सब।
0: तो कुछ सीख के आए, मैंने मेरा मतलब ये जवाब के सवाल के जवाब लेके आए हैं जो पिछले
2: दिनों। नहीं सर,
0: हाँ
2: ऐसी कोई बात नहीं सर, बस पूछिए जो भी पूछना है, मुश्किल नहीं है।
0: चलिए ठीक है, तो बहुत जो जवाब अभी तक नहीं मिले वही सवाल घुमा घुमा के पूछ लेता हूँ ताकि वो कम से कम पुराने हो तो फिर नए लाना शुरू।
2: अभी आके तुमने कहा पहले भाई साहब को फोन लगाया मैसेज।
0: अरे सर अहलन व सहलन, मोहब्बत है आपकी। ये तो रमेश भाई, हाथी के चार पैर होते हैं या सात?
2: चार होते हैं।
0: मोबाइल से हम कॉल करते हैं या दाल पकाते हैं?
2: कॉल करते सर।
0: यार मैं तो दाल पकाता हूँ। चलिए साहब, वो कौन सी चीज है जो ऊपर भी ले जाती है नीचे भी लेकर आती है मगर अपनी जगह से हिलती नहीं है?
2: वो कौन सी चीज है लिफ्ट? अच्छा हिलती नहीं है ना?
0: जी लिफ्ट तो हिल रही है।
2: आंख?
0: आंख अपनी जगह से हिल रही है, बराबर हिल रही है, ऊपर देखिए अब नीचे देखिए।
2: अब दाएं लेके जाती नीचे लेके आती है लेकिन।
0: हाँ हिल रही है आग तो अपनी जगह हिल रही है यार। फंसा लिया
2: फंसा दिए आप फंसा दिए।
0: भाई देखो इसमें एक बात यह है, सभी से गुजारिश है कि कोई भी इंटरनेट पे चेक नहीं करेगा इनके जवाब, जब भी जो मजा है वो बरकरार रहने वाला है।
3: बिल्कुल सही है, सही है।
0: और रमेश भाई भी उनमें से एक, और ये तो मोहब्बत है कि आते हैं, जुड़ते हैं और हमसे बातचीत करते हैं जबकि इतने बिजी मशगूल आप सभी रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यार दिन को दिन बनाने के लिए, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे।
2: बात हुई थी हमारी, मैं उस नंबर पे फोन किया था, तो मैडम कोई थी,
0: ओके,
2: उन्होंने कहा कि भाई इंग्लिश में बात करिए या तो अरबी में बोलिए, मेरे ख्याल से वो अरबी है क्या, वो
0: ओके
2: ख्याल से कतरी है, तो फिर वो मैसेज किया, मैं बात हुई, फिर अभी कुछ रिप्लाई नहीं आया था।
0: नहीं तो आपने शायद सुना भी होगा, अब लोगों को आज काफी लोगों को मैसेज आया है माशाल्लाह और बुलाया गया है, तो सिलसिला जारी और सारी है। देर सही मगर इंशाल्लाह ताला नंबर जल्दी आ जाएगा मुझे ऐसा लगता है, इंशाल्लाह ताला। मगर आपने अच्छा किया फिर भी, जहाँ जो आपकी बात हुई है जिस नंबर पे और वो जो भी थे, क्योंकि एडमिन का मामला है, हम लोगों से कनेक्टेड नहीं रहता, तो आप जरूर उसके ऊपर अपनी बात बताते रहिए, जवाब इंशाल्लाह जरूर मिलेगा, है ना रमेश भाई? ऑलराइट देन, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। चलिए जी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आप कौन है हमारे साथ। हेलो सलाम वालेकुम।
4: हेलो सर।
0: हैं?
4: हाँ सर। सलामकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्ला। कौन है हमारे साथ?
4: हमारा नाम इकबाल है, मैं बहुत टाइम बात करता था उसके साथ, उबैद, अभी वो सुबह नहीं थे ना, अभी हम लोग कर हो गया, प्रॉब्लम हो गया, टाइम से हो गया, सब बराबर है, FM सुनता भी है,
0: ओके
4: बराबर सुनता भी है,
0: ओके ओके।
4: अच्छा
0: क्या नाम बताया भाई ने आपका? नाम
4: हमारा नाम मोहम्मद इकबाल।
0: मोहम्मद इकबाल, ओके वेलकम इकबाल भाई। हाँ
4: बंधु है।
0: हाँ मैं बिल्कुल समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया दादा, और मोस्ट वेलकम।
4: ओ अभी जो क्वेश्चन आंसर वॉल बॉडी,
0: वॉल बॉडी,
4: वॉल घड़ी, घड़ी, वॉच वॉच वॉच वॉच,
0: वो अच्छा वॉल का घड़ी कह रहे हैं आप हैं?
4: क्यों भी जाता है, नीचे भी आता है, लेकिन जगह से हिलता ही नहीं है।
0: नहीं आपने कोशिश अच्छी करी है मगर ये तो ऊपर ले जाते
4: नहीं है।
0: हाँ मतलब इसमें तो काफी लोग भी जा सकते हैं भाई।
4: अच्छा अच्छा लिफ्ट है, लिफ्ट लिफ्ट
0: नहीं, लिफ्ट लिफ्ट नहीं है,
4: लिफ्ट नहीं है,
0: लिफ्ट नहीं है।
4: अच्छा अच्छा आपका दूसरा सवाल था।
0: अच्छा सारे सवाल याद है आपको है दादा?
4: वो पूरा याद है, दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है, जाएगा हरियाली आएगा लाल वाले, यानी देखने में हरियाली पकड़ने में लाल वाले।
0: अच्छा वो कौन सी चीज है जो दिखती हरी है और निकलती लाल है?
4: वो गया लकड़ी,
0: लकड़ी
4: लकड़ी
0: नहीं दादा, लकड़ी भी इसका जवाब नहीं है, सॉरी।
4: क्यों क्यों दादा, ये जब हरी में जाता है तो लाल पे आता है ना?
0: हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मगर नहीं देखिए जो दिखती हरी लकड़ी, हरी कहाँ दिखती है? लकड़ी तो
4: हरी में दिखती है, कोई बोला तरमूज, कोई बोला
0: यार, मुझे खुशी इस बात की है दादा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हर वक्त हमें सुन रहे हैं और बंगाल से हैं और इसी तरीके से जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कम से कम इस गेम को एंजॉय कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। मेरी नौकरी जो है वो हलाल हो रही है, ये इस बात का एहसास हो गया मुझे। अच्छा चलिए एक सवाल पूछता हूँ आपसे, एक सवाल पूछता हूँ, ओके चलिए ठीक है, बहुत आसान कोशिश करता हूँ आपको देने के लिए, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रिज में रखने के बाद भी गर्म रहती है?
4: फ्रिज में रखने में बाद फ्रिज गर्म रहता है,
0: फ्रिज समझा ना, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज फ्रिज
4: मालूम है, मालूम है,
0: हाँ ओके
4: मालूम है, हो गया बर्फ हो गया
0: बर्फ, बर्फ गर्म, बर्फ गर्म का होता है दादा, बर्फ तो बिल्कुल ठंडा
4: ठंडा होता है लेकिन देखने में गर्म है,
0: फ्रिज में गर्म का, फ्रिज में तो और ज्यादा ठंडा हो जाता है, बर्फ पिघलता नहीं है जब आप फ्रिज में,
4: लेकिन जब जब तुम उसके निकलोगे ना धुआं निकलता है, धुआं निकलता है, धुआं धुआं
0: ओह माय गॉड यार, ये तो मजा आ गया, आज दिन बना दिया मेरा आपने इकबाल भाई। मगर इसका जवाब कुछ और है, सोचिएगा इंशाल्लाह, और याद आ जाता है तो फिर कॉल करिएगा, ठीक है?
4: सही बात है, सही बात है। अच्छा मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं बहुत दफा एफएम का व्हाट्सएप बन गया लेकिन हमारा कोई जवाब नहीं आता है, कैसे बनेगा? मैं
0: व्हाट्सएप पे क्या
4: WhatsApp?
0: हाँ व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं
4: करते हैं लेकिन इसका जवाब नहीं आ रहा मेरे पास, अभी दो साल से ट्राई कर रहा है लेकिन नहीं आ रहा जवाब। अच्छा, नहीं आ रहा
0: जवाब, आप मुझे भेजिए, अभी मैं आपको इंशाल्लाह मैसेज भेजता हूँ। होता यह है कि जब आप लोग के मैसेज आते हैं तो हम ऑन एयर जो है वो शेयर करते हैं, मतलब अभी जैसे तो उस पे लिखने के बजाय हम यहाँ आपसे बात कर रहे होते हैं ताकि दूसरे लोग भी आपका मैसेज
4: लेकिन क्या बात मालूम है, हम लोग हाउस ड्राइवर है, हम लोग का सिस्टम अलग है, कभी मैडम लोग गाड़ी में हो गया तो कॉल नहीं कर सकता, बात हुई है, बात हुई है।
0: आप फिर भी
4: लेकिन मेरे सुनो मेरे को कतर में 14 साल हो गया, मैं जिस दिन आया उस दिन से एफएम चालू है।
0: अच्छा तो 107 चालू है,
4: 107
0: क्या बात है,
4: अभी कतर में मेरे को 14 साल हो गया, 14 साल
0: क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आप मेरे साथ बोलिए, सुनते रहो,
4: किसका नाम कौन सब मालूम है।
0: तो फिर अभी इकबाल भाई ये बोलो, सुनते रहो एफएम 107 दिल से देसी, बोलो
4: ओके थैंक यू,
0: नहीं बोलो बोलो मेरे साथ, हाँ सुनते रहो
4: दिल से देसी।
0: इसको बंगाली में बोलो
4: बंगाली में बोलेगा तो तुम सब लोग सुनो 107,
0: मजा नहीं आया यार
4: बंगाली में,
0: अच्छा वाला बंगाली में और जरा बंगाली निकलना चाहिए उसमें। हाँ
4: सुनो बस क्या, मैं एक्स हो गया पुतला और एक हो गया मेरे को 28 ईयर हो गया प्रदेश में, मेरे को मंगला इतना नहीं था मेरे को, दुनिया का हर जवान मालूम है।
0: माशाल्लाह। अच्छा
4: लेकिन अपना बंगाली
0: कमाल है,
4: से टेलीफोन करते ना, फिर 2-3 मिनट बंगला आता है, इसके बाद हिंदी मिस होता है।
0: आप बहुत अच्छे आदमी हैं और बड़े प्यारे हैं इकबाल भाई, इंशाल्लाह आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह हमें सुनते रहिए।
4: थैंक यू, मोस्ट वेलकम।
0: है ये मोहब्बतें, ये नवाजिशें, कितनी बार आप लोग दिल जीतेंगे, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और इसी तरह आप एफएम 107 के साथ जुड़े भी रहें, यही हमारी दुआ भी है और ये हम चाहते भी हैं। जरा सा माहौल को बदलने के लिए, वैसे ये गाना कल चलाना चाहता था मैं, कोई बात नहीं यार कल भी चल जाएगा। एंजॉय कीजिए ट्रैक अफगान जलेबी असरार की आवाज में, फिलहाल सन एंड साउंड में इस वक्त आपकी आवाज एफएम 107 पे गूंज रही है, सरवर मिर्ज़ा आपके साथ दिल से।

जिंदगी हर रोज नई कहानियाँ लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।

0: वुमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

बेनीपियाल और नीति मोहन। बेनी के गाने भी अपने आप में यार कैसा भी मूड हो आपको फ्रेश कर देंगे। मिसाली एक गाना ये भी, और क्या नाचे थे ऋतिक रोशन इस गाने पे यार। ओए, होए, होए, होए, होए।

0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: हाँ जी वेलकम बैक है अनवर सहलन, खुश आमदीद एंड स्वागतम। बिल्कुल सन एंड साउंड में इस वक्त सन जो है अपने एकदम उरूज पे है और यहाँ पर आपकी आवाजें भी उरूज पे हैं। भाई सर चढ़ के बोल रही हैं कुछ मैसेजेस यहाँ पर और उसके बाद आप लोगों की कॉल भी। ओके गुड मॉर्निंग कहते हैं और प्यारा सा जिफ भेजा है मुझे यहाँ पर बनाकर इन्होंने हमजा भाई ने। आज माशाल्लाह हमजा भाइयों की बहुत बहुत छार हुई है मेरे ऊपर। कहते हैं नॉट सूर्या सलाम। अच्छा वो शायद सितारे के बारे में मुझे बता रहे होंगे। नहीं वो सूर्या तो हमारा असाद बकाली साहब है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग साद भाई, तो सूर्या तो अपना हिंदी वाला है शायद। या आप मुझे वॉइस नोट भेजिएगा सो आई कैन करेक्ट माई सेल्फ। सरवर भाई मुझे टाइप करके भेज सकते हैं लोकेशन? ओहो बिल्कुल करंट लोकेशन यहीं से भेज देता हूँ, लीजिए आपको अभी लगे हाथों में। सेंड योर करंट लोकेशन। अगर भाई यही कहा है आपको कतर मीडिया बुलाया है तो ये वाली लोकेशन यूज कीजिएगा, अदरवाइज पता चला कहीं और बुलाया था कहीं। खैर यही आना होगा आई एम वेरी श्योर। कहते हैं मोहम्मद फैजान उमारा फ्रॉम कर्नाटका। सरोर भाई सब खैरियत है? यस मैं बिल्कुल ठीक हूँ फैजान भाई उमारा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। कहते हैं इलायची, इन्होंने यहाँ पर जवाब दिया है। कहते हैं ओके मोहम्मद इमरान, पता नहीं खैर कौन सा सवाल का कौन सा जवाब था आपका।

0: मैसेज तो मैंने ले लिया है, हरा और लाल वाला मसला होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत? नईम है हमारे साथ, बिल्कुल ठीक हो नईम भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, इसका जवाब है सर पैसा मनी। और सर आपको सुन रहे थे सामने गए के ये पहलियां भी सुनते रहे और जवाब दे कॉल तो नहीं कर सकते। अच्छा, मेरे ख्याल में बिजी हैं तो कह रहे हैं। अरबाज खान है हमारे साथ, हैंडसम अरबाज भाई। ओके, ओह लंबा मैसेज है। हमारी एक चाची हैं तो हर बात में नेगेटिव पॉइंट ढूंढ लेती हैं। एक दिन घर में सबने मिलकर केक बनाया। केक देखकर सबने तारीफ की, लेकिन चाची बोली ठीक है मगर अगर थोड़ा और अच्छा होता तो ज्यादा अच्छा लगता, थोड़ा और गोल होता तो ज्यादा अच्छा लगता। हमारा कहते हैं अगली बार केक मार्केट से मंगवाया गया, चाची ने फिर खाया अच्छा है, फिर कहा कि अच्छा है मगर घर का बना होता तो और अच्छा होता। तब से घर वाले कहते हैं कि चाची को खुश करना वाईफाई सिग्नल ढूंढने जैसा है, मिलता ही नहीं है। भाई वाह, क्या कहने, आप नाम भी तो बताते यार, अपना यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है, खाली ए लिखा हुआ है। एनी हाउ गुड मैसेज। के कहते हैं गुलरेज बट हैं हमारे साथ और कहते हैं दो नंबर दो मना के भेजा, कोई जवाब होगा गालबन। एनी हाउ, शायरी दिल से होती है, सारे शायर दिल से लिखते हैं दिमाग से नहीं। यूसुफ भाई कहते हैं सरवर भाई ये सवाल मुझसे भी पूछे थे जिसका मैंने सही आंसर नहीं दे सकता था, अभी दे रहा हूं। यूसुफ भाई बिल्कुल ठीक है, यही जवाब है इसका। कहते हैं बांदू भाई से ये जरा बीप बीप है, शुएब है मेरे साथ शुएब भाई, मैं अभी पढ़ देता जल्दी में और आप मुझे पिटवा रहे होते। खादिम भाई का यहाँ पर वॉइस नोट है, इकबाल भाई द ग्रेट कहते हैं बिल्कुल मैं इसको सुनूंगा। बहुत सारे मैसेजेस हैं आप लोगों के, बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा साहब आई लव योर वॉइस, आप बहुत अच्छा इंसान है, आई हार्टली लाइक यू सर। अरे मेरे भाई कैसा, शर्मा है मेरे साथ, शर्मा जी मेरा भाई कैसा, शर्मा जी पे पैसा ही पैसा, दुआएं दे सकता हूँ। कहते हैं कॉल मी बॉस, इस्माइल भाई फोन कर लो बराहे करम बॉस, दिल जीत लिया बंगाली भाई ने। हाँ बिल्कुल इकबाल भाई, बहुत अच्छे थे, मुझे भी बात करके उनसे बहुत मजा आया। अस्सलाम वालेकुम सर भाई, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्ला, मॉर्निंग फलक है हमारे साथ, बहुत बहुत अच्छी मॉर्निंग तो हुई, अब तो आफ्टरनून में आ गए भाई। सन साउंड हमजा कहते हैं सन साउंड निकलवा रहा है, धूप की सख्ती से परेशान। चलिए भाई अब यहाँ पर एक चैंपियन, हेलो सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू, सरवर भाई कैसे?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और कौन है हमारे साथ?
1: पहचान है, आज तो पहचान है आप।
0: ओ हो हो हो यार, ये एक बहुत बड़ा अब पहचान गया। हानिया है हमारे साथ और अबरार भाई है।
1: अरे अल्हम्दुलिल्लाह सरवर भाई, आपको ये 17वां कॉल है आपके लिए, 17 बार कॉल कर चुका हूँ।
0: अरे
1: हानिया बोलती है, जो आपको एफएम में सुन के बोलती है सरवर भाई खुदा के लिए फोन उठा लो सरवर भाई।
0: हानिया प्यारी प्यारी हानिया, हानिया कैसी हैं आप?
2: क्या
0: आप कैसी हैं?
2: अच्छी हूँ।
0: माशाल्लाह वेरी गुड। स्कूल में आज कैसा गुजरा दिन?
1: बोलो जल्दी।
0: हाँ हाँ जी जी जी बताइए हानिया, क्या कहा बेटा?
2: तुम खाना खाए?
0: मैं खाना अभी नहीं खाया, इंशाल्लाह बस थोड़े आधे घंटे बाद खाऊंगा। कुछ लाइए आप मेरे लिए बना के हानिया,
2: हम खेलेंगे।
0: हम आप गेम खेलेंगे और मैं आपको गिफ्ट दूं, गिफ्ट कह रही है मेरे ख्याल में है।
1: हाँ हाँ हाँ सरवर भाई, ये पीछे लगी है ये मेरे सरवर भाई को फोन करो। कल क्या हो गया, कल बात नहीं हुई। हाँ। कल हम लोग आ रहे, फोन करता हूँ घर आ गया।
0: हाँ।
1: छोड़ो बाबा सरवर भाई नाराज है।
0: आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी वेरी सॉरी
1: सरवर भैया, और एक दो दिन आप बात करेंगे ना हैबिट हो जाएगी, रात को सोने से पहले सर्वर से बात करा देना।
0: चलो यार यहाँ किसी काम तो मेरी आवाज आ रही है।
2: चलो
0: क्या कह रही है हानिया,
2: गेम
0: खेलूं? ओके ओके ओके हानिया, मैं बिल्कुल अभी ओके हानिया के साथ अब हम गेम खेलेंगे. ओके पहला सवाल, आपका नाम क्या है? ओके आपके बाबा का नाम क्या है?
2: अब्राहम.
0: ओके आप जिससे बात कर रही हैं, अब ये तीसरा सवाल है बहुत मुश्किल, आप जिससे बात कर रही हैं उसका नाम क्या है? हानिया इज द विनर टुडे. ये अब मैं हानिया को गिफ्ट भी दूंगा, झूठा प्रॉमिस है. पैसे
1: नहीं नहीं तुम्हें गिफ्ट कैसा देती हूँ फोन में.
0: अच्छा ओहो क्या बात है भाई, बहुत माशाल्लाह से हानिया जो है समझदार भी है और झूठा प्रॉमिस है खैर ये तो हानिया, मगर इंशाल्लाह कभी मिलेंगे तो जरूर दे दूंगा गिफ्ट, जरूर दे दूंगा हानिया को जब भी हानिया सामने होंगी.
2: मैं कट कर दूंगी.
0: क्या क्या क्या बोली?
1: प्राइस नहीं लिया तो फोन कट कर दूंगी बोलती.
0: ओके चलिए आप इसी तरह हमारे साथ जुड़ी रहिए, बात करती रहिए हानिया, और आज आप चैंपियन हैं. आपको पता है आज आप जीत गई 3 कदम. हैं?
2: एक गिफ्ट कैसे देते तुम?
0: मैं गिफ्ट कैसे दूंगा, मैं इंशाल्लाह जब मुलाकात करूंगा तो गिफ्ट दूंगा. ठीक है
2: ठीक है.
0: ओके ओके भाई बहुत बहुत यू आर मोस्ट वेलकम हानिया, बहुत बहुत शुक्रिया अबरार भाई, और माजरत चाहता हूँ, कोशिश रहती है कि सबका कॉल कनेक्ट हो बट मिस हो जाता है. बहुत बहुत शुक्रिया यार हमारे. कुछ और भी कह रही मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ. आप दुआ करिएगा मेरे लिए, मैं ठीक रहूँ. ठीक है ओके ओके ओके आनिया. ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच. ख्याल रखिए, अल्लाह ताला खुश रखे आपकी फैमिली को. बहुत बहुत शुक्रिया. तो भैया छोटे फैन भी आ जाते हैं और छोटे फैन आज चैंपियन भी बन गए हैं. हानिया आज जीत गई हैं 3 कदम. अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन है हमारे साथ. हेलो सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम सलाम
0: रहमतुल्लाह,
3: कैसे हो सरवर भाई?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और मुदस्सर भाई हमारे साथ?
3: नहीं हमारे ग्रुप वाला, आप थोड़ा सा देखो ट्राई कर दो. ग्रुप कॉल में जो हम कॉल करते थे गाड़ी में सुनते थे पूरे 4 बंदे ग्रुप में.
0: यस यस यस इस्माइल भाई.
3: यस यस
0: क्या बात है, देखिए तो सही काम कर रही है किडनियां अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरी. तो इस्माइल भाई
3: आप बिल्कुल
0: क्या कहाँ थे इतने दिनों से, कहाँ गायब हैं और कहाँ आपका ग्रुप भी कुछ वक्त में तब्दीली हुई है शायद वर्किंग आवर्स में या समथिंग?
3: बिल्कुल अभी मैं जो कॉल कर रहा हूँ ना इसकी सिचुएशन मैं आपको बता दूँ. आप सुबह 7 से शाम 7 तक ड्यूटी कर रहे हैं और फिर रात को 2 बजे मैं आपको कॉल करूँ तो सेम ऐसे ही है क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटी और मैं भी सिर्फ आपकी शो के लिए भी होता है.
0: ओह माय गॉड, ओह माय
3: गॉड, फिर मैंने सोना है 5 बजे फिर ड्यूटी पे.
0: ओह माय गॉड यार ये तो भाई आपने
3: देखो आपका प्यार है और आपको मैसेज भी आप सही से नहीं पढ़े नहीं तो बहुत हंसते जो मैंने आपको.
0: मैं अभी पढ़ूंगा आपसे बात करते करते पढ़ूंगा यार. और आपने लाजवाब कर दिया, आपकी मोहब्बत का कोई बदल नहीं इस्माइल भाई. मैं आपका मैसेज इस वक्त ढूंढ रहा हूँ. वेयर इज
3: मुश्किल नहीं है, छोड़ दीजिए.
0: नहीं नहीं नहीं आप, अच्छा अगर आप कह सकते
3: आपने पढ़ लिया लेकिन मैंने जो लिखा हुआ था कि फोन कर लो भारी भरकम बहुत.
0: अच्छा ये कहना चाह रहे थे
3: आपने क्या पढ़ा आपने बराहे करम बहुत.
0: अच्छा मैंने यही सोचा होगा कि शायद ये लिखा है मगर चलिए आपने तो अब तारीफ कर ही दी आके. और अच्छा हुआ कि आपसे आज बात हो गई, मेरे ख्याल में काफी दिनों से बात हो भी नहीं पा रही थी और कोशिश भी हो रही थी.
3: ट्राई किया लेकिन बस फोन बिजी रहता है, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं हमारे लिसनर्स प्यारे प्यारे.
0: 3 के दम में आप मेरे ख्याल में अभी तक हिस्सा ले पाए हैं?
3: एक बार ले चुका हूँ उसमें. अच्छा, एक जो
0: कौन सा सवाल था
3: मैं हार गया था लेकिन जो पहेली थी वो
0: सवाल
3: तो
0: कौन सा था
3: लेकिन अंडे वाला सवाल जो है ना अंडा कौन सा शेप का है, गोल है चौकोर है तो मेरे मेरे गोल बोला
0: तो फिर आज आपसे अलग सवाल कर लेते हैं. रेडी हैं इस्माइल भाई?
3: बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करते हैं इंशाल्लाह.
0: ऑलराइट उल्लू ज्यादा रात को निकलते हैं या दोपहर में?
3: उल्लू रात को निकलते हैं।
0: रात को निकलते हैं।
3: मैं भी

0: किसी उल्लू के टाइप नहीं हूँ, उल्लू नहीं हूँ
1: माजरत चाहता हूँ, मुझे लग रहा था कि आप ऐसा ना सोचे मैं आप पे तंज कर रहा हूँ, I'm sorry.
0: नहीं आप ऐसे भी कर सकते कि स्माइल दिल में निकलते
1: हैं रात. I'm sorry. तो पहला पहला जवाब तो आपका सही आ गया है. ओके, घर में दरवाजा होता है या पहिए होते हैं?
0: घर में दरवाजे होते हैं.
1: घर में दरवाजे होते हैं. ऑलराइट, तीसरा सवाल ये कि आज कौन सा दिन है?
0: आज वेंसडे.
1: बता सकते हैं कल क्या होगा?
0: कल होगा थर्सडे. हंस गया क्या मैं?
1: इस्माइल भाई, प्यारे प्यारे इस्माइल भाई. इस्माइल भाई कल तो अच्छा. कोई नहीं बता सकता कि क्या होगा यार, आपने कैसे बता दिया?
0: कल आपने बोला कि कौन सा दिन होगा.
1: अरे मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा दिन नहीं होगा, मैंने कहा आज कौन सा दिन है, आपने कहा कि ये है, मैंने कहा कल क्या होगा.
0: जबरदस्त जबरदस्त, इसको ट्रिकी क्वेश्चन बोलते हैं.
1: ये मैंने आपको नहीं, आपकी मोहब्बत में मैंने ये जवाब बता दिया है, वरना मैं दूसरों को भी फंसाने वाला था इसके अंदर, मगर मैंने कहा ठीक है चलो यार ऐसा भी कर लेते हैं कभी कभार.
0: मैंने सोचा आप पूछेंगे कि फ्रिज में चीज है.
1: नहीं बताइएगा मत, बताइएगा मत अगर जवाब मालूम है.
0: नहीं नहीं नहीं पता, मैंने आपको टाइप करके भेजा है मैंने.
1: अच्छा ओके ओके ओके. चलिए यार बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बत नवाजिश, और आप अल्लाह ताला आपको सेहत याब रखे, और मैं यही कहूंगा कि हमारे साथ जुड़िए तो जरूर, मगर अपनी सेहत का भी साथ साथ ख्याल रखिएगा भाई. बहुत बहुत बहुत शुक्रिया.
0: एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, वो मेरा जो अंडर 17 का एक प्राइस था.
1: जी जी जी.
0: मेरे टीममेट को मिला, मेरे टीममेट को चेक मिला.
1: हाँ अभी शुरू हो गए अभी,
0: देख रहे हैं.
1: ओके जी जी जी बिल्कुल. तो इंशाल्लाह ताला आप तक जल्दी मैसेज भी आ जाएगा इस्माइल भाई, इंशाल्लाह आपका इनाम आप तक पहुंच जाएगा जल्दी. बहुत बहुत शुक्रिया.
0: थैंक यू सो मच है गोटे, और हानिया को मैं वो भेज दूं, क्या नाम है प्राइस, नहीं तो मैं आपका लोकेशन सेंड करता हूं.
1: हानिया प्यारी प्यारी
0: और बेटी थी ना आज, बहुत प्यारी.
1: हां बिल्कुल, अल्लाह ताला सेहतियाब रखे भाई. बहुत बहुत शुक्रिया इस्माइल भाई, मोहब्बत नवाजिश, और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से सलाम कहिएगा, और कहिएगा
0: कि हमारे साथ तमाम लिसनर्स को भी बहुत सलाम.
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. तो ये क्या कहूँ, बस अपनी खुश नसीबी ही कह सकता हूँ कि इतनी मोहब्बतों से आप सब नवाजते हैं हम सबको, FM 107 की पूरी ही टीम को. हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए. कहते हैं आंसर रोड है. बिल्कुल, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, और उन्होंने दो जवाब दिए. एक सवाल का जवाब तो रोड नहीं था, हुसैन है हमारे साथ. दूसरा सवाल जो है, जवाब जो है हुसैन, वो बिल्कुल सही है आपका. ओके ओके ओके ओके ओके, बढ़ते हैं आगे. यहाँ पर कुछ मेरे ख्याल में शायरी वगैरह आई हुई हैं. जनाब गुलजार से गुलरेज बना दिया. बैड के बात हुई थी क्या जनाब? जिसने दूसरे खिलाड़ी को ओवरटेक किया वो बिल्कुल ठीक है. ये जवाब सही है आपका भाईजान. कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, आई वॉन द कंटेस्ट, आई थिंक इट वॉज अंडर 17 एंड आई हैवंट रिसीव्ड अ कॉल येट. इंशाल्लाह ताला आपको जल्दी कॉल आ जाएगी. हाय लिखते हैं नाम की जगह, आपका जो भी नाम है मेरे भाईजान, शायद सुफियान है ऊपर जो मैं देख रहा हूँ. सुफियान भाई इंशाल्लाह यू विल रिसीव अ कॉल इन अ शॉर्ट टाइम, क्योंकि कॉल जा रही हैं सभी को इंशाल्लाह. तो होपफुली यू विल रिसीव द कॉल सून और अ मैसेज फ्रॉम आर साइड इंशाल्लाह ताला, और जब इनाम मिल जाए तो मुझे मत भूलिएगा. ओके, तो यहाँ पर कुछ वॉइस नोट्स भी हैं, और फिलहाल चलिए एक गाना तो बनता है यार इस वक्त. आहा यार क्या सही वक्त पे गाने आ रहे हैं. अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में गाना एंजॉय कीजिए, अपने टाइम का बड़ा ही मशहूर गाना. शाहरुख खान बड़े हैंडसम लग रहे हैं इस गाने में, और हो भी क्यों ना, वो दौर ही ऐसा था उनका.

0: भाई ये तोहफा तो आप ही के लिए है खाली। बल्कि दिल का भी क्या है यार, ये तो बहुत छोटा सा तोहफा है आपके लिए। सर्वमृदा पूरा हाजिर है।
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
2: कतर ट्रांसपोर्ट एंड लोकल ट्रैफिक अपडेट्स।
0: बिल्कुल भाई, इस वक्त क्या हो रहा है ये जान लेते हैं ट्रैफिक के हवाले से। और इस वक्त ट्रैफिक के मुताबिक दोहा के ज़्यादातर रोड्स पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवानगी में है। कॉर्निश वेस्ट बे पे भी, सीरिंग रोड पे भी सब खैर है इंशाल्लाह ताला, डी रिंग रोड भी और सलवा रोड भी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अब बच्चों के कुछ स्कूल्स में एग्जाम्स वगैरह भी चल रहे हैं, तो जो जिस दिन एग्ज़ाम नहीं होता उस दिन बच्चे कम जा रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। खैर बहरहाल, सफ़र से पहले अपना जो रूट चेक है वो ज़रूर कर लें, सीट बेल्ट का ज़रूर ध्यान दें और भैया ट्रैफिक कानून की पाबंदी कीजिए। ये तो हम एफ़ एम 107 की तरफ से हर वक्त आपसे कहते हैं, महफूज सफ़र कीजिए और दूसरों का ख्याल भी रखिए क्योंकि ये बे इंतहा जरूरी है। आइए जनाब कुछ आप लोगों के मैसेजेस। ओके, क्या कहते हैं, कहां से है अहले दिल, दिल की नजाकत से हैं वाकिफ वरना काम लफ्जों से भी ले सकते हैं खंजर जैसा। ओए होए होए होए, मेरी वसात का भी अंदाज़ा बहुत मुश्किल है, एक कतरा ही सही हूँ तो समंदर जैसा। ओए होए होए होए, कहते हैं मैंने आसाब को पत्थर का बना रखा है, एक दिल है कि जो बनता नहीं पत्थर जैसा। ए हाय हाय हाय हाय हाय, क्या कहने साहब, कौन है हमारे साथ, क्या मज़र भाई हैं, नाम कहाँ है आपका। हाँ बिल्कुल, मदर खान साहब, मुझे अंदाज़ा था जिस तरीके से शायरी आई है आपकी, बहुत ही ज़बरदस्त। ओके, यहाँ कौन है, क्या कहते हैं, लव यू भाई, यार टू द पावर टू कर दो इसको। आसिफ भाई हमारे साथ और फोटो भेजी इन्होंने अपने रेडियो की खींच के, इस वक्त जो हमारे साथ सुन रहे हैं, बने हुए हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सरूर भाई, कैसे हैं आप, आपको बहुत दिनों बाद मैसेज किया, मैं पहले बताया था आपका वॉइस मेरा भाई मिलता है, मेरी भी मिलती है, मेरे भाई से मिलता है, मेरी भी वॉइस से मिलता है, ये कहना चाहते हैं शायद। यहाँ पर कौन है, जहाँ जेब है हमारे साथ। ओके मोहब्बत भाई, अगर ऐसा है तो मुझे छुट्टी लेने में मुश्किल नहीं होगी। जानते भाई आ सकते हैं और हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं 666-22-107 पे और वहीं कॉल करने के लिए नंबर 443-443-77 है। वैसे तो अब वक्त हो चला है क्योंकि यहां पर एक शुरू से मैं ढूंढ रहा था और विश करने के चक्कर में भी था, तो यहाँ पर मोहसिन भाई हैं जिनकी है हैप्पी वाली बर्थडे और उनको विश किया जा रहा है उनके दोस्त सिद्दीक और इजहार की तरफ।

0: तो भैया मोहसिन भाई नसीब वाले हैं आप। पहले तो आपको बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हम सभी की तरफ से, और ऐसे दोस्त हैं जो याद भी रखते हैं और आपको विश भी कर रहे हैं। यहाँ पर आइए एक आखिरी चैंपियन मेरे ख्याल में इनसे बात कर लेते हैं और फिर आपसे लेते हैं इजाजत। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम
0: वालेकुम। अहलन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और कौन है हमारे साथ?
1: मैं फर्स्ट टाइम कॉल किया हूँ, आप यूपी वाले भैया, मैं बिहार वाले भैया हूँ।
0: क्या बात है, एक बिहारी सब पे भारी भाई।
1: सुन रहा हूँ रेडियो, चल रहा है गाड़ी में, एक्चुअली मैं ड्राइव करता हूँ, हॉर्स ड्राइवर मैं हूँ।
0: क्या नाम है आपका?
1: मोहम्मद इरफान नाम है जनाब।
0: माशाल्लाह इरफान भाई, अहलन व सहलन, और बहुत खुशी हुई कि मेरी मोहब्बत यहाँ तक खींच लाई आपको कि आज
1: आप सुनते हो। बराबर हमेशा चलते रहता गाड़ी में, और थोड़ा ड्यूटी मेरा ज्यादा लोकेशन पे मेरा काम है।
0: हाँ चलिए,
1: तो अभी भी जस्ट ड्राइव कर रहा था, रुक के मैं लगाया नंबर तो अचानक लग गया, बात हो रही है आपसे।
0: अरे सॉरी, मोहब्बत नवाजिश इरफान भाई, और अब एक वादा लूंगा आपसे कि अब इंशाल्लाह ताला आप लगातार बात करते रहेंगे हमसे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे, जैसे भी जितना भी वक्त मिले। आप सुनते तो हैं मगर जुड़ने की भी कोशिश करा कीजिए, ठीक है? चलिए, तो अब तीन कदम खेलेंगे क्या मेरे साथ चलते चलते?
1: इंशाल्लाह ट्राई करते हैं, देखते हैं।
0: ठीक है।

0: कोशिश करेंगे। एकदम कॉल लगा है आपके पास।
1: ओके, चीनी मीठी होती है या कड़वी?
0: मीठी होती है जनाब।
1: ओके, मोबाइल से कॉल करते हैं या दाल पकाते हैं?
0: बात ही करते हैं, कॉल करते हैं।
1: कॉल करते हैं। अगर आपके पास 10 मोमबत्तियां हैं जो जल रही हैं, उसमें से अगर 3 बुझ गई तो कितनी बचेंगी?
0: तो लास्ट बार डिफिकल्ट घुमा देते हैं, आखिर
1: में कोशिश करिए। आसान है, आसान है। 10 मोमबत्तियां, हाँ 10 मोमबत्तियां हैं जो आपने जलाई हैं, 3 बुझ गई, अब बताइए कितनी बची?
0: 7 बची सर।
1: 7 बची,
0: 10 में से 3 बुझ गई, 7 बची
1: हैं। 7 बची हैं, हाँ बिल्कुल गलत जवाब है। सही जवाब नहीं बताऊंगा इरफान भाई, क्योंकि अब दूसरों को भी जरा सा इसमें परेशान करूंगा ना इंशाल्लाह ताला। कल कल आके परेशान करूंगा, इसका जवाब कोई ना कोई देगा, और नहीं देगा तो मैं जरूर बता दूंगा। अभी इसलिए क्योंकि फिर कल आप मेरे साथ जुड़े जरूर और ये सवाल आपको परेशान करता रहे, तो इसलिए बता नहीं रहा हूँ इसका जवाब। ठीक है,
0: डाल दिया
1: यार। असल में ऐसा है कि मैं आपसे लंबी बात करता, आज आप पहली बार तशरीफ लाएं, बट अब इजाजत लेने का वक्त हो गया है, तो फिलहाल आपसे इस वक्त इजाजत चाहूंगा। इंशाल्लाह कल फिर आप मेरे साथ जरूर जुड़िएगा, जब भी आपको टाइम मिले 11 से 1 इंशाल्लाह मैं आपके साथ मौजूद हूंगा। ठीक है इरफान भाई,
0: टाइमिंग यही होता है,
1: टाइमिंग यही होती है 11 से 1 मैं आपके साथ होता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये थे प्यारे प्यारे इरफान भाई जो आज पहली बार तशरीफ लाए, और बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप सभी की मोहब्बत का। अब भी वक्त हो गया कि आज के लिए आपसे ले लूं इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, गुस्से पे काबू पाने की कोशिश करिए। मैं भी कर रहा हूं, हो जाता है, निकल जाते हैं लेफ्ट राइट, बट इंशाल्लाह कोशिश तो करती रहनी है। फिलहाल एंजॉय कीजिए ट्रैक, इस गाने के साथ छोड़ जा रहा हूं आपको, विशाल डाडलानी और सुरिदी चौहान की आवाज में शोलों सी गाना है, या बस शोलों सी जिंदगी नहीं गुजारनी है। बस अपना ख्याल रखिए, देखते सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया को।

फेवरेट्स में शामिल थी। लेकिन वर्ल्ड कप जीतना कभी भी आसान नहीं होता है, कोई भी टूर्नामेंट कह लीजिए आसान नहीं होता है। वर्ल्ड कप तो आई मीन इट्स अ नेक्स्ट लेवल, इट्स अ नेक्स्ट लेवल। हर टीम का एक अपना ही एक मकसद होता है कि चैंपियन बनना है। पॉन्टिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट का आगाज बहुत मजबूत अंदाज में किया। टीम ने ग्रुप स्टेज में लगातार विक्ट्रीज हासिल की, बैटिंग और बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट शानदार फॉर्म में थे। ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस हर मैच के साथ बढ़ता ही गया। सेमीफाइनल भी ऑस्ट्रेलिया ने अपनी डोमिनेंस बरकरार रखी और फाइनल तक दैट डोमिनेंस कंटिन्यूड। यहाँ दोस्तों 23 मार्च 2003 की बात कर रहा हूँ। अब 23 मार्च 2003 जब फाइनल खेला गया था, वेन्यू था जोहान्सबर्ग और मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया और सौरव गांगुली इंडियन टीम के दरमियान, और उस वक्त इंडिया भी जबरदस्त फॉर्म में थी। करोड़ों फैंस इस फाइनल का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, सबको ये लगा था कि सौरव गांगुली की टीम इंडिया वॉज ऑन द सेम पेडेस्टल एट ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का मुकाबला जब भी उस टाइम होता था तो एक तरह से लोग समझते थे कि इट वॉज अ क्लैश ऑफ द टाइटंस। And this is what actually every expert felt that India will beat Australia. India was very strong. Australia ne toss jeet kar batting ka faisla kiya aur fir jo hua World Cup history ka hissa ban gaya. Kaptan Ricky Ponting ne apni zindagi ki behtareen innings mein se ek pari jo hai wo final mein kheli. Unhone sirf runs hi nahi banaye balki Indian bowlers par puri tarah hukmrani ki. They dominated. They smashed. He hit it all over the field of, in Johannesburg. Ponting ने sixes and fours की बरसात कर दी और runs जब बने उस time आज से 23 साल पहले 359 run one day final में was considered to be Herculean effort. और ऑस्ट्रेलिया ने 359 runs बनाकर एक वो एक टारगेट इंडिया के सामने सेट कर दिया कि सबको लग गया था कि भाई अब हो गया, अब तो इंडिया का हो ही गया। और उस दौर में वर्ल्ड कप फाइनल में इतना ह्यूज स्कोर, बड़ा स्कोर लगाना गैर मामूली बात थी। अब जब इंडियन टीम स्कोर के जवाब में, इंडियन टीम जब मैदान पर उतरे, उनके दो सलामी बल्लेबाज यानी दोनों ओपनर्स जब उतरे तो सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग, एंड दैट वाज ऑल। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल जीतकर वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। इंडिया टारगेट हासिल ही ना कर सकी, एंड दैट इज क्वाइट devastating, अगर देखा जाए तो quite devastating. इनके जो टारगेट सेट किया गया था फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, दैट वॉज ह्यूज और सबको लगा था कि मुश्किल है इंडियन टीम के लिए, दिस वॉज जीतना बड़ा मुश्किल है, और ये हुआ ही हूँ। आई मीन दैट इज़ वॉट आई वुड फील कि इंडिया वॉज बोल्ड आउट फॉर 234 रन एंड जस्ट 39.2 ओवर्स में इंडिया वॉज बोल्ड आउट। रिकी पॉन्डिंग के एक तरफ अगर 140 नॉट आउट पारी अगर देखूं तो उस टाइम डेमिन मार्टिन ही प्लेड 88 नॉट आउट एंड एडम गिलक्रिस्ट जो उनके विकेट कीपर थे उन्होंने 57 रन बनाए थे। इंडिया मार्जिनली अगर थोड़ा बहुत अगर मैं देखूं सचिन फेल्ड, सौरव फेल्ड एंड थोड़ा अगर सटन एक्सटेंड देखा जाए तो वीरेंद्र सहवाग ने 81 गेंदों पर 82 रन की पारी खेली, राहुल द्रविड़ 57 गेंदों पर 47 रन। लेकिन कोई ग्लेन मैकग्रैथ या एंड्रू साइमंस और ब्रेट ली के सामने दे कुडंट पोज अ चैलेंज, एंड दैट वाज द आई वुड से कि ऑस्ट्रेलियन टीम की जीत के पीछे एक बहुत अहम रीज़न रहा है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि पॉन्टिंग की कप्तानी, पॉन्टिंग की लीडरशिप रियली इंडियन टीम को पीछे हटाकर कह दिया कि यू कैन वेट आउटसाइड एंड वी कैन रिटेन द ट्रॉफी फॉर द सेकेंड टाइम। और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल जीतकर वर्ल्ड कप अपने नाम दोबारा अपना नाम कर लिया उसी ट्रॉफी में, और रिकी पॉन्टिंग दुनिया के चैंपियन कैप्टन बन गए। दिस इज हाउ पॉन्टिंग की लीडरशिप के बारे में बात करें तो पॉन्टिंग की लीडरशिप का राज क्या है? अच्छा, सबसे पहले उनका अटैकिंग माइंडसेट था। वो कभी डिफेंसिव क्रिकेट पर यकीन नहीं रखते थे और उनका मकसद हर मैच जीतना होता था। दैट इज क्वाइट अमेजिंग। दूसरी बात ही उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब कप्तान खुद कॉन्फिडेंट हो तो पूरी टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तीसरी बात थी स्टैंडर्ड्स। पॉन्टिंग हर प्लेयर से एक्सीलेंस की उम्मीद रखते थे, जस्ट लाइक एन एग्जीक्यूटिव, जस्ट लाइक अ सीईओ। उनके नज़दीक एवरेज परफॉर्मेंस काबिल-ए-कबूल नहीं थी। अगर आप एवरेज रन बना लेते हैं कि

40, 50 वो खुश नहीं रहते थे, उनको उनका मतलब ये होता था कि और ज्यादा बनाइए। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का कल्चर जीतने वाला कल्चर बन गया था। अब समझ रहे हैं इस चीज को, द परफेक्शन द आर्ट ऑफ विनिंग दैट ऑस्ट्रेलिया डिफाइंड एंड दैट रिकी पोंडिंग मेड देम बिलीव कि हमें जीतना है, हमें हारना नहीं है। और आपके जो परफॉर्मेंसेज हैं, इस परफॉर्मेंस को थोड़ा सा और अच्छा कीजिए। एज आई सेड कि सीईओ की तरह उन्होंने बड़ा ही सख्त डिसिप्लिन, और एक खुद वो लीडर थे जिन्होंने अपने ही परफॉर्मेंस से पूरे टीम को मुतासिर करते थे कि मैं अगर स्कोर कर रहा हूँ एज अ लीडर तो दे विल फॉलो मी। इसीलिए पोंटिंग वॉज ऑलवेज अ वेरी सक्सेसफुल बैट्समैन। जब भी बारी आई, जब भी किसी चैलेंज का सामना करना पड़ा, पोंटिंग ने ऑस्ट्रेलिया को बेल ऑफ किया है, ये हमेशा दिखा गया है। एंड इसी से इज्जत बढ़ती है, इसी से आपको जो है रिस्पेक्ट जो आपके टीममेट्स देते हैं। दैट्स हाउ ऑस्ट्रेलिया वॉज अनबीटेबल इन द 2003 वर्ल्ड कप। अच्छा, आप चलते हैं 2007 वर्ल्ड कप का चैलेंज। और 2007 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में मुनाकिद हुआ था और सबकी नजरें ऑस्ट्रेलिया पर थी बिकॉज दे वर द डिफेंडिंग चैंपियन। सवाल ये था क्या ऑस्ट्रेलिया अपना टाइटल डिफेंड कर सकेगी और क्या रिकी पोंटिंग दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप जीत सकेंगे। काफी क्वेश्चंस हो जाते हैं एक एडिशन खत्म होने के बाद दूसरे एडिशन में, ये सारे सवालात होते हैं। टूर्नामेंट के आगाज से ही ऑस्ट्रेलिया ने सबको पैगाम दे दिया कि वो अब भी दुनिया की सबसे ताकतवर टीम है। ऑल फाइन, बैटिंग लाइनअप खतरनाक, बॉलिंग अटैक लाजवाब, फील्डिंग वर्ल्ड क्लास और कप्तान पोंटिंग पूरी टीम को फ्रंट से लीड कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप स्टेजेस और सुपर एट फेज में शानदार परफॉर्मेंस दिखाए, टीम लगभग नाकाबिले शिकस्त नजर आ रही थी, विच मीन्स दे वर अनबीटेबल, इनविंसिबल। अगर मैं थोड़ा सा अंग्रेजी का यहाँ पे अल्फाज यूज करूं, दे वर अनबीटेबल, इनविंसिबल। इन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होता है श्रीलंका से, सो विच मीन्स दे तीन मुसलसल वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया मेड देयर प्लेस। बारिश से मुतासिर इस मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने अपनी क्लास दिखाई, रिकी पोंटिंग ने एक और कप्तानी इनिंग्स खेली, उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट का मुजाहरा किया और टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। श्रीलंका ने कोशिश की लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत मजबूत साबित हुई। आखिरकार ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया और रिकी पोंटिंग क्रिकेट की तारीख के चंद उन कप्तानों में शामिल हो गए जिन्होंने मुसलसल दो वर्ल्ड कप्स जीते, 2003 और 2007। दो वर्ल्ड कप्स, दो टाइटल्स और कप्तान एक, नाम क्या, रिकी पोंटिंग। अच्छा दोस्तों, वर्ल्ड कप जीतना ही बहुत मुश्किल होता है और इसमें रिकॉर्ड की अहमियत भी है, लेकिन उससे डिफेंड करना और ये टाइटल को डिफेंड करना और भी मुश्किल। जैसे कि अर्जेंटीना डिफेंडिंग चैंपियन है फुटबॉल वर्ल्ड कप में, और इस साल जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होने जा रहा है, या यू नो जहाँ पे अर्जेंटीना के ऊपर सबकी नज़र होगी कि क्या मेसी अर्जेंटीना को दोबारा यू नो टाइटल दिलवाने में मदद करेगी या सक्सेसफुल होगी या व्हाटएवर, क्योंकि चार साल पहले दे वॉन्ट इट इन कतर, और इस साल क्या मेसी दोबारा ये टाइटल अर्जेंटीना को दिलाने में मदद करेगी। आई मीन दैट इज ऑल स्पेकुलेशंस, एक्सपेक्टेशंस, स्पेकुलेशंस से ज़्यादा मैं कहूँगा कि एक्सपेक्टेशंस। और यहाँ पर पोंटिंग के साथ भी कुछ ऐसा था, 2003 में जीतने के बाद 2007 में पोंटिंग रियली वॉज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, ऑस्ट्रेलियन टीम वॉज अंडर अ प्रेशर, तो ये प्रेशर काफ़ी था उनके ऊपर, एक्सपेक्टेशंस भी बुलंद होती हैं, लेकिन पोंटिंग ने इस प्रेशर को चैलेंज की तरह कबूल किया और ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट की तारीख की सबसे डोमिनेंट वर्ल्ड कप टीम बना दिया। दैट्स हाउ वी नो पोंटिंग टुडे। और पोंटिंग की लेगेसी, जब भी क्रिकेट के अजीम कप्तानों की बात होती है तो रिकी पोंटिंग का नाम सबसे आगे नजर आता है। अच्छा, उन्होंने सिर्फ ट्रॉफीज नहीं जीते बल्कि लीडरशिप का एक बेंचमार्क सेट किया, उनकी बैटिंग रिकॉर्ड्स भी शानदार हैं, उन्होंने 27,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाए दोस्तों, 100 से ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरी स्कोर की, लेकिन उनका सबसे बड़ा विरसा शायद उनकी कप्तानी है। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप रिकॉर्ड में हमने जाना कि किस तरह रिकी पोंटिंग ने ऑस्ट्रेलिया को 2003 और 2007 के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जितवा कर क्रिकेट हिस्ट्री में अपना नाम हमेशा के लिए लिखवा दिया। अब आगे बढ़ते हैं एंड वी फोकस ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, जिसके बारे में हम लोग पीछे भी दो एपिसोड्स में हमने शेयर किया था कि क्रिकेट वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप में आज का हमारा

0: हमारा जो टॉपिक था वो रिकी पॉन्टिंग के ऊपर था, लेकिन आप थोड़ा सा नजर डालते हैं कि स्पोर्टिंग अराउंड द वर्ल्ड में जहाँ पे एथलेटिक्स में या बाकी जितने भी इवेंट्स हैं, बाकी जितने भी स्पोर्टिंग में, उसमें क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में पहुंचने से पहले लेट अस टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर एंड वी विल बी राइट बैक।
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
0: दोबारा इस्तकबाला स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप सभी लिसनर्स का, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड में। जैसे कि हमने फर्स्ट सेगमेंट में बताया रिकी पॉन्टिंग के बारे में, रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड, रिकी पॉन्टिंग क्यों बेहतरीन कप्तानों में से एक है। अब इस सेगमेंट में वी विल टॉक अबाउट कि बाकी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं। तो चलिए बात करते हैं एथलेटिक्स में, और एथलेटिक्स के मेंस के लॉन्ग जंप का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है 8.95 मीटर यानी 8.95 मीटर 29 फुट 4 and 1 by 4 inch। तो सोचिए कि क्या जंप होगा। और ये जो जंप लगाया गया था वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में 30 अगस्त 1991 में इन टोक्यो, जापान का कैपिटल टोक्यो में, और बंदा कौन था? माइक पावल ने ये तारीखी वर्ल्ड रिकॉर्ड एक शानदार मुकाबले के दौरान कायम किया था, जहां उनका सामना उस वक्त के कर्लियस से था। 3 दिहाइयों से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद ये रिकॉर्ड अब भी कानूनी तौर पर लगाई गई सबसे लंबी लॉन्ग जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। Nobody has even broken it. I mean, सोचिए 3 दिहाई यानी 30 years, I mean, more than 30 years, 1991 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 35 years, तो more than 30 years, और आज भी माइक पावल का ही रिकॉर्ड किसी ने भी नहीं तोड़ पाया। मूविंग ऑन टू क्रिकेट, और यहाँ पर आज हम बात करेंगे वेस्टइंडीज के अजीम क्रिकेटर क्रिस गेल के बारे में, और क्रिस गेल के नाम भी एक शानदार वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे तेज तरीन सेंचुरी, मैच था वेस्टइंडीज वर्सेस जिम्बाब्वे, खेला गया था 2015 में 24 फरवरी को, और वेन्यू ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा सिटी में ये मैच हुआ था। और क्रिस गेल ने सिर्फ 47 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर वर्ल्ड कप की तारीख की सबसे तेज तरीन सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। अच्छा, इस इनिंग्स में उन्होंने 215 रन स्कोर किए और वर्ल्ड कप में डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले बैट्समैन बन गए। कमाल का बल्लेबाज है। और ये इनिंग्स आज भी इंटरनेशनल क्रिकेट की सबसे धमाकेदार और यादगार परफॉर्मेंसेस में शुमार की जाती है। अब बढ़ते हैं फुटबॉल में, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसके बारे में आप लोगों से मैं शेयर करूंगा। फीफा वर्ल्ड के एक मैच में सबसे ज्यादा कामयाब ड्रिबल्स, है ना इंटरेस्टिंग, अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड, और ये मैच 22 जून 1986 को खेला गया था इन मेक्सिको सिटी। और किसके बारे में बात हो रही है? ड्रिबल्स, इतने ज्यादा ड्रिबल्स ले ही कौन सकता है? आप लोग कुछ गेस कर सकते हैं क्या? चलिए मैं बता देता हूँ, डिएगो आर्मांडो माराडोना, वो बंदा कमाल का था, ड्रिबलिंग मास्टर, सब कुछ कर सकता था मैदान पर। तो डिएगो माराडोना ने इस तारीखी मुकाबले में 20 कामयाब ड्रिबल्स किए, जो वर्ल्ड कप के एक मैच का वर्ल्ड रिकॉर्ड माना जाता है। और इसी मैच में उन्होंने मशहूर गोल ऑफ द सेंचुरी भी स्कोर किया था, जिसे फुटबॉल की तारीख के बेहतरीन गोल्स में शुमार किया जाता है। एंड ये मैच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माराडोना। माराडोना ने अर्जेंटीना को जीत दिलवाने में काफी अहम रोल अदा किया था, 2-1 विक्ट्री ओवर इंग्लैंड, और वन ऑफ द गोल जिसको आज भी लोग कहते हैं कि वन ऑफ द कॉन्ट्रोवर्शियल गोल्स, जिसको हैंड ऑफ गॉड कहा जाता है, इसी मैच में हुआ था। तो एनीवे, डिएगो माराडोना इज स्टिल रिमेंबर्ड बाय एवरीवन। आज वर्ल्ड कप जारी है और वर्ल्ड कप में लोग माराडोना को आज भी याद करते हैं, आज भी उसी ड्रिबल्स के बारे में जिक्र होती है, एंड एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट रेस्पेक्ट अबाउट माराडोना स्किल्स, अबाउट माराडोना परफॉर्मेंसेज। चलिए बढ़ते हैं टेनिस में, और टेनिस में भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसके बारे में आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, और ये वीमेंस टेनिस की बात है, और वीमेन टेनिस में सबसे ज़्यादा हफ्ते वर्ल्ड नंबर वन रहने का रिकॉर्ड। देखिए ATP या WTA में होता क्या है, आप वर्ल्ड नंबर वन हैं तो कितने हफ्तों तक आप वर्ल्ड नंबर वन है। ATP या WTA के जरिए हमें पता चलता है कि हु इज़ वर्ल्ड नंबर वन, लेकिन एक होता है कि सक्सेसिव वीक्स तक, हफ्तों तक, मुसलसल हफ्तों तक ये वर्ल्ड नंबर वन है। कोई होता है कि 2 हफ्ते के लिए वर्ल्ड नंबर वन,

था थी और वो नीचे चला गया। लेकिन यहाँ पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसके बारे में बताऊंगा और उस खिलाड़ी के बारे में बताऊंगा। शी इज वाइडली पॉपुलर स्टिल टुडे एंड लोग विमेन टेनिस की जब भी बात करते हैं स्टेफी क्राफ के बारे में जरूर जिक्र करते हैं। 377 यानी 377 हफ्ते तक वर्ल्ड नंबर वन, तो मोर देन अ ईयर, अगस्त 1987 से मार्च 1997 तक। सच अ डोमिनेंस बाय जर्मन प्लेयर स्टेफी क्राफ, दुनिया के नंबर वन टेनिस खिलाड़ी के तौर पर गुजरे और जो टेनिस की तारीख में किसी भी मर्द या खातून खिलाड़ी के लिए सबसे ज्यादा है। यह रिकॉर्ड आज भी कायम है और उनकी बेमिसाल कामयाबी की निशानी माना जाता है। Now let's move on to basketball, और बास्केटबॉल का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आप लोगों से शेयर करता हूँ एंड दैट रिकॉर्ड बिलोंग्स टू करीम अब्दुल जब्बार। करीम अब्दुल जब्बार एक लेजेंडरी बास्केटबॉल प्लेयर है इन द वर्ल्ड ऑफ बास्केटबॉल। उनका एक रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड क्या है, 38,387 पॉइंट्स इन NBA, और ये रिकॉर्ड कायम किया गया था 5 अप्रैल 1984 को। करीम अब्दुल जब्बार ने 1984 में NBA के सबसे ज्यादा रन यानी पॉइंट्स बनाने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। उनके ये जो रिकॉर्ड है 38,387 करियर पॉइंट्स का रिकॉर्ड तकरीबन 39 साल तक कायम रहा और बास्केटबॉल की तारीख का अजीम तरीन रिकॉर्ड में शुमार किया जाता है। करीम अब्दुल जब्बार इज वन ऑफ द फैबुलस यू नो बास्केटबॉल प्लेयर्स, जिनके बारे में माइकल जॉर्डन, जिनके बारे में यू नो लेब्रन जेम्स सब रेस्पेक्ट के साथ लेते हैं और कहते हैं कि ही वॉज अ लीडर, ही वॉज अ फैबुलस प्लेयर ऑन द बास्केटबॉल कोर्ट। तो चलिए दोस्तों अभी बढ़ते हैं मोटर स्पोर्ट्स में, और मोटर स्पोर्ट्स में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो है फॉर्मूला वन में। अच्छा, ये रिकॉर्ड जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप, सबसे ज्यादा फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल्स जीतने का रिकॉर्ड जो है वो माइकल शुमाकर के नाम है। दोस्तों माइकल शुमाकर कोई अनजान खिलाड़ी या स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है स्पोर्ट्स की दुनिया में। अगर मोटर ड्राइविंग या रेसिंग या यू नो स्पीड की बात करूँ तो माइकल शुमाकर फिलहाल अगर हम आज की बात करूँ इज लाइंग इन अ बेड इन हॉस्पिटल, और 12 साल पहले एक स्कीइंग करते हुए उनके साथ एक वाकया हुआ था हेड इंजरी की वजह से, तो आज भी वो हॉस्पिटल बेड पर है और इनके डिटेल्स हमें मालूम नहीं है। सो उनके फैमिली के सोर्सेज के मुताबिक इज़ रिकवरिंग नॉट रिकवरिंग वी रियली डोंट नो मच अबाउट इट। लेकिन माइकल शुमाकर के रिकॉर्ड्स के बारे में आज भी जितने मॉडर्न फार्मूला वन ड्राइवर्स हैं उसको रेस्पेक्ट के साथ लेते हैं। तो माइकल शुमाकर के नाम 7 फार्मूला वन टाइटल्स हैं, 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004। दैट वॉज अ टाइम एंड माइकल शुमाकर वॉज अ लीडिंग फार्मूला वन ड्राइवर। माइकल शुमाकर फार्मूला वन की तारीख के पहले ड्राइवर बने जिन्होंने 7 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, और ये रिकॉर्ड कई सालों तक तनहा उनके नाम रहा और आज भी फार्मूला वन की तारीख के सबसे बड़े रिकॉर्ड्स में शुमार होता है। अब बढ़ते हैं साइकिलिंग में, और उसमें भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को शेयर करूंगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ओलंपिक साइकिलिंग में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड है यू नो ये रिकॉर्ड हुआ था 6 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने का सन 2000 से 2012 तक ओलंपिक ट्रैक साइकिलिंग में। और ये नाम जिनका नाम मैं लूँगा वो है क्रिस हॉय। क्रिस हॉय ने 6 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतकर साइकिलिंग की दुनिया में अपना नाम तारीख में दर्ज करवा दिया। वो ओलंपिक साइकिलिंग के सबसे कामयाब खिलाड़ियों में शुमार किए जाते हैं और उनका रिकॉर्ड आज भी बहुत नुमाया मकाम रखता है। लेट्स मूव ऑन टू वेटलिफ्टिंग, और अपने जिस्म के वजन से 3 गुना ज्यादा वजन उठाने वाले पहले वेटलिफ्टर। अब थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, आपका बॉडी वेट अगर 45 है या 50 या 70 है, आप उसका 3 गुना वजन उठा लेंगे? नहीं ले सकते। लेकिन एक साहब थे जिन्होंने किया था, जिनका नाम टाइटल नेम अगर बोलूं निक नेम बोलूं पॉकेट हर्क्यूलिस, छोटा लेकिन बड़ा, नाइम सुलेमान अगलू तुर्की के यू नो मशहूर एक वेटलिफ्टर थे और उनके नाम आज भी लोग बड़े रेस्पेक्ट से लेते हैं, इज्जत से लेते हैं। वेटलिफ्टिंग की तारीख के पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने अपने जिस्म के वजन से 3 गुना से भी ज्यादा वजन उठाया, और ये कामयाबी आज भी वेटलिफ्टिंग की दुनिया के अजीम तरीन रिकॉर्ड्स में शुमार होती है। 60 किलो बॉडी वेट पर 190 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क, इसका मतलब है 60 किलोग्राम उनका वजन था तो उन्होंने मोर देन 3 अगर देखा जाए 190 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क, और ये 1988 में एस्टैब्लिश किया गया था। मूविंग ऑन टू द थर्ड सेगमेंट, और इसमें स्टेडियम के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। यहाँ आज वही स्टेडियम खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम, कतर का वन ऑफ द आइकॉनिक स्टेडियम, और इस स्टेडियम में सबसे तेज

0: is re-turfing, yani nayi ghas bichhane ka ek world record. 7800 se zyada square meter turf sirf 13 ghante 30 minute mein bichhaya gaya tha aur saal tha 2017 yani world cup se qabl yani world cup 2022 mein hua tha to 5 saal pehle when khalifa international stadium went under renovation. ठीक है ये वो स्टेडियम है जिसको तोड़ा नहीं गया था बल्कि रिनोवेट किया गया था एज आई सेड इन द लास्ट एपिसोड आल्सो कि खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम एक आइकॉनिक स्टेडियम है कतर के लिए ये स्टेडियम जब वर्ल्ड कप के लिए चुना गया था तो इसमें घास भी थोड़ा सा यू नो यू हैव टू चेंज द टर्फ आल्सो तो ये सिर्फ 13 घंटे 30 मिनट में ये बिछाया गया था 7800 से ज़्यादा स्क्वायर मीटर टर्फ सोचिए और Aspire Zone Foundation और Supreme Committee for Delivery and Legacy ने खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में सिर्फ 13.5 घंटों में नई घास बिछाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था और इसी तरह खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम ने पहले का जो रिकॉर्ड था 18 घंटों वाला रिकॉर्ड उसको भी तोड़ दिया था तो दोस्तों आज के स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने जाना कि किस तरह रिकी पॉन्टिंग ने ऑस्ट्रेलिया को 2003 और 2007 के ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जितवाकर क्रिकेट हिस्ट्री में अपना नाम हमेशा के लिए लिखवा दिया लेकिन ये रिकॉर्ड सिर्फ नंबर्स का नहीं ये लीडरशिप कॉन्फिडेंस और एक्सेलेंस का रिकॉर्ड है हमेशा याद रखिएगा कि रिकॉर्ड्स जस्ट इज नॉट इजी रिकॉर्ड्स के पीछे बहुत सैक्रिफाइस की ज़रूरत होती है एंड हमें पता भी नहीं चलता है मैं हूं आपका होस्ट मेज़बान मोहम्मद अमीन अगली किस्त में हम किसी और अजीम स्पोर्ट्स रिकॉर्ड के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए मुझे और साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी को दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज
1: स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 44

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: वेलकम वेलकम वेलकम एफएम 107 सुन रहे हैं आप। इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हो रहे दोपहर के डेढ़, यानी इट्स टाइम फॉर
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
2: यस माय देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है। हाँ जनाब, तो आज एस्केप रूम बड़ा ही खासम खास होने वाला है। सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल, जो कि हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और पूरा एक घंटा आप और मैं साथ रहने वाले हैं, जहां पर एक बड़ी ही मज़े की सिचुएशन होगी। आप वहां फंस जाएंगे, तीन क्लूज होंगे जो कि पजल्स या रिडल्स के जरिए होंगे और आपको उन्हें सॉल्व करके उनके जवाब देते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि यहां जो फंस गया समझो फिर फंस गया फिर कुछ नहीं हो सकता। वैसे कल मैंने एस्केप रूम पर जाने से पहले आपको कहा था कि अगर आपको किताबों से बड़ी मोहब्बत है तो क्यों नहीं मैं आपको किसी लाइब्रेरी में कैद कर दूं। तो हमें काफ़ी सारे मैसेजेस आए, लोगों ने कहा कि हाँ वी रियली वुड लाइक टू, बताओ बताओ कहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर। ठीक है ठीक है, मैं बताती हूँ, कुछ ही देर में बताऊँगी कि आज बड़ी ही ब्यूटीफुल सी लाइब्रेरी में आप कैद होने वाले हैं। और अगर आप यहाँ से बाहर नहीं निकले तो फिर ये लाइब्रेरी के साथ ही आप उन कहानियों का, उन किताबों का हिस्सा बन के रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है हमको, लाइब्रेरी में कैद होना है, वहाँ से बाहर निकलना है और दुनिया को बताना है कि हमने आज एस्केप रूम से एस्केप किया। तो क्या बोलती पब्लिक, आर यू रेडी? अगर आप रेडी हैं तो सिंपली 666-22-107 666-22-107 इस पर सीधा मैसेज करें और बताएं कि यस अमिता वी आर रेडी फॉर द चैलेंज एंड लेट्स सी कि आप में से कितने लोग आज एस्केप रूम से बाहर निकल पाते हैं।
4: कलंदर मस्त कलंदर,
2: एंड इट्स अ ट्रेडिशन कि हमारे शो पर म्यूजिक ना हो तो कोई बात नहीं है, है ना, म्यूजिक तो होना ही होना है। तो अपनी एनर्जी को बूस्ट कीजिए, थोड़ा लूजन अप होइए क्योंकि आगे सिचुएशन आने वाली है। डोंट गो एनीवेयर, बने रहिए एफएम 107 पर दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
2: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
3: द रिक्वेस्ट शो
2: हर शाम 4 से 5 फजील के साथ,
3: फजील के साथ
2: संडे से थर्सडे, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी,
3: दिल से देसी।
4: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको।
5: टॉप 10 काउंटडाउन।
4: सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके फेवरेट ट्रैक्स एक ही जगह पर।

हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: वेलकम वेलकम वेलकम एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। हाँ तो आप तैयार हैं, जैसे ही आप ये धुन सुनते हैं कि आपका दिमाग इस फील्ड में आ जाता है कि ओह आज हम कहाँ फंसने वाले हैं। एग्जैक्टली आज जिस जगह हम फंसने वाले हैं वो सारे बुक लवर्स की फेवरेट जगह है, और वो जगह है लंदन के बीचों बीच एक खूबसूरत सी पुरानी विक्टोरियन लाइब्रेरी। यस, हम यहाँ पर घूमने फिरने के लिए नहीं जा रहे बाय द वे, मैं अभी बता दूँ, ठीक है। आप इस लाइब्रेरी के अंदर गए, लाइब्रेरी बहुत सुंदर है, थोड़ी पुरानी है पर बड़ी ही खूबसूरत आर्टिस्टिक चीज़ें आपको आसपास दिख रही हैं और किताबें ही किताबें। लेकिन आप ज़रा और अंदर जैसे ही जाते हैं तब यस द डोर क्लोजेस फॉरएवर। हाँ अभी दरवाज़ा बंद हो चुका है और आपकी जो दिल की धड़कने हैं, जाहिर सी बात है धड़कने बढ़ गई हैं। अब आपको लग रहा है उफ, क्या करें कहाँ फंस गए, और फिर एकदम से लाइब्रेरी के अंदर तेज हवा का झोंका आया और ये हवा काफ़ी ठंडी है, हाँ एसी से भी ज़्यादा ठंडी, टोटली चिलिंग। ओहो आपको थोड़ी सी कपकपी महसूस हुई, फिर आपने अपने आप को होल्ड किया कि ओके हम यहाँ फंस चुके हैं। एस्केप रूम की आज सिचुएशन है कि लंदन के बीचों बीच एक पुरानी विक्टोरियन लाइब्रेरी के अंदर आप फंस चुके हैं, आप कैद हो चुके हैं और यहाँ आप घूमने फिरने के लिए नहीं गए लेकिन आप किताबें ढूंढने गए थे, बट देन वो हमारी किस्मत थी कि हम फंस गए। अब आपको यहाँ से निकलने के लिए क्या करना है, लाइब्रेरियन का लॉस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट ढूंढना है। जी हाँ, अगर आप वो नहीं ढूंढ पाए तो यहीं इन किताबों की कहानियों का हिस्सा बन के रह जाने वाले हैं। डू यू वॉन्ट दैट? आई डोंट थिंक कि आपको ऐसा करना पसंद होगा। वैसे आपके पीछे जो दरवाज़ा बंद हुआ है वो बड़ा ही भारी भरकम एक लकड़ी का दरवाज़ा है जो कि लॉक्ड है एक लेटर कोड से। अब आइए लेटर कोड खुद ब खुद सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेगा, अपने आप ही दरवाज़ा खुलेगा अगर आपने पहले क्लू को सॉल्व किया। थोड़ा आगे बढ़िए, आप उस कमरे में हैं लाइब्रेरी के बड़े से कमरे में, आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको टेबल पर एक कागज मिलेगा। देखिए उस कागज पर क्या लिखा है, योर क्लू नंबर वन इज देयर। सो अब ध्यान से सुने, मेरे पास ढेरों लीव्स हैं, ठीक है, लीव्स यानी पत्ते, मेरे पास ढेरों लीव्स हैं पर मैं पेड़ नहीं हूं, आई एम नॉट अ ट्री, मेरी स्पाइन तो है पर हड्डी एक भी नहीं, ओके, हजारों कहानियां सुनाती हूं पर एक वर्ड नहीं बोलती, हजारों कहानियां सुनाती हूं पर एक शब्द नहीं बोलती, मैं क्या हूं? एक बार फिर से सुनिए, मेरे पास ढेरों लीव्स हैं पर मैं ट्री नहीं, पेड़ नहीं, मेरी स्पाइन तो है पर हड्डी एक भी नहीं, हजारों कहानियां सुनाती हूं पर एक शब्द नहीं बोलती, मैं क्या हूं? सोचिए, कम ऑन, दिस इज योर फर्स्ट क्लू, आपको ये सॉल्व करके इस पहले दरवाजे को खोल के बाहर निकलना है एंड आपको एग्जिट ढूंढना ही ढूंढना है, वरना आप हमेशा के लिए इस पुरानी विक्टोरियन लाइब्रेरी की कहानियों का हिस्सा बन जाएंगे। कम ऑन, और आपको प्रूव करना है कि आप हर एक सिचुएशन को एस्केप कर सकते हो। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या क्लू दिया है मैंने? जवाब हमें आने शुरू हो चुके हैं, हमारे लिसनर्स नॉन स्टॉप मैसेजेस कर रहे हैं, सब ने अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना शुरू कर दिया, एंड एवरीबडी इज थिंकिंग इन ऑल द डायरेक्शन। मैं देख सकती हूँ हर

किसी के अपने इमेजिनेशंस हैं. ध्यान से सुने क्लू नंबर वन. वंस अगेन, मेरे पास ढेरों लीव्स हैं पर मैं पेड़ नहीं. मेरी स्पाइन तो है पर हड्डी एक भी नहीं. हजारों कहानियां सुनाती हूं पर एक वर्ड, एक शब्द नहीं बोलती. मैं क्या हूं? सोचिए, आपका सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है. और जब तक आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस क्लू का जवाब क्या है, थोड़ा म्यूजिकल ब्रेक भी देती हूँ मैं आपको, ठीक है? स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: यस माय देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है? वेल आई नो हाल चाल बिल्कुल मजे में होंगे, बट आई एम वेरी सर्टेन क्योंकि आप एस्केप रूम में अपनी ए फॉर अमिता के साथ हैं तो दिमाग बहुत तेजी से दौड़ रहा होगा। एंड डेफिनेटली आज की सिचुएशन बड़ी खूबसूरत भी है और उतनी ही डरावनी भी। आज हम एक लंदन की घोस्टली विक्टोरियन लाइब्रेरी में कैद हो चुके हैं। यस, और यहाँ पर हम अकेले हैं बाय द वे, ठीक है, कोई और नहीं है। हम बस बड़ी खुशी से अंदर गए, दरवाज़ा हमारे मुंह पे बंद हो गया और फिर हमें लगा कि अरे बाप रे बाप, अब कैसे बाहर निकलें। थोड़ी सी एकदम चिलिंग हवाएं चली, एकदम हमारी रूह कांप गई, अब क्या करें। बट यस, यहाँ सिर्फ एक चीज़ है जो हमारा साथ देगी और वो है हमारा दिमाग। और दिमाग लगाते लगाते हमें एक एक क्लूज को सॉल्व करना है। पहला दरवाज़ा खोलना पड़ेगा हमको, तभी हम अंदर जाएंगे, फिर दूसरा दरवाज़ा, फिर तीसरा दरवाज़ा, एंड देन फाइनली हम उस लाइब्रेरी से बाहर निकल पाएंगे। भाई लंदन पहुंचे तो थोड़ा बहुत घूमना फिरना भी तो बनता है कि नहीं? चले आए। क्लू नंबर वन मैंने आपको दिया कि मेरे पास ढेरों लीव्स हैं पर मैं पेड़ नहीं, ठीक है, मेरे पास ढेरों लीव्स हैं पर मैं पेड़ नहीं, मेरी स्पाइन है पर हड्डी एक भी नहीं, हजारों कहानियां सुनाती हूं पर एक वर्ड नहीं बोलती, एक शब्द नहीं बोलती, मैं क्या हूं? कम ऑन, क्या जवाब हो सकता है? हमारे लिसनर्स ने पूरा ध्यान अपना लगाया और रिजवान, आफताब, सबीना, अरशद, मोहम्मद यूसुफ खान, मिस्टर खान, फातिमा यूसुफ, और यहाँ पर इनका नाम क्या है, मोहम्मद अरफतुल भाई। देखिए, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप जवाब के साथ अपना नाम ज़रूर लिखा करें तो बहुत आसानी हो जाती है। देन मोहम्मद आरिफ हमारे साथ हैं, राशिद का भी मैसेज आया है, अभी भी हमारे साथ कुछ लिसनर्स जुड़ते जा रहे हैं। एक ने तो हमारी पज़ल को ही कॉपी पेस्ट करके हमें भेज दिया एंड देन जवाब भी दे दिया, चलो ग्रेट। लेकिन इनके प्रोफाइल में यहाँ का नंबर नहीं है, इनकी प्रोफाइल में इंडिया का नंबर है और ए करके लिखा हुआ है। देखिए, नाम लिखेंगे तो हमें नाम लेने में भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर एक और शख्सियत है जिन्होंने जवाब दिया है, इमरान। ओके, इमरान का भी सही जवाब है। अरफात, ओके, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। ऑलराइट, हमारे सारे लिसनर्स जिन्होंने एकदम सही जवाब दिया है, उसके बाद भी अलग अलग तरह के जवाब आ रहे हैं, बट द राइट आंसर इज बुक। सोचिए, बुक कैसे हो सकती है? मेरे पास ढेरों लीव्स हैं, ढेरों पन्ने हैं, मेरी स्पाइन है, समझ गए हो ना, बुक कैसी होती है? एंड देन हजारों कहानियां हमको सुनाती है। तो जिन्होंने भी किताब बुक कहा है, जोरदार तालियां उन सब के लिए। वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया आप सबने, प्रूव कर दिया आप बहुत होशियार हैं। और आपको कोई भी सिचुएशन दे दी जाए, आप हर क्लू सॉल्व कर लोगे। तो फाइनली जैसे ही आपने बुक कहा, पहला दरवाजा खुल गया। उफ, एक गहरी लंबी सांस आपने ली। अब आप उस दरवाजे के अंदर गुजरे तो बड़ी ही खूबसूरत, अट्रैक्टिव बुक्स आपको दिखाई दे रही हैं चारों तरफ। और हर कमरे में बाय द वे टेबल है। हाँ, अब टेबल पर एक लाल रंग की किताब रखी है। आप गए क्योंकि अपने आप ही आपका दिल किया कि उस किताब को अपने हाथों में ले लें। और जैसे ही आपने उस किताब को हाथ में लिया और आपने इधर उधर उसको पलटाने की कोशिश की, तो उसके अंदर से एक चांदी का कलम वो आपके हाथ में आया। अब ये कलम क्यों आया आपके हाथ में? यहीं पर आपको सेकेंड क्लू मिलेगा। फिर आपने किताबों के पन्ने पलटाने शुरू किए एंड देयर यू गो, आपको आपका सेकेंड क्लू मिल गया। ध्यान से सुने, मेरा रंग रात से भी गहरा है, ठीक है, मेरा रंग रात से भी गहरा है और मुझसे ही सारी हिस्ट्री लिखी गई है। गाइस, ध्यान से सुने, आपके हाथ में कलम है एंड द नेक्स्ट क्लू, कुछ तो रिलेशन होगा। मेरा रंग रात से भी गहरा है और मुझसे ही सारी हिस्ट्री लिखी गई है। मैं एक कांच के कुएं के अंदर रहती हूँ पर वहाँ पानी का एक कतरा भी नहीं है, बताओ मैं क्या हूँ? Come on, ये तो मुझे लगता है कि बहुत ईजी है कि नहीं? फिर से सोचें, आप गए दूसरे कमरे में, इस लाइब्रेरी के जहाँ पर आप कैद हो चुके हैं और आपने एक लाल रंग की किताब को हाथ में लिया और जब आपने उसको पलटाया, एकदम से इधर उधर किया, हिलाया डुलाया, तो आपके हाथ में एक चांदी का कलम आया एंड देन किताब के पन्नों के बीच आपको ये क्लू नंबर 2 मिला कि मेरा रंग रात से भी गहरा है और मुझसे ही सारी हिस्ट्री लिखी गई है। मैं कांच के वेल के अंदर रहती हूँ पर वहाँ पानी नहीं, बिल्कुल भी पानी का एक कतरा नहीं, बताओ मैं क्या हूँ। कम ऑन गाइस, ये दूसरा दरवाज़ा खोलने के लिए आपको इस दूसरे क्लू को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं, जवाब लिखें अपने नाम के साथ, भेजिए 666-22-107 पर, 666-22-107 पर। हाँ भाई, टिकी टिकी मैं कहूँगी भाई, टिकटॉक हमारी क्लॉक भाग रही है, गिव दी आंसर, बने रहिए FM 107 पर, दिल से देश।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: एस्केप रूम का सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे टाइम हुआ है दोपहर के 2:03।
4: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से दी।
3: सो यस, कैसे हैं आप सब? तो हमारे सारे कतर की जनता जो इस वक्त हमें सुन रही है पूरी तरह से हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। एस्केप रूम शो चल रहा है, मैं हूँ आपकी ए फरमीता और हम काफ़ी सीरियस इसलिए साउंड कर रहे हैं बिकॉज इस वक्त हम लंदन की एक विक्टोरियन लाइब्रेरी के अंदर फंस चुके हैं। यस, हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए 3 दरवाज़ों को पार करना होगा, ठीक है, और यहाँ के जो लाइब्रेरियन है उनकी ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट को ढूंढना होगा, ठीक है। तो लास्ट दरवाजे के पास हमको आई एम वेरी श्योर वहाँ मिल जाएगी। पहला दरवाज़ा हमने खोला और मैंने आपको क्लू दिया था, क्लू का जवाब था बुक। दूसरा क्लू मैंने आपको दिया कि मेरा रंग रात से भी गहरा है और मुझसे ही सारी हिस्ट्री लिखी गई है। मैं एक कांच के वेल के अंदर रहती हूँ पर वहाँ पानी का एक कतरा भी नहीं है। बताओ मैं क्या हूँ? काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है और हमें काफ़ी जो हमारे लिसनर्स हैं वो मैसेजेस कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों ने पेन लिखा है, किसी ने डॉट पेन लिखा है, किसी ने इंक पेन लिखा है, पेन्स की यू नो वैरायटी भी उन्होंने दे दी। ओके, पर कुछ लोगों ने लिखा है इंक स्याही। क्या लगता है आपको ये सही जवाब है? जिन्होंने भी लिखा है इंक और स्याही, मैं कहना चाहूंगी इट्स कंप्लीटली अ राइट आंसर। जोरदार तालियां आप सभी के लिए। आइए देखें किन्होंने ये सही जवाब दिया है, ठीक है। सबसे पहले सही जवाब दिया है सबीना, अरशद, आफ्ताब, रिजवान, अकबर। क्या बात है अकबर भाई, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद ने सही जवाब दिया है, मोहम्मद यूसुफ खान ने सही जवाब दिया है, फातिमा यूसुफ ने सही जवाब दिया है। कुछ लोग नाम नहीं लिख पा रहे हैं, भाई नाम ज़रूर लिखा करें। मोहम्मद मुशीर आलम ने भी सही जवाब दे दिया है, जसविंदर सिंह ने सही जवाब दिया है, खादिर अब्दुल हादी, अहमद मुस्तफ़ा है फ्रॉम हैदराबाद एंड मोहम्मद आरिफ, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, यस मोहम्मद आरिफ, इन्होंने भी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया है। कंग्रेचुलेशंस। और जैसे ही आपने सही जवाब दिया दूसरा दरवाजा आपके लिए खुल चुका है। वाह, बेहद खूबसूरत लाइब्रेरी, लेकिन अफसोस आप यहाँ किताबें नहीं पढ़ सकते क्योंकि यहाँ आपका दिल जोरों से धड़क रहा है, आपको जान बचा के यहाँ से बाहर निकलना है। यस, तो अब क्या किया जाए? आप चल रहे हैं और चलते चलते आप आखिरी दरवाजे के पास पहुँच तो गए हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी मूर्ति है, यू कैन स्टैचू है, और वो स्टैचू उसके सामने साफ लिखा है क्लू नंबर 3,

ले अब ध्यान से सुने, मैं डियर स्लेयर टोपी पहनता हूँ। ये कौन है जो डियर स्लेयर टोपी पहनता है? बहुत बड़ी हैट है, ओके? एक मशहूर जासूस हूँ, मतलब डिटेक्टिव, मशहूर जासूस हूँ और मेरा नाम एस से शुरू होता है। मेरा पता 221B बेकर स्ट्रीट है। बताइए मैं कौन हूँ? वैसे आई एम वेरी श्योर इस जासूस की, इस डिटेक्टिव की कहानियाँ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इनफैक्ट हमारे स्कूल में तो एक लेसन भी था इससे रिलेटेड। अब आप मुझे बताएं, ऐसा कौन सा डिटेक्टिव है जिसका नाम हम हमेशा ले लेते हैं अपनी ज़ुबान से? यूँ चुटकियों में हमें पता होता है कि हाँ भाई, अगर हमको कुछ ढूंढना है, पता करना है, तो यू हैव टू एक्ट लाइक दिस डिटेक्टिव। कौन सा वो डिटेक्टिव है? कहानियों में अक्सर आता है, OTT प्लेटफॉर्म्स पर इससे रिलेटेड सीरीज है, मूवीज है। कम ऑन, इससे ज़्यादा क्लू मैं आपको क्या दूँ? पहचानिए, आपके सामने एक स्टैचू है जिसके नीचे लिखा है कि मैं डियर स्लेयर टोपी पहनता हूँ और एक मशहूर जासूस हूँ। मेरा नाम एस से शुरू होता है और मेरा पता 221B बेकर स्ट्रीट है। बताएं मेरा नाम क्या है? आखिरी मौका है इस आखिरी दरवाजे को खोलने का, वरना हम लंदन की गलियों में जा ही नहीं पाएंगे, इस कोने में फंस कर ही रह जाएंगे। व्हाट डू यू वॉन्ट? आज हम बाहर गए हैं, कतर से बाहर घूमने गए हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत घूमना तो बनता है, लेकिन कैद नहीं हो सकते, हमें निकलना है इस लाइब्रेरी से बाहर। ये क्लू आपके लिए, मैं डियर स्लेयर टोपी पहनता हूँ और एक मशहूर जासूस हूँ। मेरा नाम एस से शुरू होता है और मेरा पता 221B बेकर स्ट्रीट है। गिव मी द आंसर, जवाब लिखें अपने नाम के साथ, भेजें 666-22107 पर, इज द नंबर 666-22107। और अभी क्या करेंगे? लंबी गहरी सांस लीजिए क्योंकि आपको जवाब ढूंढना है। दिलजीत दोसांझ इज हियर, एंजॉय।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देखो.
1: वेलकम वेलकम वेलकम एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता. क्या खूबसूरत गाने अभी हमने एंजॉय किया. आई एम वेरी सर्टेन कि आपका म्यूजिक रिलैक्स हो गया होगा. आई मीन माइंड रिलैक्स हो गया होगा म्यूजिक सुन के. बट क्या आपके दिमाग में जो म्यूजिक चल रहा है, डू यू थिंक कि आप इस गिवन सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं? कुछ लिसनर्स हमें अभी मैसेज कर रहे हैं, अमिता वी जस्ट जॉइंड यू, कैन यू प्लीज टेल अस कि आप क्या बता रहे हो. ओके फाइन. एस्केप रूम में आप कह दें, ये तो आपको पता ही होगा, इट्स अ शो एस्केप रूम. दोपहर 1:30 बजे से शुरू हो जाता है, 2:30 बजे तक चलता है. एंड यहाँ पर एक सिचुएशन होती है और आज की सिचुएशन, हम लंदन की एक विक्टोरियन लाइब्रेरी के अंदर कैद हो गए. ठीक है, पहला क्लू हमने जब आपको दिया, 3 दरवाजे आपको खोलने हैं बाहर निकलने के लिए, मतलब तीसरा दरवाज़ा विल बी द लास्ट एग्जिट. पहला क्लू आपने सॉल्व किया एंड जवाब था उसका बुक. काफ़ी हमारे लिसनर्स बहुत होशियार हैं, उन्होंने फटाफट जवाब दिया, हाँ भाई देखो ये दिस इज़ द राइट आंसर. सेकेंड जो क्लू मैंने आपको दिया, आपने सॉल्व किया एंड उसका जवाब था इंक यानी स्याही. वेरी गुड. और आप एकदम लास्ट डोर के सामने हैं. अब एक अड़चन है कि सामने एक स्टैचू है, ठीक है, और ये उस ज़माने के मशहूर डिटेक्टिव का स्टैचू है. अब आपको डिटेक्टिव का नाम पहचानना है, बिकॉज जैसे ही आप नाम बोलोगे ना तभी ये दरवाज़ा खुलेगा. और ये जो लाइब्रेरियन की ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट बोला था ना कि जो घूम चुकी है आपको ढूंढनी है, वो आपको खुद ब खुद टेबल के सामने मिल जाएगी, लेकिन नाम पहचानना ज़रूरी है. तो अभी देखो मुझे कुछ हमारे लिसनर्स मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, आप भी पार्टिसिपेट करें एंड लिसन टू द थर्ड क्लू, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि कोई भी इस पुरानी लाइब्रेरी के अंदर कैद ना हो. इट्स अ घोस्टली लाइब्रेरी एंड आप लंदन तक गए हैं तो थोड़ा बाहर शहर घूमना भी बनता है कि नहीं. चले well, आपके लिए क्लू है कि मैं डियर स्लेयर टोपी पहनता हूँ, डियर स्लेयर टोपी पहनता हूँ और एक मशहूर जासूस हूँ. मेरा नाम एस से शुरू होता है और मेरा पता 221B बेकर स्ट्रीट है. बताइए मैं कौन हूँ. कम ऑन गाइस, यू कैन डू इट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. बहुत आसान है. हमने इस डिटेक्टिव, इस जासूस

तू उसकी कहानियां न जाने कितने बार सुनी है. कम ऑन, क्या क्या वो शख्स है, सॉरी कौन है वो शख्स, कौन है जिनका नाम एस से शुरू होता है, वो मशहूर डिटेक्टिव. कम ऑन, गिव मी द आंसर. यहाँ पर कुछ हमारे लिसनर्स इंडियन डिटेक्टिव्स के नाम दे रहे हैं. नहीं, ये विदेशी है, ठीक है, ये लंदन के हैं. सोचे जरा कौन है. 666-22-107 पर आप अपने जवाब के साथ अपना नाम जल्द से जल्द हमें भेजिए. और अभी गुरु रंधावा कह रहे हैं कि भाई देखो मैं आ गया हूँ आपका मूड फ्रेश करने के लिए, क्योंकि ये आखिरी मौका है. अगर आपने जवाब नहीं दिया तो लाइब्रेरी के अंदर ही रह जाओगे. ठीक है, स्टेडियम टू FM 107, दिल से देसी. शॉर्ट ब्रेक के बाद हम मिलते हैं.

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360, कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
2: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: यस माय देसी ऑडियंस, क्या हालचाल है। वेलकम वेलकम वेलकम, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। एफएम 107 सुन रहे हैं आप। बिल्कुल आखिरी मुकाम पर एस्केप रूम पहुंच चुका है और यहाँ की सिचुएशन आज बड़ी कमाल की थी कि हम लंदन की एक पुरानी लाइब्रेरी में, विक्टोरियन लाइब्रेरी के अंदर कैद हो गए थे। बाहर निकलने के लिए 3 दरवाजों को हमें फेस करना है, यानी कि हमें 3 दरवाजे खोलने हैं क्लूज सॉल्व करके। पहले क्लू का जवाब बुक था, दूसरे क्लू का जवाब इंक था और तीसरा क्लू मैंने आपको दिया कि मैं डियर स्लेयर टोपी पहनता हूँ और एक मशहूर जासूस हूँ। मेरा नाम एस से शुरू होता है और मेरा पता 221B बेकर स्ट्रीट है। मेरा नाम क्या है? कम ऑन, यू हैव टू टेल द नेम, क्योंकि जैसे ही आप नाम बोलेंगे, अपनी जुबान पर लाएंगे, तो अपने आप ही ये जो आखिरी दरवाज़ा है ये खुल जाएगा। इस लाइब्रेरियन की ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट सामने आ जाएगी। एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड। ठीक है, तो आइए देखें किन्होंने हमें सही जवाब दिए हैं। पहले हम उनके नाम लेते हैं, फिर सही जवाब बताएंगे। तो यहाँ पर जैद, अरशद, सबीना, आफ्ताब, रिजवान, ये हमारे साथ नॉनस्टॉप बने हुए थे और मोहम्मद यूसुफ खान ने भी हमें सही जवाब दिया है, राशिद ने भी सही जवाब दिया है। मिस्टर ए हैं इनकी प्रोफाइल में, नाम मिस्टर हैं या मिस हैं, इन्होंने ये लिखा नहीं है, तो प्लीज़ मैं कंसिडर कर रही हूँ, अपना नाम ज़रूर लिखा करें। फ़ातिमा यूसुफ भी हमारे साथ जुड़ी, इन्होंने भी जवाब दिया है। मिस्टर खान, आदित्य, उन्होंने भी सही जवाब दिया, दैट्स वेरी नाइस। यहाँ पर अदनान नईम भी हैं, उन्होंने भी सही जवाब दिया है। किसने लिखा है? आई थिंक ओके, इनका नाम है अरफात, मोहम्मद आरिफ, एंड अभी भी हमारे लिसनर्स नॉनस्टॉप मैसेजेस करते जा रहे हैं। मोहम्मद काजिम ने भी हमें मैसेज किया है और जवाब बिल्कुल सही है। सो व्हाट्स द राइट आंसर? द राइट आंसर इज़ द फेमस डिटेक्टिव, और वो फेमस डिटेक्टिव, उनका नाम है शर्लॉक होम्स। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आय हाय हाय, आय हाय हाय, कमाल कर दिया आप सभी ने। बिल्कुल अपने दिमाग को तेजी से दौड़ाकर हर एक क्लू को सॉल्व किया, और इस क्लू को सॉल्व करने से एक चीज़ अच्छी हुई ना, अब हम बाहर लंदन की थोड़ी ताज़ी हवा में सांस ले सकते हैं, घूम सकते हैं। शर्लॉक होम्स बोलते ही आखिरी दरवाज़ा खुल गया और आप उस विक्टोरियन लाइब्रेरी से बाहर आ चुके हैं। हाँ, तो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आज एस्केप रूम के इस कमाल की सिचुएशन में फंसकर एंड देन बाहर आकर चैन की, सुकून की सांस लेकर। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई एम वेरी सर्टेन कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, है कि नहीं। चलिए इसी बात पे आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब पूरा एक घंटा लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और इस पूरी सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश की, एस्केप रूम में अपने दिमाग का अच्छा एक्सरसाइज करा लिया आपने। लेकिन अभी विनर तो कोई एक ही होगा जिन्होंने लगातार नॉन स्टॉप जल्द से जल्द हमें सही जवाब दिया।

तो वो लकी विनर उनका नाम क्या है? आइए बताते हैं उनका नाम, और उनका नाम है मोहम्मद आरिफ अंसारी। क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस, मुबारका। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार अब हमारे साथ बने रहे, सही जवाब पे सही जवाब, और वो भी जल्द से जल्द आपने दिया। हाँ, सो बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी बेस्ट विशेज हैं आपके लिए। और हमारे जो लिसनर्स नॉनस्टॉप हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे बिना किसी टेंशन के, और नॉनस्टॉप हमें जवाब देते रहे, भले ही लेट भी जवाब दिए, भले ही गलत ही जवाब दिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इसी तरह हमारा एस्केप रूम, यू नो, आपके लिए हर दिन एक नए सिचुएशंस लेकर आएगा, और एस्केप रूम की एक्चुअली जान और शान आप ही है, क्योंकि

एप्रोम अपनी एफर अमिता के साथ. और हाँ, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स FM 107 के, उससे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, रब्ता कायम कर सकते हैं और अपनी एफर अमिता को भी, अपनी आर्ज अमिता को ढूंढ सकते हैं सोशल मीडिया पे. और अभी जाते जाते मैं कहूँगी हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. Deep Money and Neha Bhasin. This song actually is my favorite too. Enjoy karein. Apni drive. Volume bada lijiye. Stay tuned to FM 107. Dil se desi.

वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मैं हूं आपकी होस्ट सफा, लेकर आई हूं एक और इंटरेस्टिंग और रिफ्रेशिंग सा सेगमेंट इको स्विच का, जहां हम बात करते हैं उन छोटी छोटी आदतों की जो हमारी लाइफस्टाइल को बेटर बनाती हैं और एनवायरमेंट को अच्छा और कनेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो भाई आज हम बात कर रहे हैं इंडोर प्लांट्स लगाने की। चलिए एक बहुत ही रिलेटेबल सीन के साथ शुरू करते हैं। आप एक बिजी दिन के बाद घर वापस आते हैं, बाहर की गर्मी, ट्रैफिक, शोर, सबसे थक हार कर आप सिर्फ सुकून चाहते हैं। आप रूम में एंटर करते हैं, लाइट्स ऑन होती हैं, एसी चल रहा होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी एक अजीब सी खाली सी फीलिंग होती है। अब जरा सोचिए, अगर उसी रूम में एक छोटा सा ग्रीन प्लांट हो आपकी टेबल पर, आपके शेल्फ पर या आपकी विंडो के पास, तो भाई एनवायरमेंट का फील कितना चेंज हो जाता है। मेरा तो होता है, आई एम अ प्लांट लवर। सिर्फ एक प्लांट रूम को और ज्यादा फ्रेश बना देता है। अब देखिए, समझने की कोशिश करते हैं कि इंडोर प्लांट्स सिर्फ डेकोरेशन नहीं होते, प्लांट्स नेचुरल एयर प्यूरिफायर होते हैं साथियों। ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसके अलावा कुछ इंडोर प्लांट्स हार्मफुल टॉक्सिन्स को भी रिड्यूस करने में मदद करते हैं, जो इंडोर एनवायरमेंट में कभी कभी होते हैं, प्रेजेंट होते हैं हमारी। इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई प्लांट्स आपके घर की हवा को नेचुरली क्लीन और फ्रेश बनाते हैं। अच्छा, अब एक इसके पीछे ना इको स्विच आइडिया बड़ा सिंपल है। अपने लिविंग स्पेस में प्लांट्स इंक्लूड करें ताकि एनवायरमेंट और मूड दोनों इंप्रूव हों। इंडोर प्लांट्स लगाना सिर्फ गार्डनिंग हॉबी नहीं है, बल्कि एक इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल चॉइस है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इंडोर प्लांट्स लगाने का फायदा क्या है आखिर। देखिए, सबसे पहला फायदा तो यही है कि भाई एयर क्वालिटी अच्छी होती है, इंप्रूव होती है। प्लांट्स ऑक्सीजन लेवल को इंप्रूव करते हैं और हवा को नेचुरली फिल्टर करते हैं। दूसरा फायदा है मेंटल वेलबींग। देखिए, ग्रीन एनवायरनमेंट स्ट्रेस कम करता है और माइंड को रिलैक्स फील कराता है। रिसर्च के मुताबिक ग्रीनरी देखने से मूड बेटर होता है और फोकस इंप्रूव होता है। तीसरा फायदा है ह्यूमिडिटी बैलेंस। भाई ह्यूमिडिटी बैलेंस, देखिए प्लांट्स रूम की ह्यूमिडिटी को नेचुरली रेगुलेट करते हैं, जो ड्राई एयर कंडीशंस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। चौथा फायदा है एस्थेटिक इंप्रूवमेंट। देखो भाई, सिंपल रूम भी प्लांट्स की वजह से वाइब्रेंट और लाइवली लगने लगता है, ये बात तो है। अच्छा, अब एक और रिलेटिव बात बताऊं। जरा सोचिए, आपके पास एक स्टडी टेबल है, बुक्स, लैपटॉप और बेसिक सेटअप है। अब उस टेबल पर एक छोटा सा प्लांट रख दें, आप नोटिस करेंगे कि आपका स्टडी एनवायरनमेंट सडनली ज्यादा काम और फोकस लगने लगेगा। या फिर लिविंग रूम में एक कॉर्नर, जहां पर एक एम्प्टी स्पेस होता है ना, अगर वहां एक मीडियम साइज का प्लांट जो है आप रख दें, तो भाई आपके पूरे पूरे रूम का बैलेंस जो है ना, वो बिल्कुल वेलकमिंग सा हो जाता है आपका रूम। देखिए, दोहा जैसे सिटी में जहाँ क्लाइमेट होता है बहुत ही ज्यादा हॉट और ड्राई, इंडोर प्लांट्स और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इंडोर एनवायरमेंट्स में एयर कंडीशनिंग का यूज ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ड्राइनेस भी फील होती है। प्लांट्स इस ड्राइनेस को बैलेंस रखने में हेल्प देते हैं। अच्छा, आप कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात की जाए तो भाई देखिए, इजी प्लांट से स्टार्ट करें, जैसे स्नेक प्लांट होता है, मनी प्लांट होता है, या एलोवेरा प्लांट जो होता है, ये लो मेंटेनेंस प्लांट्स होते हैं और बिगिनर्स के लिए परफेक्ट होते हैं। डायरेक्ट सनलाइट का ख्याल रखें, हर प्लांट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, इसीलिए प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज ये कि ओवर वाटरिंग अवॉइड करें, ज्यादा पानी देने से प्लांट्स डैमेज हो सकते हैं, इसीलिए मॉडरेट वाटरिंग करें। चौथी बात ये कि छोटे स्पेसेस से स्टार्ट करें ना, अगर आप बिगनर हैं तो पहले एक या दो प्लांट रखें, फिर ग्रेजुअली जब आप यूज्ड टू हो जाएं तो फिर आप और प्लांट्स ले सकते हैं। अच्छा हाँ, पांचवी चीज ये कि रूटीन केयर बनाएं, वीकली थोड़ा टाइम प्लांट्स को देखने में, क्लीन करने में, मेंटेन करने के लिए उनको टाइम दें। देखिए, इंडोर प्लांट सिर्फ एनवायरनमेंट ही नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी को भी इम्पैक्ट करते हैं। ऑफिसेज और स्टडी स्पेसेस में आप देखेंगे, ग्रीनरी ऐड करने से फोकस और क्रिएटिविटी आपकी ज्यादा बेहतर होती है। इसीलिए कई मॉडर्न वर्क प्लेसेस अब इंडोर प्लांट्स को अपना

0: डिजाइन का हिस्सा बना रही हैं। अच्छा, एक और रिलेटेबल बात बताऊं, कितनी बार ऐसा होता है कि घर या रूम बोरिंग फील होते हैं और हम सोचते हैं कि भाई नया फर्नीचर डेकोरेशन ले ली जाए, कुछ चेंज किया जाए, लेकिन कभी कभी सिर्फ एक छोटा सा प्लांट ही पूरे स्पेस को ट्रांसफॉर्म कर रख देता है विदाउट हैवी कॉस्टिंग और एफर्ट्स। जब आप इंडोर प्लांट्स अडॉप्ट करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली नेचर के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है, आप पानी देते हैं उन्हें, उनकी केयर करते हैं और उस ग्रोथ को ऑब्जर्व करना एक पॉजिटिव रूटीन बन जाता है। तो भाई आज का इको स्विच बहुत सिंपल है। आज का चैलेंज ये है कि आज या इस वीक में कम से कम एक इंडोर प्लांट तो चूज करें और अपने लिविंग स्पेस में उसे ऐड करें और उसे सिर्फ डेकोरेशन नहीं बल्कि डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। अगर आप ऑलरेडी प्लांट्स रखते हैं ना अपने पास तो उनकी केयर और प्लेसमेंट और ज्यादा इम्प्रूव करें। साथियों याद रखें कि नेचर को हम सिर्फ बाहर नहीं देखते बल्कि अपनी जिंदगी में इंक्लूड भी कर सकते हैं। इंडोर प्लांट्स हमें ये याद दिलाते हैं कि ग्रोथ, पेशेंस और केयर सिर्फ प्लांट्स के लिए नहीं बल्कि हमारी अपनी जिंदगी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटा सा प्लांट आपके घर को सिर्फ डेकोरेट नहीं करता बल्कि उसे ब्रीथ करता हुआ स्पेस देता है। तो भाई मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं नेक्स्ट इको स्विच के साथ, एक और सिंपल हैबिट, एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज हम बात करेंगे दूसरों की मदद के बारे में। दूसरों की मदद करना इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो असल में अल्लाह हमारी मदद करता है। मदद सिर्फ पैसे से नहीं होती, एक मुस्कुराहट, एक अच्छा मशवरा या किसी का काम आसान कर देना भी मदद है। सोचिए, अगर हर इंसान रोज सिर्फ एक छोटी सी मदद करे तो दुनिया कितनी बेहतर हो सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि जो इंसान दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा करता है। आज का अमल यह है कि जानबूझकर किसी एक शख्स की मदद करें, चाहे वो घर में हो, ऑफिस में हो या रास्ते में। ये छोटे अमल ही बड़ी बराका लेकर आते हैं। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। कल फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
2: One step to 2030.
3: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
2: One step to 2030.
3: आज मैं बात करने वाली हूँ कि सस्टेनेबल सिटीज और स्मार्ट अर्बन लिविंग के हवाले से। शहर जो इंसान और नेचर दोनों के लिए बेहतर हो। सस्टेनेबल सिटीज वो होती हैं जहाँ डेवलपमेंट के साथ एनवायरमेंट और लोगों की कन्वीनियंस का ख्याल रखा जाता है। ग्रीन स्पेसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स, ये सब इसका हिस्सा है। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादातर लोग शहरों में रहते हैं। अगर शहर बेहतर होंगे तो लोगों की हेल्थ, हैप्पीनेस और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसकी रेलेवेंस आज के दौर में बहुत ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन रैपिडली अर्बन एरियाज की तरफ मूव कर रही है। स्मार्ट प्लानिंग के बगैर शहर क्राउड और पोल्यूशन का शिकार हो सकते हैं। तो आपका हमारा रोल क्या है, हमें और आपको क्या करना है? देखिए, आपका हमारा रोल है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, क्लीन लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें और सिटी रूल्स को फॉलो करें। सस्टेनेबल सिटीज फ्यूचर की जरूरत है जहाँ तरक्की और जिंदगी दोनों बैलेंस्ड हो। कतर नेशनल विजन 2030 इस बात पर यकीन रखता है कि जब तक सोसाइटी खुश, सेहतमंद और सिक्योर ना हो, डेवलपमेंट अधूरा है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ को सोशल वेलबींग से

0: जोड़ना विजन का एक अहम हिस्सा है एग्जांपल के तौर पर जॉब्स क्रिएट करने के साथ हेल्थ केयर सिस्टम्स वर्कर्स सेफ्टी लॉज और एजुकेशन एक्सेस को भी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है फ्री एजुकेशन और एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज इसी सोच का नतीजा है दोस्तों जब लोग हेल्दी एजुकेटेड और कॉन्फिडेंट होते हैं तो प्रोडक्टिविटी नेचुरली बढ़ जाती है इससे इकोनॉमी खुद ब खुद बेहतर होती है विजन ये इंश्योर करता है कि पैसा सिर्फ चंद लोगों तक लिमिटेड ना रहे बल्कि सोसाइटी की हर लेयर तक पहुंचे यानी वन स्टेप टू 2030 हमें ये समझाता है कि सस्टेनेबल इकोनॉमी वही है जहां इंसान और मार्केट दोनों साथ ग्रो करें आपके मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह कल तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए खुश रहिए मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी One step to 2030
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
3: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कभी सोचा है आइंस्टाइन का हेयर स्टाइल जैसा था वैसा क्यों था? क्या बल्ब की खोज करने के बाद एडिसन की जिंदगी आसान हो गई थी? रेडियो के इन्वेंशन में जिनका नाम लिया जाता है क्या वही इसके पूरे जिम्मेदार थे? ऐसी कई बातें हैं साइंटिस्ट की दुनिया की, जिनको अगर आसानी से बताया जाए तो साइंस आसान हो जाएगी, आसान हो जाएगी। सुनिए साइंटिस्ट वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ख्वातीन व हज़रात, मेरे यानी सरवर मिर्ज़ा के साथ प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड में खुश आमदीद, जहां हम दुनिया भर के साइंटिस्ट और उनके कारनामों के बारे में बात करेंगे और उनकी हिस्ट्री को जानने के साथ ही साथ उनकी डिस्कवरी, इनोवेशन और पर्सनल लाइफ पे भी रोशनी डालेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अरब मुस्लिम पर्शियन पॉलीमैथ की जिसने तिब, फलसफे, कीमिया और साइकेट्री में अहम किरदार अदा किया। उन्हें बगदाद में पहली साइकेट्रिक वार्ड बनाने का क्रेडिट दिया जाता है, जो जहनी बीमारियों के इलाज पर ज्यादा तवज्जो देते थे। उनकी तजुर्बात और तजजियाती अप्रोच ने क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन में इनकलाबी बदलाव लाया, जो आज के मॉडर्न एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का बुनियादी उसूल है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अबू बकर अल राजी की। तो दोस्तों, अबू बकर अल राजी सन 865 एडी या 251 हिजरी में रे में पैदा हुए और सन 1925 एडी में वफात पाई। उनकी जिंदगी की मुद्दत को मुख्तलिफ तारीखों से सन 846 से 930 और 854 से 932 के तौर पर वाज़े किया गया है, मगर हमने ज्यादातर हवालों से सबसे ज्यादा जिक्र किए गए दौर को सन 865 से 925 के तौर पर इख्तियार किया है। रे जो आज के तेहरान ईरान से तकरीबन 20 मील साउथ में है, उनका असल शहर था। अपनी जवानी के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ शौक रखे जिनमें मौसिकी और केमिस्ट्री भी शामिल थी। लगभग 3 साल की उम्र में उन्होंने दरियाफ्त किया कि वो इलाज में दिलचस्पी रखते हैं और फिर उन्होंने बगदाद के मशहूर आजुदी हॉस्पिटल का सफर किया, जहां उनकी दिलचस्पी तिब में और बढ़ गई। इल्म की तलाश में उन्होंने कई इस्लामी तालीमी इदारों में तालीम हासिल की, जहां वो अपनी इंतजामियात और इल्म के लिए मशहूर हो गए। वो पुरानी ग्रीक जबान में भी माहिर थे। अल राजी ने अपनी जिंदगी में काफी सफर किए और अपने दौर के मशहूर तिब्बी मरकजों जैसे कि जरूसलम, कैरो और कोर्डोवा का भी सफर किया। अपनी जवानी में उन्होंने बगदाद में अपनी तिब की तालीम हासिल की और फिर वहां एक हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया। दोस्तों, अल राजी का करियर कई अजीम मुलाजमत के साथ था। उन्होंने बगदाद हॉस्पिटल के चीफ फिजिशियन और मेडिकल स्कूल के डीन के तौर पर खिदमात की, जो अपने वक्त के सबसे तरक्की याफ्ता मेडिकल सेंटर्स में से एक थे और उनकी शोहरत एक अजीम डॉक्टर के तौर पर बढ़ गई। अपने करियर के दौरान अल राजी ने 200 से ज्यादा किताबें लिखी, जो मुख्तलिफ मवाजनात और इल्मी कौलियत को दिखाती हैं। अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में अल राजी रे वापस आए, जहां उन्होंने अपने आसपास कई स्टूडेंट्स को जमा किया। अल राजी के इल्म पर कई स्कॉलर्स और पिछले कामों का असर था। पुरानी यूनानी और रोमन तिब्बी इल्मों, खासतौर पर हिपोक्रेट्स और गैलन की लिखी हुई किताबों ने उनकी तिब्बी फालसफे को काफी हद तक असर दिया। इस्लामी सूरत हाल के

0: कर दिया था ताकि वो भाग सके। अराजी का प्लान जाने बिना प्रिंस अकेला बाथ में रिलैक्स कर रहा था। अचानक अलराजी ने एक बड़ा डैगर उठाया और गुस्से में प्रिंस के सामने आ गए। उनके सोल्जर्स की बदतमीजी के बारे में गुस्सा दिखाया। डर और गुस्से से ओवरवेल्म्ड प्रिंस मंसूर घोड़े पर बैठकर भाग गया। बाद में अलराजी ने प्रिंस को एक खत लिखा जिसमें उसने अपने थेरेपी के इरादे को समझाया और उसकी शिफा पर तकरीब की। दोस्तों, अलराजी की मशहूरी के बावजूद उन्होंने कभी दौलत नहीं कमाई क्योंकि वो अक्सर गरीब मरीजों का इलाज बिना किसी पेमेंट के करते थे, इसलिए वो गरीबी में जिंदगी गुजार रहे थे। उनकी तिब और इलाज में की गई कोशिशें अब भी उनके अपने वतन में इज्जत की जाती है, जहां उनका बर्थडे 27 अगस्त को हर साल नेशनल ईरानियन फार्मेसिस्ट डे के तौर पर मनाया जाता है। अपनी आखिरी उम्र में उनकी दोनों आंखों में कैटरेक्ट हो गई थी और वो अंधे हो गए थे। जब उनको आंखों की सर्जरी की जरूरत हुई तो अलराजी ने उस सर्जन को इनकार कर दिया जो आंख की एनाटॉमी को नहीं समझता था। वो 27 अक्टूबर 925 को रे में 60 साल की उम्र में वफात पा गए। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हमने जाना कि अलराजी की कोशिशों ने साइकेट्री और तिब पे काफी असर डाला। उनके तजज़ियाती इलाज, खासतौर पर ज़हनी सेहत में और तजुर्बाती तरीके में मौजूदा सबूत पर मबनी तिब की बुनियाद रख दी है। उन्होंने बगदाद में पहली साइकेट्रिक वार्ड कायम करके ज़हनी बीमारियों के लिए मुनज़्ज़म और इंसाफ पसंद इलाज को फ़रोग दिया और इसकी वजह से अलराजी का असर इस्लामिक और वेस्टर्न तिब दोनों पर पड़ा। तो दोस्तों, इसी के साथ प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम मजीद दूसरे साइंटिस्ट और उनकी दिलचस्प तारीख को तलाश करेंगे जो हमारी नॉलेज में मजीद इजाफा करेगी। अगर आपने हमें अभी तक सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, टिकटॉक पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। हैंडल हमारा इसी नाम से FM 107। दिस इज सरवर मिर्जा साइनिंग ऑफ। सुनते और देखते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
3: Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, feeling of missing out, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कदर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।

0: FM 107. Time check. Time
1: check. अरे आ रहा हूँ, जूते पहनना हूँ, एक सेकंड रुको यार। आया बस, एक सेकंड, आ गया आ गया आ गया।

वाला कभी फोन सेवन पे चार बज के एक मिनट हो लिया भाई और प्रॉक्सी अटेंडेंस चालू है। फजील भाई की जगह पर अभी मैं हूँ चार से लेकर पूरे सात बजे तक, मतलब बीच में मेरा भी शो होता है पर चार से पांच उनका वाला शो जो है मैंने जो है कब्जा कर लिया है। ये पिलोट अभी हमारे नाम हम करा लेंगे रजिस्ट्री। लेकिन अभी जो है फिलहाल बहुत कुछ हो रहा है इस शो में। आपको याद है कल कितने मजे किए थे हमने? कहने को तो रिक्वेस्ट आ रहे लेकिन हमने इसको थोड़ा सा एक ट्विस्ट दे दिया है, थोड़ा मसाला इसमें एक्स्ट्रा डाल दिया और ये जो देसी मसाले का तड़का डाले आप भाई इसमें मौज आ गई है। तो आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड हाजिर है, आज भी मौज काटेंगे बढ़िया करके। तो कल की थीम थी भाई इमरान हाशमी पे और आज भी बहुत कर रही थीम लेके आया हूँ मैं।

ठीक है, तो आज की थीम मैं आपको बता दूं क्या है। आज की थीम वो है जो अपनी बाहें फैलाकर हैं 3:15 बजाते हैं और ये है एसआरके ऑफ कोर्स। सो आज एसआरके की थीम है। मैं सैयद सादिक भाई, अस्सलाम वालेकुम। जब हरियाणवी लहजे में बात करते हैं कंगना रनौत की याद आती है। अरे अरे भाई, मुझे ये मेरा ये चश्मा तोड़ दो भाई, ये मेरा ये फोन भी तोड़ दो मेरा। आदमी कह रहा है कंगना रनौत की याद आ रही है। अरे कोई और किसी और का नाम ले देते। कबीर भाई, भाई स्टार्ट द कार, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत बढ़िया है, थैंक यू सो मच आरिफ भाई। कबीर भाई आप तो क्या लिखा, आप तो खो गए थे आज मिल गए। भाई आप खो गए थे, मैं तो इधर ही बैठा हूँ, अड़े बैठा हूँ भाई मैं तो। क्या भाई गेरुआ लगा तो बिल्कुल चलेगा भाई। एक मैसेज आया, सर हम आपकी वजह से 4 बजे रेडियो ऑन करते हैं, पहले 5 बजे सुबह, फिर शाम 5 बजे और अब 4 बजे। भाई अलग अलग टाइम पे ऑन कराता चला जाऊँगा मैं। एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, ये मैसेज किया है महफूज भाई ने। फिर राशिद साहब वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, गाड़ी फुल है प्लीज स्टार्ट। भाई बढ़िया करेंगे, स्टार्ट करेंगे। मलिक वकास साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, कल वाली दिन और कल की स्टोरी बेहतरीन थी, स्टोरी ने तो वाकई शॉक कर दिया। एंड में एक तरफ खुशी तो थी लेकिन एक तरफ गम भी, लेकिन एंड में जो हुआ भाई कमाल था, थैंक यू सो मच। और बाकी नवेद साहब वालेकुम अस्सलाम, फुल एनर्जी। जी भाई फुल एनर्जी। एक राम भाई कह रहे हैं चॉकलेट भाई, गुड आफ्टरनून मेरा भाई, चॉकलेट भाई बना दिया होता उन्होंने। खादिन भाई वालेकुम अस्सलाम, मकसूद भाई वालेकुम अस्सलाम। कुछ वॉइस नोट्स भी कह रहे हैं 3:15 पोज, 3:15 पोज भी हो सकता, 3:15 पोज अगर होगा तो उसमें शाहरुख खान का वो नहीं आएगा ना सिग्नेचर, तो शाहरुख खान जब बाहें फैलाते तो ऐसा नहीं लगता घड़ी में 3:15 बज रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा ये मोहब्बत के जो 3:15 बजते हैं उनके बाहें फैलाने से, तो आज उन्हीं के नाम का दिन है। तो बहुत सारे एसआरके के ट्रैक्स हैं जो बजने वाले, आपका फेवरेट कौन सा है आप बताते रहिए। मैं भाई साहब 1-2 से स्टार्ट कर देता हूँ। 666-22107 नंबर है, और क्योंकि एसआरके की बारी है तो शुरुआत तो उसी से करेंगे जो गाना दिल्ली में शूट हुआ है। भाई दिल्ली वाली वाइब है, बढ़िया गाना है भाई, एक नंबर का। तो चालू कर रहा हूँ मैं, बाकी 666-22107 आपका नाम और आपका गाना। एक मैसेज है कबीर भाई, कल वाली एनर्जी होनी चाहिए, रेस पे उठाओ भाई, आज भी ऐसी एनर्जी रखेंगे। ठीक है, सलमान खान पे कभी बात नहीं करेंगे, सलमान खान का पूरा दिन होगा भाई, जैसे आज शाहरुख खान का है। टेंशन लो कह रहा हूँ। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, मोहम्मद वाले भाई, कबीर भाई, इरफान भाई आपके तो गुमशुदगी का मैंने इश्तिहार छपवा दिया है वो थाने में, वो कह रहा है मैंने मिला, ये थाने में बता देना आ गए इरफान भाई। हाँ वो जो खो नहीं गए थे वो, हाँ वो, हाँ पता नहीं कहाँ गए थे, आ गए इरफान भाई, ये थाने वाले पूछ रहे हैं आपको, इनसे मिल लो जरा, ये ढूंढ रहे थे आपको 1 साल से, आ गए हैं पता नहीं क्या। हाँ शक्ल तो वैसी की वैसी है, हाँ दाढ़ी बड़ी है इनकी। इरफान भाई बात कर लो यार, मेरे को डिस्टर्ब कर रहे बार बार आपके चक्कर में। तो एसआरके की थीम के साथ शुरुआत। जबरा फैन मैं दोहा वाला कभी रेफर 7 पर आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड आजरा भाई साहब, आज भी मौज करा देंगे, जमा जहज बना देंगे। मैगजी फैन का गाना आ जाओ, 4:06 मैं जी आपका जबरा फैन हो लिया।

बड़ा फैन हो गया. अस्सलाम वालेकुम. इस गाने में एक चीज मेंशन की गई है, बंटा. बंटा पता है आपको क्या होता है? बंटा बहुत बढ़िया चीज होती है भाई, हमारी तरफ मिलती है, बहुत ही शानदार चीज है. अब आपको बंटा कैसे समझाऊं मैं? कंजे की बोतल पता है आपको? पता नहीं, मैं हो सकता है ऐसा लग रहा है एलियन वेलियन तो नहीं है, क्या बातें कर रहा है ये. भाई बंटा भी बहुत कमाल की चीज़ होती है, कंजे की बोतल ही बड़ी कमाल की चीज़ होती है. ये सारी देसी चीज़ें अगर आपने देखी है ना, ओए होए होए होए, मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे याद आ गया बंटा. हाँ जी, ये ना ये सही नाम याद दिलाया उन्होंने. कुछ जगहों पे गोली सोडा भी कहते हैं इसको. इमरान भाई थैंक यू सो मच याद दिलाने के लिए, मैं भूल ही गया था. एक भाई मैसेज कर रहे हैं, मैं तेरा जबरा फैन हो गया, थैंक यू सो मच भाई. इरफान भाई ने बताया कि कुछ दिनों से वो मोमोज की तलाश में गए थे और एक जगह पे होके भी आ गए, उन्हें मजा आ गया, लेकिन उन्हें पता नहीं असली मजा कैसा. कराएंगे आपको. यूसुफ भाई कह रहे हैं कि अच्छा आज एसआर के स्पेशल. जी भाई. और अजमल भाई ने ऐलान किया, अजमल भाई कह रहे हैं कि जो भी मुझे कबीर भाई से मिलवाएगा उसके लिए मेरी टैक्सी 6 घंटे के लिए फ्री है. भाई ने ऑफर भी दे दिया भाई. कह रहे हैं जो भी कबीर भाई से मुझे मिलवाएगा 6 घंटे के लिए मेरी टैक्सी फ्री है. भाई ऐसा मत करो यार, ऐसी मिल लेंगे भाई, क्यों 6 घंटे फ्री में दे रहे हो किसी को टैक्सी. एक मैसेज आया, सॉन्ग कौन सा? खामोशियां गुनगुनाने लगी, 1, 2 का 4. थोड़ा स्लो है लेकिन खूबसूरत है. आप जानते ही होंगे मैं वैसे ही सॉन्ग्स प्रॉपरली. मेरा भाई कताई एकदम रोमांटिक हो रहे हो आज यूसुफ भाई, क्या बात है. चलेगा भाई चलेगा, टूवर्ड्स द एंड ये सारे के सारे स्लो गाने रखे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है. बाकी अजय सर के स्पेशल है, कल भी बहुत ज़बरदस्त स्पेशल होगा, वो अभी नहीं बताऊँगा, मैं रिवील कर दूंगा फिर आप मेंटली प्रिपेयर्ड आएंगे. मेरे को क्या मज़ा आता है अभी के अभी बैठे बैठे कहा जाए ये लो, तो वैसी वाली जो फील है वो कल आपको आएगी. कल बढ़िया गाना आएगा, कोई टेंशन नहीं है. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम. कह रहे सर हम आप सर हम तो आप कैसे रहेंगे, सर हम तो आप कैसे रहेंगे के भाई, समझा नहीं भाई मैं. एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई. भाई इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो, लगता है बंटा पी करा. काश यहाँ बंटा मिलता होता मेरे भाई, बंटा मिलता नहीं है ना यहाँ पे. जैसे उन्होंने भाई ने बताया ना, इरफान भाई ने, इमरान भाई ने गोली सोडा, ये कंची की बोतल, ये बड़ी कमाल की चीज़ें हुआ करती थी, गर्मी में बहुत काम की चीज़ है. दिल्ली में तो अभी भी है बंटा. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं? मैं बढ़िया भाई, आप सुनाएं क्या हाल है आपके. ये शमशाद आलम भाई ने मैसेज किया है. शमशाद बॉय बहुत बहुत शुक्रिया. और यूसुफ भाई कह रहे हैं कुछ भी आपके फैंस के लिए रिक्वेस्ट किया. अरे कुछ भी नहीं, शर्मा मत. अरे यूसुफ कैसे लाल पड़ गए माशाल्लाह, देखो तो सही. वैसे कबीर भाई एक फ़ैन मीटअप रखना चाहिए, जो लोग कबीर भाई के फ़ैन हैं कबीर भाई के साथ मिलना. भाई मैं आप तो मुझे खामखा सेलिब्रिटी बना दे रहे हो. मेरे लक्षण नहीं है भाई सेलिब्रिटी वाले. महफूज भाई मिल लेंगे भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. फ़ैन वैन मीटअप तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, हम तो ऐसे ही मिल लेंगे. फ़ैन वैन नहीं बनाते भाई, हम दोस्त बनाते हैं, भाईचारा ऑन टॉप. एक मैसेज है, सर हम आपके फ़ैन हैं और रहेंगे. मेरा भाई बहुत मोहब्बत, आप फ़ैन मत रहिए अरबाज़ भाई, आप मोहब्बत देते रहिए भाई ऐसी. एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई. अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं? मैं बढ़िया. एक मैसेज है, यहाँ पर भी देखना था मैंने गोली. यहाँ पर देखा था आपने गोली सोटा? किधर है? इतनी बड़ी खबर, खुफिया खबर मुझसे छुपा रखी है इमरान भाई.

सर्च इट, स्कैन इट, सेंड अ फोटो प्लीज. ये चीजें आप अकेले अपने अंदर मत दबा के रखिए. एक मैसेज है और आपका क्या है, अल्टरनेट है मेरे पास आपका, आपके बंटे का अल्टरनेट है मेरे पास. क्या अल्टरनेटिव है भाई? बंटे सूर्य का अल्टरनेट है आपके पास हमजा भाई? प्लीज लेट मी नो. मैं अगला गाना चला रहा हूँ. ये अगला गाना, क्योंकि देखो एसआरके के आज स्पेशल गाने चलेंगे, तो बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ चुके हैं एंड एसआरके स्पेशल आप भी मुझे बता सकते हैं 666-22-107 पर कौन सा गाना सुनना है. एक मैसेज है, ये माइक से दूर होकर लिसनर्स की जो कंप्लेन करते हो वो है कौन है? ये माइक से दूर होकर लिसनर्स की जो कंप्लेन करते हो वो है कौन? सादिक भाई मैं समझा नहीं. एक मैसेज, थैंक्स भाई, आई एम ऑल्सो जबरा फैन. डन भाई, चलेगा भाई अगला गाना. रेडी हैं आप? चलो जी, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. पठान जो मूवी आई थिएटर में और सबको खा गई. पर यही हाल मुझे लग रहा है दिसंबर में होने वाला, जब किंग आने वाली है. आई एम प्रीटी श्योर. झूमे जो पठान. चार बज गए जी 14 मिनट में. दो वाला कबीर एफएम 107 पे.

0: Cumece Batan. मैं बता रहा हूँ, जैसी आंधी बॉक्स ऑफिस पे आई थी इस मूवी के बाद, वैसी एक आंधी और आने वाली है जब किंग रिलीज हो गया। आई एम प्रिटी श्योर के गया भाई थिएटर तो फिर से लोग नाचते हुए नजर आएंगे और कुछ ना कुछ तो होगा। बढ़िया बढ़िया मूवी आने वाली है वो। वैसे भी किसको फर्क पड़ता है कि मूवी का कॉन्टेंट क्या है, शाहरुख खान है भाई उसमें, बात खत्म हो गई वहाँ पे। तो ऐसे ही अलग अलग एक्टर्स कितने आते रहेंगे। 666-22107 पर लोगों ने दो तीन गाने बड़े जोरों शोरों से बताए, तो मैं ढूंढ रहा हूँ। जैसे जैसे वो बताते चले जा रहे हैं वैसे वैसे मैं जो हूँ ढूंढता चला जा रहा हूँ, और मुझे मिलते चले जाएंगे वैसे ही चलाता चला जाऊँगा। एक गाना जिन लोगों ने बोला है वो काफ़ी बड़ा गाना है, तो वो गाना मुझे बीच से थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग ट्रैक, तो मैं कुछ देर में वो चलाऊंगा। एक मैसेज और, जैसे लंबा गाना ऐसे नहीं कि बाजीगर मतलब, तो थोड़ा सा लंबा छोटा गाना। एक कॉल आ रही है, रुको कॉल उठा लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: जी मेरा भाई, आपका नाम?
1: फजील भाई। कैसा है
0: फजील भाई? अपने घर पे है भाई, बढ़िया है।
1: कबीर भाई किधर है?
0: कबीर भाई इधर ही बैठा हुआ कहीं पे होगा, टेबल के नीचे।
1: नहीं नहीं, नीचे कैसे बैठा हुआ, तो ऊपर बैठता है।
0: नहीं भाई, टेबल के नीचे से करता है शो भाई, बहुत डरता है वो बाहर लाइटों से।
1: कबीर भाई कैसा है? मुदस्सिर बात करो, काफी टाइम के बाद आपसे बात हो रही है, तकरीबन महीनों के बाद।
0: नहीं भाई, ये तो आपकी गलती भाई, आप गायब थे, मैं तो यही हूँ, मैं तो कभी सुबह हूँ कभी शाम हूँ।
1: सही बात नहीं, आप तो इधर ही है मुझे पता है, लेकिन कुछ गलती शायद हमारी भी होंगी, वो तो मैं मान रहा हूँ।
0: हाँ ऑब्वियसली भाई, अरे कोई बात नहीं, मिल लिए ना, वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही भाई, अब शाम में मिलेंगे।
1: सॉरी लेकिन मैंने कॉल नहीं की, बाकी तो मैं सुन रहा हूँ।
0: अच्छा आप सुन रहे हैं ना, बढ़िया है। ये
1: सुन तो रहा, वो तो मैं सच बोल रहा हूँ।
0: अच्छा आपने कॉल नहीं कर पाए थे, अच्छा वो ठीक है, कोई
1: जी जी
0: तो
1: कॉल नहीं की, बात नहीं हुई थी इसलिए मैंने बोला।
0: नहीं नहीं भाई, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत मेरे भाई की, आपने आज कॉल भी लगा ली। और वैसे आप सुनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। शाम में ही रहेगा अभी तो सुबह टाइम तक इंशाल्लाह। तो शाम
1: कबीर भाई, आपको नहीं सुनूंगा, सरर भाई को नहीं सुनूंगा, फजील भाई को नहीं सुनूंगा, तो यार दोहा कतर में मेरे ख्याल में आप लोगों के अलावा हमारा तो कोई है ही नहीं
0: भाई। हम तो है भाई, कोई टेंशन नहीं है, आपको जब भी लगे कॉल करनी है करवानी है, आप हुक्म करें, मैसेज करें, खटाक से कॉल आ जाएगी आपके पास।
1: आपको कबीर भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता है आप लोगों की वजह से, FM 107 की वजह से आप लोगों ने हमारी बड़ी गुनाहों से बचाया, वो आप पूछ चुके कैसे।
0: अरे ये कैसे भाई?
1: क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते, FM 107 ना होता, तो शायद हम अपने गाड़ी में शायद गाने वगैरह सुन रहे होते। तो आप लोगों की वजह से, तो FM 107 की वजह से जब भी हम लोग गाड़ी में बैठते हैं तो सीधा FM 107 ऑन करता है।
0: आपकी मोहब्बत भाई, आपकी मोहब्बत, थैंक यू सो मच। और ऐसी साथ देते रहिए मेरी जान, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कॉल करी, जज़ाकअल्लाह।
1: जरूर जरूर जरूर जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी कबीर भाई कैसा है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सब शानदार भाई, टन टन एकदम।
1: चलो
0: चलो शुक्रिया, ऐसी आपको और सब, हम सबको ऐसी मुस्कुराती
1: और जिंदा रही, जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सब कुछ जारी रखें, थैंक यू,
0: डन मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़। तो भाई की मोहब्बत के बाद एक, जैसे मैंने कहा, लंबा चौड़ा गाना जरूर है, पर चला देते हैं क्योंकि 3-4 रिक्वेस्ट आ चुकी हैं। अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा दिल तोड़ना, आज नहीं तोड़ पाऊंगा क्योंकि जब मैंने खुद ही बोला है तो चलाना ही पड़ेगा। तो ये गाना भाई, जिन लोगों को ये गाना सुना था, 4 रिक्वेस्ट पड़ी हैं इस गाने की, एंड सही गाना बजा रहा हूँ ना मैं, मुझे लग तो रहा है, हाँ ठीक ही है, ओके चलो ठीक है, सुन लो कोई दिक्कत नहीं है, राम थे भाई, बढ़िया गाना है और थोड़ा सा लंबा गाना है, आई विल कट इट शॉर्ट लेकिन लौट के आता है। और ऐसा की कोई भी गाने की रिक्वेस्ट है, लेट मी नो। इस ईयर में मैं पैदा हुआ था भाई, 93 में आई थी। क्या बात है, बाजीगर, ओ बाजीगर बेटा, दो चाय आप।

हाँ जी, तो बाजीगर चला दिया मैंने, देखो पूरा गाना चलाना उसके लिए बहुत लंबा गाना भाई, पूरी फीचर फिल्म है, तो अभी और भी रिक्वेस्ट ले रही है, वरना एक ही गाना चला जाएगा।

चुरा लो, चुरा लेंगे। बताओ किधर आना, मैं चलाता हूँ कुछ देर में। एक मैसेज, यार कबीरा, हाँ जी दसो, थोड़ा की चीज हाँ, एक मैसेज है, किंग की किंग बॉम्बे देखनी। क्या आज मुझे सब बहके बहके मैसेजेस क्यों कर रहे हैं, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। एक मैसेज है, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा बात नहीं है। देखिए भाई साहब, 8 मिनट का गाना है, आप क्या चाहते हैं, घंटे में 8 मिनट का गाना, मैं क्या करूँ, बैठा रहूँ यहाँ पे, चाय का कप लेके। एक मैसेज है, अच्छा हुआ आपने भी ज्यादा, मैं तो समझदार हूँ नवेद भाई, आप तो मेरा नेचर जानते हो। एक मैसेज है, जन्म जन्म साथ चल। देखो पिक्चर बताया करो, मैं ना 90s का बच्चा हूँ और मैंने 90s के गाने सुने नहीं है ज्यादा, प्लीज टीच मी। एक एक जो गाना लोगों को बहुत ही देर से चाहिए, लेट मी सर्च इफ आई हैव इट हेयर। मिल तो गया है, पर ये भी बहुत लंबा गाना है। तो मैं भाई इधर नसीम भाई क्या कह रहे हैं, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगा। देखो पिक्चर का नाम बताओ, मैं इतना गानों के मामले बहुत पीछे हूँ मैं। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, थैंक यू सो मच, सलाम, बाजीगर सॉन्ग लगा तो दिया, बाजीगर सॉन्ग मैंने बढ़िया। एक मैसेज है, भाई वो थिएटर में कौन सा गाना चला था जब सबके सब थिएटर में नाच रहे थे, कौन सा गाना चला थिएटर में, जवान की बात कर रहे हो क्या, जवान के टाइम पे तो ऐसा हुआ था। एक सेकेंड रुको, मैं और भी ढूंढता रहता हूँ। एक तो जो है मिल जा, एक सेकेंड, ये गाना भी बहुत लंबा भाई, एक सेकेंड, वो छोटे छोटे गाने बताओ, हाँ 8-8 मिनट के गाने बता। यह सॉन्ग जन्म जन्म, ये 90s का सॉन्ग नहीं है, ये फिल्म दिलवाले का, अच्छा वो वाला कह रहे हैं क्या ये, पर वो भी चला देते हैं। एक दो तीन, दिलवाले, दिलवाले का है, ओके दिलवाले वाला चला देते। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ऑल्सो प्रेजेंट, 90s के बहुत सारे रिक्वेस्ट है भाई, बहुत सारी रिक्वेस्ट है, पर एक काम करते हैं, सबसे पहले तो क्योंकि इसकी बहुत भारी भरकम रिक्वेस्ट है तो ये चला देता हूँ, क्योंकि देखो सारे के सारे गाने एक घंटे के अंदर स्क्वीज करना बहुत मुश्किल काम है, समझ रहे हो, बहुत मुश्किल काम है। तो क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा है, सो आई एम गोना प्ले दिस एंड उसके बाद बाकी पाएंगे, ठीक है। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, कैसे हैं, मैं बढ़िया भाई एकदम शानदार। ये भी ढूंढ लेता हूं मैं, यूसुफ भाई ये भी ढूंढ लेता हूं भाई, एक घंटे में कितने गाने लगाऊं मैं। लेट मी ट्राई एंड फिक्स एवरीथिंग, डोंट वरी। एक और रिक्वेस्ट आई है, प्लीज प्ले दिस सॉन्ग, ओके नेक्स्ट ही चला देते हैं। और क्या मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, वेल डन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये लो भाई, आशिकों, सूरज हो

हाँ तो जी देखो ऐसे है, ये सूरज हुआ मध्यम की रिक्वेस्ट बहुत सारी आई थी, सो ये भी चला दिया है। अगला गाना मेरे गले को क्या हो गया ओके गला साफ कर लिया मैंने, ओके डन है। तो अब अगला गाना है, क्योंकि देखो टाइम मेरे पास बहुत कम है, एक घंटे के अंदर सबके गाने चलाना बहुत मुश्किल काम है एंड रिक्वेस्ट बहुत सारी है। तो अगला गाना जिसको बहुत भर भर के वोट मिले और लोगों ने मेरी जिंदगी में सीरियसली धनिया और प्याज दोनों कूट दिया है, तो ये मैं गाना चला देता हूँ भाई। प्लीज चला रहा हूँ ये लो सुनो जोराम सुनो। अब मैं समझ में आ रहा है कि कितने दीवाने फैंस है भाई। आज तो मैं इतने मीठे गाने मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुने जितना आपके लिए सुन रहा हूं मैं, समझ रहा था। तो ठीक है आपके लिए कुछ भी आ रही है, फील आ रही है, बज रही है दिल की घंटी, सॉरी वायलेंस एक्चुअली में, नॉट घंटी वायलेंस। कौन कौन किस किस को याद करा होगा अभी गाड़ियों में मैं बताया, कल गाड़ी की रफ्तार तेज थी आज गाड़ी 60 से ऊपर नहीं जा रही होगी, फील ही कुछ ऐसा भाई। अरे कर लो याद, कोई नहीं देख रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक मैसेज और भी आया भाई, थैंक यू सो मच प्लेइंग दिस, आई मुझे पता था तुम्हें ये सुनना है तभी तो ये पता है ये ऊपर वाले का मुझसे बदला लेने का तरीका है मोहब्बतें

0: ओके हमसे हमको हमी से चुरा लो सॉरी. तो ये भी हो गया भाई रिक्वेस्ट. और लाओ पर्ची लाते रहो लाते रहो आते रहो आते रहो. शाबाश शाबाश शाबाश शाबाश. ध्यान रखना 5 बजे के बाद बदला ले लूंगा सब चीजों को. अस्सलाम वालेकुम नवेद भाई. नवेद भाई कह रहे हैं भाई मैं फील कर पा रहा हूँ आपके लिए. कितना मुश्किल होगा आपके लिए सुनना. मुझे लोग कितना जानते हैं माशाल्लाह. एक मैसेज आया है यूसुफ भाई कह रहे हैं कि भाई सही में आप चला के छोड़ दो सबके सब अपने आप सुनते रहेंगे ना बैठे रहो. एक कॉल भी. अस्सलाम वालेकुम.
1: अभी ना उठाते ना तो पहला नशा पहला खुमार करते रहता तो उसके बाद दिल दिल पाकिस्तान जाके फिर दिल दिल.
0: अरे मेरा भाई फवाद भाई को बहुत सारा प्यार. भाई 2-3 छप्पी देके आओ इन्हें. आ रहे हैं फवाद भाई आपकी तरफ आ रहे लोग. बताइए कैसे हैं भाई. बस एकदम बढ़िया. रोमांटिक गाने चलवाए ना भाई सब ते बदला लूंगा भाई. 5 बज जाने दो एक बारी.
1: गर्मी में कौन सा रोमांस जागा सबको.
0: ठीक है कोई बात नहीं भाई 5 बजे हमारा भी नंबर आएगा. मेरे तो मेरी तो घर वाली भी टेंशन में आ गई होगी क्या हो गया इसे. लोग बड़े हैरान परेशान है. एक भाई भी कह रहे हैं भाई ये आप है ये कोई और शो कर रहा है.
1: असि पंजाबी सुनोस्ते गाना गाते थे रोमांटिक सॉन्ग लग गए ने.
0: पाजी मैं सारे के सारे गाने बेच के मैंने लेनी है 2 बीघा जमीन एक मज. बहुत हो गया.
1: मैंने फिर कहा इसकी जगह एक और भी लगा दे पहला नशा पहला खुमार को सबकी कसर पूरी हो जाएगी.
0: हाँ हाँ बिल्कुल शीरे में डुबा के जलाऊंगा ना. अभी टेंशन ले रहो. एक मैं बताया मैसेज क्या है कह रहा है आज सबकी बीवियां पूछेंगी कि आज आने में लेट क्यों हुआ. ये भी मैसेज आया मेरे पास हुसैन भाई का. समझ रहे कैसे कैसे
1: चल रही है बस आहिस्ता आहिस्ता चल रही है बस.
0: एक भाई कह रहे हैं
1: 40 मिनट हो गए.
0: एक सामने लिखा है कह रहे भाई गाड़ी स्लो तो हुई है लेकिन साथ में कहीं और ना निकल जाऊं मैं. ये भी दिक्कत है
1: तो मैं ये नहीं कह सकता भाई. ये नहीं कुछ सुन रहा हो सकता है.
0: रिक्स नहीं लेने का बाबा हमको रिक्स नहीं लेने का.
1: इनकी फैमिलियां यहाँ नहीं है जो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं. इनकी फैमिलियां यहाँ है वो ऐसी बातें नहीं कर सकते भाई.
0: नहीं नहीं, नहीं फवाद भाई सीधा कर जाते. फवाद भाई एग्जिट लेते हैं. फवाद भाई को रोड बिना मैप के याद है. मैंने खुद देखा है. फवाद भाई मैं आपके साथ खड़ा हूँ भाई. मैं आपके साथ हूँ.
1: थैंक यू.
0: और फालसा भी मिल रहे हैं
1: आपको. पहुंच जाएगा.
0: अच्छा पहुंच जाएगा.
1: हाँ जी.
0: क्या बात कर रहे हो फवाद भाई.
1: जी जी सर.
0: आपके लिए बता दूंगी हमको हमी से चुरा लो. दिल को फाल से खेला दो.
1: मैं वो चुटकनी लगाई वो लगा दे.
0: नहीं नहीं नहीं पढ़ाई नहीं हो पा रही. बाद में पढ़ाई नहीं हो पा रही. ठीक है समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ.
1: मैंने किसी की बातें सुनी थी. वैसे एक यूट्यूब पे चैनल लगा था.
0: अच्छा.
1: कि भाई वो पुराने गाने और नए गाने.
0: हाँ
1: ठीक है. एक था चोली के पीछे क्या है अब कुछ और है. अब होली के पीछे क्या है. तो इसलिए पुराने गाने और नए गाने का कॉम्बिनेशन कोई ऐसा है कि समझ नहीं आती कि पहले क्या बता रहे थे अब क्या बता रहे हैं.
0: ये जो आप एज है ना वो मौत को टक तेरी छू के निकल गए ना.
1: इसलिए फिर मैं सेंसर बोर्ड का भी तो ख्याल करता हूँ.
0: सही है सही है सही है. बहुत बढ़िया. शाबाश शाबाश. फवाद भाई के लिए तालियां. फवाद भाई जानते हैं आजकल बहुत बढ़िया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. थैंक यू. मैं मच अप्रिशिएट. मच अप्रिशिएट.
1: एंजॉय करें सर. अब आप बस.
0: थैंक यू.
1: मैं घर पहुंच जाऊंगा 10 मिनट में इंशाल्लाह.
0: ठीक है मेरा भाई. बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. तो फवाद भाई ने भी हमें डर के ही कॉल करी. फवाद भाई डर गए हैं तो कौन कौन कौन कर रहा है शो. इस आदमी को मैं तो नहीं जानता. आई नो. नहीं कोई बात नहीं 5 बजे मैं मेरी बारी आएगी ना सब तो उधर लूंगा. जितने मोहब्बत वाले गाने मजवा रहे ना मेरे से भाई. चुन चुन के. एक और मैसेज आया है. अस्सलाम वालेकुम भाईजान. एक सॉन्ग क्या है कौन सा. नहीं नहीं वो भाई जो आप कह रहे हैं गाना ना वो अगर एक दिन के लिए सेलेक्ट. आज SRK स्पेशल चल रहा है समझ रहे हो. ये बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है आपको. SRK स्पेशल चल रहा है आज. तो स्लो गान के बीच में एक तेज भागता दौड़ता गाना अनिरुद्ध रविचंद्र की आवाज में SRK की जवान से जिंदा बंदा. 5:42 7 बजाना। आओ अभी सिखाता हूँ हमको, हम इसे चुरा लो घर पे बताऊँ अभी।

मौज आ गई भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे और बारिश हो रही है, मतलब रिक्वेस्ट की बाहर मत, क्या बात कर रहा हूँ मैं। और भाई लग रही है ठंड प्रॉपर, मजे आ रहे हैं गर्मी में, क्या हाल है। मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड रिक्वेस्ट की जो बारिश हुई है मेरे पास आज, पता लग रहा है कि कितने सारे आशिक उबल उबल के बाहर आ रहे हैं भाई। तो मैं मैसेज भी पढ़ा हूँ और एक दो फास्ट एक दो हल्के गाने दोनों का मिक्सर चलाऊंगा मैं। कहाँ गया एक गाना जो अभी मुझे बोला गया है, एक मुझे बिल्कुल ये कहा गया, तीन चार लोगों ने बोल दी सेम बात कि एसआर की और ये वाली पिक्चर नहीं, ये तो गलत बात है। तो मैं ढूंढ ही रहा हूँ, जैसे मेरे पास जाएगा बता दूंगा। कुछ लोग हैरान हैं कि मेरे शो में कैसे चल सकते हैं ये गाने। ऐसा ही है भाई, क्या कुछ नहीं करना पड़ता रोजी और रोटी के लिए, समझे। तो किधर गया, मैं ढूंढ रहा हूँ भाई, जैसे ही मिल जाएगा मैं बता दूंगा, मैं चला दूंगा। क्योंकि एक तो पहले के गानों के नाम बहुत लंबे लंबे होते हैं ना, तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल आ रही है, पर मैं ढूंढ रहा हूँ, डोंट वरी। तब तक एक काम करता हूँ, मैं ये वाला चला देता हूँ। बाकी इसके बाद जो लोग कह रहे हैं इसमें वीर ज़ारा की रिक्वेस्ट है, 1-2-4 की रिक्वेस्ट है, डर की रिक्वेस्ट है, इस पर आता हूँ मैं। पहले ये सुन लो जब तक मैं ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। ये लो, इसमें भी ऐसा के हैं, सिक्स पैक वाले जब मार्केट में नए नए आए थे। 4:47 हो रहे भाई साहब, मैं दोहा वाला कभी रेफ़ 107 पर। सुखविंदर

चार बजे क्या मिनट अच्छा इसमें जैसे मैंने बोला ये मार्केट में नए नए सिक्स पैक वाले शाहरुख खान आए थे उस वक्त और हमारे यहाँ पता क्या कहते हैं सिक्स पैक को इफ यू डोंट नो देसी भाषा में कहते हैं बिस्किट बिस्किट आ गए मेरी बिस्किट तो एब्स को बिस्किट कहना भी एक लिंगो है भाई इन केस यू डोंट नो तो अगर धरती पर आके बिल्कुल आप ये वाली भाषा सीखेंगे समझ जाएंगे तो बिस्किट थे भाई एचआर के 6 बिस्किट लगाए थे उन्होंने। बाकी एक भाई ने मुझे मैसेज किया है मकसूद भाई कह रहे हैं कि फजील भाई को सुबह भेज दो और आप 4 से 7 संभाल लो। क्यों बेचारे की नींद खराब कर रहे हो यार कह रहे उनको सुबह भेज दो आप 4 बजे से आया करो हमारी ड्यूटी आप 4 बजे से करवाना चाहते हो मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर हो भी जाए तो आई डोंट माइंड एक्चुअली आई डोंट माइंड पर डेली आप मुझसे बोलेंगे मीठे मीठे गाने चलो ये नहीं हो पाएगा। अच्छा जो रिक्वेस्ट मेरे पास भर भर के आई थी फाइनली मुझे गाना मिल गया मैं जेन्युइनली ढूंढ रहा था मेरी नज़रों के सामने था और नवेद भाई ने मुझ पर शक भी किया। नवेद भाई कह रहे अच्छा खेल गए बेटा दर्द इसको चला के निकल ली नहीं नहीं मैं जेन्युइनली चलाने वाला हूँ ऐसी बात नहीं। वैसे कबीर भाई खैरियत से आप गफ्फार भाई को टेंशन हो रही क्या हो गया इसे बुखार माथा चेक करो बुखार होकर तो नहीं कैसे कैसे गाने चला रहा है ये अस्सलाम वालेकुम पाल्टे क्या हाल है वालेकुम सलाम तला भाई क्या मेरे भाई बोल नहीं पा रहा है खुल के नवेद भाई मेरे दर्द को समझ रहे हैं। अच्छा अब वो मूवी जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं लोग कह रहे हैं ये तो चलनी चाहिए चलना चाहिए ये कैसा इंसाफ है मिलॉट फाड़ के फेंक दीजिए कानून की किताबें। तो ये अगला जो गाना है ये मेरे अब्बा की भी फेवरेट मूवी है बहुत पसंद है उन्हें और बड़ी ऑपोजिट शौक है उन्हें मुझसे तो उनको इस मूवी से बहुत प्यार है जब ये आई थी तो तहलका मचा दिया था उस मूवी से ये गाना मैं नाम भी नहीं लूंगा आप समझ जाएंगे कौन सी मूवी है एंड यू विल बी लाइक वॉल्यूम बढ़ाओ जी वॉल्यूम बढ़ाओ तो बात ही नहीं करनी बात ही नहीं होगी अब खत्म खलास मिट गए दूरियां है ना मुझे पता था ये सुनना है 2-3 लोगों ने भाई मेरे ऊपर तो अभी तो झगड़े करने वाले थे व्हाट्सएप पे ये लो भाई 5 बजे बदले लूंगा हर मीठे गाने का 5 बजे दो वीर ज़ारा से लेकिन जनरली बहुत बहुत बढ़िया मूवी बनाई थी लव्ड इट ब्रो 2004 में आई थी मूवी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2004 में बहुत सारे लड़कों के नाम वीर और बहुत सारी लड़कियों के नाम ज़ारा पड़े हैं इसके बाद और हर मूवी में आदाब आदाब करना यहाँ इस मूवी में भी है बट एनीवे जन्म

0: वो देखो रानी मुखर्जी भागती वारी वारी वारी वारी वारी वारी उस तरफ देखो वारी भागती हुई वारी ये रही यही है आ गई टखने में दर्द हो गया बेचारी ये पूरे गाने भागती आई है आपके लिए बढ़िया लगा मौज आ गई आपको गाने सुन के अरे बाप रे गफ्फार भाई ने कहा आप क्या कोई बोल सकता है क्या भाई सब बोल गए आज क्या बात कर रहे हो आप आप देखो जगह नहीं है गुंजाइश नहीं है गाने की कॉल उठा लेता हूँ अस्सलामुअलैकुम हेलो क्या कोई है क्या कोई मेरी आवाज को सुन पा रहा है आपने FM 107 पर कॉल की है कृपया दोबारा कॉल करें धन्यवाद टिंग टिंग टिंग एक मैसेज है भाई स्टोरी सुना अभी टाइम है भाई 5:30 बजे स्टोरी यूसुफ भाई ने मैसेज कर रहे हैं यूसुफ भाई का पढ़ता हूँ मैसेज बाकी भाई क्या कबीर भाई एक बात जाननी है बाकी टाइम जो रेडियो में आते हैं आपस में बात के चले जाए वाई एक दोबारा से कॉल डाली फिर मैं बताता हूँ रानी प्रीति सिंह आती है ना रानी मुखर्जी को भगा दिया मैंने आपके चक्कर में अस्सलामुअलैकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: आपके कॉल के चक्कर में मुझे भगाना था प्रीति जिंटा को मैंने भगा दिया रानी मुखर्जी को समझ रहे कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई है मुझसे
1: असल में आपने गाना इतना जबरदस्त सुना है क्या बात है भाई
0: थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया
1: आप बहुत जबरदस्त फिल्म थी माशाल्लाह है ना मैंने 3-4 दफा देखी
0: क्या बात है बहुत बढ़िया नहीं ये है तो आइकॉनिक मूवी ये तो बात है
1: हाँ इंडियन बहुत सी मूवियाँ जो है ना बहुत जबरदस्त आती हैं मेरा ताल्लुक कराची पाकिस्तान से
0: अच्छा
1: पर एक जमाना तो मुझे बहुत शौक था इंडियन मूवीज देखने का और ये तो वाइड मूवी थी मैंने बस अलमारी में इसकी कैसेट छुपा के रखी हुई थी
0: छुपा के क्यों रखी हुई थी
1: भाई वगैरह ना देख क्योंकि घर में VCR वगैरह होते हैं ना आपको पता है तो मैंने कहा ये खराब ना हो जाए क्योंकि मास्टर कॉपी लाया था उस जमाने में वीडियो कैसेट्स आती थी VCR में लगने के लिए तो वो मैंने 4-5 दफा देखी होगी और वो कैसेट भी अभी भी मेरे ख्याल एक जगह पड़ी होगी वो जरूर
0: अरे धूल लग रही है उसको
1: बहुत
0: नहीं बात ये बात तो है बहुत अच्छी मूवी थी और आप बताइए सब बढ़िया चल रहा है
1: अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्रोग्राम सुने बगैर तो खाना ही नहीं हजम होता
0: अरे क्या बात ये वाली बात तो नहीं जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा
1: नहीं नहीं जब तक आपका प्रोग्राम नहीं सुनता ना मुझे मजा नहीं आता पता नहीं क्यों कमी सी महसूस होती है
0: ये आपकी मोहब्बत थैंक यू सो मच बहुत बहुत बहुत बहुत प्यारा
1: बहुत शुक्रिया आपने इतना अच्छा गाना सुनाया जबरदस्त मैं तो एक दफा और सुनूंगा अगर आप सुना सके तो
0: नहीं अभी तो टाइम ही नहीं है पर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर कभी ना कभी मौका
1: नेक्स्ट प्रोग्राम में हाँ जी हाँ
0: नेक्स्ट प्रोग्राम में तो नहीं चलेगा नेक्स्ट टाइम मतलब कभी और नेक्स्ट प्रोग्राम कुछ अलग ही है इंशाल्लाह ठीक है मिलते हैं ठीक है भाई ओके
1: बहुत शुक्रिया
0: ओके भाई
1: थैंक यू
0: अल्लाह तो हाँ वो रानी मुखर्जी भगा दी मैंने तो क्या हो गया मारी मर्जी भाई मैं रानी मुखर्जी ज्यादा पसंद आ ली तो हमने रानी मुखर्जी को भगा दिया हाँ वैसे तो प्रीति जिंटा को भगाना था एक मैसेज है रेली कबीर पता नहीं मुझे भी रोमांटिक प्यार मोहब्बत और रोमांटिक ट्रेजिक एंड वाली फिल्म्स बिल्कुल नहीं पसंद आती एक मैसेज आया है ये यस बॉस सॉन्ग मिसिंग एक मैसेज है हमजा भाई का सही बात है इतना प्यार वाले गाने क्यों SRK हैज़ गुड मूवीज लाइक डर अंजाम सईद भाई क्या करवाना चाह रहे हो अच्छा है एक मैसेज आ रहा है अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है जावेद भाई वालेकुम अस्सलाम जज़ाकअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया हाँ भाई अब हम अपने शो में एंट्री ले रहे हैं रिक्वेस्ट का शटर गिर रहा है ओके जी एक सेकंड कहाँ गए जी हमारा शो आ लिया भाई अब देखो कैसे बदले लिए जाएंगे

0: Sabá si de gaqueo. हाँ भाई क्या चल रहा है? तो मैं ये कह रहा था कि 4 से 5 के तो हमने ड्यूटी निपटा ली भाई साहब, अब जो है दूसरी ड्यूटी शुरू हो गई हमारी। एक मैसेज आया है याया भाई का, लिखते हैं भाई कल की स्टोरी वाज ट्रेजेडी एंड हैप्पीनेस, वेरी वेल नरेटेड, थैंक यू सो मच भाई, जजाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। खादिम साहब वालेकुम अस्सलाम, वेलकम करें शो में। फरहत भाई वालेकुम अस्सलाम, खैरियत मेरे भाई। अमन भाई वालेकुम अस्सलाम, एक मैसेज आया अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। तो 4 से 5 हमने बहुत मजे कर लिए, कभी रानी मुखर्जी को भागते हुए देखा, कभी प्रीति जिंटा को। देखो वीर ज़ारा में कन्फ्यूजन मुझे हमेशा होती है, मैं भूल जाता हूँ कि आखिरी में जो बुढ़ापा दिखाया गया किसका है, वो प्रीति जिंटा का बुढ़ापा है ना वो? हाँ प्रीति जिंटा का बुढ़ापा है। मैं कन्फ्यूज़ हो गया था कि मुझे लास्ट में किसका बुढ़ापा देखने को मिला, याद भी तो नहीं है, नन्ना बालक था भाई मैं, इसलिए याद नहीं आ रहा। बट अभी जो है शो में बालक नहीं हूँ मैं, अभी शुरू करेंगे शो, लेकिन उससे पहले शाम के अदकार 11 मिनट और 2 सेकंड के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। मैं दुहा वाला कबीर एफ एम 107 पर जाना नहीं है, आपने दुआ में याद रखिएगा, बहुत ज़रूरत है दुआओं की, बहुत मीठे गाने सुन लिए भाई। स्टे ट्यून्ड।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

दुआ वाला कबीरा फेमन सेवन पे अब अपनी गद्दी पे आ चुका हूँ। वापस में एक मैसेज आया है अम्मार यासी साहब का, वालेकुम अस्सलाम। एक भाई लिखा है कबीर रॉक्स, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक इनका मैसेज अजहर हुसैनी साहब का, थैंक यू सो मच मेरे भाई। एक मैसेज सलाम कबीर भाई, मुल्ला सॉफ्टी लिखा ये मेरे पीछे पड़ गए हैं भाई रोमी भाई, बहुत बढ़िया। ये पता है ये चिढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया है। हम क्या करते थे, हमारा कोई दोस्त अगर कोई अंग्रेजी वर्ड बोल दे अचानक से ना, तो हम उसको पूरे दिन उसी अंग्रेजी वर्ड से चिढ़ाते थे। और ये आपको सिर्फ देसी स्कूलों में मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी ने आप, वैसे हमारा एक दोस्त हुआ करता था, उसका नाम अंकित था, और अंकित जो था हमारे ग्रुप में बड़ा शाय किस्म का बंदा था, मगर काफ़ी इंटेलिजेंट किस्म का बंदा भी था। तो उसके मुंह से अगर कुछ हिंदी में निकल जाए, सॉरी अंग्रेजी में निकल जाए, मान लो उसने बोल दिया इट्स क्या, जैसे कि इट्स क्वाइट हॉट, या फिर उसने बोल दिया कि आई अग्री, मान लो उसने बोल दिया आई अग्री, तो पूरे दिन ओह अग्री भी है मेरे साथ, ओह अग्री, तो ही चलता रहता था। वैसे ही वाला सीन है तो अगर कोई गलती से ऐसा नाम मिल गया तो फंस गया मामला। कमाल भाई वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। और वालेकुम अस्सलाम शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं एक सवाल पूछ रहा था, अमर भाई कह रहे हैं इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो? भाई ये जो है ये मेरी मोहब्बत है रेडियो से। मैं बताऊँ एक आपको सीधी चीज़ बताऊँ, चलो मैं बता देता हूँ। म्यूज़िक अभी मैंने लो कर रखा है इसलिए मैं डंके की चोट पर एक बात बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने लव यू लिखा, तो लॉट्स ऑफ लव टू यू भाई। मेरे तो ज़्यादा रेडियो तक कोई प्यार नहीं करता भाई, मैं बहुत प्यार करूँ रेडियो से, तो बस वो मोहब्बत है जो इतनी ज़्यादा उमड़ के निकलती है, समझ रहे हैं आप। और रोज़ रोज़ मोहब्बत करने का मौका मिलता तो और क्या चाहिए आदमी को। आप ज़रा सवाल की तरफ आ जाते हैं, तो मैंने आपसे पहली दफ़ा पूछा था कि आपका शो का नाम क्या रखते हैं। अब मैं पूछता हूँ कि अगर आपका खुद का एक रेडियो चैनल होता है तो उसका नाम क्या रखते आप, क्या रखना चाहते हैं? मैंने बहुत सारे नाम देखे हमारे, बहुत सारे अलग अलग तरह के नाम देखे। अगर आपका कोई रेडियो चैनल होता भाई तो उसका नाम क्या रखते हैं आप, ये आप जरा बताएं। 666-22-107 पर, 666-22-107 पर। रोमी भाई लिखा है कि हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर है, उनका उनका नाम हमने माय गॉड रखा हुआ है, वो हर बात पे कहते हैं माय गॉड

0: अरे वो माय गॉड को दिखा के आ गए अब, ये होता है एक लेकिन हमारे यहाँ के जो फैमिली डॉक्टर है उनका नाम बेचारे का मैं बताऊँ क्या है, उनका नाम है डॉक्टर जियाउद्दीन। अब आप सोचिए उनका नाम डॉक्टर जियाउद्दीन है, बचपन से मिस्ट्री बनी हुई है, एक अजीब सी मिस्ट्री है, लोग उन्हें पता नहीं क्यों अच्छन कहते हैं। अच्छन को दिखाइए हूँ अच्छन को, मैंने कहा अच्छन है कौन? अच्छा बचपन में कभी समझ नहीं आया आदमी का नाम अच्छन क्यों है, आज भी ये मिस्ट्री है। अब बड़ा हो चुका हूँ तब भी मेरी पूछने की हिम्मत नहीं है। अब उनका लड़का बैठता है वहाँ पे, उससे कौन पूछेगा तुम्हारे अब्बा को अच्छन क्यों कहते हैं भाई? अच्छन बब्बन गब्बन। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, लल्लन टॉप रखते भाई, लल्लन टॉप विदार्जे हुसैन, क्या बात है, अच्छा नाम है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यूपी में हुसैन साहब ये नाम का रेडियो खुल भी जाएगा, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। मैसेज क्या है, एफएम कबीर, एफएम कबीर। नाम है डॉक्टर वैभव, एक डॉक्टर का नाम है, उनको शहर जीजा जी कहता, पूरा शहर जीजा जी कहता, ये क्या बात हुई? रोमी भाई कह रहे हैं एक डॉक्टर है, पूरा मोहल्ला उन्हें जीजा जी कहता, और नाम है भाई का वैभव, अच्छा भला नाम है यार। एक मैसेज, नूर कम्युनिटी रेडियो नाम हो सकता है, नूर कम्युनिटी रेडियो, क्या बात है। इसमें तो फिर बहुत शरीफों वाली बातें करनी पड़ेंगी अहमद मुस्तफ़ा भाई, बहुत ही ज़्यादा सादी। एक मैसेज है, रेडियो चैनल का तो नाम होता ज्ञान, ज्ञान सुनो और सुनाओ, ये तो टैगलाइन हुई ना, ये तो टैगलाइन हुई आया भाई, नाम क्या होता ये मैं पूछ रहा हूँ। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, आप रेडियो की कोचिंग क्यों नहीं शुरू करते? कोचिंग सेंटर के लिए बहुत मेहनत लगती है समझे। फरतवा कह रहे हैं जीजा जी कौन कहता, बताओ पूरा मोहल्ला डॉक्टर को जीजा जी कह रहा, हद हो गई यार। एक मैसेज, कबीर भाई, भाई ने अपना निक नेम ही जीजा रखा होगा सोशल मीडिया पर, हो सकता है भाई। अच्छा ज्ञान रेडियो नाम रखते, ज्ञान रेडियो 007 रेडियो स्टेशन विद कबीर 007। हाँ बॉन्ड का एकदम थीम म्यूजिक बज रहा है बैकग्राउंड में, और सारे आरजे आ रहे हैं काला चश्मा गाल के भाई साहब शो करने के लिए। एक और मैसेज है, नूर कम्युनिटी इज लाइक द होली जॉन, हाँ मुझे बहुत शरीफ वाला रेडियो जाता है ये। एक मैसेज है, मोहब्बत रेडियो, आए आए आए, हमजा भाई को चाहिए सारे के सारे जो शोज हैं मोहब्बत रेडियो पे एकदम रात वाले साउंड करें, जब भी रेडियो लगाओ ऐसा लगे कि रात के 12 बज चुके हैं। सारे के सारे लव गुरु बिठा रखे हैं। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, क्या मैसेज कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, सवाल क्या है भाई, सवाल ये है कि अगर आपका खुद का एक रेडियो स्टेशन होता तो आप उसको क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते उस रेडियो स्टेशन को? तो बहुत सारे नाम आ रहे हैं मेरे पास, और अलग अतरंगी सतरंगी नाम आ रहे हैं, मैं कुछ तो नाम पढ़ भी नहीं सकता हूँ, ऐसे नाम भी मुझे भेज दिए, मेरे साथ क्यों करते हो ऐसा। एक मैसेज है, नेम शुड बी टू मच टॉकिंग लेडी, ये सेंस नहीं बना भाई, थोड़ा सा सेंस बनाओ। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम भाई माजिद, क्या हाल है? एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, आप सुबह कब आएंगे? अरे क्यों मैं सुबह चाहिए हूँ, तो कही मैं नहीं उठना चाहता, नहीं देखने मुझे गन्ने के खेत। एक मैसेज है, रेडियो आवाज़, अरे वाह इतने सीधे सीधे नाम आ रहे हैं। एक और मैसेज मेरे पास आया है, अस्सलाम वालेकुम, अटेंडेंस सर लगा दीजिए, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, एक बार फिर से स्वागत है हिशाम साहब, वालेकुम अस्सलाम। एंड एक मैसेज आया है, भाई ने क्या लिखा है, एक सेकंड मैं इनका नाम पढ़ दूँ, जुमराती रैन नाम है इनका, ये नाम है आपका सच में? एक और मैसेज है, रेडियो सॉफ्टी, अरे मेरा भाई मिल गया नाम, मिल गया भाई नाम मिल गया, चलो भाई मिलके खोल लेते हैं रेडियो स्टेशन, रेडियो सॉफ्टी में आपका स्वागत है। सॉफ्टी रेडियो, गर्मी में थी ठंडक का एहसास। एक में से कबीर भाई, मैं न्यूज रिपोर्टर था पाकिस्तान में, लेकिन जब से कतर आया हूँ रेडियो एफएम 107 सुनकर मेरा इंटरेस्ट ज्यादा हो गया रेडियो के साथ। ऐसे ही है भाई, हम मोहब्बत करा देते हैं, ये क्रेडिट हमें दीजिए आप, हमजा भाई हम खाएंगे ये क्रेडिट। और रेडियो सॉफ्टी में जो जो आरजे बनना चाहता है आ जाओ भाई। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम,
1: वालेकुम सलाम कबीर भाई, क्या हाल है?
0: मैं जी बढ़िया, आप सुनाए?
1: एकदम बढ़िया, और
0: बस भाई बढ़िया चल रहा है, आप सुनाए?
1: बस बढ़िया, आज तो आप कभी रानी मुखर्जी बोल रहे हैं, कभी प्रीति जिंटा बोल रहे हैं।
0: हाँ भाई दोनों को भगाएं क्या, टेंशन क्या है भाई? दोनों को भागना
1: किसी को नहीं है,
0: छोड़ना किसी को नहीं भाई, ना ना ना ना, ना, ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम हीरो है ना भाई, हम डिसाइड करेंगे,
1: सही बात है, हमारी मर्जी है,
0: हमारी मर्जी है भाई,
1: जिसको मर्जी उसको भगाएंगे,
0: बिल्कुल हमारे हिसाब से बनेगी वीर जरा, साफ सीधी बात,
1: सही बात है, सही।

0: आप बताइए मेरा भाई के रेडियो का अगर आपका नाम होता तो क्या नाम रखते अगर आपका खुद का रेडियो होता?
1: रेडियो
0: को? हाँ, अगर आपका खुद का रेडियो होता तो क्या नाम रखते?
1: ये तो कबीर भाई थोड़ा सा मुश्किल सवाल है।
0: आराम से सोचो, आराम से सोचो, अभी यही सवाल चल रहा है, आराम से सोचो और फिर कॉल करना, ठीक है?
1: ठीक
0: है मेरा भाई, रखो। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई जो आपने नाम लिखा ऑलरेडी वो रेडियो का है इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ, यूसुफ हैदराबादी भाई। एक मैसेज है भाई, आप जैसे बुलाओ सरवर भाई जैसे लोग हों तो मोहब्बत बनती जा सकती है। सरवर भाई और मैंने अगर शो कर लिया तो मोहब्बत रेडियो नाम नहीं रख पाएंगे, आपको बहुत जल्दी चेंज करना पड़ेगा और बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। हुसैन भाई लिखते हैं, भाई भाग जरा भाग, ये रेडियो का नाम है, चाहते क्या हो? वालेकुम अस्सलाम। एक और मैसेज है, रोहिन भाई लिख रहे हैं, रेडियो सॉफ्टी में आरजे की दाढ़ी सॉफ्टी कट की होनी चाहिए, ये शर्त है भाई। ये बिल्कुल इंटरव्यू के हिसाब से एकदम क्लियर कह रहे हैं, ये रेडियो का नाम रखा जाएगा रेडियो सॉफ्टी, और रोहिन भाई होंगे उसके क्रिएटिव डायरेक्टर, वो कह रहे हैं जो भी आरजे बनेगा उसकी दाढ़ी सॉफ्टी की शेप में होनी चाहिए, बात हो गई डन, ठीक है भाई, यही क्राइटेरिया है। एक भाई कह रहे हैं रेडियो ट्रस्ट नाम से खोलेंगे, ये तो पैसे ऐंठने की चाल लग रही है मुझे महफूज भाई। गप शप रेडियो, ये अमन भाई कह रहे हैं, आप बहन चुगली करें। एक मैसेज, आपसे मिल चुका हूँ स्टूडियो में, हाँ थैंक यू सो मच मेरे भाई, आपकी मोहब्बत है। एक मैसेज भाई, वन मोर, आज की आवाज़ ओनली विद कबीर, ओनली विद कबीर, पूरे दिन एक ही आरजे को सुनिए, अगर पक जाए तो बंद कर दीजिए। एक मैसेज, मेरा नाम जुमराती मियाँ कुवारी है, खुआरी है भाई, बहुत सॉलिड टाइप का नाम है आपका, ऐसा लगता है कि आप घोड़े पे दौड़ते हो जाएंगे मेरी तरफ, बढ़िया भाई। एक मैसेज है, श्रद्धा रेडियो, इस पे तो आपका भाई करेगा सारे के सारे, जो सुल्तान भाई सारे रेडियो सुबह से हो रहे हैं। एक मैसेज है, सुनो और सुनाओ रेडियो, हमारी सुनो और अपनी सुनाओ रेडियो। फिरोज भाई अगर ये रख दिया ना नाम, बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत लोग बहुत कम बोलने वाले आते हैं, आपने सुने ही होंगे। अजीज भाई कहते हैं, मैं नाम रखता नटखट, ओहो नॉटी हो रहा भाई अपना। एक मैसेज है, दास्तान रेडियो का नाम, हर किसी को सुनाओ। खुर्रम शहजाद भाई कह रहे हैं, ये कहानियों का रेडियो स्टेशन हो सकता है। एक मैसेज है, क्या शशका एफएम, अच्छा है अच्छा है। एक भाई कह रहे हैं, ओटीपी स्टेशन, वैसे बुरा नाम नहीं है ये, ओटीपी बहुत बढ़िया नाम हो सकता है, इस पे बहुत बढ़िया जिंगल बन सकता है भाई। एक मैसेज, सलाम कबीर भाई, आज सॉन्ग लगा दें तेरा दीवाना तेरे शहर में, आपने लगता है इंजीनियर मोहम्मद फैजान भाई, 4 बजे का शो नहीं सुना। तो एक मैसेज है, भाई तरस गए आपकी स्टोरी सुनने के लिए बिकॉज ऑफ द टाइम चेंज। भाई टाइम चेंज को 5:30 बजे है टाइम, 5:30 बजे आवेगी स्टोरी भाई, वाह उस टाइम पर आ जाओ, बढ़िया मौज करा देंगे आपको। एक मैसेज, सुन लो रेडियो, बड़ा लेजी नाम रखा गया है हमारे रेडियो का, नाम क्या है, सुन लो रेडियो, सुनो तो। साजिद अहमद साहब, जज़ाकअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। एक भाई कह रहे हैं, भाई 4 से 5 सच में मज़े आ गए, आप FM 107 पर सारे के सारे शोज़ कीजिए, ये कोई बात होती? मैं इस पे गाना चलाना चाहूँगा, खून चूस ले तो मेरा खून चूस ले। एक मैसेज है, ट्यून रेडियो नाम है, ओहो आप 4 बजे आते हो, आजकल भाई 4 बजे आ रहे हैं, जब तक फजील भाई नहीं है उनकी प्रॉक्सी अटेंडेंस लगा रहे हूँ भाई मैं, प्रॉक्सी चल रही है प्रॉक्सी। एक मैसेज, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग उमर शहजाद साहब, क्या हाल है भाई आपके? अरे भाई साहब एक और नाम आया है, सुन लो भाई को, आए आसिफ भाई छुट्टी में नहीं गए, अरे इनको जहाज पे चढ़ाओ भाई, छुट्टी पे जाओ यार, है? एक मैसेज है, FM रफ्तार अच्छा नाम है। एक मैसेज, भाई मैं सुबह में सुनता था आपको, अभी तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, आई नो मेरा भाई, क्या कर सकते हैं, ये निज़ाम है हमारे रेडियो स्टेशन का, तो टाइम बदलता रहेगा। एक मैसेज है, FM हंगामा रेडियो स्टेशन विद टैगलाइन दिल से हंगामा। यूसुफ भाई नाम बहुत बढ़िया है, टैगलाइन में थोड़ा काम हो सकता है, टैगलाइन जैसे आपने लिखा है दिल से हंगामा, इसको कर सकते हैं हंगामा दिल में, थोड़ा पलट देते हैं, ट्विस्ट कर देते, हंगामा रेडियो अच्छा नाम है, अच्छा नाम है। एक मैसेज है, 2 बजे नाम सुना होगा, हम किसी की नहीं सुनेंगे शो, हम किसी की नहीं सुनेंगे शो। तनवीर भाई, आसिफ भाई कह रहे हैं, भाई तुलसी कुमार, कौन तुलसी कुमार, अरे ये बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, इनको जहाज पे चढ़ाओ, जहाज पे चढ़ाओ इन्हें, तुलसी कुमार कहाँ से आ गई इसमें, कहाँ से आई तुलसी कुमार इसमें। अमन भाई कह रहे हैं, सुबह को सुन के नींद नहीं आती अब, सुबह को सुन के तो नींद आती है अब, अच्छा उल्टा कह रहे हैं, मैंने उल्टा पढ़ लिया, सॉरी मेरी गलती है। एक मैसेज है, सपना FM, सपना FM सपनों की दुनिया, ये तो रात को 12 बजे शुरू होना चाहिए आपके सारे शोज, अगर सपना एफएम है आपका तो, और सपना चौधरी से शो भी करा लेना। एक कह रहा है पंजाब रेडियो, पंजाब रेडियो है भाई, बहुत बढ़िया रेडियो स्टेशन है। एक में से रेडियो हम तुम, वेरी नाइस, ये नाम पता मैंने बहुत पहले सोचा भी था, इसके इस नाम का मैंने शो भी किया है। एक मैसेज, अच्छा टैगलाइन चेंज कर लिया आपने हिसाब से यूसुफ भाई, हम तो आपको तो पता ही है जमीन हड़प लेते हैं हम, तो आपका रेडियो स्टेशन भी हड़प लिया हमने टैगलाइन चेंज करके। एक और मैसेज आया है, रेडियो कबीर सर के फ्रेंड्स या कबीर सर के फैंस, भाई फैंस ना बहुत भारी वर्ड लगता है, मैं इतना इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल नहीं पाऊंगा। एक मैसेज, रेडियो रॉक, रेडियो रॉक है आई थिंक इट्स आई थिंक एक अफ्रीकन स्टेशन है और बहुत बढ़िया स्टेशन है वो। एक मैसेज, कबीर एफएम, बस आप दुआ करें जेब में वही है 10-15 लाख रियाल हो जाए फिर खोल लेंगे। मुदस्सिर भाई क्या दिक्कत आ रही है। एक मैसेज, भाई जाते जाते सोच रहा हूँ सुनता जाऊं भाई, रात में नींद, क्या रात में नींद आएगी, वो तो आई जाएगी। फिर ये तो करो, रुको इनकी जरा हालत पता कर लेते हैं क्या चल रही है, आज इनका सफ़र भी है तो इस सफ़रिंग में इनको कॉल कर ली जाए, क्या हाल है भाई के, रुको कॉल कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अच्छा मैंने क्या चल रहा है भाई का,
2: बढ़िया भैया आप बताइए क्या हाल चाल है।
0: अरे जहाज वहाज में चढ़ो भाई।
2: अरे क्या है भैया जहाज में चढ़वा रहे हो हमको अभी।
0: भाई हम चढ़वा के रहेंगे, देखिए आपका जो बैग है वो छूट गया है, उसको लेके जाइएगा और एक ठो मिठाई का डब्बा लेके आइएगा, ठीक है।
2: एक ठो भैया, एक ठो में क्या होगा तुम्हार,
0: हमारा जो पेट है हम डाइटिंग पे हूँ ना, एक ठो ले आइएगा तो हो जाएगा।
2: तो हमारे दोस्त बात कह रहे हो, तुम तो सरोवर भाई के दोस्त हो।
0: हम सरोवर भाई का घनिष्ठ मित्र हूँ।
2: एफएम रेडियो पे एक बवाल हुआ, बोले सरोवर भाई और कबीर भाई दोनों आपस में जाते रात में खाना खाने के लिए, मगर वहां से खाने में से एक दाना नहीं बचा के लेके आते। वो कैसे?
0: हाँ वो कैसे बताइए तो।
2: वो कैसे कल सवाल में, कल कबीर भाई को मैसेज करूंगा, सरोवर भाई को बताओ भाई कैसे।
0: ये पता है आपने कैसा सवाल किया, ये तुमने भाई यूसुफ भाई वाला, आसिफ भाई वाला सवाल किया है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तुम्हें
2: किसने देखा।
0: ये किसी दिन मैं पूछ लूंगा भाई, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, सही जवाब देने वाले कोई ना।
2: जंगल में मोर नाचा तो
0: हाँ तो भी रहे जंगल में है। पकड़ा गया भाई, पकड़ा गया, बोल दिया खुद कबूल कर लिया। अभी आ रही है यूपी की पुलिस तुम्हारे पीछे टाई टाई करने। और
2: मतलब तुम चाहते हो मतलब हमको वहाँ पर खड़ा करे उस जगह पे जहाँ पर जाना नहीं चाहते लोग।
0: हाँ बिल्कुल मैं चाहता हूँ।
2: अरे भैया जुर्म ना करो हमारे कानपुर वाले भैया।
0: आसिफ भाई कब की फ्लाइट है, कितने बजे की फ्लाइट है
2: भाई? 10 बजे की फ्लाइट है, 7 बजे यहाँ से निकलूंगा।
0: 10 बजे की फ्लाइट है, 7 बजे निकलेंगे। अच्छा
2: सोच रहा था भाई को सलाम दुआ कर।
0: देखो मैंने
2: आपको मैसेज किया था, आपने पढ़े कि नहीं पढ़े वो मैसेज?
0: वो मैंने पढ़ लिया भाई, मैंने पढ़ लिया, हो जाएगा काम, टेंशन मतलब तो वो आप ही के पास आएंगे। अरे बेफिक्र हो जाओ, ये बताओ इतनी एविएशन की स्टोरी सुनाई है तो याद रख के चढ़ना जहाज में, ठीक है? बटन वटन पता है ना कौन सा बटन कहाँ पर है? उतार लोगे जहाज?
2: भाई मेरे को तो ये सोच रहा हूँ, हाँ? हवा में जाने के बाद प्लेन सीधा उड़ेगा या ऊपर जाएगा सीधा?
0: देखो मैंने सारी कंडीशन बता दी है जहाज कैसे कैसे उड़ सकता है, अब आपको ट्रेनिंग दी थी मैंने, कहानी ध्यान से सुनी तो आप संभाल लेंगे जहाज को, ठीक है पायलट साहब?
2: तो भाई मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी सुना दो भाई, टाइम हो गया वैसे भी भाई।
0: भाई पायलट की कहानी को नहीं, आज तो बढ़िया सी कहानी है, जहाज वाली मिली को नहीं भाई।
2: भाई तू तो कह रहा था भाई की सुनावेगा तू, मैंने
0: जो कहानी मिली नहीं भाई, जहाज की कोई बढ़िया सी कहानी ना मिली भाई, लेकिन आज घनी सूत्री कहानी है।
2: इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारी लास्ट कहानी का।
0: ठीक है भाई ठीक है, सुनो लास्ट कहानी हमारी काय को होती तो हमारी होगी लास्ट कहानी।
2: अरे बेटा मेरी लास्ट कहानी भाई, मैं अपनी कहानी लास्ट बता रहा हूँ। कबीर भाई, कबीर भाई मैं इतना वेला हूँ भाई, इतना वेला हूँ, कल मैंने जाके ना भाई इतना इतना इतना स्क्रॉल किया, इतना स्क्रॉल किया भाई पूछो मत, मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया।
0: कहाँ तक पहुंचे मैं जानने में इच्छुक तो नहीं हूँ, कुछ गलत जगह पे पहुंचो के फिर भी कहाँ पहुंचे।
2: भाई मैं आपकी बात कर रही हूँ।
0: अच्छा मेरी बात, ओहो इतने शरीफ अकाउंट में पूछे थे, क्या क्या मिला मेरे अकाउंट में फिर आपको?
2: अरे भाई मैं एकदम परेशान हो गया, क्या? ये बंदा पहले एकदम डेढ़ फसली होगी नकली था।
0: भाई उर्दू के लफ्ज समझ में आते हैं, उर्दू के वर्ड्स पता है, अल्फाबेट्स?
2: तो मैं
0: पहले अलिफ था, अभी नून हो गया हूँ, समझ
2: रहे?
0: तो ये वाला सीन हो गया भाई, इसलिए जो मेरा
2: वो वो बहुत अच्छा लगा भाई तुम्हारा समझ, सबसे पहले उधर फिर बाद में मैं देखा अरे भाई तो डेढ़ फंस लिए अचानक से, अभी मैं बोला भाई भोजपुरी कैसे हो गए
0: मेरा बिफोर और आफ्टर मेरी प्रोफाइल में मिल जाएगा भाई, किधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है
2: नहीं नहीं भाई बहुत प्यारे भाई, बहुत प्यारा लगा भाई, मैं कल इतना वेला बैठा था कि मैं भाई को चेक करते बैठा था
0: Thank
2: भाई कहाँ से कहाँ तक खत्म ही नहीं हो रहे, खत्म ही नहीं हो रहे भाई इतना भाई
0: बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत मेरी जान, और एक्टिव होना ही पड़ेगा, थैंक यू सो मच मेरे भाई ख्याल रखो okay, और आज से सुन के जाना फिर आराम से फ्लाइट में चढ़ना साथ खड़े से भाई, ठीक है भाई ओके मेरे भाई अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। और आसिफ भाई जहाज में चढ़ने वाले हैं, इनके लिए सब दुआ करें, मैं कह रहा हूँ आसिफ भाई मुबारक हो भाई, अल्लाह हिफाजत करे सलामत रखे भाई सफर में जाने के टाइम पे, ऐसी बातें करते हैं आप बताइए, इनको खौफ ही नहीं है, एक मैसेज है भाई जाने दो आसिफ भाई को डरा क्यों रहे हो मजा आता है मुझे, एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई आसिफ भाई को बोलो पार्सल लीजिएगा क्या, मुसद्दिक भाई कह रहे हैं पार्सल लेंगे क्या, नदीम भाई कह रहे हैं अनहोनी रेडियो स्टेशन, कोई भी आरजे कोई भी शो कभी भी चलेगा रेडियो पर नदीम भाई कह रहे हैं रेडियो का नाम रखता भाई मैं रखता अनहोनी रेडियो, कोई भी कभी भी आ रहा है, बीच में से आरजे भाग जा रहा है, दूसरा वाले आरजे आ रहा है केओस आई डोंट वॉन्ट पीस आई वॉन्ट प्रॉब्लम्स, एक मैसेज भाई ट्रेंड के साथ चलो तो नाम अच्छा नाम है मैं बोल नहीं सकता हूँ मोहसिन भाई क्या कर रहे हो, एक मैसेज है रेडियो सुन सुन ये इतने आर और एस के चाह रहे हो वेज भाई, एक मैसेज है रेडियो सलाम और हाला रेडियो हाला ओला है अपने पास चलेगा ओला, कह रहे नहीं पहली फुर्सत से निकलो, कह रहे हैं मुजद्दिक भाई आपको कह रहे हैं पहली फुर्सत से निकलो मेरा पास भाई जगह खोनी सामान रखने की दो मुंबई वाले आपस में भरोसा ही नहीं कर रहे एक दूसरे पे भाई, इसका बैग में कुछ भी निकल सकता वो हमारे ऐलान होता है ना लेवारिस वस्तु से सावधान कृपया ध्यान दें ठीक है भाई ठीक है एक दूसरे से भरोसा नहीं है, है ही नहीं भरोसा, अभी कोई आ जाएगा इंग्लैंड का इनसे बोल देगा कैन यू प्लीज टेक माय वॉलेट एंड माय अटैची भाग के पकड़ेंगे भाग के, अरे सर बिल्कुल सर कैसे नहीं सर आपका सामान तो सबसे पहले पूछूंगा भाई मैं एक मजे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है क्या है, उनको बोलो जोगेश्वरी ही ले जाना है, अरे वो आप पे भरोसा ही नहीं कर रहे हैं जोगेश्वरी ले जाने की तो बात ही अलग है यार, मुंबई की पब्लिक बोले तो तकलीफ आसिफ भाई भाई साहब एक फ्लेवर मांगा है उन्होंने लेते आइएगा हम मंगा लेंगे, कहे भैया स्टोरी टाइम, अच्छा स्टोरी टाइम हो लिया, अमन भाई क्या है हम बातों बातों में लग गए इधर की उधर हो गई, कहे कबीर भाई बाई मिस्टेक आई वाज सेंडिंग मैसेज ऑन, उधर ही भेज दो उधर ही सुन लो फिर हमें काहे मैसेज कर रहे हो मेरी जान एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम आई डोंट वांट पीस आई वांट प्रॉब्लम, ये मुझे मेरा फेवरेट मीम में से एक है स्पेशली जैसे बोला गया तो क्या कहते हैं क्या कह रहा था मैं, एक प्रोमो के बाद आते हैं सीधा कहानी की तरफ, अच्छा कहानी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, आज की जो कहानी है इट्स क्वाइट कन्फ्यूजिंग इन अ वे एंड बहुत वियर्ड स्टोरी, बहुत वियर्ड स्टोरी है, मैं ये स्टोरी बताता हूँ ज़्यादा बड़ी नहीं है बट क्योंकि इसका नेचर बहुत वियर्ड है तो इसलिए मैंने इस स्टोरी को चुना है, एंड आई काइंड ऑफ ऑल्सो थॉट के ये किसी किसी को बहुत अच्छी भी लग सकती है, तो वही है जैसे आजकल के बच्चे करते हैं ना 6969 बोलते रहते हैं 6767 तो वैसे ही जोगेश्वरी वाले क्या रखा है जोगेश्वरी वाले गुलदस्ता देते सामान दिखाते एक सेकेंड क्या लिखा जोगेश्वरी वाले गुलदस्ता देते सामान दिखाते रास्ता, ये क्या कह गए आप, वैसे वियर्ड चलेगा भाई क्योंकि आई डोंट वांट पीस आई वांट प्रॉब्लम, अब से ये मीम हो गया हमारा वियर्ड कहानी चलेगी आई डोंट वांट पीस आई वांट प्रॉब्लम्स, एक प्रोमो के बाद मिलते हैं एंड देन सीधा कहानी ओके, सो जस्ट वेट एंड जाना नहीं,
3: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर, दिल से देसी
4: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए,
5: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है, और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो, द रिक्वेस्ट शो। हर शाम 4 से 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
0: हाँ जी, तो वादे के मुताबिक एक प्रोमो के बाद ही मैं आ चुका हूँ, ज़्यादा टाइम आपका इधर उधर नहीं करवाएंगे। अच्छा, तो आज की जो कहानी, जैसे मैंने कहा, ये स्टोरी बस वियर्ड है। आई डोंट नो कि कौन से इसको नेचर में से पुट करूँ, बट पहले तो मैं स्टोरी निकाल लूँ बिकॉज आई हैव टू बी रेडी। और किधर गया मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। सबसे पहले डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं। कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती। एफएम 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा। लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है, एंड असली है इसलिए इसकी वियर्डनेस और भी ज्यादा वियर्ड लगने लगती है। सो वॉल्यूम बढ़ा रखी होगी आपने, आई होप। लेट्स बिगिन। ओके, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, और आज का जो किस्सा है इसे सुनाने के लिए 90s के एरा में चलते हैं जरा। 1994, 10 जून की तारीख, और ये सुबह का वक्त था। ठीक है, सुबह के वो अर्ली आवर्स, समझ लीजिए 3:30-3:30 के करीब हो रहे थे। और एक खातून थी जिनका नाम था डेबरा होय। डेबरा जो थी वो सो रही थी इस वक्त, चैन की नींद दे रही थी, लेकिन उनकी चैन की नींद एकदम से टूटी। वो बीच रात में बहुत ही घबराते हुए उठी। इस वक्त वो अपने हस्बैंड के साथ अपने रिश्तेदारों के घर आई हुई थी, कुछ दिनों के लिए वहां उन्हें रुकना था इन सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया। मगर एक अजीब सी अर्ज, एक अजीब सी घबराहट हुई और वो एकदम से उठ के बैठ गई। एंड उनके दिल में बार बार आ रहा था कि उन्हें बस यहां से निकलना है। उनका दिल बार बार उनसे कह रहा था कि कुछ है, बस समझाना मुश्किल है, बस उठ के मैं भाग जाऊं यहां से। एंड दिस वाज अर्ली आवर्स, तो इस वक्त ये सोच आना वाज रियली वेयर्ड टू हर। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को जगाया और उन्होंने बताया कि मुझे अजीब सा लग रहा है, मुझे लगता है कि हमें यहां से फौरन चले जाना चाहिए। एंड उनके हस्बैंड ने बोला, डेबरा, इट्स ओके, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, यू आर हाफ असलीप, हो सकता है कि वो सपना अभी भी तुम्हारे जहन में, इट्स ओके, रिलैक्स बाबा, यू आर ओवर रिएक्टिंग। एंड डेबरा ने भी जवाब में कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, मे बी आई एम ओवर रिएक्टिंग, ठीक है सोने की कोशिश करती हूँ। एंड वापस से सोने की कोशिश करने लगी, पर वो जो सोने की वो कोशिश कर रही थी, वो कितनी भी कोशिश करें, उनके दिल से, उनके दिलो दिमाग से इनफैक्ट आवाज आ रही थी कि कुछ गड़बड़ है, कुछ है, बता नहीं पा रही वो खुद को भी और ना ही उसको उसका इजहार कर पा रही है। मगर वो फीलिंग उनके दिल में बढ़ती चली जा रही थी कि बस वो उठें और यहां से बस चली जाएं, नहीं रुकना है यहां पे। एंड वो जो फीलिंग थी उस वजह से वो नहीं सो पाई, वो फिर से उठ के बैठ गई और इस बार वो तैयार थी, मतलब वहां से जाने के लिए। उन्होंने अपने हस्बैंड को जगाया और बोला, हनी आई कैन नॉट, प्लीज लेट्स लीव राइट नाउ। एंड हस्बैंड ने बोला, कम ऑन डेबरा, कुछ नहीं है यार, सपना है तुम्हारा। बोले, नहीं प्लीज। वो एडमेंट हो गई, एकदम ढीट हो गई वो इस बात पर, अड़ी रही, बोला नो, वी आर लीविंग राइट नाउ, अभी चलना है हमें। एंड हस्बैंड ने देखा डेबरा की तरफ और डेबरा का हस्बैंड वाज रियली शॉक कि उसकी बीवी बहुत ज़्यादा सीरियस लग रही है। एंड उसके इमोशंस की ग्रेविटी को देखते हुए उसने कहा, अच्छा ठीक है डेबरा, ओके फाइन। इन दोनों ने जल्दी जल्दी अपना सामान लपेटा और भगदड़ में सामान लपेटा विद इन मिनट्स, और दोनों ने रिश्तेदारों के लिए एक कागज पे अपने एबसेंट होने की वजह लिख के कि हम किसी इमरजेंसी की वजह से निकल रहे हैं, और वहां से निकल गए इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स। अभी भी बाहर अंधेरा था, ये ड्राइव करते हुए जा रहा था कपल, और जहां से ये ड्राइव करते हुए जा रहे थे अपने घर की तरफ लौट रहे थे, वहां पे बहुत सारे डेंजरस टर्न्स थे, बहुत शार्प वाले टर्न्स, वो वाले मोड़ आते हैं ना जब आपको मुड़ने से पहले पता भी नहीं है कि आप जिस तरफ मुड़ रहे हैं उस तरफ क्या है, उतने शार्प टर्न्स। क्योंकि ये लोग लौट रहे थे जिस जगह से, उसे कहते हैं बुलियन बेंड, उसका नाम रखा गया है बुलियन बेंड। ये बहुत ही विंडी रोड है, हवाएं बहुत तेज लगती हैं, क्योंकि माउंटेन के एक बड़ा सा पहाड़ है उसके अक्रॉस बनी हुई, उसकी गोल गोल गोल गोल गोल गोल, आप जैसे रोड्स पे चलते चले जाएंगे वैसे उतरेंगे, तो मोड़ आते चले जाएंगे और इस सारे मोड़ बड़े शार्प टर्न्स होंगे। दिस वाज अर्ली मॉर्निंग, अंधेरा भी था और बहुत ही केयरफुली उसका हस्बैंड ड्राइव कर रहा था, अभी अभी नींद से उठा था। ये समझ लीजिए कि एक गलत टर्न, एक गलत टर्न

और उसके बाद गाड़ी माउंटेन से सीधा हजारों फीट नीचे जाएगी। खैर 15-20 मिनट तक ये ड्राइविंग करता रहा। डेब्रा का हस्बैंड और डेब्रा बैठी हुई थी, बहुत टेंस थी, उन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट इज हैपनिंग। और इन दोनों के अलावा इस रोड पे अभी कोई भी नहीं था, कंप्लीट साइलेंस। फिर एक टर्न आया और ये बहुत शार्प टर्न था। जैसे ही गाड़ी मोड़ी राइट साइड पे, डेब्रा के हस्बैंड ने, डेब्रा ने देखा कि ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, सीधे हाथ की तरफ रोड पे, कुछ जमीन पे पड़ा हुआ है। दूर से लग रहा था कि शायद कोई बैग है या मे बी कोई डेड एनिमल है, समझ नहीं पा रही थी वो। उसने अपने हस्बैंड को बोला धीरे चलाना, थोड़ा धीरे चलाओ। और वो धीरे धीरे चलाता हुआ उस चीज के करीब पहुंचा जो डेब्रा को बहुत दूर से नजर आ रही थी। उस पर जब गाड़ी की लाइट पड़ी तब भी क्लियर नहीं हुआ, तो गाड़ी को थोड़ा साइड में लिया और फिर उतर के देखा। जब उसने देखा, दूर से देखा था इस वक्त, तो वो बहुत ज्यादा डर गई थी क्योंकि वो एक और औरत की बॉडी थी। और डेब्रा जो थी वो फौरन दौड़ी गाड़ी की तरफ, बंद किया। और उसका हस्बैंड भी डर चुका था क्योंकि उसने भी देखा। बोथ ऑफ देम वर रियली स्केयर्ड। और अभी बिना बात किए, एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन भी नहीं करी, उसने गाड़ी सबसे पहले स्टार्ट करी, गियर में डाली एंड गाड़ी चल रही थी। एंड दोनों के दोनों इस वक्त पैनिक कर रहे थे। हस्बैंड बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था, रुकूं कि ना रुकूं, क्या करूं, रुकना चाहिए, मे बी वी शुड हेल्प हर, या फिर क्या क्या करें, शायद वो जिंदा हो, लेट्स स्टॉप एंड हेल्प हर। और डेब्रा ने बोला नो, तुम गाड़ी चलाते रहो, ये पक्का कोई ट्रैप है, ये पक्का कोई ट्रैप है, अगर हम मदद करने उतरेंगे तो कुछ ना कुछ होगा, कोई आ जाएगा, आई डोंट नो, जस्ट कीप ड्राइविंग। एंड ये बहुत केओटिक सिचुएशन थी गाड़ी में, क्योंकि इनके अलावा कोई और था भी नहीं उस वक्त। पर इन दोनों ने डिसाइड किया, यू नो व्हाट, आगे जाएंगे, एक पे फोन आएगा तो पे फोन से हम कॉल करते हैं पुलिस को। इन्होंने सब बताते, इनकी किस्मत अच्छी थी, थोड़ी ही दूर की ड्राइव के बाद, क्वार्टर माइल अवे, इनको एक रेंजर स्टेशन दिखा जिसकी पार्किंग लॉट में एक पेफोन लगा हुआ था। डेब्रा ने भाग के पेफोन से पुलिस को कॉल करी, पुलिस को सब बताया। और पुलिस वालों ने फोन पर डेब्रा को बोला कि मैम रिलैक्स, हम बस कुछ देर में पहुंच रहे हैं, आप वहां से प्लीज हिलिएगा नहीं। एंड चंद मिनटों में पुलिस वाले डेब्रा के पास पहुंचे। ये दो पुलिस रिस्पॉन्डर्स थे जो पुलिस की गाड़ी में अर्ली आवर्स में पहुंच चुके थे। उसने बताया कि उसने क्या क्या देखा। यू नो ऑफिसर, आई थिंक अप देयर उस रोड पे एक शार्प टर्न के पास वहाँ बॉडी। पुलिस वाले ने पूछा आपको पता है एग्जैक्टली कौन सा टर्न है? डेब्रा ने बोला मैं भूल भी नहीं सकती हूँ, वहीं पर है। और पुलिस वाले ने बोला ओके फाइन, आप ड्राइव कीजिए, आपके साथ साथ हम ड्राइव करेंगे, और जिस टर्न पे आपको लगता है कि वहाँ पे बॉडी है, आप उस टर्न से 200-250 मीटर की दूरी पर रुक जाइएगा, बाकी हम देख लेंगे। तो अब दोनों गाड़ियां साथ में, नाउ इट्स अप हिल ड्राइव, एंड दोनों गाड़ियां जा रही थी। डेब्रा के हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, डेब्रा बैठी हुई थी, और उनके साथ में चल रही थी पुलिस की गाड़ी। एंड दे वेंट अप। डेब्रा उसके हस्बैंड वो टर्न को कभी भूल नहीं सकते। जैसे ही वो शार्प टर्न उन्हें दूर से दिखा, उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी। पुलिस वाला गाड़ी साइड में लेके आया, पुलिस वाले ने बोला यही वो टर्न है? डेब्रा ने बोला यस ऑफिसर, यही वो टर्न है, प्लीज आप जाके देखिए। पुलिस वाले ने बोला ओके फाइन, आप लोग जाइए, वापस उतरिए एंड वेट फॉर अस, विल बी राइट बैक। और डेब्रा और उसके हस्बैंड वेट कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उनकी नज़रों के सामने पुलिस की गाड़ी गई, मुड़ी। चंद मिनटों के बाद वो मोड़ की वजह से पुलिस की गाड़ी भी दिखना बंद हो गई। वो वेट कर रहे थे, वेटिंग। और उसके बाद अचानक से वो पुलिस की गाड़ी वापस आई। वापस आके पुलिस वाला उतरा और बोला मैम आई एम रियली सॉरी, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं है। एंड डेब्रा ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई। उसने बोला देखा मैंने कहा था ये कोई चाल होगी, और ऑफिसर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने देखा है वहाँ पे, आई एम नॉट लाइंग। और पुलिस वाले ने बोला मैम लिसन टू मी, हमें यकीन है, वी बिलीव यू, मगर राइट नाउ वहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप लोग सेफली घर पहुँचे, रिलैक्स, घर चले जाइए। एंड डेब्रा और उसके हस्बैंड बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे दोनों के, व्हाट एग्जैक्टली वी सॉ, मतलब गाड़ी से उतर के हमने देखा है, वी आर क्वाइट श्योर, हम इतने भी नींद में नहीं, इनफैक्ट नींद तो कब की उड़ चुकी है, ये कैसे हो सकता है। एंड दोनों

इसी कंफ्यूजन में घर पे पहुंच गए। जो दो रिस्पोंडिंग ऑफिसर्स थे ये भी अपनी पुलिस की गाड़ी में पुलिस स्टेशन पहुंचे। अब ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स आपस में बात कर रहे थे कि यार कितना ऑड है ना, कितनी अजीब बात है, उसने देखा भी होगा, पता नहीं सच कह रही नहीं कह रही। एंड दोनों की बातें चल रही थी इस मोड़ के बारे में एंड द इंसिडेंट दैट हैपेंड। और इतने में एक तीसरा ऑफिसर वहां पे आया पुलिस स्टेशन में, जिसका नाम था रिच स्ट्रेसर। मिस्टर स्ट्रेसर जो थे वहां पर पहुंचे, उन्होंने दोनों को बात करते हुए देखा, उन्होंने बोला क्या हुआ भाइयों। तो दोनों ऑफिसर्स ने बताया कि यार एक वो औरत थी डेबरा, वो अपने हस्बैंड के साथ थी, शी सॉ अ बॉडी ये बुलियन बैंड पे, फिर हम गए हमने देखा कुछ था ही नहीं। अब रिच स्ट्रेसर जो तीसरा ऑफिसर था, उसने जैसे ये नाम सुना बुलियन बैंड, उसे कुछ याद आया, उसने कहा क्या नाम बताया तुमने, बुलियन बैंड? तो उन्होंने बोला यस। वो गया और उसने एक फाइल निकाली, वो थी मिसिंग रिपोर्ट की फाइल। उस मिसिंग रिपोर्ट में एक यंग लड़की की गुमशुदगी की पूरी फाइल थी, रिपोर्ट छापी गई थी। लड़की का नाम था क्रिस्टीन स्कबिश और उसका बेटा था, बहुत यंग था, उसका नाम था निक। इन दोनों की मिसिंग रिपोर्ट थी और ये दोनों लास्ट टाइम देखे गए थे बुलियन बैंड पे। रिच को लगा ये अजीब सा इत्तेफाक है। एनएच ने डिसाइड किया कि यू नो व्हाट, मैं थोड़ी सी नींद ले लेता हूँ, अर्ली मॉर्निंग मैं इसको इन्वेस्टिगेट खुद करूँगा। उसने दोनों ऑफिसर्स को ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी, मगर सीधा सोने चला गया। एंड ही वोक अप इन लाइक टू एंड हाफ आवर्स और थ्री आवर्स, और फौरन उठ के, अगेन इट इज़ वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, और वो सीधा जल्दी से उठ के पहुँचा एग्जैक्ट स्पॉट पर जहां पर डेबरा ने बताया था इन दोनों ऑफिसर्स को, उसी मोड़ पे बुलियन बैंड पे। एंड वहां पे जब ये पहुंचा तो उसे वहां पे एक बच्चे का जूता मिला, शू मिला। उसने इधर उधर देखा कि कुछ और भी शायद मिल जाए, मगर और कुछ भी नहीं मिला। कोई सड़क पे स्किड मार्क्स नहीं थे, देयर वाज नो ब्लड, नो डिब्री, नथिंग। फिर एक गार्ड रेल की तरफ हो गया। गार्ड रेल बेसिकली ताकि कोई गिर ना जाए तो एक पूरी रेलिंग बनाई जाती है ना कि उस पर आप खड़े हो सकते हैं, लीन करके देख सकते हैं। तो वो गार्ड रेल की तरफ बढ़ा, इसी मोड़ की गार्ड रेल पे, और उसने वहां से नीचे की तरफ देखा। जब उसने नीचे की तरफ देखा तो बस पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे थे। फिर थोड़ा और गौर से देखा तो उसे कुछ नजर आया, जैसे शायद उसने कपड़ा देखा हो। केयरफुली वो नीचे की तरफ गया एंड उसने क्लियरिंग की तरफ देखा तो उसे लगा अरे कुछ और भी है, और ये बहुत ज्यादा नीचे था। तो उसने कहा ठीक है, व्हाई नॉट गो। वो नीचे और चला गया। जब वो नीचे बिल्कुल क्लियरिंग में पहुंच गया, पेड़ों के बिल्कुल बीच में, वहां पर पहुंचने के बाद उसे बहुत हैरानी और बहुत परेशानी हुई। वहां पे एक रेड क्रैश हुई हुई सेडान गाड़ी थी, वही सेम गाड़ी जो कि रिपोर्ट में लिखवाई गई थी क्रिस्टीन के खोने के बाद, कि क्रिस्टीन स्कबिश एक रेड सेडान में है और वो मिसिंग है। ये वही रेड सेडान थी। एंड ऑफिसर रिच वहां पर पहुंचे, सबसे पहले ड्राइविंग की साइड गए, उन्होंने देखा तो उनका दिल जैसे सहम गया, बिकॉज ड्राइविंग साइड देखने के बाद ही कुड कंफर्म कि ड्राइविंग की तरफ जो बैठी हुई है, जो अब जिंदा नहीं है, वो है क्रिस्टीन स्कबिश। शी वॉज डिसीज्ड, कोई चांस नहीं है उसके बचने का। फिर वो पैसेंजर साइड की तरफ गया क्योंकि उसे वहां पे एक मूवमेंट सुनाई दी, और पैसेंजर साइड की तरफ वो गया तो वो बहुत ज्यादा हैरान था। वहां पे क्रिस्टीन का बेटा जो बहुत छोटा था, वो निक, वो जिंदा था, उसका बेटा वाज अलाइव बट बेयरली, मतलब 5 दिन हो चुके थे मिसिंग को, तो उसने खाया पिया कुछ भी नहीं था, बट ही वॉज अलाइव। इनफैक्ट जब निक को फॉरन हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने बोला कि अगर 1 घंटा भी देर होती और इसे नहीं ढूंढा जाता तो कोई चांस नहीं था इसके बचने का। अथॉरिटीज ने जो थ्योरी लगाई, उनका यह कहना था कि क्रिस्टीन ड्राइव करती हुई जा रही होंगी अपने बेटे के साथ, और उसके बाद शी माइट स्लेप्ट, उसके बाद उन्हें नींद आ गई और वो स्टेयरिंग व्हील पे सो गई, और जिस वजह से इन शार्प टर्न से मुकाबला नहीं कर पाई एंड गाड़ी क्रैश हो गई। रिच ने फिर सोचा कि यार डेबरा को जो दिखा, शायद हो सकता है कि क्रिस्टीन एक्सीडेंट के बाद ऊपर आई होगी,
बोल नहीं पा रही होगी और शायद चाह रही होगी कोई उसे देख ले, कोई मदद करे, फिर शायद अपने बेटे की वजह से वो शायद नीचे चली गई होगी। मगर ये थ्योरी इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, क्योंकि क्रिस्टीन जब क्रैश हुई ये गाड़ी, बाय द वे उसकी रिपोर्ट में ये भी आया ऑटोप्सी रिपोर्ट में कि शी डाइड ऑन इम्पैक्ट, मतलब गाड़ी जैसे ही गिरी देयर वाज नो चांस, वो इम्पैक्ट पे ही डाइड, और वो भी 5 दिन पहले, डेबरा के वहां से गुजरने से भी 5 दिन पहले। सो देयर इज नो चांस कि जो बॉडी देखी वो क्रिस्टीन की थी, बट नो वन नोज फॉर नाउ। ये इतना वियर्ड किस्सा है कि समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑब्जेक्टिवली अगर आप देखें तो कितना कुछ हुआ इसमें, कितना कुछ हुआ। डेबरा जो है देर रात बेचैनी में उठी, उसे खुद नहीं पता वो क्यों बेचैन है, क्यों बाहर जाना चाहती है, वो क्यों बाहर जाने के लिए इतनी उतावली हो रही है, जैसे इतनी घबराहट है, वो खुद को नहीं समझा पा रही। डेबरा एक बॉडी देखती है जो अपेरेंटली है नहीं, और उसकी वजह से ऑफिसर्स बात करते हैं, और उनकी वजह से एक ऑफिसर वहां पर इन्वेस्टिगेट करता है, और इन्वेस्टिगेशन में उसे ये गाड़ी मिल जाती है, और एक बच्चा जो बस 1 घंटे दूर था वो बच गया। एंड इट्स अ रियल स्टोरी ऑन टॉप ऑफ इट। तो ये जो चेन ऑफ इवेंट्स इस पूरे किस्से में हुए हैं, ये समझा पाना है किसी को बताना, इट साउंड्स फिक्शन, लेकिन ये एक असली स्टोरी है। एंड वहां पे लोग अभी भी कहते हैं कि देयर मस्ट बी अ गार्डियन एंजल जिसने उस बच्चे को बचा लिया, पर कैसे क्या हुआ वी डोंट नो, बट दिस वॉज द स्टोरी। एंड इतनी ही है स्टोरी, एंड दिस इज द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी कि वो बच्चा बच गया, मगर वो कैसे बचा, उसके पीछे की जो कहानी है इज द थिंग दैट आई जस्ट टोल्ड यू, एंड इट इज सो कैप्टिवेटिंग। बाकी अब किस्सा ये आपके हवाले है, आप बताइएगा आपको कैसा लगा। 666-22107 पर, 666-22107 पर। आपको भी क्या मेरी ही तरह ये काफ़ी अलग और वियर्ड किस्म का किस्सा लगा, आपकी क्या थ्योरीज हैं, व्हाट डू यू वांट टू से, प्लीज़ बताइएगा। आई वुड लव टू नो कि आप इस पे क्या कहना चाहते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है, ये ऐसी एक चीज़ है जिसको समझा पाना मुश्किल है। आप माने तो भी ये कहानी है, आप ना माने तो भी ये कहानी है, समझ रहे हैं आप। ये सब कुछ हुआ है, इट्स इन पेपर्स, मतलब पुलिस की फाइलों में है ये, तो इसे डिनाई भी नहीं कर सकते, है ना। ये कोई वैसी स्टोरी भी नहीं जहाँ मैं बोलूँ ओ फिर भूत आया, वैसा भी कुछ नहीं है। सो देयर इज नो गोस्ट इन्वॉल्व्ड, मगर जिस हिसाब से ये हुआ है और जितने इवेंट्स उस बच्चे के बचने तक हुए हैं, वो अपने आप में कमाल के हैं। यू कैन कॉल इट पैरानॉर्मल, यू कैन कॉल इट सुपर नेचुरल, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, मगर दिस वॉज स्पेशली वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरीज, जो छोटी ज़रूर है लेकिन ये स्टोरी मुझे बेहद बेहद पसंद है। तो अगर आप कुछ कहना चाहें इस किस्से पर तो बताइएगा। 666-22107 नंबर है, 666-22107। एक भाई कह रहे हैं भाई मैंने सेम स्टोरी रील्स पर देखी थी, वेरी गुड, इसलिए मैंने ज़रा खुल के ही बता दी, बिकॉज मुझे ये स्टोरी बड़ी बांध के रखी हुई थी जब मैंने इसके बारे में पढ़ा भी था, तो मैंने कहा वाई नॉट, लेट्स शेयर इट। एनी वे 666-22107 नंबर है, 666-22107, ठीक है जी। जाना आपने एनी बेस्ट जगह पर हो आप, स्टे ट्यून्ड।

0: Absolute Cinema.
1: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।

भाई साहब बहुत सारे मैसेज आ लिए मेरे पास और थैंक यू सो मच आप सके इतने मैसेजेस करने का। आजम भाई ने मैसेज, आजम भाई थैंक यू भाई को बहुत सारा प्यार। फराज भाई थैंक यू सो मच। और जो भी मैसेज मेरे पास आ रहे हैं मैं एक साथ पढ़ूंगा सारे के सारे एकदम खुल के, क्योंकि बहुत सारे वॉइस नोट्स भी हैं। भाई रोंगटे खड़े कर दिए, सुपर थैंक यू सो मच शशांक भाई। मुझे सुनाने में मज़ा आया और आपको सुनने में मज़ा आया, बस ये चाहिए भाई। खादिम ने लिखा था पहले वेलकम टू द ओरिजिनल शो, थैंक यू भाई। भाई आज तो शुरू होती ख़त्म हो गई, 16 मिनट की कहानी है भाई, ज़बरदस्ती मैं इसको कैसे बढ़ाऊँ बताओ। डेबरा को धीरे धीरे गाड़ी चलवाता फिर मैं, और फिर डेबरा गाड़ी चला रही थी और फिर गाड़ी बढ़ रही थी और फिर धीरे धीरे मोड़ आया और फिर धीरे धीरे एक और मोड़ आया, तो ऐसे कर कर खींचनी पड़ती ना। कहानी छोटी थी, आई नो बट ये कहानी मुझे अच्छी लगी थी पर्सनली, इसलिए मैंने आप तक पहुँचा दी भाई। नदीम भाई आपका मैसेज पढ़ा जाएगा, बस जिंगल चला दें भाई जिंगल। चलो जी 3, 2, 1।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: हे बच के एक मिनट होलिए आ जाओ जी।

आई आई आई आई मैं दुआ वाला कभी एफएम 107 पे आज जरा मैसेज पढ़ते हैं कहानी पे क्या क्या है। एक मैसेज है डेबरी का, डेबरी का कह रहा हूँ डेबरा का क्या बना, उसका डॉक्टर खत्म हुआ कि नहीं है पाजी? क्या मैं भेजूंगा कहानी, मैं जरूर भेजूंगा। डर, अच्छा डर तो खत्म हो गया होगा भाई, मैं डेबरा मेरे फूफे की लड़की थोड़ी खत्म हो गया होगा डर अब तक तो। यूसुफ भाई कह रहे हैं कि कबीर अच्छी लगी, सिंपल बट वेयर्ड गूज बम्स, शायद वो लेडी को सेंस हो गया होगा एक इशारे से उस बच्चे की जान बचाने के लिए। अल्लाह ताला जिसको बचाना चाहे किसी भी तरीके से बचा सकता है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह भाई, ये तो फैक्ट है। वो जो औरत गायब हो गई उसका कुछ पता चला, वो औरत मिल गई थी ना गाड़ी के अंदर ही, क्रिस्टीन, शी डाइड बेसिकली ऑन इम्पैक्ट। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्बासी भाई, क्या लें मिलेगी स्टोरी। एक हमारे भाई हैं अरबाज़ भाई लिखते हैं, उन्होंने कहानी की बहुत तारीफ़ करी और यही बोला जो अभी यूसुफ भाई ने बोला कि अल्लाह ताला जिसको बचाना चाहे फिर कौन रोक सकता है। बाकी कहानी लंबी करने बोले सर, वो गोपी बहू अब नहीं दिखी, वह उसके ड्रामा उसकी तरह करते ना, गोपी बहू की तरह। एक मैसेज है कबीर भाई, जबरदस्त स्टोरी, थैंक यू सो मच फलक भाई साहिब, बहुत बहुत शुक्रिया। ईशान भाई कहते हैं भाई रोंगटे खड़े कर दिए, थैंक यू मेरा भाई। नदीम भाई ने मैसेज किया है।

वालेकुम, ये उमर शहजाद भाई कह रहे हैं सुपर म्यूजिक बैकग्राउंड था। अरे अपने बैकग्राउंड का म्यूजिक नोटिस किया? मैं शर्मा गया, थैंक यू सो मच। फरद भाई ने मैसेज किया है, भाई आपके दिल से देसी भाई मजा आ गया। डेवरा ने भाई साहब डबरा बजा दिया। एक मैसेज है, एक और है भाई, ऐसी स्टोरी थी गाड़ी चलते हुए डर लग रहा था। भाई ऐसी स्टोरी थी गाड़ी चलते हुए डर लग रहा था। अब्बासी भाई यहाँ पे तो कोई शार्प टर्न भी नहीं है, आप कहीं आप डेबरा को जानते तो नहीं है गलती से? घबराहट तो नहीं हो रही है? एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम, तौफीक अहमद भट्ट साहब कहते हैं जस्ट गेट आउट ऑफ वर्क एंड ट्यून इन टू लिसन टू योर प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम जानी, वेलकम। एक मैसेज है भाई, हम रेडियो का नाम बता दो, आप बोला नहीं। आपने रेडियो का नाम क्या बताया? रेडियो टुडे, इस नाम से है एक्चुअली में, पर अच्छा नाम है, गुड सिंपल नेम। एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम भाई, अल्लाह ने एक जरिया बनाया है बच्चे की जिंदगी के लिए, फैक्ट फैक्ट। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, हाय कबीर भाई, सुबह टाइम कम से कम मिला था स्टोरी सुनने का, अब नहीं सुन सकते, मैं भेज दूंगा आपको, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम कबीर अंकल, आयशा हियर, कैन यू प्लीज़ शेयर द स्टोरी? ऑफ कोर्स स्वीट हार्ट, आई विल शेयर द स्टोरी। यूसुफ भाई कह रहे हैं अच्छा, जो गाड़ी में लाश मिली उसी की थी? जी जी, जो गाड़ी में जो बॉडी मिली थी वो क्रिस्टीन की थी, शी डाइड ऑन इम्पैक्ट, दैट्स व्हाई या शी वाज फाउंड। गाड़ी जो शमाल रोड पे थी, अब क्या गाड़ी जो शमाल रोड पे थी अब। अब्बासी भाई डेबरा आपके साथ तो नहीं है, सच्ची बताओ मेरे को, मुझे शक हो रहा है डेबरा आपके साथ है, घबराहट हो रही है आपको, मुझे बताओ। नदीमा कह रहे हैं डेबरा से कुछ सीखो कबीर भाई, उसने किसी की जान बचाई, आप हर दूसरे दिन लोगों को निपटा देते हो। मुझे भी घबराहट से हो रही है, चला जाऊं मोमो खाने के लिए, घबराहट से हो रही है मुझे, ऐसा ऐसे दिल कर रहा है मेरा, मैं प्लेट खा जाऊं एक ऐसे। गुड इवनिंग भाई जान, वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग मेरे भाई। कह रहे शर्म करो, डेबरा से कुछ सीखो, वो बेचारी जो है जान बचाने के लिए नींद से उठ के गई है और तुम और कहानी में निपटाते रहे हो। नहीं नहीं, मुझे भी ऐसी घबराहट से हो रही है, आज मुझे मोमोज खाने पड़ेंगे, छटपटा रहा हूँ मैं। और जिन्होंने मुझसे चलवाए ना गाने, हमको हमीजे चुरा लो, सूरज हुआ मध्यम, आ चुका है बद मेरा इंतकाम देखेगी। कोई ना।

हाँ भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया के ढंग से छह बज के जी 9 मिनट हो लिए। इस गाने ने भी प्री

0: मिली है हमारे तौके ने व्हाट्सएप करें लव दिस सॉन्ग फुल ऑन कर दिया भाई। एक भाई ने मैसेज किया अरबाज भाई कह रहे अगर डेबरा हमारी तरफ होती तो उससे कहते डेबरा अगर बेटा तुम्हें नींद नहीं आ रही बाहर जाके चार भाई में सो जाओ। नहीं नहीं बहस मत करो उठ के जाना है कि अजीब सीधी औरत है यार बाहर जाके सो चप्पल भी ले जाओ। एक बजे अस्सलाम वालेकुम गुड इवनिंग कबीर भाई मैंने FM 107 ऑन किया कबीर भाई की स्टोरी सुनने के लिए घर वाले क्या वाइफ कॉल आ गया सेम टाइम और घर वाले कबीर की स्टोरी सुननी पड़ी। अच्छा कैसी लगी कहानी सुन के मज़ा आया नहीं आया है घर वाली कहानी सुन के कैसा लगा। टुमारो आई विल कम ऑन योर शो एंड रिक्वेस्ट माई सॉन्ग साजन तेरी दुल्हनी तुझे पुकारी आ जा ओ फरत आ जा। अगर ये गाने की रिक्वेस्ट करी ना फरत भाई गाड़ी का नंबर नोट करके पीछे लगा दूंगा गाड़ी आपके। दिन भर सोच ले जाओगे डेबरा की तरह मुझे कौन फॉलो कर रहा है यार अरे ये तो कबीर की गाड़ी लग रही है। अब्दुल करीम भाई कह रहे हैं आपको शो सुन के पूरा दिन की थकान उतर जाती है थैंक यू सो मच भाई लॉट्स ऑफ लव टू यू एज वेल। भाई कह रहे हैं भाई कौन सा आदमी जो आपको सुबह सुबह लेकर जाना चाहता है। इन लोगों को आपको आपका अच्छा नहीं देखा जाता। भाई कह रहे हैं इन लोगों को आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं है इनसे दूर रहिए। जुल्कारन साहब वालेकुम अस्सलाम कैसे मेरा भाई। अब्दुल करीम भाई सही कह रहे हैं भाई आप सुबह बहुत आपका भाई है नहीं मॉर्निंग वाला मसले हो जाते हैं। अच्छा एक मैसेज और अस्सलाम वालेकुम वही मैं चलाने वाला था एक सेकंड में रुको भाई किधर गया अरे किधर गया अम्मा किधर ये जिस दिन मैंने बोल दिया ना कि थोड़े और मीठे गाने तो ये उसने ये चलेगा साजन छाजन तेरी दुल्हन अरे यार ये आपने अब मुंह पे चढ़ा दिया मेरे गाना ये दिक्कत करा दी इन्होंने यार ये फरद भाई ने दिक्कत कर दिया अब पूरे दिन ये गाना जो है मैं गाता रहूँगा बचे कुछ दिन में अभी चाय पीते पीते मैं सबके बीच में बैठ के ये गा रहा हूँ साजन छाजन तेरी दुल्हन तिजग पकारी आ जा। बदला लूंगा मीर फरद भाई आज की कहानी का के साथ साउंड मैच था है ना सीरियस कहानी चला दो भाई अरे साजन साजन चल रहे अरे भैया ऐसा मत भूलो। अच्छा ट्रैफिक का हाल जरूर बता दीजिएगा 666-22107 पर फिर मैं बहुत सारे हालो अहवाल बताऊंगा आपको एक मैसेज है फरद भाई का अच्छा वॉइस नोट किया उन्होंने भेजता हूँ मैं अभी चलाता हूँ साजन रुक जाओ अभी बहुत चला लिया मुझसे सूरज हुआ मद्दम चांद ढलने लगा अच्छा करा आशिकी इस चक्कर में नहीं हो रही पढ़ाई समझ में आ रही ये है पढ़ाई ना होने की वजह तू भड़क रहा छोरी ये सुनो अभी देखो गाड़ी का कैसे एक्सीलेटर दाबेगा भाई बिजली की सी कड़क सी छोरी यो है लव वाला गाना हाँ
1: रोक दे दिल की धड़क रहा छोरी
0: शीशे वाली चुननी भाई सेवज के 12 मिनट हो रहा है मैं जी आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड।

0: हाँ भाई बढ़िया, गाड़ी ना घुमा दूं। एक मैसेज आया है भाई मेरे घेल, एक मैसेज किया है भाई ने, और वो जो मुझे वही बोला है जो मुझे अक्सर लोग बोला करते हैं, उनसे पहले मैं जरा एक कॉल उठा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: अरे कमाल साहब, कमाल कर दीजिए, कमाल कर दीजिए, बताइए।
1: आपकी कहानी तो भाई रोंगटे खड़े कर दी आज।
0: मजा आ गया आपको, बताइए
1: भाई। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी कहानी। एक बच्चे की नसीब देखिए।
0: हाँ वही ना, मैं
1: भी जो है दे रही है।
0: और उसी वजह से मतलब ये कहानी जितनी छोटी या वियर्ड है मगर उतनी ज्यादा कमाल की है, मतलब ये अच्छी खासी शॉर्ट मूवी बन सकती है।
1: बहुत अच्छी मूवी बन सकती है भाई।
0: हाँ तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी कहानी, पहले मुझे लगा था पता नहीं लोग बोलेंगे छोटी कहानी समझ में नहीं आई।
1: नहीं नहीं कहानी बहुत अच्छी थी भाई, इतनी अच्छी कहानी। मतलब कैसा है कि आप तो कभी कुएं से भी जो है लाश निकाल देते हैं, तो कभी जहाज के नीचे से भी लाश निकालते हैं, लेकिन एक बच्चे को बचाने के लिए आपने उसको जंगल पहाड़ सब जगह लेके गए, बचाए बच्चे को।
0: वो भी सुबह सुबह, वो भी सुबह सुबह।
1: हाँ सुबह सुबह। कहते हैं जिसको बचना होता, अल्लाह ताला जिसको बचाना होता है ना,
0: इंसान की समझ के बाहर है वो चीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: मैं तो देखिए अभी आपकी कहानी में एक वो जो रात को उठ के जो है अपने आदमी को, अपने इंडिया में होते तो उसी को चाबी से मार के सो जाओ अभी, इतनी रात को
0: इंडिया में होता तो कोई नहीं उठता, हस्बैंड
1: नहीं उठता, पर उठता तो जादू डर के मारे वापस आ जाते। अब वो वहां से हुआ, उसके बाद वो लोग ने पुलिस को फोन किए, पुलिस आई, दो लोग आए, दो लोग आने के बाद फिर वो पुलिस स्टेशन गए, वो लोग बात किए, जो तीसरा पुलिस वाला था उसने उस कहानी को सुना और वो सुबह सुबह उठ के गया।
0: एग्जैक्टली ये जो चेन रिएक्शन है ना, ये चेन ऑफ इवेंट्स, वही मेरे लिए बहुत हैरानी वाली बात है। देखो कहां से कहां से कहां से कहां जुड़ा है मामला, तो हाँ तो इसलिए बड़ा खास मेरे लिए। मैं रिपोर्ट्स भी पढ़ा था, तो रिपोर्ट्स इसकी जो असली पुलिस रिपोर्ट्स हैं इस केस की बड़ी कमाल की हैं, वो पढ़ने पे लगता है किसी मूवी की स्क्रिप्ट है वो, लेकिन वो असली फाइल्स हैं, और इसलिए मैंने ये कहानी सुनाई। पर मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने इतने ध्यान से सुनी, और आप सही कह रहे हैं, अगर डेबरा इंडिया में होती या पाकिस्तान में होती तब नहीं उठने वाला था उसका हस्बैंड। ठीक है मेरे कमाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल डाल दिया मेरे मन में। ठीक है मैं पूछता हूँ लोगों से, डेबरा होती तो क्या होता। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कमाल भाई, बहुत प्यार भाई को।
1: ठीक है
0: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो कमाल भाई एकदम सही कह रहे हैं, अगर डेबरा इंडिया में या पाकिस्तान में होती, देसी कंट्री तो क्या होता। अरे सोच जाने हैं। एक मैसेज आया है मेरे पास, और इन्होंने मुझसे बोला है, आपका वॉइस और आपका शक्ल मैच नहीं कर रहे। अरे याकूब भाई, ये मुझे सुनने की आदत हो चुकी है पता नहीं क्यों। अरे जो आप फोटोज देख रहे हैं ना, वो तब के हैं जब मैं पिकाचू था, अभी मैं रायचू बन चुका हूँ। तो विकसित रूप मेरा देखिए, अभी मेरी आवाज़ मैच कर जाएगी, डोंट वरी। वो आपने शायद पुरानी फोटो देख ली होंगी तब ऐसा लगा होगा। अब्दुल करीम भाई ने मैसेज किया, वो कह रहे हैं मेरा 6 बजे से ड्यूटी है, 5 बजे अलार्म लगाता हूँ, 10 मिनट बाद अच्छा उसके बाद करके सो जाता हूँ, एकदम 50 तक अलार्म बजता है उसके बाद उठता हूँ, ऐसा चलता है सुबह उठने के लिए। अगर डेबरा आपकी वाइफ होती तो आपने तो नहीं उठना था, ये आपने स्टैब्लिश कर दिया। समझ में आ रहा है मेरे। ये आदमी नहीं उठने का। अच्छा तो कुछ दिन हैं जो आज के दिन स्टैब्लिश किए गए हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। इंटरनेशनली दे आर मार्क्ड ऑन द कैलेंडर, अंग्रेजी बोलते एकदम फैंसी लैंग्वेज लग जाता है मामला। बताओ सॉफ्टी, नहीं सॉफ्टी नहीं कह रहे हैं, मुझे पता क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि तुम्हारी आवाज़ इतनी भारी है तुम्हारे शरीर से मैच नहीं खा रही। बताओ इनडायरेक्टली तो सॉफ्टी कह रहे हैं, कहन दो भाई क्या दिक्कत है, अब क्या कर सकते हैं, जनता है, जनता कुछ बहुत प्यारी है। नहीं भाई ने बहुत मोहब्बत से बोला यार, याकूब भाई ने, ऐसी बात नहीं है। बस वो हैरान है कि अच्छा इस शरीर से आवाज़ निकल रही है, ये तो साइंटिफिक थ्योरी है अपने आप में।

आज कौन कौन से दिन है इंटरनेशनली मार्क्ड, उनकी तरफ बढ़ जाता हूं मैं। आइस टी डे है आज। अभी तो दुनिया माचा की तरफ बढ़ चुकी है, माचा टी पी रही, मैंने अभी तक ट्राई नहीं करी है तो मेरा कमेंट करना बनता नहीं है, बट आई हैव हर्ड कि ज़्यादा खास भी नहीं है। प्लीज़ मेरा गला मत पकड़िएगा, आई डोंट नो माचा टी, आई डोंट नो। मैं आइस टी तक महदूद हूँ, आइस टी तक तो मैं जा सकता हूँ। इसके बाद है आज बॉल पॉइंट पेन डे। कागज़ पे लिखे मुझे बहुत टाइम हो चुका है, बॉल पॉइंट पेन डे है मेरे लिए, भाई टंग ट्विस्टर हो गया। इसके बाद आज है बेड बग प्रिवेंशन डे। झाड़ के सोया करो भाई, झाड़ के, ठीक है, अच्छे से चादर को एकदम साफ सुथरा करके, चिप्स विप्स के पैकेट कुछ भी हो सब हटा के। इसलिए आज ये दिन है आपको रिमाइंड कराने का, इनकेस यू फॉरगेट। वैसे तो नॉर्मली लोग करते हैं लेकिन होता है कई मरतबा, आदमी थका हुआ होता है। बेड बग प्रिवेंशन डे। इसके बाद है एग रोल डे। एग रोल मेरा फेवरेट। देखो दो तरीके के अंडे के रोल होते हैं, एक होता है अंडा बाद में रखा परांठे में, एक होता है परांठे के साथ अंडे को बना दिया, वो वाला, वो चाहिए। इसके बाद है आज टॉक शो डे, जो हम कर ही रहे हैं टेक्निकली। इसके बाद है फ्रॉस्टेड कुकी डे, ये मेरी बॉर्डर के पार है। इसके बाद वर्ल्ड फ्रेंचाइज डे, सो इनकेस यू ओन अ फ्रेंचाइज और यू विश टू ओन अ फ्रेंचाइज, बताइएगा मैसेज है। आप भी लोगों की तारीफ ही सुन, आपकी आज भी लोगों की तारीफ सुन रहा हूँ, जस्ट अभी ऑफिस से निकला हूँ, स्टोरी मिस हो गई, प्लीज़ स्टोरी फॉरवर्ड कर दे, मैं कर दूंगा फॉरवर्ड, टेंशन विवेक भाई टेंशन को नहीं। एक मैसेज है मेरे को बॉइल्ड एग सैंडविच अच्छा लगता है, हाँ बॉइल्ड एग भी बढ़िया आता है। एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, कहानी भेजिएगा, भेज दूंगा जी। एक भाई कह रहे हैं कहानी ये क्या ऐसा लगे डेयरी की दुकान है, सुबह सुबह जाते ना, भैया दही है क्या पन्नी में, दे दो पांच पांच की दे दो दही। है भाई है कहानी है, कितनी पैक कर दूं। है क्या अभी भेज दूंगा कुछ देर में। एक ब्रेक आज मिलेंगे, एक मैसेज और भाई भाई लोग भाई भाई भाई एकदम जय हो सब लोगों के लिए गाना। किसको बॉल पेन पॉइंट फेंक के मारता है किसी को नहीं भाई, सबके लिए गाना। हुसैन भाई जय हो।

0: यार रहमान साहब का म्यूजिक और क्या आइकॉनिक गाना हुआ ये। आज क्योंकि बेजान के वक्त होने वाला है कुछ देर में, तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। बहुत सारे मैसेजेस हैं आपके, डोंट वरी, आपको कहानी भी मिल जाएगी, मैसेज भी सारे के सारे पढ़े जाएंगे, कोई भी मैसेज छोड़ा नहीं जाएगा। बट मीनवाइल ट्रैफिक के अपडेट प्लीज देते रहेगा, बीच बीच में कहीं पे आप ट्रैफिक में हो, वक्त मिले तो मैसेज जरूर कीजिएगा, एंड इंशाल्लाह देन आपके मैसेज पढ़ जाएंगे। विल टेक अ वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक, इंशाल्लाह अजान के बाद कुछ देर में मुलाकात करते हैं। जाना आपने यानी बेस्ट जगह पर है, पता ही है।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

0: दिल से देसी।
1: अमिता मैडम ठीक कर रही हैं, आप सुन रहे हैं इवनिंग 974। और बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट रुकना नहीं चाहिए भाई, गाड़ी रुकेगी नहीं। एक कागज का घोड़ा बना के मुझे भेजा अहमद भाई ने, बहुत सारा प्यार अहमद भाई को। क्या स्टोरी मिलती रहेगी भाई, बिल्कुल मिलती रहेगी, कोई टेंशन नहीं है। 6:31 ट्रैफिक हाल बता सकते हैं 666-22107 पर, 666-22107 पर। और आजकल मुझे कुछ ज्यादा सोशल मीडिया पे लोग ढूंढ रहे हैं, शक्ल और आवाज को मैच करने की कोशिश ना करें, बस फोटो देखें यार।

6:35 by the clock. Iconic Atif Bhai ke vaaz mein. Aadat Kar Remix. Main do hawala kabhi rakha hoon 7 pe. Good evening, bhai saab. Kya haal hai aapke? Badhiya chal raha hai sab. हाँ जी, तो क्या क्या मैसेज आए हैं. अहमद भाई ने तो कागज़ का घोड़ा बनाया. वो कह रहे हैं कि पजल्स बना रहे थे फॉर आर कलीग्स. अच्छा, कुछ होने वाला है क्या ऑफिस में. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई, घर की याद आ गई गाना सुन के. भाई ऐसे ही होता है. एक मैसेज और आया है अब्दुल करीम भाई का. ये कह रहे हैं कि भाई संडे, अच्छा सैटरडे को भी आया करो, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी करो जुम्मे की. कह रहा है भाई सिर्फ एक दिन की छुट्टी लिया करो, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, आप आया करो. देखो मुझे वैसे भी कोई एतराज़ नहीं है, पर क्या है ऑफिस ही बंद होता है. अदिल भाई कह रहे हैं, सलाम कबीर भाई, क्या जुल्म है शाम में आने का, डेली स्टोरीज मिस हो जाती हैं. अदिल भाई आई एम सॉरी भाई. एक मैसेज है, जिस दिन से आपका शो शाम में स्टार्ट हुआ है थोड़ा बहुत सुन पाता हूँ, और क्या है शाम को घर से नहीं निकला जाता. कोई दिक्कत नहीं उस्मान भाई, स्टोरी तो आपको मिल रही है, कोई टेंशन नहीं है, वो आपको मिलती रहेगी, बेफिक्र हो जाए आप. एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. और दीपेंद्र भाई ने मैसेज कर दिया है, और बाकी स्टोरी प्लीज वाले जितने मैसेजेस हैं डोंट वरी, आप तक पहुंच जाएगा. ओके डोंट वरी. अब जरा कुछ रिकमेंडेशंस के बारे में बात कर लेते हैं. बहुत सारी ऐसी मूवीज आके गई हैं जो इंडियन सिनेमा की तरफ से भी बाहर आई और बहुत कमाल की गई हैं. एक और मैसेज है, भाई मैं तो कहता हूँ जुम्मे को भी आया करो. अच्छा मोहम्मद भाई, ज्यादा नहीं हो रहा. अरे नहीं, एक दिन तो चाहिए भाई. देखो गेमिंग भी है ना, गेमिंग भी मेरी मोहब्बत है, उसको भी टाइम देना पड़ता है, समझ रहे हैं आप. वरना वो कंसोल में धूल बहुत जल्दी जम जाती है, उसको ज़रूरत है. मेरा कंसोल गेमिंग का जब तक मुझे ना दिखी उसे बेचारे को चैन नहीं आता है, तो उसका भी ख्याल रखना पड़ता है, समझ रहे हैं मेरी बात को. बाकी कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, तो बैक टू द टॉपिक. बहुत सारे थ्रिलर्स ऐसी हैं जो शायद आपके रेडार से बिल्कुल गायब रही हैं, जो आपने शायद ना देखी हो. तो ऐसी इंडियन सिनेमा की कमाल की चीज़ें आपको बता दूँ. आपने अफसोस देखी? आपने शायद अफसोस नहीं देखा होगा. देखिए अफसोस, AFSOS. इतनी कमाल की ओरिजिनल स्टोरी है ये, कि एक असैसिन है और एक बंदा है जो मरना चाहता है. इतनी कमाल की कहानी है ये कि आपको इससे इंगेजिंग स्टोरी हाल फिलहाल में इंडियन सिनेमा की तरफ से तो नहीं मिली होगी. यू शुड डेफिनेटली वॉच इट, बहुत बहुत अच्छी है. अच्छा, एक और आई थी मूवी जिसके बारे में काफ़ी बातचीत हुई थी, लोगों ने शायद देखी नहीं. जिन्होंने देखी उन्होंने मुझे बताया, मैंने भी एक किसी के रिकमेंडेशन पे इसे एक्सप्लोर किया था, और वो थी कोहरा. अगर आपने कोहरा नहीं देखी है यू आर मिसिंग अ लॉट, मैं आपको बता रहा हूँ. ये कहानी जो सीरियस एक्टर्स को लेके बनाई गई है बहुत बहुत कमाल की है. काफ़ी ट्रबलिंग केसेस हैं इसमें, और वो किस तरीके से कहानी अनफोल्ड होती है और क्या क्या होता है सब कुछ आपको नज़र आएगा इसमें. मैं कुछ भी आपके लिए स्पॉइल नहीं करूँगा इस कहानी का, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ दो स्टोरीज जो आपको ज़रूर ज़रूर देखनी चाहिए. एंड इसके अलावा एक और सीरीज मुझे किसी ने बताई थी, अगर आप इमरान हाशमी के फ़ैन हैं और अगर आप मेरी तरह इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जाके जो है आवारा पंटू आएगी, तो मीनवाइल आप एक स्टोरी ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा. मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही ग्रेट है, बहुत ही कमाल की है, नहीं. मैं फ़ैन मैं भी हूँ, बट मैं सच्चाई बताता हूँ, अच्छी कहानी है. एंड इसका नाम है बार्ड ऑफ ब्लड. शाहरुख खान का प्रोडक्शन है और इमरान हाशमी इसमें एक्ट कर रहे हैं. सो बार्ड ऑफ ब्लड और अफसोस ये ज़रूर देखिए, और कोहरा मेरे आज ही तीन रिकमेंडेशन है. कौन सी मूवी मैं लिख के देता हूँ आपको. सो एक तो है भाई साहब अफसोस, ठीक है ज़रूर देखें. उसके बाद है कोहरा, ये सीरीज़ में बता रहा हूँ आपको, और एक है बार्ड ऑफ ब्लड, ये ज़रूर देखें. यू विल डेफिनेटली वॉच इट. आप किसी को अगर मूवी देखनी है ऐसी कि आपका सर घूम जाए और आप बोलें ये क्या देख लिया मैंने, एक ऐसी मूवी आपको बताता हूँ जिसकी स्टार्टिंग जो है वो काफ़ी स्लो हो सकती है. हो सकता है बोले अरे क्या देख रहा हूँ मैं, बोरियत से हो रही है. बट अगर आप इस मूवी के साथ टिके रहे

आपको इतनी हैरानी होगी कि आप अप्रिशिएट करेंगे कि भाई क्या टेस्ट है मूवी का. क्योंकि ये मूवी आपको ले जाएगी एक डायरेक्शन में और खुद चली जाएगी पल्ली डायरेक्शन में. मूवी का नाम है स्ट्रेंज डार्लिंग. ठीक है, मैं एग्जैक्ट बताता हूँ, स्ट्रेंज डार्लिंग या स्ट्रेंजर डार्लिंग, एक सेकंड लेट मी सर्च. क्यों, मैंने रिसेंटली देखी थी, आई थिंक मैं सही कह रहा हूँ, फिर भी मैं देख रहा. हाँ, स्ट्रेंज डार्लिंग ही है मूवी का नाम, स्ट्रेंज डार्लिंग. ठीक है, ये आई थी 2023 में. काफ़ी सस्पेंसफुल है. शुरुआत में आपको लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है, फिर बीच में मूवी समझ आने लगेगी और जो आपको समझ में आएगा वैसा कुछ भी नहीं होगा और एंड में कुछ और ही निकलेगा. तो ये ऑब्वियसली एज एन अडल्ट देखिएगा, बच्चों को बिठाइएगा, ये अडल्ट्स के लिए मूवी काफ़ी अच्छी है एंड थोड़ा गोर है, ब्लड इसमें ज़्यादा है, बट यू विल लव इट. एंड रोटन टोमेटोज ने भी इसे काफ़ी अच्छे दिए थे. रोटन टोमेटोज में 96% इसे मिला हुआ है. अगर आप उनके रिव्यूज़ को फॉलो करते हैं, मेरे रिव्यूज़ को फॉलो नहीं भी करते तो भी आप जान सकते हैं. एंड ये बहुत बहुत बहुत कमाल की मूवी है. तो एक मूवी और तीन सीरीज़ आपको बता दी, अगर आपके रिकमेंडेशन में कुछ हो तो मुझे ज़रूर ज़रूर बताइएगा. 666-22-107 पर, 666-22-107 पर अगर स्ट्रेंज डार्लिंग कहीं आपको देखने को मिले, भाई साहब स्किप नहीं करना आपने, मौज आ जाएगी आपको. ठीक है, बाकी क्या डॉलर साइन और अपना डंडा नियोली वाला बूम शाकलाका, क्या भाई साहब वर्स है इसमें दोनों का. इनफैक्ट डंडा भाई ने भी इसमें आग ला दी भाई. 6:40 मैं दोहा वाला कबीर.

6:44 by the clock. हाँ जी, तो बूम शाका लगा के बाद मैसेज आया है. अमन भाई का कह रहे हैं मौज हो जाएगी गुद्दी पे टैटू, जो गुद्दी पे टैटू. एक भाई ने लिखा है पता लोग. पता लोग तो खैर सबको पता ही है, लोगों ने देखी भी, मुझे आपने जो याद दिला दिया. पता लोग में एक सीन आता है ना, जब जयदीप अलावत जो

हैं वो उनकी वाइफ जो है उनको थप्पड़ मारती है, उसके बाद जो है वो खड़े होते हैं और वो मुड़ के देखते हैं तो जो रिक्शे वाला होता है वो गया नहीं होता, वहीं पे खड़ा हुआ होता है वो और वो उसमें कुछ सेकंड का साइलेंस होता है, उसके बाद वो कहते हैं जैन है रोटी खा के जाएगा तो वो जो नुआंस है उस कैरेक्टर का इतना कमाल का है भाई जिसकी अदरी क्या बात हो गई, रोटी खा के जाएगा, रोटी खा के जाओ हाँ जी। तो मैसेज मुझसे जा गए हैं, मलिक मोहसिन साहब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई के, और ज़रा ट्रैफिक का हाल बता दूं मैं, बहुत सारे मैसेज मेरे पास ट्रैफिक के भी आ गए आज, क्या बात है, सब आज बड़े प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी ट्रैफिक की बात में बहुत बढ़िया। सो वैसे मैं खुद भी देख रहा हूँ जामिया स्ट्रीट की तरफ, अगर आप जा रहे हैं तो इंटरसेक्शन की तरफ आपको ट्रैफिक मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कॉर्निश की तरफ हैं तो अभी तो इतना ज़्यादा मामला ख़राब नहीं लग रहा है, अभी ठीक ठाक ही है, दफना से फिर मूविंग टूवर्ड्स कॉर्निश, स्पेशली अगर दफना पार्क की तरफ हैं तो मूविंग ट्रैफिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं आपके सामने नहीं आएंगी। मस्जिद सल्तवन स्ट्रीट से अगर आप फुंदक स्ट्रीट की तरफ जाएंगे तो ट्रैफिक है, ये कॉन्फ्रेंस सेंटर की तरफ जितनी भी स्ट्रीट जा रही हैं स्पेशली ये जो सिटी सेंटर के सामने का मामला है यहाँ पे थोड़े बहुत ट्रैफिक मिल सकता है आपको। इसके बाद केड़ा एरिया रहेगा जी, अलसकाल स्ट्रीट से मरखिया स्ट्रीट तक आते हुए थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलेगा, सीरिंग रोड बिजी चल रहा है पहले बता दूं, एंड इसके अलावा बीरिंग रोड भी आपको थोड़ा सा आपका टाइम में डिले ला सकता है। बाकी अलवाब स्ट्रीट से अगर आप जा रहे हैं तो सिग्नल्स के पास ट्रैफिक है, बाकी तो ठीक ठाक है। इधर का एक सिग्नल बहुत भाई टेंशन वाला है, अलरियान की तरफ जितने भी रोड्स हैं अभी ठीक ठाक है, मूविंग ट्रैफिक चल रहा है, मगर ओल्ड रियान की तरफ अगर आप जाएंगे तो इंटरसेक्शन पर आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलेगा। देन कहीं ऐसी लाल लकी तो ना दिखे भाई मुझे। एक और मैसेज आया है, क्या कह रहे हैं, मैं इस गाने को अच्छे से सुना, इसमें मेरा होम टाउन का नाम लिया है चिट्टागोंग है। कौन से गाने का नाम चिट्टागोंग, कौन से गाने में नाम लिया है अरे अच्छी बात है, चिट्टागोंग इज ए वेरी नाइस प्लेस, लेकिन कौन से गाने में लिया। एक मैसेज है, समुद्री लुटेरे का मूवी बताओ, समुद्री लुटेरे की कहानी बताओ, भाई जैक स्पैरो देख लो, कहानी खत्म हो गई, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं आप, पायरेट पे बनी मूवी अगर आपको देखनी है उससे बेहतर क्या देखेंगे आप, वही देखिए। बाकी आपको हो सकता है आप बोर हो जाएं, आप बोलें कि ये क्या बता दिया मुझे, तो आप समुद्री लुटेरे पे मूवी देखें तो वो देखें आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी। एक कॉमेडी मूवी है जिसका नाम खुद पायरेट्स है, तो आप वो भी देख सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको समुद्री लुटेरे पे देखने हैं दैट इज़ इनफ। अब चला बूम चला लगा मैं चिट्टागोंग नहीं है, अब वो शायद रैप में उतना तेज़ बोल गया ना आपको लगा होगा क्योंकि वो खुद हरियाणा से है, उस भाई को पता तो होगा चिट्टागोंग, लेकिन पता नहीं कौन सी लाइन में लगा आपको, मुझे बताइएगा, आई वुड लव टू टेल यू। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कबीर भाई आपके आते ही शो में जाना जाती है, आप सुबह नहीं जाएंगे बात ख़त्म, यार वहीं लिखा है भाई नहीं जा रहा मैं अभी, अरे नहीं रिलैक्स रिलैक्स विनोद रिलैक्स, कोई नहीं जा रहा अभी, किधर भी कोई नहीं रहेगा, हैंड्स अप। कुसु कुसु गाने का नाम है जी, देव नेगी ज़ारा खान नोरा फतेह, आपको दोबारा सुनना चाहिए उसमें, अरे नहीं नहीं अरे नहीं भाई चिट्टागोंग नहीं उसमें

कि ट्रैफिक कानून की सख्ती से पाबंदी की जाए। अंदर दाखिल होने से पहले चाहे दिन का वक्त ही क्यों ना हो, अपनी हेडलाइट्स जरूर ऑन करें और तमाम ट्रैफिक साइंस पर खास तवज्जो दें। एंट्रेंस के करीब पहुंचते ही अपनी रफ्तार कम करें और मुकर्ररा हद की पाबंदी करें। टनल्स के अंदर अपनी लेन में रहें, राइट साइड पर ओवरटेक करने से गुरेज करें और अपने से आगे चलने वाली गाड़ी से हमेशा मुनासिब फासला बरकरार रखें, क्योंकि टनल्स के अंदर ट्रैफिक कानून की पाबंदी न सिर्फ आपकी बल्कि सड़क पर मौजूद हर शख्स की हिफाजत को यकीनी बनाती है। ट्रैफिक सेफ्टी के हवाले से टनल्स के अंदर महफूज ड्राइविंग के लिए हिदायत जारी की गई है, जहाँ ड्राइवर से जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की दरख्वास्त की गई है। जो भी स्पीड लिमिट हो उसके अंदर ड्राइविंग के दौरान हेडलाइट्स ऑन रखना और दी गई हिदायत पर सख्ती से अमल करना जरूरी है। ड्राइवर्स को मुकर्रर स्पीड लिमिट्स की पाबंदी करनी चाहिए और किसी भी सूरत में दाएं या राइट तरफ से ओवरटेक करने से परहेज करना चाहिए। इसके साथ साथ गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला बरकरार रखना भी इंतहाई अहम है, ताकि किसी भी अचानक पेश आने वाली सूरत हाल से बचा जा सके। ट्रैफिक रूल्स पर अमल करते हुए अपनी लेन के अंदर रहना लाजमी है, क्योंकि लेन डिसिप्लिन रोड सेफ्टी को बरकरार रखने में बुनियादी किरदार अदा करता है। तमाम ड्राइवर्स को चाहिए कि वो रोड सेफ्टी के फरोग में अपना किरदार अदा करें और जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। दोस्तों, इमरजेंसी नंबर 999 एक अहम जरूरी नंबर है। याद रखिए, अगर आपको किसी इमरजेंसी में मदद की जरूरत हो तो सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह से पूरी सिचुएशन में शामिल करें। अगर आप खुद पे या दूसरों पे खतरा महसूस कर रहे हैं तो बिना किसी हेजिटेशन के 999 पर कॉल करें। जब आप कॉल करें तो अपना पूरा पता, अपनी हालत और जरूरी मालूमात, जैसे कि किस किस्म की इमरजेंसी है, किस वक्त का इशू है और किस जगह पे आप हैं, ये सब बताना बहुत जरूरी है। ये मालूमात देकर आप अपनी मदद के लिए जल्दी से रिस्पॉन्स हासिल कर सकते हैं। 999 पर कॉल करते वक्त ये जरूरी है कि आप पूरी तरह से शांत रहें। अगर आप घबराएंगे तो मदद देने वाले को आपकी बात समझने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए अपनी कॉल को क्लियर और ठीक से देना जरूरी है। जब आप 999 पर कॉल करते हैं तो ये कॉल डायरेक्टली इमरजेंसी सर्विसेज सेंटर तक पहुंचती है। वहां पर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स आपसे बात करते हैं और सिचुएशन के मुताबिक आपको मदद फराहम करते हैं। अगर आपको मेडिकल मदद की जरूरत है तो एम्बुलेंस भेजी जाती है। अगर किसी कुदरती तूफान या नेचुरल डिजास्टर का सामना है तो रेस्क्यू टीम और सिविल डिफेंस भी आपकी मदद के लिए आती है। अबू समरा बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए प्री रजिस्ट्रेशन सर्विस जो मैतराज ऐप पर दस्तयाब है, कतरी व्हीकल ओनर्स शहरी और मुकीम अफराद को ये सहूलत फराहम करती है कि वो क्रॉसिंग के जरिए सफर के तमाम प्रोसीजर्स को आसानी और सहूलत के साथ मुकम्मल कर सकें। ये सर्विस ड्राइवर्स और पैसेंजर्स को GCC मुल्कों से और मुख्तलिफ विजिटर्स को एड करने की सहूलत भी देती है, चाहे व्हीकल ओनर खुद सफर करने वालों में शामिल ना हो। ये सर्विस यूजर्स की

के जरिए अबू समरा बॉर्डर के लिए प्री रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुहैया है, जो ट्रैवल के प्रोसीजर्स को आसान बनाती है और इंतजार के वक्त को कम करने में मदद देती है। मैत्राश ऐप में ट्रैवल विंडो को ओपन किया जाता है, फिर रजिस्ट्रेशन टाइप का इंतखाब करिए, एंट्री या एग्जिट, और उसके बाद प्री रजिस्ट्रेशन फॉर अबू समरा को सिलेक्ट किया जाए। इसके बाद जरूरी मालूमात मुकम्मल की जाती हैं, जिनमें मुतवक्का सफर या पहुंचने की तारीख और व्हीकल का इंतखाब शामिल होता है। दोस्तों, साइकिल चलाते वक्त ट्रैफिक रूल्स पर अमल करना हर साइकिलिस्ट की जिम्मेदारी है। जब हम ट्रैफिक लॉज को फॉलो करते हैं तो हम अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत करते हैं। साइकिल चलाना एक सेहतमंद और एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी है, लेकिन अगर ट्रैफिक रूल्स को नजरअंदाज किया जाए तो ये काफी खतरनाक भी हो सकती है। पहले तो ट्रैफिक सिग्नल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आप रेड लाइट देखते हैं तो रुकना और ग्रीन लाइट पर चलना जरूरी है। अगर साइकिलिस्ट रेड लाइट के रूल को इग्नोर करते हैं तो ये उन्हें एक्सीडेंट के लिए एक्सपोज कर सकता है, खास तौर पर जब व्हीकल्स तेज रफ्तार से आ रहे हों। इसके अलावा साइकिल को हमेशा लेन के अंदर चलाना चाहिए। अक्सर साइकिलिस्ट फुटपाथ या गलत लेन में साइकिल चलाने लगते हैं, जो ना सिर्फ उनके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा होता है। हेलमेट्स का इस्तेमाल भी जरूरी है। हेलमेट्स सिर्फ साइकिलिस्ट की सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि उनकी जिंदगी को भी बचाने में मददगार होते हैं। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हेलमेट सर पर लगने वाली चोट से बचाता है। इसके अलावा हैंड सिग्नल्स का इस्तेमाल करके हम अपने इरादे दूसरों तक आसानी से पहुंचाते हैं, जो काफी जरूरी है, खास तौर पर जब टर्निंग या लेन चेंज करते हैं। साइकिलिस्ट को हमेशा अपने सराउंडिंग्स का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर आप एक बिजी रोड पर साइकिल चला रहे हैं तो आपको दूसरे व्हीकल्स, पेडेस्ट्रियंस और रोड कंडीशन का भी बारीकी से अंदाजा लगाना चाहिए। इससे ना सिर्फ आप अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं बल्कि दूसरों को भी सेफ रख सकते हैं। अगर हम सब ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखें तो हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को काफी सेफ रख सकते हैं और रोड सेफ्टी को प्रमोट कर सकते हैं। वजारत दाखिला की जानिब से 3 मार्च 2026 को जारी करदा प्रेस रिलीज की बुनियाद पर जो तमाम किस्म के एंट्री वीजा जो एक्सपायर हो चुके थे या एक्सपायर होने के करीब थे, उनकी मुद्दत में तौसी के हवाले से जो ऐलान था, मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि तौसी का फैसला अब खत्म किया जा रहा है, जो इतवार 7 जून 2026 से मुअस्सर होगा। वजारत दाखिला ने वाज़े किया है कि मस्कूरा तारीख के तमाम किस्म के एंट्री वीजा के लिए मंजूर शुदा प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस के मुताबिक दोबारा अमल शुरू कर दिया जाएगा, जिनमें हर किस्म के वीजा की मुकर्रर मुद्दत और फीस भी शामिल है। मिनिस्ट्री ने तमाम मुकीम अफराद, विजिटर्स और मुतालिका पार्टीज से दरख्वास्त की है कि अपनी लीगल स्टेटस की तस्दीक करें, वीजा की तजदीद को यकीनी बनाएं, मुकर्रर मुद्दत के अंदर फीस अदा करें या फिर अपने वीजा की वैलिडिटी खत्म होने पर मुल्क से रवानगी इख्तियार करें, ताकि मुल्क में क्याम की इजाजत मुद्दत से ज्यादा ठहरने की सूरत में किसी भी कानूनी खिलाफवर्जी या कार्रवाई से बचा जा सके। दोस्तों, मसाजिद और आसपास के घरों के करीब गलत पार्किंग न सिर्फ ट्रैफिक को रोकने का सबब बनती है बल्कि ये इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स और पुलिस कार्स के लिए भी बहुत बड़ी रुकावट है। जब इन व्हीकल्स को जल्दी से गुजरना होता है तो किसी भी हादसे का खतरा लाहक बढ़ जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पार्किंग की आदतों में बेहतरी लाएं और दूसरों के लिए रास्ता खाली रखें। अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी गाड़ी सही जगह पर पार्क करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने इलाके के हर शख्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस तरह हम अपनी कम्युनिटी को सेफ, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल बना सकते हैं। हमारी छोटी सी सोच और मेहनत से न सिर्फ ट्रैफिक का मसला हल होगा बल्कि हमें अपनी रिलीजियस और सोशल ड्यूटीज को बेहतर तरीके से अदा करने में मदद मिलेगी।
वजारत दाखिला का कहना है कि हम सब मिलकर इस मसले को हल करने

0: बनाने में अपना हिस्सा डालें और एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बने जहां सबके लिए रास्ता खुला हो और सेफ्टी पहली तरजीह हो। सामईन, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वीकली अपडेट का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा। अगली मुलाकात तक के लिए प्रोग्राम डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए और याद रखिए, कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा।
1: आप सुन रहे हैं FM 107, FM 107,
2: दिल से देसी। जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जुबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड,
3: हेल्थ गाइड
2: डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: चलिए सर, आपको मालूम है कि हमारे साथ होते हैं डॉक्टर साहबान, तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अरशद अली, जो कि कंसल्टेंट हैं न्यूरोसर्जन HMC में, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कतर यूनिवर्सिटी में और व्हील कॉर्नर मेडिसिन कतर में। वेलकम करेंगे हम अपने तमाम लिसनर्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
1: वालेकुम सलाम।
0: बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आप हमारे साथ हैं, और आज जैसे कि बहुत अहम जो टॉपिक है वो अपनाने जा रहे हैं, और शुक्रिया आपका अदा करना चाहूँगी कि आप का बड़ा बिजी स्केड्यूल होता है मगर हमारे लिए टाइम निकालते हैं, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड वाइड अगर बात की जाए तो 206 मिलियन अफराद जो हैं वो किसी भी टाइम जो दर्द है नेक का उसमें वो मुबतला होते हैं या हो सकते हैं, और कतर में भी जैसे मैंने कहा 45.4% जो है पॉपुलेशन उसमें इन्वॉल्व है मुख्तलिफ स्टडीज़ में। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा इस पर बात करना चाहेंगे कि क्या ऐसा ही है।
1: नेक पेन एंड बैक पेन
0: जी,
1: ये दो जब हम क्लिनिक पे होते हैं उस पर भी हमें अंदाज़ा होता है तकरीबन 50-60% ऑफ द पीपल
0: जी,
1: और बर्क जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो क्लिनिक पे, ये तो उनको बैक पेन होता है, नेक पेन होता है। और मेरे ख्याल में एवरी आई थिंक थर्ड और फोर्थ पर्सन इन द वर्ल्ड ही मे हैव एक्सपीरियंस्ड नेक पेन इन हिज लाइफ टाइम, बट नॉट ऑल नेक पेन आर डेंजरस। ओके, सम नेक पेन आर पार्ट ऑफ रूटीन एज वेल बिकॉज ऑफ आवर डिफरेंट डेली एक्टिविटीज, सो वी कैन एक्चुअली डिवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ नेक पेन बेस्ड ऑन थिंक। सो हम लोग आई थिंक लेट स्टार्ट विद एनाटॉमी और उसकी जो फिजियोलॉजी है। नेक के जो वर्टिब्रीज हैं वो तकरीबन 8 वर्टिब्रीज हैं टोटल, और जो जो नर्व्स हैं जो कि ब्रेन से ये सर्वाइकल स्पाइन से आ रही हैं, सर्वाइकल स्पाइन स्पाइनल कॉर्ड से, जो पहली नर्व है वो जो वर्टिब्रा 1 और 2 के दरमियान से जाएगी, तो टोटल 8 वर्टिब्रा हैं लेकिन नर्व्स जो हैं वो 7 है। तो हम लेबल इस तरह करते हैं कि अगर डिस्क C3 और 4 पे है सो इट विल कंप्रेस C4 नर्व।
0: अच्छा, ठीक।
1: ओके, C5-6 पे 6, इस तरह हम जो है उनका नंबरिंग काउंट करते हैं। सो लेफ्ट साइड, राइट साइड, किसी साइड पे भी हो सकते हैं। क्लासिकली अगर नर्व के साथ पेन है, एक पेन तो ये होगा जो नेक में पेन है, रेस्ट्रिक्टेड, इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर, इट इज ऑन द नेक एंड सम टाइम कमिंग अप टू द शोल्डर।
0: ठीक।
1: ओके, लेकिन अगर नर्व का पेन होगा इट विल गो इन द आर्म।
0: अच्छा,
1: ओके, if it is compressed by the nerve, if the disc is touching the nerve or compressing the nerve, then the pain will go. That's a classical symptom. If the pain is not coming in the arms, to aap samajh lein ki neck mein pain hai but it is not because of the nerve compression.
0: Theek,
1: to usme pain bhi ho sakta hai aur numbness wagera bhi ho sakti hai, sensory symptom jisko hum kehte hain pins and needles aapko feel hoti hain apni fingers mein.
0: Theek hai,
1: that is also one of the symptom of numbness.
0: ठीक, ये लिसनर्स आप भी सुन रहे हैं, और जैसे कि हमारी कोशिश होती है, कोशिश किया कि डॉक्टर साहब हमें मुख्तलिफ नकात जो हैं हमारे सामने लेकर आते हैं, तो आज ये एक बहुत अहम जो बात है जो हमें मालूम भी होनी चाहिए कि हम किस तरह से अगर नर्व इन्वॉल्व है तो उससे आपने कहा कि दर्द जो है वो आर्म में, बाजू में
1: जी
0: जाएगा, और अगर वैसे ही दर्द है तो वो ज़रूरी नहीं है वो नेक तक या शोल्डर्स, अपर शोल्डर्स तक ही हो सकता है। इट्स वेरी, ये थोड़ा बहुत भी ये कि डायग्नोस हम खुद भी कर सकते हैं इन पॉइंट्स को अपने सामने रखते हुए जी डॉक्टर साहब।
1: इसके अलावा जो नर्व का पेन होगा वो आप चूंकि एक स्पेसिफिक डिस्क जो है वो नर्व को टच कर रही है
0: जी,
1: तो बेसिकली जो हमारे पास मरीज आते हैं वो जब हम उनको कहते हैं कैन यू ट्रेस, क्या आप ट्रेस कर सकते हैं अपना नर्व पेन, तो वो यूजुअली एक फिंगर के साथ बताते हैं कि हाँ यहाँ से यहाँ

0: کہاں تک جا رہا ہے یہ پین.
1: اچھا
0: سو ٹھیک, سو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بیسیکلی کون سی نرو انوالو ہے, اینڈ دین ایگزیکٹلی وی چیک از اٹ دا سیم نرو وٹ ہی از ڈسکرائبنگ, وہیں پہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو جو آپ کے بتانے سے ہسٹری سے بہت سی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں.
1: ٹھیک,
0: اس کے علاوہ جو ہے بیسیکلی پھر ایگزامن کرتے ہیں پیشنٹ کو, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نرو سے جو ریلیٹڈ مسلس ہیں اور جو ایریاز ہیں وہ افیکٹڈ ہیں, اس سے ہمیں ڈائگنوسس کا پتہ چل جاتا ہے.
1: جی ٹھیک,
0: تو اس سے پہلے اس کی وجوہات پہ بھی جانا چاہیے.
1: جی ڈاکٹر صاحب, اس میں تھوڑا سا میں جینڈر کے بارے میں یا ایج جو ہے وہ کون سا ایج گروپ جو ہے وہ زیادہ رسک پر ہوتا ہے یا انوالو ہوتے ہیں اس میں نیک پین کے لیے؟
0: نیک پین بیسیکلی جو ہے وہ زیادہ تر تو میلز میں اس کا انسیڈنس ہے.
1: جی.
0: لیکن چونکہ آج کل ہم لوگ سیڈنٹری ہیبٹس ہیں ہماری, اور فیمیل بھی ورکنگ کلاس ہے, اینڈ دے آر وی آر ناؤ ہیونگ دس کمپیوٹرس, اوکے, اینڈ وی ان نوئنگلی سٹنگ ان فرنٹ آف دا اسکرین فار لانگ آورز ود آؤٹ ٹیکنگ کیئر آف یور سیلف, اوکے, دین یور مسل گیٹس اسٹرینڈ, اوکے, اینڈ سو انسیڈنس آئی ڈونٹ تھنک دیر از اے مچ ڈفرنس ناؤ بیکاز وی آر آل ایکولی ورکنگ ناؤ, میل اینڈ فیمیل, بٹ میلز میں زیادہ تر کیونکہ ان کی جو لائف اسٹائل ہے ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے.
1: جی, اور اس میں جو ڈیوائسیز ہیں ان کا بھی بہت اہم رول ہے نیک پین میں. اس میں تو ہم کسی بھی ایج گروپ, جیسے میں نے پوچھا کہ کون سا ایج گروپ زیادہ جو ہے وہ ایٹ رسک ہوتے ہیں, مگر ابھی تو بچوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں. اور
0: یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے کیونکہ آج کل اگر موبائل ہے ہمارے ہاتھ میں, سو یو آپ آورز تک یو نو یو آر جسٹ پٹنگ یور نیک ڈاؤن اور ان سرٹن پوزیشن, اوکے, اینڈ یو ڈونٹ ریئلائز بیکاز یور برین از انگیج ود سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے نا, اور اس سے آپ کے مسلز افیکٹ ہوتے ہیں, دین یو ریئلائز او آئی ہیو اے نیک پین ناؤ, اینڈ دس ڈیوائس گیجٹس یوزز ایز ویل ایز کمپیوٹر یوز, آل دیز پٹ یو ان یو نو ایٹ رسک.
1: ٹھیک, کہ اس میں کوئی عام طور پر تو ایج ظاہر ہے آپ زیادہ اس میں ہیں, آپ کے فرنٹ لائن پہ آپ کے پاس پیشنٹس ہوتے ہیں, وہ تو پوچھیں گے. یہ میں نے ویسے ہی کہا کہ جو بچے ہیں وہ بھی آج کل بہت زیادہ کمپلین کرتے ہیں نیک پین کی, تو اس کی ڈیوائسیز جو ہیں وہ بھی ایک مین اس کی وجہ جو
0: جی آئی مین ینگر اینڈ ینگر ایج پیپل آر ایکچولی یو نو گیٹ انوالو ان دس. آج کل جو گروپ ہے بیسیکلی مین ایون 30 اینڈ بلو وہ بھی انوالو ہوتے ہیں, لیکن عموماً جو ہے اگر ہم ڈیوائڈ کریں کازز کو تو کچھ کازز تو ایسی ہیں جو کہ ٹراما کی وجہ سے, یعنی کہ کوئی انجری ہو گئی ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, یا آپ نے جم میں ایکسرسائز کر رہے ہیں سڈنلی آپ نے کچھ ایسا جرکی مومنٹ کی ہے, سو وہ ایک تو وہ وجہ ہو سکتی ہے جو کہ آپ کی انجری سے ریلیٹڈ. بٹ جنرلی اسپیکنگ آور ایج with the age we have developed some degeneration, we کہتے ہیں اس کو.
1: جی.
0: اس میں یہ ہے کہ جو ڈسک ہے اس کا جو واٹر کنٹینٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے.
1: اچھا.
0: اس کو ہم ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں. جو واٹر کنٹینٹ کم ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو ڈسک کی جو شارک ابزاربنگ کیپیسٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے.
1: اچھا,
0: اور جیسے ہی کوئی کمپریشن ہوگی تو وہ پیچھے کی طرف کبھی ایک سائڈ پہ دوسری سائڈ پہ نکل جاتی ہے نرو کی طرف, پیچھے کی طرف.
1: جی.
0: کیونکہ پیچھے جو ہے جو اسپائنل کارڈ کی طرف اس کا جو لیگامنٹ ہے جہاں پہ وہ پروٹیکٹڈ ہوتی ہے وہ ویک ہوتے ہیں.
1: ٹھیک, تو ایج کی
0: ایج یا اس کو کہتے ہیں ڈیجنریٹو پروسیس, بٹ ناٹ آل پیپل ڈیولپ دس, وی آل ہیو چینجز ان آور اسپائن ود ایج.
1: اوکے,
0: جنرلی اسپیکنگ یو نو اف یو کنسیڈر یوزلی اٹ اسٹارٹ آفٹر 40 اور 45 اور 50, بٹ ایز آئی سیڈ بیکاز آف آور لائف اسٹائل اینڈ سیڈنٹری ہیبٹس اینڈ سم پروفیشنل ہیبٹس, اوکے, پٹ یو ایٹ رسک ٹو ڈیولپ دیز تھنگز ارلیئر.
1: ٹھیک ٹھیک, کہ یہ تمام چیزیں اس میں ڈاکٹر صاحب, اس میں جیسے آپ کے ڈیجنریٹو چیزیں مگر سب میں نہیں ہوتی اور جیسے 40 میں کے بعد بھی ہو سکتی ہیں, تو اس میں کچھ ڈیفیشنسیز وغیرہ کی وجہ سے یہ زیادہ ایکسیلریٹ کر سکتے ہیں تو جلدی ہو سکتی ہیں کیا اس میں؟
0: اسموکنگ از ون آف دا نون کاز.
1: اسموکنگ,
0: یا اسموکنگ جو ہے وہ ڈسک کی جو ڈیجنریشن ہے اس کو انہانس کرتی ہے. اس لیے اسموکنگ جو ہے اگر کسی کو بھی ڈسک کا پرابلم ہے
1: جی
0: سو ہی شوڈ اسٹاپ اسموکنگ.
1: ٹھیک
0: ہے نا, اور
1: یہ ضروری نہیں ہے کہ نیک ڈسک کا کہیں کوئی بھی ہے,
0: کوئی بھی ڈسک
1: کمر میں ہے
0: یا نیک میں ہے.
1: ٹھیک,
0: ठीक है ना, स्मोकिंग इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर. दूसरा जो ओबेसिटी है,
1: ओबेसिटी ओके
0: तो ये चीजें जो हैं ओबेसिटी की वजह से भी आपकी जो आपके मसल्स पे स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है. सो मसल जो है वो कंटिन्यूसली जो है स्ट्रेस में रहते हैं, दे डोंट हैव एनफ स्ट्रेंथ टू प्रोटेक्ट योर बोन. एंड इसमें जो बेसिक मैकेनिज्म है जो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को ही बताता हूँ, यू नो वी हैव 3 or 4 कंपोनेंट्स विच आर एक्चुअली इन्वॉल्व. लाइक वी हैव स्पाइनल कॉर्ड, द नर्व्स, वी हैव बोन, वी हैव लिगामेंट्स एंड वी हैव मसल्स. बोन लिगामेंट जो हैं दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे नीड द स्ट्रेंथ फ्रॉम मसल्स. सो इफ योर मसल आर स्ट्रॉन्ग देन दे विल प्रोटेक्ट नॉट ओनली फ्रॉम पेन बट ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्यूचर प्रिवेंशन एज वेल.
1: ठीक.
0: सो मसल जो है दैट इज अ की इन मेंटेनिंग योर हेल्थ ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन.
1: ठीक.
0: सो दूसरी कॉजेज अगर आप लें तो मैंने जैसे बताया वर्क प्लेस रिलेटेड कॉजेज हैं, ठीक है ना. जैसे हम कंप्यूटर पे, यू नो, यू पीपल, सम पीपल सिट डाउन फॉर लॉन्ग आवर्स एंड दे आर सो मच इंडल्ज इन देयर वर्किंग कि आप जो है रियलाइज नहीं करते कि मैं कितनी देर के लिए मैं कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ.
1: जी.
0: सो ये एक रिस्क फैक्टर है. और एट द एंड ऑफ द डे आप डेली बेसिस पे यू फील दैट यू हैव अपर शोल्डर और शोल्डर कैप पेन्स और नेक पेन, यू नो, ऑल दिस थिंग.
1: ठीक.
0: सो ऑल दिस मैनिफेस्टेशन आर, यू नो, देयर.
1: ये तमाम चीज़ें जो हैं वो होती हैं. डॉक्टर साहब, ये हमारे लिसनर हैं, उनका नाम है अहमद मुस्तफ़ा ख़ान, इसलिए मैं कॉल जो है वो इसमें कर रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ. उन्होंने कहा कि वो हैदराबाद तेलंगा से बात कर रही हैं इतनी दूर से. मगर अहमद मुस्तफ़ा ख़ान साहब, मसला ये कि आज हम इस टॉपिक पर बात नहीं कर रहे. उन्होंने कहा कि उन्हें ब्लड ल्यूकीमिया है, ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर है, उसके बारे में डॉक्टर साहब से ज़रूर सवाल है कि क्या ल्यूकीमिया से मज़ीद कोई जेनेटिक या बोन मैरो टेस्ट करवाने होंगे या ये है कि उससे कोई और भी हो सकता है. बहुत सी टाइप्स हैं, मगर उसमें पूछना ये चाह रहे हैं कि इसका कोई और इलाज जो है शुरू किया जा सकता है, और ना अगर शुरू किया जाए तो क्या इसके बारे में पूछ सकते हैं. मुझे खुद भी सही तरह से समझ में नहीं आ रही उनकी बात, मगर ये शायद तफसील जानना चाह रहे हैं थोड़ा सा कैंसर के बारे में.
0: ये गो के मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन ये है कि इसका जो डायग्नोसिस है वो बोन मैरो से ही होगा.
1: जी.
0: ठीक है ना. उसके बाद आपको पता चलता है कि
1: क्या टाइप है,
0: किस किस्म का कैंसर है. लेकिन उनके लिए गुड न्यूज ये है कि इसका जो ट्रीटमेंट है इट्स वेरी इफेक्टिवली अवेलेबल.
1: ठीक.
0: ओके. सो वंस इज डायग्नोस्ड इसका ट्रीटमेंट जो है वो इफेक्टिवली अवेलेबल है, और इसका जो है, यू नो, इट इज़ वन ऑफ द कैंसर विच कैन बी इफेक्टिवली ट्रीटेड एंड क्योर्ड.
1: ठीक जी. अहमद मुस्तफ़ा ख़ान साहब, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि खुशकिस्मती से ये ऐसा बीमारी है या ऐसा कैंसर है कि टोटली जो है वो इलाज उसका हो सकता है इंशाल्लाह ताला. और जैसे ही जो कंसल्ट आपने किया है, डॉक्टर्स ने जो भी एडवाइस किया, तो आप उसके मुताबिक जो है वो आप इलाज जो है वो ज़रूर कीजिए. जी डॉक्टर साहब, हम वापस अपने ही टॉपिक पर आते हैं. और ये जैसे आप बता रहे हैं हमें कि जो नर्व्स और कॉजेज़ हैं,
0: जी, कॉजेज़ अब जब आपकी हमें पता चल जाती हैं, तो जब हिस्ट्री होती है तो हम आपसे वो रिस्क फैक्टर पूछते हैं कि आपका प्रोफेशन क्या है.
1: जी.
0: आप कंप्यूटर पे कितनी देर के लिए बैठते हैं, ठीक है ना. आपने रिसेंटली कोई वेट गेन तो नहीं किया.
1: जी.
0: ठीक है ना. सो ऑल दीज हैबिट्स एक्चुअली आर इम्पोर्टेंट. देन और एनी हिस्ट्री ऑफ इंजरी और ट्रॉमा इन द पास्ट अगर कोई है, वो भी आपको इट कैन मैनिफेस्ट लेटर ऑन आफ्टर फ्यू ईयर और फ्यू मंथ्स.
1: अच्छा, थोड़ी सी जैसे आपने ट्रॉमा की बात की, तो किस टाइप के जो ट्रॉमा अगर हो तो जो है वो नेक पेन उस वक्त तो हो सकती है, मगर कुछ सालों के बाद या कुछ अरसे के बाद भी आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं.
0: बेसिकली जो नेक है, अगर आप देखें, नेक एंड हेड इज फ्रीली सिटिंग ऑन आवर बॉडी.
1: जी.
0: सो इसकी मूवमेंट सबसे ज़्यादा होती है.
1: ठीक.
0: तो अगर आपका जैसे भी खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो या कोई भी ऐसी इंजरी हो, तो सबसे ज़्यादा जो नेक पे है, नेक की मोबिलिटी की वजह से आपको जो है इंजरी होती है. अमूमन हम लोग जब पेशेंट देखते हैं, अगर किसी को ट्रॉमा हो तो सबसे पहले, जब अगर ट्रॉमा पे है, तो सबसे पहले जो ईएमएस के लोग आते हैं, एम्बुलेंस के लोग, वो आपको सर्वाइकल कॉलर पहनाएंगे. उसकी वजह यह है कि वी प्रज्यूम इन ऑल द केसेस दैट देयर इज अ सर्वाइकल स्पाइन इंजरी इज सो कॉमन.
1: ठीक.
0: तकरीबन 30% और 1/3 ऑफ द पेशेंट्स के अंदर जो हेड इंजरी के साथ नेक इंजरी इन्वॉल्व होती है.
1: ठीक.
0: क्योंकि हमारा हेड जो है इट्स फ्रीली सिटिंग ऑन दैट एंड नेक इज कनेक्टिंग दिस.
1: ठीक
0: ठीक है ना. तो इंजरी इज वेरी कॉमन इन द सर्वाइकल स्पाइन एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द स्पाइन. और तो ज़्यादातर जो कॉमन मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हैं जिनमें मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो या कार का एक्सीडेंट हो, स्पेशली एक इंजरी है जिसको हम कहते हैं विपलैश इंजरी.
1: अच्छा.
0: विपलैश इंजरी ये होती है कि आपको किसी ने पीछे से हिट किया गाड़ी में तो आपकी गर्दन सामने की तरफ झुकी है और फिर पीछे की तरफ से डली जाती है. ये विपलैश इंजरी है.
1: जी.
0: ठीक है ना. ये जो है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक पेन इन द नेक.
1: ठीक. उस वक्त सिर्फ ये कि उन्हें ऐसे आम तौर पर आम जुबान में बात की कि झटका थोड़ा लगा.
0: हाँ बिल्कुल.
1: जैसे
0: फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, यानी कि ना सामने की तरफ गर्दन झुकती है जैसे एक पीछे से कोई हिट करता है आपको, फिर गर्दन पीछे की तरफ जाती है.
1: जी. तो उस वक्त तो जो है दर्द वो महसूस होता है, मगर ये कि लॉन्ग टाइम
0: लॉन्ग टर्म में ये जो है ये क्योंकि ये आपके वो फिर इनिशिएट करता है आपके लिगामेंट को वीक करता है या वहाँ पे किसी जगह पे को मोबिलिटी इंक्रीज होती है, उसकी वजह से फिर डिस्क अफेक्ट होना शुरू हो जाती है.
1: ठीक.
0: उसका जो आपका जो नेचुरल प्रोसेस है डीजनरेशन का जो एजिंग के साथ साथ होता है हर एक में वो एक्सेलरेट हो जाता है, ज़्यादा तेज हो जाता है.
1: ठीक ठीक. कि इस वजह से और बाज़ औक़ात वैसे भी कोई चीज़ अगर टच की या कोई बॉल लगा है या गेम करते हुए तो उसमें भी बाज़ औक़ात जैसे ही मौसम तो सब इस पर मैं ज़रूर फोकस करना चाहूँगी कि कुछ अफराद ये शिकायत करते हैं कि अच्छा मौसम चेंज हुआ है या ठंड हुई है, सर्दी का मौसम है तो उनकी जो पेन है वो ज़्यादा हो गई है, तो क्या ऐसा होता है?
0: वो उसमें मीन जनरली स्पीकिंग दिस इज़ नॉट यूजली नॉट साइंटिफिक नहीं है ये, लेकिन ये है कि अगर इसको किसी तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है वो ये कि मसल्स की जो ब्लड सप्लाई है
1: जी.
0: क्योंकि जब सर्दी होती है तो ज़्यादातर हमारी जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए स्किन को ज़्यादा ब्लड जाता है
1: जी.
0: तो मसल्स में थोड़ा ब्लड कम हो जाता है तो उसकी जो सप्लाई की वजह से आप यू नो यू मसल फील मोर स्ट्रेन्ड और स्ट्रेस्ड. ओके. वो ब्लड सप्लाई की वजह से हो सकता है कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाए. तो जनरली स्पीकिंग एज सच तो आपकी बॉडी सेम ही रहती है, चाहे गर्मी हो तो सर्दी हो
1: जी.
0: सिर्फ उसमें जो है टेम्परेचर की वजह से जो चेंजेस आती हैं वो बॉडी अपने आप को एडजस्ट करती है कि कहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उसके हिसाब से फिर वो चेंज हो जाती है
1: जी. ठीक. इसमें डॉक्टर साहब आपने डिस्क बता दिया या ट्रॉमा है, इसके अलावा और कोई हो सकती हैं?
0: मैंने जैसे बताया कि स्मोकिंग बहुत इम्पोर्टेंट कॉज है, ओबिसिटी बहुत इम्पोर्टेंट कॉज है, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. कुछ लोग जेनेटिक्स की बात करते हैं इसमें कि अगर किसी को फैमिली में है सर्वाइकल तो उसकी फैमिली में भी ये हो सकती है, बट इट्स नॉट वेरी कॉमन.
1: ठीक. सब स्मोकिंग की थोड़ी सी मैं डिटेल आपसे पूछना चाहूँगी. आपने बता दिया कि वो जो चेंजेस डीजनरेटिव हो रही होती हैं उसमें वो जल्दी होना शुरू हो जाती हैं. अक्सर फाजी कहते हैं कि ये बोन्स का जो हमारी डिस्क वगैरह का क्या रोल, मतलब क्या उसके रिलेशन है स्मोकिंग के साथ, थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगी कि हमारी
0: स्मोकिंग जो है वो आपकी ब्लड वेसल्स को नैरो करती है.
1: जी.
0: ठीक. तो जैसे ही ब्लड वेसल जो है डिस्क पे लेवल पे नैरो होती हैं तो उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, और जैसे ब्लड सप्लाई कम होगी तो जो नर्व है वो जो डिस्क है वो जैसे मैंने कहा उसमें वाटर कंटेंट जो है कम हो जाता है, और जब वाटर कंटेंट कम होगा तो उसकी जो हर्निएट करने की जो कैपेसिटी है ये जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं.
1: जी.
0: ये रिलेशनशिप है स्मोकिंग का डिस्क के साथ,
1: और ये एक बहुत अहम पॉइंट है और ये कि बहुत डेंजरस भी है. इसलिए स्मोकिंग को कुछ अफराद ये समझते हैं कि कोई ऐसा मसला नहीं है, सिर्फ लंग्स का मसला है, मगर हर जब भी किसी भी टॉपिक पर हम बात करते हैं तो स्मोकिंग जो है उसमें ज़रूर आती है, और स्पेशली जो हमारी जैसे हम बात कर रहे हैं आज नेक पेन की और बैक पेन की भी बात की, उसमें भी स्मोकिंग का बिल्कुल एक बहुत अहम रोल है, मगर अब नेक पेन की बात कर रहे हैं तो इसमें भी स्मोकिंग अदर डिवाइसेस अदर कॉजेज़ के साथ साथ स्मोकिंग का बहुत अहम रोल है. जी.
0: तो जैसे मैंने बताया कि फिर जब हमारे पास मरीज आता है तो फिर हम उसको डायग्नोज करते हैं, उसमें सबसे पहले हिस्ट्री है कि हम पूछते हैं कि कैसे शुरू हुआ,

0: ए।
1: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: गेंसर्स प्रोग्राम हेल्थ गाइड, और हम आज बात कर रही हैं नेक पेन की, जो डॉक्टर ने बड़ी डिटेल में हमें बताया कि इसकी क्या क्या वजूहत हो सकती हैं, किस तरह डायग्नोस इसे करते हैं, कर सकते हैं और करते भी हैं, और इसके अलावा के तरीका इलाज जो है वो क्या है, किस तरह मैनेज किया जाता है। मगर अब जो सबसे अहम बात है, जिस पे हम देखते हैं या खौफ भी है, कि सर्जरी तक कब जो है इसकी नौबत खुदा नखास्ता पहुंच जाती है, क्या क्या रीजंस होती हैं कि सर्जरी जो है ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है उस वक्त, या इंडिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। जी,
3: जैसे मैंने बताया, गुड न्यूज़ ये है कि 80-90% ऑफ द टाइम्स यू ओनली नीड मेडिकल ट्रीटमेंट, और मेडिकल ट्रीटमेंट से और प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल से, हेल्थ स्टाइल चेंजेस से आपकी जो है यू गेट अवे फ्रॉम सर्जरी। लेकिन सर्जरी के लिए तीन इंडिकेशन मैं आपको बता सकता हूँ, और ये आप खुद भी याद रखें, अगर कोई, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो डिस्क के साथ जाते हैं और उनको पेन होता है और सर्जन डॉक्टर जो हैं वो उनको ऑपरेट कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन याद रखें, सर्जरी की तीन इंडिकेशन है। पहली सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है वो है वीकनेस। अगर आपके हाथ में या बाजू में उस नर्व के कंप्रेशन की वजह से वीक हो जाए, तो दैट्स वन इंडिकेशन फॉर सर्जरी। सेकेंड जो इंडिकेशन है वो, अगर आप नेक में जो होता है प्रॉब्लम, वो ये है कि आपकी डिफ़िकल्टी वॉकिंग, ठीक है ना, यानी कि आप, क्योंकि नेक का जो स्पाइनल कार्ड कंप्रेस होगा तो उससे आपकी जो लेग्स में भी प्रॉब्लम होता है।
2: जी, ठीक,
3: ठीक है ना। और लास्टली, अगर आपको पेन है जो मेडिसिन से भी ठीक नहीं हुआ, आपने इंजेक्शन लगवाया है लोकल, उसको हम एपिडोरल इंजेक्शन कहते हैं, नर्व के दौरान, नर्व के करीब, उससे भी ठीक नहीं हुआ, सो इस सूरत में सर्जरी की जा सकती है जो पेन रिस्पॉन्ड ना करे हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट को।
2: ठीक, ठीक,
3: ठीक,
2: बिल्कुल।
3: तो ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो वीकनेस है, वीकनेस इज़ एन एब्सोल्यूट इंडिकेशन, ठीक है। अगर मरीज हमारे पास आएगा और हम देखेंगे कि सब कुछ जो है मैच कर रहा है और डिस्क भी बहुत बड़ी है और उसको वीकनेस है, वी विल आस्क हिम शुड गेट सर्जरी, बिकॉज आपकी वीकनेस जो है वो बढ़ जाएगी। कुछ लोग जो हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, उनको डिस्क होती है और दे की उनका पेन जो है कभी ज़्यादा है, कभी कम है, ठीक हो जाता है मेडिसिन से, सो फ्लक्चुएट करते हैं। सो अगर आप एक्टिव लाइफ स्टाइल है आपका, सो यार बात है, यू नो यू वांट टू, डोंट वांट टू लिव विद दैट, ओके,
2: ठीक,
3: सो दैट्स अ पर्सनल चॉइस, ओके। उस दौरान हम डिस्क की सर्जरी कर सकते हैं और उससे आपका पेन जो है वो डिस्क की जो सर्जरी है वो पेन रिलीफ के लिए होती है।
2: ठीक,
3: ठीक है ना,
2: ठीक है। इसमें डॉक्टर साहब डिफरेंट टाइप्स की, जैसे कि कोई ये भी है कि जो टाइप की सर्जरी होती है और डिफरेंट टाइप्स की, या डिस्क जो है रिप्लेस की जा सकती है या क्या, किस तरह से?
3: ओके, सो जो डिस्क की सर्जरी है वो अमूमन हम फ्रंट ऑफ नेक से करते हैं।
2: अच्छा, ठीक,
3: ठीक है ना, बैक से नहीं करते।
2: जी,
3: ठीक है ना। अमूमन ये मरीज भी पूछते हैं कि जी मुझे प्रॉब्लम तो नेक में है, वो पीछे है, आप सर्जरी मेरी आगे से कर रहे हैं।
2: जी,
3: लेकिन जो डिस्क की सर्जरी है वो सामने से होती है, और जब हम डिस्क के पहुंच जाते हैं फिर वहाँ से जो डैमेज डिस्क है उसको निकाल देते हैं।
2: ठीक।
3: अब हमारे पास आर्टिफिशियल डिस्क है जो हम उस जगह पे रख देते हैं, और उसमें कुछ ऐसा मटेरियल है जो कि हम मुख्तलिफ जो एनिमल्स हैं उनसे उनकी बोन्स निकाल के उनकी जो है कुछ पीसीज उसमें रख देते हैं जो कि डीनेचुरलाइज्ड होते हैं, यानी कि वो रिएक्शन वगैरह कार नहीं करते, उससे उस जगह पे हीलिंग हो जाती है।
2: ठीक।
3: तो वो जो हाइट है वो दोबारा मेंटेन हो जाती है।
2: जी।
3: लेकिन उस डिस्क का वो फंक्शन नहीं होता, क्योंकि डिस्क का जो फंक्शन है वो शार्क अब्जॉर्बिंग है।
2: ठीक।
3: अब हमने जो डिवाइस रखा है वो शार्क अब्जॉर्बिंग नहीं है, वो फिक्स्ड है, तो वहाँ पे मूवमेंट नहीं होती।
2: अच्छा,
3: क्योंकि वो जुड़ जाएगी जगह, वो फ्यूज हो जाती है।
2: ठीक।
3: इसका आल्दो मीन यू गॉट रिलीफ ऑफ योर पेन, यू गॉट रिलीफ ऑफ योर वीकनेस, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
2: जी।
3: लेकिन उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है, अगर आपने फ्यूचर में अपने आप को दोबारा से प्रिवेंटिव लाइफ

0: टाइल या आपने मसल्स वगैरह सब कुछ मेंटेन नहीं किए या आपने स्मोकिंग क्विट नहीं की या ओबेसिटी है या आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें आप मॉडिफिकेशन नहीं लाए देयर इज अ रिस्क टू हैव अ डिस्क प्रॉब्लम अबव और बिलो
1: अच्छा ठीक कि वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं
0: बिल्कुल हो जा सकते हैं अगर वो हेल्दी भी हैं पहले से दे कैन गेट इन्वॉल्व विद दिस
1: ठीक तो इसमें जैसे ऑपरेट किया जाए तो इसमें रिकवरी टाइम वगैरह कितना होता है क्या
0: recovery time mean usually this is one of the simplest surgery for us we don't count it as a big surgery and it is done more very frequently
1: agar ye ki isse khauf hai ki surgery jo hai wo bahut zyada jo patient hai hesitate bhi karte hain
0: ji ji surgery to surgery hai theek hai na zar baat hai you have to become unconscious aapko anesthesia diya jayega aur infection ka khatra hota hai aur bleeding ka khatra hota hai theek hai na lekin still because it is done more frequently so it is considered one of the safest surgery okay and depend karta hai ki disc aapko ek level pe hai ya do level pe hai theek hai na amuman jab hum disc ek level pe karte hain to aap ya do level pe karte hain to aapko wo artificial implant rakhna hota hai kuch log plate lagate hain yani ki screw and plate lagani padti hai spine ke anterior taki wo you know stable rahe apni jagah pe theek hai na तो अगर दो लेवल पे है तो फिर तो डेफिनेटली आपको स्क्रू एंड प्लेट लगानी होगी अगर सिंगल लेवल पे है तो सम टाइम यू कैन गेट अवे विदाउट हैविंग ए प्लेट और स्क्रू आर्टिफिशियली
1: ठीक
0: जी और जहां तक आपका अगला सवाल है
1: जी डॉक्टर अगर मैं ये पूछूं कि सक्सेस रेट जो है वो कितना है या जो पेशेंट्स हैं वो क्या जाहिर आपके पास तो आते हैं कि सेटिस्फाइड होते हैं या किस तरह से
0: देखें जी पेशेंट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट
1: जी
0: ओके जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि आपने सिम्टम्स पूछनी है आपने एग्जामिनेशन करना है देन एमआरआई पे देखना है अगर सारी चीजें मैच कर रही हैं द सक्सेस रेट वुड इट इज ऑलमोस्ट मोर देन 90% सो जब व्हेन पेशेंट वेक अप ही विल नॉट हैव पेन
1: अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह
0: ओके सो ये दिस इज अ गुड न्यूज़ और तो सक्सेस रेट अमूमन मोर देन 90% है 95% आप कह सकते हैं
1: ठीक ठीक
0: तो रिकवरी का आपने पूछा मुझसे
1: जी जी
0: सो रिकवरी जो है वो मीन अमूमन इट्स हम कोई चीज जब फ्रंट से सर्जरी करते हैं किसी भी मसल को नहीं काटते बल्कि हम एक हमारा कॉरिडोर होता है मसल्स के दरमियान से जाते हैं
1: ठीक है
0: उससे ये होता है कि जब यहां पे कोई खास पेन नहीं होता ठीक है ना क्योंकि हमने कोई चीज कट नहीं की सिर्फ स्किन का इंसिजन होता है उसमें आपको पेन वगैरह होगा लेकिन दैट्स इट काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट इट स्टार्ट अ पेन ओके सो इसलिए रिकवरी इज फास्ट सो अमूमन जो है अब तो बहुत से सेंटर्स में ये डे केयर सर्जरी भी होती है यानी कि आप सुबह एडमिट होते हैं शाम में आप घर चले जा सकते हैं
1: ठीक
0: ठीक है ना और लेकिन जनरली स्पीकिंग आफ्टर 2-3 डेज यू कैन गो होम एंड In more or less 2-3 weeks, you can be back to your routine.
1: ठीक ठीक तो इसमें जो है वो patient को जैसे क्या क्या जो उसका follow up तो होगा ही मगर ये कि आप क्या उन्हें जैसे कि day care की बात कर रहे हैं या 3 days भी तो care क्या क्या करनी होगी उन्हें
0: सबसे पहले ये कि जो incision है हम लोग देते हैं चार बार ये front of the neck है तो एक cosmetic concern भी होता है बहुत से लोगों में
1: जी
0: लेकिन good news ये है कि जब आप स्किन की जो क्रीज में इंसिजन देते हैं और उसको इस तरह से सूचर करते हैं कि बाहर की स्टिच नहीं लगाते हैं वो सबक्यूटिकुलर स्टिच कहते हैं इनसाइड स्टिच होते हैं तो उससे जब हीलिंग होती है तो आपको स्कार नजर भी नहीं आता ठीक है ना सो कॉस्मेटिकली इसे यू नो काइंड ऑफ गुड रिजल्ट्स तो आपको किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे सर्जरी हुई अगर आप बताएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ सर्जरी हुई है अदरवाइज नोबडी नोज दैट यू हैड ए सर्जरी
1: ठीक है जी और लिसनर्स आपसे टाइम बहुत कम है मगर जैसे कि आप हमें वॉइस मैसेज कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट मैसेज कीजिए कोई भी सवाल हो तो वो ज़रूर आप पूछ सकते हैं जी
0: तो फिर जब सर्जरी हो जाती है उसके तकरीबन मैंने बताया कि स्टिचेस तो होते नहीं हैं लेकिन हम फॉलो अप करते हैं 7-10 डेज में जस्ट टू सी एवरीथिंग इज गोइंग फाइन ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम हिज पेन एंड अगर उसको वीकनेस हुई है सर्जरी से पहले फिर उसको कुछ हम फिजियोथेरेपी की तरफ भेजते हैं ताकि वो जो है कुछ एक्सरसाइजेस सीखें और जो मसल वीक होंगे हैं उन मसल को दोबारा से स्ट्रांग बनाएं इट में टाइम लगता है कुछ ना कुछ
1: जी लिसनर्स नंबर में आपको जैसे आप पूछ रहे हैं दोबारा बता दूं 3443777 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं. जैसे आपने कहा कि आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं, इस वक्त आप कर लीजिए. जी डॉक्टर साहब, इसमें सबसे ये होगी उसकी सर्जरी जो है कब और किन हालात में जो है वो ज़रूरी हो जाती है, इसमें प्रिवेंशन की हम बात करना चाहेंगे कि किस तरह से हम इस सिचुएशन तक ना पहुँचे. एक कॉल है डॉक्टर साहब रिसीव करेंगे. अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ गाइड. जी जी,
2: मेरा नाम,
1: प्लीज रेडियो अपना ऑफ कर दीजिए. जी जरा जल्दी जी.
2: मेरा जो है ना पैर में जॉइंट है ना, वो जॉइंट में भी काफी दर्द होता है, ऐसे अचानक में दर्द होता है और सूजन हो जाता है और फिर ऐसे ही सही ठीक भी हो जाता है. और हाथों की जो उंगलियां है ना, उंगलियों के जॉइंट में भी ऐसे पेन होता है और सूजन होता है.
1: तो नेक में कोई मसला है कि आपकी गर्दन में भी कुछ कभी दर्द हो और वो रिलेट करे, पांव हाथ की भी बात कर रहे हैं आप? जी
2: हाँ, हाथ का बहुत काफी टाइम से हो रहा है, आज से नहीं, समथिंग मेरे ख्याल से 10-12 साल हो गए. मैंने एक्सरे भी निकलवाए थे पैर के भी, हाथ के उंगलियों के, लेकिन कुछ ऐसा बताया नहीं. और फिर यूरिक एसिड भी चेकअप करवाया कि हो सकता हो, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है.
1: चलिए डॉक्टर साहब आपको बताते हैं. जी आप जरूर सुनिए. जी डॉक्टर साहब, टाइम
0: तो ये बेसिकली जो प्रॉब्लम बता रहे हैं वो स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड एंड फीट में बता रहे हैं. और इसको डायग्नोज इसके लिए मुख्तलिफ कॉजेज हो सकती हैं. इनके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो जॉइंट्स के डॉक्टर रहते हैं, जिनको हम रूमेटोलॉजिस्ट कहते हैं.
1: जी
0: तो इनको रूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, वो इसको वर्कअप करेंगे. मुख्तलिफ कॉजेज होती हैं, ये यूरिया इज़ नॉट द ओनली रीज़न, देर आर मेनी अदर रीज़न, जिसमें रोमाटाइड आर्थराइटिस वगैरह भी की चीज़ें भी हो सकती हैं. तो बेहतर है आप उनसे कंसल्ट करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल गेट द रिजल्ट्स
1: इंशाल्लाह. जी डॉक्टर साहब, प्रिवेंशन की बात की जाए कि किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं नेक पेन को.
0: जैसे मैंने पहले बताया कि द की इज़ द मसल स्ट्रेंथ, ठीक है ना. तो जब आप रिकवर हो जाते हैं इससे एंड यू वांट कि आपको जो सर्जरी जिस लेवल पे हुई है उससे ऊपर का या नीचे का जो लेवल है वो डिस्टर्ब ना हो और फ्यूचर में दोबारा आपको डिस्क ना हो, देन यू शुड डू ब्रिंग सम रेगुलर एक्सरसाइज इन योर पार्ट ऑफ योर लाइफ. सो वंस और ट्वाइस ए वीक यू गो टू जिम, यू कैन डू नॉर्मल एक्सरसाइजेस ओके इन द बिगनिंग फॉर वन मंथ. Okay, tone up your muscles and then you gradually start strengthening your shoulder muscles, okay, and your neck muscles. There are a lot of exercises which we can do to strengthen your muscles. In addition, if you are using computer, okay, so computer ke saamne bhi apne posture ko correct karein. Iske kuch log hain jo physio, jinko ergonomic, ergonomist kehte hain, wo aapko batate hain ki computer ko kis tarike se rakhna hai, kis height pe rakhna hai, aapki kursi kaisi honi chahiye, aur aapne kitni der ke liye baithna hai uske saamne,
1: theek
0: hai na. To sari aapko information milengi.
1: Theek. जी लिसनर्स, आप दोबारा ये प्रोग्राम सुनना चाहें तो जुमे को सुबह 8 बजे आप ये प्रोग्राम सुन सकते हैं. जी डॉक्टर साहब, कोई मैसेज क्या देंगे कि हम नेक पेन से दूर रहें?
0: एक्टिव लाइफस्टाइल
1: जी,
0: एंड ब्रिंग सम डेली और एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस ए वीक सम एक्टिविटी इन योर लाइफ, okay, which can be a regular exercise or some kind of game or anything. So
1: devices jo use karte hain unka wo to bahut
0: message hai, it's a known message but it's prevent not very preventable nowadays because this become a part of our life.
1: Theek. Aur ye ki posture jo hai jaise doctor ne kaha hai agar hum wo theek karenge rakhenge to fir hum jo hai neck pain se zara रिलीव होगी हमें अगर है तो. जी और सामी मोहतरम, इसके साथ ही प्रोग्राम हेल्थ गाइड से डॉक्टर अरशद अली फौजे शफीक और हमारे साथ रहे असले भंडारा. इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.

0: Women in Sports, RJ Safa के साथ, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी.
1: अस्सलाम वालेकुम कतर और दुनिया भर के FM 107 सुनने वाले तमाम साथियों को. आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा. खुशामदीद कहती हूं आप सभी को हमारे खास और दिल को छू लेने वाले शो में जिसका नाम है विमेन इन स्पोर्ट्स. साथियों, कभी एक वक्त था जब लोग ये समझते थे कि स्पोर्ट्स सिर्फ लड़कों की फील्ड है, ग्राउंड हो, स्टेडियम हो या क्रिकेट पिच हो. अक्सर लड़कियों को सिर्फ ऑडियंस तक महदूद समझा जाता था. लेकिन जैसा कि वो एक कहावत है ना, द ओनली थिंग दैट इज कॉन्स्टेंट इज चेंज. तो भाई वक्त बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है. आज की लड़की सिर्फ तालियां बजाने वाली नहीं है, वो मेडल जीतने वाली है. वो सिर्फ मैच देख कर गुजारा नहीं करती, मैच जीतती भी है. और सिर्फ अपना नाम नहीं बना रही बल्कि पूरी कम्युनिटी, पूरी फैमिली और कभी कभी पूरे मुल्क का सर फखर से बुलंद कर देती है. देखिए, आज हम बात करेंगे उन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स की जो सिर्फ कॉम्पिटिशन्स नहीं रहे बल्कि एक रेवोल्यूशन बन चुके हैं. ऐसे टूर्नामेंट्स जो जेंडर नॉर्म्स को चैलेंज कर रहे हैं, ऐसे इवेंट्स जो हर उस लड़की को ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई तुम भी कर सकती हो. जरा सोचिए, जब एक छोटी सी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची मेडल लेकर स्टेज पर खड़ी होती है तो सिर्फ उसकी जीत तो नहीं होती ना, उसकी अम्मा की उम्मीदें जीतती हैं, उसके वालिद का कॉन्फिडेंस जीतता है, उसकी कम्युनिटी का नजरिया जीतता है. देखिए, लड़कियों के मामले में ना, पहले किसी जमाने में कहा जाता था कि बेटा ज्यादा भागना मत, इतनी धूप में मत खेलो, गर्ल्स को इतनी स्पोर्टी नहीं होना चाहिए. लेकिन अब पेरेंट्स खुद कहते हैं मेरी बेटी फुटबॉल प्लेयर बनेगी, मेरी बेटी एथलीट्स में गोल्ड मेडल लाएगी, मेरी बेटी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करेगी. साथियों, स्पोर्ट्स सिर्फ मसल्स का काम नहीं है, स्पोर्ट्स कॉन्फिडेंस का नाम है, डिसिप्लिन का नाम है, लीडरशिप का नाम है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, स्पोर्ट्स एक आवाज है, एक ऐसी आवाज जो ये कहती है कि गर्ल्स बिलोंग एवरीवेयर इंक्लूडिंग द फील्ड एज वेल. अच्छा, जब हम दुनिया भर की सक्सेसफुल विमेन एथलीट्स को देखते हैं ना, तो हमें सिर्फ ट्रॉफीज नजर नहीं आती है कि नहीं, हमें स्ट्रगल नजर आती है, डेडिकेशन नजर आती है और वो हिम्मत नजर आती है जो कहती है मैं करूंगी, मैं कर सकती हूँ. भाई, एक वक्त था जब लड़कियों को सिर्फ साइड लाइन्स पर बिठाया जाता था, लेकिन आज वो सेंटर स्टेज पर है. किसी ने बॉक्सिंग ग्लव्स पहन लिए हैं, किसी ने फुटबॉल को अपना ख्वाब बना लिया है और किसी ने रनिंग ट्रैक पर दुनिया को दिखा दिया है कि स्पीड सिर्फ बॉयज मोनोपोली नहीं है. और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है, जब एक लड़की टूर्नामेंट जीतती है ना, तो भाई उसकी जीत थ्योरेटिकल नहीं होती, वो चेंज को रियल बना देती है. मोहल्ले वाले उसके नाम को याद करते हैं, स्कूल उस पर फखर करता है, फैमिली उसकी तस्वीर गेस्ट्स को दिखाती है और छोटी बच्चियां उसे देख कर ये कहती हैं कि भाई मुझे भी ऐसा बनना है, इसने इतना कुछ किया है, मुझे भी ऐसा करना है. यही स्पोर्ट्स की असली ताकत है साथियों. ये सिर्फ गेम्स नहीं बदल रहा, ये सोच बदल रहा है. देखिए, कतर से लेकर दुनिया भर तक विमेन स्पोर्ट्स का सीन रोज स्ट्रॉन्ग हो रहा है. गर्ल्स टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, मेडल्स जीत रही हैं, रिकॉर्ड्स तोड़ रही हैं और स्टीरियोटाइप्स भी तोड़ रही हैं साथ में. देखिए, आज

करेंगे कॉन्फिडेंस की, अपॉर्चुनिटीज की, फैमिली सपोर्ट की और उन ड्रीम्स की जो अब सिर्फ ख्वाबों तक महदूद नहीं है। और हाँ, अगर आपके घर में भी कोई छोटी सी चैंपियन मौजूद है ना, जो हर वक्त बॉल लेकर भागती फिरती रहती है या हर दूसरे दिन मेडल जीतने का ड्रामा करती है, तो भाई प्लीज उसे रोकिए मत। हो सकता है कल को वही आपका फखर बन जाए। आप सुन रहे हैं FM 107 कतर, शो का नाम है विमेन इन स्पोर्ट्स। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सफा। अच्छा भाई, हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है @FM107 कतर। और अगर आपके पास भी कोई इंस्पायरिंग स्टोरी है ना, तो हमें कॉन्टेक्ट कीजिए 666-222-107 पर और जरूर बताइए। तो भाई साथियों, स्टे ट्यून्ड, स्टे इंस्पायर्ड, स्टे कॉन्फिडेंट। और याद रखिए, जब एक लड़की खेलती है तो वो सिर्फ गेम नहीं जीतती, वो पूरी सोसाइटी को जितवाती है। अच्छा, आज का हमारा जो एपिसोड है ना, एक ऐसी एथलीट के नाम है जिसने जिमनास्टिक्स को सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं रहने दिया, उसने उसे एक इमोशनल कन्वर्सेशन बना दिया। एक ऐसी कन्वर्सेशन जो प्रेशर, मेंटल स्ट्रेंथ, फियर, एक्सपेक्टेशंस और सेल्फ रिस्पेक्ट के गिर्द घूमती रहती है। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं सिमोन बाइल्स की, एक ऐसा नाम जो एक्सेलेंस का सिंबल बन चुका है। देखिए साथियों, जब भी जिमनास्टिक्स की हिस्ट्री लिखी गई, सिमोन बाइल्स का नाम सिर्फ गोल्ड मेडल्स की वजह से नहीं चमकेगा, बल्कि इसीलिए भी कि उन्होंने दुनिया को ये सिखाया कि स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान वो नहीं जो कभी नहीं रुकता, बल्कि स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान वो होता है जो वक्त पर रुक कर अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी वेलबींग को इम्पोर्टेंस देता है। साथियों, सिमोन बाइल्स को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ग्रेविटी भी उनके रूल्स फॉलो करती है। अच्छा, अब इस बात का क्या मतलब मैं बता देती हूँ। जब वो एयर में फ्लिप करती हैं, ट्विस्ट करती हैं और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देती हैं, तो भाई दुनिया तालियां बजाती है। लेकिन हर ताली के पीछे एक प्रेशर होता है, हर एक्सपेक्टेशन के पीछे एक इमोशनल वेट होता है। और अक्सर हम ऑडियंस सिर्फ स्पॉटलाइट देखते हैं, उस स्पॉटलाइट के पीछे छुपा हुआ जो अंधेरा होता है ना, वो हमें नजर नहीं आ रहा होता। सिमोन बाइल्स ने वो अंधेरा दुनिया को दिखाया। उन्होंने बताया कि एथलीट्स मशीन नहीं होते, वो भी इमोशंस रखते हैं, फियर फील करते हैं, एंजाइटी का सामना करते हैं और कभी कभी उन्हें भी पॉज बटन दबाना पड़ता है। देखिए, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में अक्सर हम रिकॉर्ड्स और स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करते हैं, कितने मेडल्स जीते, कितने पॉइंट्स स्कोर किए, कितने वर्ल्ड टाइटल्स हैं। लेकिन आज का स्पोर्ट्स वर्ल्ड सिर्फ नंबर्स तक महदूद नहीं रहा, आज का स्पोर्ट्स वर्ल्ड इमोशंस भी समझने लगा है भाई। और सिमोन बाइल्स ने इस चेंज में बहुत बड़ा रोल अदा किया। उन्होंने एक ऐसी दुनिया में ऑनेस्टी दिखाई जहां एथलीट से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो हमेशा परफेक्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि भाई मैं इंसान हूं, और उनके ये तीन अल्फाज ना कि मैं इंसान हूं, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, ये तीन अल्फाज उनके इट लिटरली इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द ग्लोब। सोचिए, पूरी दुनिया आपको देख रही हो, कैमराज हर एंगल से फोकस्ड हो, सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ आपकी परफॉर्मेंसेस डिस्कस कर रहे हों, और उस वक्त आप ये डिसाइड करें भाई कि नहीं, इस तक मुझे पॉज की जरूरत है, मैं अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटाइज करूंगी। कितनी हिम्मत चाहिए होती है भाई इस फैसले के लिए, कभी सोचा है? देखिए, बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है इस फैसले के लिए कि जब आप ऑल ओवर द ग्लोब में सेंटर ऑफ अटेंशन बने हुए हो और आप तब पॉज लो। और इसीलिए सिमोन बाइल्स सिर्फ एक जिमनास्ट नहीं है, एक मूवमेंट है, एक रिमाइंडर है कि सक्सेस सिर्फ मेडल्स को कलेक्ट करने का नाम नहीं होता, सक्सेस अपनी लिमिट्स को समझने और अपनी मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देने का नाम होता है। देखिए साथियों, यंग गर्ल्स जो होती है ना, जैसे सिमोन बाइल्स थी, उनकी स्टोरी जो हम सुनते हैं ना, तो हमें ये पता चलता है कि उन्हें सिर्फ जिमनास्टिक्स नहीं सिखाया जाता, उन्हें रेजिलियंस सिखाया जा रहा होता है, उन्हें बताया जा रहा होता है कि कॉन्फिडेंस होना और वल्नरेबल होना एक साथ पॉसिबल है। आप स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और इमोशनल भी हो सकते हैं, आप चैंपियन भी हो सकते हैं और रेस्ट की भी जरूरत फील कर सकते हैं। ये जो बैलेंस होता है ना, ये बैलेंस ही मॉडर्न स्पोर्ट्स की असली पहचान बन रहा है।
सच कहूं तो सिमोन बाइल्स ने सिर्फ जिमनास्टिक

पर हिस्ट्री नहीं बनाई, उन्होंने कन्वर्सेशंस चेंज की हैं। देखिए पहले मेंटल हेल्थ स्पोर्ट में इतनी ओपनली डिस्कस नहीं होती थी, लोग समझते थे कि अगर एथलीट प्रेशर फील कर रहे हैं तो शायद वो वीक हैं। लेकिन सिमोन ने ये मिथ तोड़ दिया, उन्होंने प्रूव किया कि अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं होती, मैच्योरिटी होती है। ये सेल्फ अवेयरनेस है, और कभी कभी सबसे ब्रेव स्टेप ये होता है कि आप खुद से कहें कि भाई मुझे ब्रेक चाहिए। अच्छा एक और मजे की बात कि आज दुनिया भर की फीमेल एथलीट्स उनसे इंस्पायर होती हैं, पता है। यंग जिमनिस्ट उनके मूव्स कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे भी एक और इम्पोर्टेंट बात है, पता है क्या, वो उनकी ऑनेस्टी से सीख रही हैं। आज एक यंग गर्ल जब स्पोर्ट्स फील्ड में एंटर करती है ना, तो उनके पास सिर्फ एक रोल मॉडल नहीं होता, एक रियल ह्यूमन एग्जाम्पल होती है, एक ऐसी एग्जाम्पल जो बताती है कि परफेक्शन इम्पॉसिबल है लेकिन करेज पॉसिबल है। और हाँ, अगर आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं ना साथियों, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या होता जब रूम में सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा या बंदी ये डिसाइड करता कि वो पॉज करेगा, क्या वो वीक हो जाता है पॉज करने से, या फिर वो ज्यादा पावरफुल बन जाता है क्योंकि उसने अपनी लिमिट्स को समझ लिया है। शायद असली स्ट्रेंथ वही है, अपने आप को समझना, खुद को समझना, खुद का ख्याल रखना और दुनिया की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अपनी वेल बीइंग को इम्पोर्टेंस देना। यही वजह है कि आज का एपिसोड सिर्फ स्पोर्ट्स फैंस के लिए नहीं है, हर उस इंसान के लिए है जो प्रेशर फील करता है, हर उस स्टूडेंट के लिए है जो एक्सपेक्टेशन से थक गया है, हर उस वर्किंग वुमेन के लिए है जो हर वक्त परफेक्ट नजर आने की कोशिश करती रहती है, और हर उस यंग गर्ल के लिए है जो ये सोचती है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए इमोशंस छुपाने पड़ेंगे। सिमोन बाइल्स की स्टोरी कहती है नो, नहीं, आप ह्यूमन हैं और फिर भी आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं। तो साथियों आज का सफर होगा इंस्पायरेशन का, ऑनेस्टी का, और उन मोमेंट्स का जो स्पोर्ट्स को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक पावरफुल ह्यूमन एक्सपीरियंस बना देती हैं। अच्छा कुछ साल पहले तक जिमनास्टिक्स को कतर में एक लिमिटेड स्पोर्ट समझा जाता था, खास तौर पर गर्ल्स पार्टिसिपेशन के हवाले से। देखें मामला पता है क्या है, पेरेंट्स अक्सर एकेडमिक्स को प्रायोरिटी देते हैं और स्पोर्ट्स को हमेशा ये कहा जाता था कि भाई सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी समझा जाता है उन्हें। लेकिन आज का सीन ड्रामेटिकली चेंज हो रहा है। दोहा और कतर के मुख्तलिफ एरियाज में स्कूल लेवल जिमनास्टिक्स प्रोग्राम्स रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। अब जिमनास्टिक्स सिर्फ एनुअल स्पोर्ट्स डे तक महदूद नहीं रह गया है, बल्कि प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोचिंग सेशंस और इंटर स्कूल कॉम्पिटिशंस का हिस्सा बन चुका है। आज छोटी छोटी बच्चियां बीम, फ्लोर एक्सरसाइजेस और फ्लेक्सिबिलिटी ड्रिल्स में वो कॉन्फिडेंस दिखा रही हैं जो कुछ साल पहले बहुत मुश्किल लगता था। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्कूल्स अब गर्ल्स स्पोर्ट्स को सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए इनकरेज नहीं कर रहे, बल्कि टैलेंट डेवलपमेंट के लिए सीरियस प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा पहले ये होता था कि स्टूडेंट्स कैजुअली ना स्पोर्ट्स में भर्ती नहीं, लेकिन अब बाकायदा भाई ट्रेंड कोचेज, फिटनेस स्केड्यूल्स और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और आप सुन रहे हैं FM 107 पर हमारा स्पेशल शो जिसका नाम है विमेन इन स्पोर्ट्स।

0: Women in Sports, RJ Safa ke saath, sirf FM 107 par, Dil Se Desi.
1: साथियों, जिम्नास्टिक्स और यूथ स्पोर्ट्स सेंटर्स में एनरोलमेंट स्टेडी इंक्रीज हो रही है. पेरेंट्स भी अब ये समझने लगे हैं कि जिम्नास्टिक्स सिर्फ फ्लिप और डांस का काम नहीं है, ये डिसिप्लिन है, बॉडी कंट्रोल है, कॉन्फिडेंस है और मेंटल फोकस डेवलपमेंट करता है. देखिए, दोहा में कम्युनिटी बेस्ड स्पोर्ट्स कल्चर भी काफी इवॉल्व हुआ है. आज कई कम्युनिटी लीग्स और फिटनेस प्रोग्राम्स स्पेशली गर्ल्स के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं. सेफ इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, फीमेल फ्रेंडली ट्रेनिंग एनवायरमेंट्स और सपोर्टिव कोचिंग स्टाफ ने फैमिलीज का ट्रस्ट बिल्ड कर लिया है. इसी वजह से ज्यादा पेरेंट्स अपनी बेटियों को जिम्नास्टिक्स और एथलीट्स की तरफ एनकरेज कर रहे हैं. आज वीकेंड पर स्पोर्ट्स हॉल्स और ट्रेनिंग सेंटर्स में यंग गर्ल्स को पार्टिसिपेट करते देखना एक पॉजिटिव और होपफुल साइड बन चुका है. ये सिर्फ एक स्पोर्ट

चेंज है। साथियों, जिमनास्टिक्स की पॉपुलैरिटी में एक इंटरेस्टिंग फैक्टर सोशल मीडिया भी है। देखिए, जब यंग एथलीट्स इंटरनेशनल जिमनिस्ट को परफॉर्म करते देखते हैं ना, तो उनके अंदर भी एक मोटिवेशन क्रिएट होती है। और कतर में स्पोर्ट्स अथॉरिटीज ने भी इसी इंस्पायरेशन को पॉजिटिव डायरेक्शन देने की कोशिश की है। देखिए, कतर की स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी प्रोग्रेस का एक मेजर रीजन है। अच्छा, आज मॉडर्न इंडोर अरीनाज, ट्रेनिंग हॉल्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, वो फीमेल एथलीट को बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। और ऑनेस्टली, फैसिलिटीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, ये मैं मानती हूँ। जब एथलीट्स को प्रोफेशनल एनवायरमेंट मिलता है ना, तो उनका कॉन्फिडेंस नेचुरली बूस्ट होता है। गर्ल्स फील करती हैं कि भाई उनके ड्रीम्स भी इंपॉर्टेंट हैं और उनको भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, उनके ख्वाबों को भी। इसीलिए कतर की यूथ स्पोर्ट्स पॉलिसी में इंक्लूसिविटी और वुमेन डेवलपमेंट को स्टेडी स्ट्रॉन्ग फोकस दिया जा रहा है। अच्छा, एक और पॉजिटिव चेंज जो क्लियरली नजर आता है ना, वो है फीमेल कोचेस और स्पोर्ट्स एजुकेटर्स की इंक्रीजिंग प्रेजेंस। देखिए, पहले ना गर्ल्स स्पोर्ट प्रोग्राम्स में फीमेल रिप्रेजेंटेशन बहुत लिमिटेड होती, लेकिन अब बाकायदा ट्रेन फीमेल कोचेस एक्टिवली जिमनास्टिक्स और फिटनेस ट्रेनिंग में काम कर रही हैं। आप कह लेंगे ये ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवेलपमेंट है, क्योंकि यंग एथलीट्स को आप कह लेंगे रिलेटेबल रोल मॉडल मिलते हैं। जब एक यंग गर्ल किसी फीमेल कोच को लीडरशिप रोल में देखती है ना, तो उसके लिए स्पोर्ट्स का फ्यूचर और ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जब एक बच्ची बीम पर बैलेंस मेंटेन करना सीखती है ना, तो वो सिर्फ फिजिकल बैलेंस नहीं, इमोशनल बैलेंस भी डेवलप करती है। जब वो डिफिकल्ट रूटीन परफॉर्म करती है ना, तो उसके अंदर वो जो खौफ होता है ना, उसको फेस करने की हिम्मत पैदा होती है। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट और एजुकेटर्स भी स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन को हेल्दी यूथ डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट समझते हैं। साथियों, कतर में कम्युनिटी अवेयरनेस भी विजिबली इंक्रीज हुई है। आज फैमिलीज ओपनली अपनी बेटियों को स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म्स में कॉम्पिटिशन्स अटेंड करवाती हैं। पेरेंट्स साइड लाइन्स पर खड़े बच्चियों को चीयर कर रहे होते हैं। और ये सपोर्ट सिस्टम फीमेल एथलीट्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। सोसाइटी जब एनकरेजमेंट देती है ना, तो ड्रीम्स स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं भाई। आज की यंग गर्ल्स सिर्फ स्पेक्टेटर्स नहीं हैं, वो पार्टिसिपेंट्स हैं, परफॉर्मर्स हैं और फ्यूचर चैंपियंस हैं भाई। और सच कहूँ तो वुमेन इन स्पोर्ट्स का ये मूवमेंट सिर्फ दोहा तक महदूद नहीं है, ये पूरे रीजन के लिए एक इंस्पायरेशन, एक एग्जाम्पल बनता जा रहा है। जब कतर वुमेन्स स्पोर्ट्स को सपोर्ट करता है ना, तो ये मैसेज जाता है सबको कि डेवलपमेंट सिर्फ बिल्डिंग्स और टेक्नोलॉजी का नाम नहीं होती, डेवलपमेंट वो है जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, और स्पोर्ट्स एग्जैक्टली यही कर रहा है। अच्छा साथियों, आज जिमनास्टिक्स और वुमेन्स स्पोर्ट्स के थ्रू यंग गर्ल्स टीम वर्क सीख रही हैं, लीडरशिप सीख रही हैं और रेजिलियंस डेवलप कर रही हैं। वो समझ रही हैं कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती, हर परफेक्ट लैंड के पीछे आवर्स ऑफ प्रैक्टिस होती है, हर मेडल के पीछे सेक्रीफाइस होता है और हर एथलीट के पीछे एक सपोर्ट सिस्टम होता है जो उस पर बिलीव करता है। और इसीलिए जो सारी बातें हैं, ये बहुत मीनिंगफुल हैं, क्योंकि हर सिस्टम चेंज एक इंडिविजुअल से स्टार्ट होता है, हर रेवोल्यूशन एक स्मॉल स्टेप से शुरू होता है। और हो सकता है आज कतर के किसी स्कूल जिम में प्रैक्टिस करती हुई एक यंग लड़की कल को इंटरनेशनल स्टेज पर कंट्री रिप्रेजेंट कर रही हो सकता है आज जो बच्चा या आज जो बच्ची सिंपल स्ट्रेचिंग ड्रिल्स कर रही है, कल वो फ्यूचर स्पोर्ट्स आइकन बन जाए। साथियों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी स्टोरी ऑफ द वीक के बारे में, जो कि है सिमोन बाइल्स, एक ऐसी एथलीट जिन्होंने जिमनास्टिक्स की सिर्फ हिस्ट्री नहीं बदली, बल्कि स्पोर्ट्स की डेफिनेशन ही ट्रांसफॉर्म करके रख दी। साथियों, जब भी दुनिया जिमनास्टिक्स की ग्रेटेस्ट एथलीट्स का जिक्र करेगी ना, एक नाम हर लिस्ट में सबसे ऊपर नजर आएगा, वो है सिमोन बाइल्स का। एक ऐसी एथलीट जिनकी हाइट शायद ज्यादा नहीं, लेकिन अचीवमेंट्स इतनी ऊंची हैं कि पूरी दुनिया उन्हें सल्यूट करती है। उनकी स्टोरी मेडल से शुरू नहीं होती, उनकी स्टोरी स्ट्रगल से शुरू होती है। साथियों, सिमोन बाइल्स की अर्ली लाइफ किसी हॉलीवुड फेरी टेल जैसी नहीं थी। साथियों, वो फॉस्टर केयर सिस्टम में पली बढ़ी थी। उनका जो बचपन था वो बहुत ही, अगर उनकी स्टोरी सुने ना, तो उनका पूरा का पूरा चाइल्डहुड बहुत ही अनसर्टेनिटी से भरा हुआ था। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, इमोशनल स्टेबिलिटी भी मिसिंग थी। जब दूसरे बच्चे नॉर्मल बचपन एंजॉय कर रहे थे, सिमोन लाइफ के बहुत टफ रियलिटीज फेस कर रही थी।

लेकिन कुछ लोग मुश्किल हालात में टूट जाते हैं और कुछ लोग वहीं से अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। सिमोन दूसरी कैटेगरी में आती हैं। उनके अंदर बचपन से ही अनयूजुअल एनर्जी थी, वो कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती थी, जंप करती रहती थी, फ्लिप करती रहती थी। किसी ने उस वक्त इमेजिन भी नहीं किया था, क्या किया होगा ही नहीं, कि ये एनर्जेटिक लिटिल गर्ल एक दिन जिमनास्टिक्स वर्ल्ड को रीडिफाइन कर देगी। साथियों, जब सिमोन सिर्फ 6 साल की थी ना, उनका स्कूल ट्रिप एक जिमनास्टिक्स सेंटर गया। वहीं कोचेज ने पहली दफा, भाई वो कहते हैं ना, हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है, तो वहीं कोचेज ने पहली दफा नोटिस किया कि इस बच्चे में कुछ तो स्पेशल है, कुछ तो पोटेंशियल है। भाई उनकी फ्लेक्सिबिलिटी डिफरेंट थी, उनका बॉडी कंट्रोल नेचुरल था और सबसे ज्यादा इंप्रेसिव थी उनकी फियरलेसनेस। ये सपोर्ट सिस्टम सिमोन की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि टैलेंट को ग्रो करने के लिए सिर्फ एबिलिटी नहीं, इमोशनल सिक्योरिटी भी चाहिए होती है। सिमोन ने बहुत यंग एज से ही इंटेंस ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। जब दूसरे बच्चे वीकेंड्स एंजॉय कर रहे होते थे ना, सिमोन जिम में आवर्स, घंटों की प्रैक्टिस कर रही होती थी और फ्लिप परफेक्ट करने के लिए आप यकीन जाने हजारों रेपिटेशंस होती थी। हर लैंडिंग के पीछे आप कह लें कि दर्द होता था, पेन होता था, सेक्रीफाइस होता था। साथियों, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में हम अक्सर कहते हैं कि भाई चैंपियंस बॉर्न नहीं होते, ट्रेंड होते हैं। ये एक नॉर्मली बोला जाता है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, और सिमोन बाइल्स इस बात की परफेक्ट एग्जांपल थी। भाई उनकी बॉडी पावर और एक्सप्लोसिवनेस जिमनास्टिक्स के लिए आइडियल थी, लेकिन जो चीज उन्हें डिफरेंट बनाती थी ना, वो उनका माइंडसेट था। वो सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करती थी, वो डोमिनेट करती थी। भाई जब सिमोन इलीट जिमनास्टिक्स में एंटर हुई तो कोचेस और कॉम्पिटिटर्स दोनों समझ गए थे, भाई ये एथलीट ना, ये भाई ये गेम चेंज करने वाली है। अच्छा, 2013 में सिमोन बाइल्स ने पहला ऑलराउंड वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल जीता और फिर वो सिलसिला रुका ही नहीं। वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में उन्होंने टोटल 30 मेडल जीते, जिनमें से तकरीबन कितने, 23 गोल्ड मेडल्स हैं। जी हाँ दोस्तों, 23 गोल्ड मेडल्स, 23 गोल्ड मेडल्स, ये किसी भी जिमनास्ट के लिए हिस्टोरिकली एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट है। इसी वजह से सिमोन बाइल्स को दुनिया की मोस्ट डेकोरेटेड जिमनास्ट कहा जाता है। अच्छा, ओलंपिक्स में भी उनकी डोमिनेंस अनबिलीवेबल रही। मुझे याद पड़ता है 2016 समर ओलंपिक्स में सिमोन ने 4 गोल्ड मेडल्स और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। अच्छा, टीम इवेंट, ऑलराउंड वॉल्ट और फ्लोर एक्सरसाइज, हर जगह सिमोन का मैजिक नजर आया। भाई रियो ओलंपिक्स के बाद दुनिया भर में उनका नाम एक ग्लोबल सुपरस्टार की तरह लिया जाने लगा, और ऑनेस्टली जो रूटीन्स सिमोन परफॉर्म करती थी वो नॉर्मली जिमनास्टिक्स रूटीन्स नहीं लगती थी। भाई वो फिजिक्स को चैलेंज करती परफॉर्मेंस लगती थी। अगर आपने उनकी परफॉर्मेंसेस अभी तक नहीं देखी है ना, तो मेरी माने एक दफा देखिएगा जरूर, आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। अच्छा, सिमोन की कुछ स्किल्स इतनी डिफिकल्ट थी कि जिमनास्टिक रूल बुक को उनके नाम ऐड करने पड़े। जिमनास्टिक्स वर्ल्ड में जब कोई एथलीट एक कम्प्लीटली यूनिक और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट मूव सक्सेसफुली परफॉर्म करता है ना, तो भाई उस स्किल का नाम एथलीट के नाम पर रख दिया जाता है। सिमोन बाइल्स के नाम पर मल्टीपल स्किल्स रजिस्टर्ड हैं, वॉल्ट, बीम और फ्लोर एक्सरसाइजेस में हैं भाई रजिस्टर्ड हैं। ये सिर्फ ग्रेटनेस नहीं, ये इनोवेशन है। मतलब वो सिर्फ कंपटीशन नहीं जीत रही थी, वो स्पोर्ट्स को इवॉल्व कर रही थी। अच्छा, जिमनास्टिक्स एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिमोन की पावर लेवल मेंस जिमनास्टिक्स स्टैंडर्ड्स के करीब थी। कोचेज और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने एथलीट वेलबींग को ज्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दिया। एथलीट्स ओपनली एंजाइटी और बर्नआउट डिस्कस करने लगे भाई, और इसी रेवोल्यूशन की लीडिंग वॉइस पता है कौन थी भाई, वो थी सिमोन बाइल्स। आज सिमोन बाइल्स सिर्फ जिमनास्ट नहीं है, एक ग्लोबल सिंबल है। वो एथलीट प्रोटेक्शन है, मेंटल वेलबींग और हेल्दी कंपटीशन की एडवोकेट हैं। उन्होंने दुनिया को ये समझाया कि इमोशनल स्ट्रेंथ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी फिजिकल स्ट्रेंथ होती है। और फिर सबसे इंस्पायरिंग बात पता है क्या हुई, सबसे इंस्पायरिंग बात ये हुई कि सिमोन वापस कमबैक भी करके आई। भाई उन्होंने छोड़ नहीं दिया।

0: बहुत लोग ये समझ रहे थे कि भाई शायद उनका गोल्डन एरा अब खत्म हो गया, क्योंकि इसने ब्रेक ले लिया तो भाई क्या ही, छोड़ो जाने दो, चली गई। लेकिन चैंपियंस कभी इजीली डिसअपीयर नहीं होते। साथियों 2023 वर्ल्ड आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स चैंपियनशिप्स में सिमोन ने फिर गोल्ड मेडल्स जीत कर ये प्रूव किया कि ग्रेटनेस टेम्पररी नहीं होती। उन्होंने अपने टोटल मेडल काउंट्स और रिकॉर्ड्स को और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया। भाई आज की यंग जनरेशन के लिए सिमोन बाइल्स सिर्फ एक स्पोर्ट्स आइकन नहीं, एक इमोशनल रोल मॉडल है। देखिए यंग गर्ल्स उनकी रूटीन देखकर जिमनास्टिक्स सीखना चाहती हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो उनकी ऑनेस्टी और करेज से भी इंस्पायर होती हैं। सिमोन ने गर्ल्स को ये मैसेज दिया कि आप साइमल्टेनियसली स्ट्रॉन्ग और वल्नरेबल दोनों हो सकते हो, आप चैंपियन भी हो सकते हो और रेस्ट की जरूरत भी फील कर सकते हो। और अगर हम कतर के पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो सिमोन बाइल्स जैसी स्टोरीज यंग फीमेल एथलीट्स के लिए बहुत मोटिवेशनल हैं। भाई कतर में जिमनास्टिक्स और वुमेन स्पोर्ट्स स्टेडी ग्रो कर रहे हैं, यंग गर्ल्स अब कॉन्फिडेंटली स्पोर्ट्स एकेडमीज ज्वाइन कर रही हैं, फैमिलीज स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रही हैं, स्कूल स्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट्स प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और जब यंग एथलीट्स सिमोन बाइल्स की स्टोरी सुनती है ना, तो उन्हें रियलाइज होता है कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट का नाम नहीं होता, रेजिलियंस का नाम होता है। साथियों सिमोन बाइल्स की जर्नी हमें ये सिखाती है कि ग्रेटनेस परफेक्ट लाइफ से नहीं आती, ग्रेटनेस स्ट्रगल, रिकवरी और कंसिस्टेंसी से आती है। फॉस्टर केयर से लेकर ओलंपिक पोडियम तक का सफर मुझे नहीं लगता हमें सुनने में इतना इजी नहीं लग रहा, तो उनके लिए वो तय करना कितना मुश्किल होगा। लेकिन सिमोन ने हर चैलेंज को फ्यूल बना दिया, इसीलिए आज उनका नाम सिर्फ रिकॉर्ड बुक्स में नहीं, मिलियंस ऑफ हार्ट्स में बरकरार है। आज जब दुनिया स्ट्रेंथ की डेफिनेशन डिस्कस करती है ना, तो सिमोन बाइल्स का नाम ऑटोमेटिकली सामने आता है, क्योंकि उन्होंने ये प्रूव किया कि रियल स्ट्रेंथ सिर्फ मसल नहीं होता, रियल स्ट्रेंथ इमोशनल ऑनेस्टी होती है, सेल्फ अवेयरनेस होती है, और वही करेज होता है जो कहता है भाई मैं भी इंसान हूँ और मेरी भी वेलबींग मैटर करती है, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ। तो साथियों अगर आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं तो एक बात याद रखिए, हर चैंपियन के पीछे स्ट्रगल होती है, हर स्माइल के पीछे प्रेशर होता है, और हर सक्सेसफुल एथलीट के पीछे एक इंसान होता है, उसका दिल होता है जो कभी कभी थक जाता है। सिमोन बाइल्स की स्टोरी इसी ह्यूमैनिटी का नाम है। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 पर हमारा स्पेशल शो जिसका नाम है विमेन इन स्पोर्ट्स। हमें फॉलो करना मत भूलिएगा सोशल मीडिया पर जिसका हैंडल है FM 107 कतर, और अपने थॉट्स आप चाहें तो हमें मैसेज भी कर सकते हैं 666-222-107 पर, क्योंकि स्पोर्ट्स सिर्फ गेम नहीं बदलते, स्पोर्ट्स जिंदगियां बदलते हैं। यंग गर्ल्स कॉन्फिडेंटली जिमनास्टिक्स एथलीट्स फुटबॉल और बास्केटबॉल में अपना टैलेंट शो ऑफ कर रही हैं, फैमिली सपोर्ट कर रही हैं, स्कूल्स अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं, और हर नई एथलीट एक नई स्टोरी लिख रही है। हो सकता है आज कोई यंग लिसनर हमें सुन रहा हो जो फ्यूचर का नेक्स्ट स्पोर्ट आइकन बनने वाला हो, इसीलिए याद रखिए हर चैंपियन की जर्नी एक स्मॉल से छोटे से स्टेप से स्टार्ट होती है, हर सक्सेसफुल एथलीट कभी कभी बिगनर होता है, और हर इम्पॉसिबल ड्रीम एक सिंपल बिलीव से शुरू होता है कि मैं भी कर सकती हूँ। तो साथियों नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी विमेन इन स्पोर्ट्स में, जहाँ हम लेकर आएंगे एक और इंस्पायरिंग जर्नी, एक और पावरफुल कहानी और एक और एग्जाम्पल उन विमेन एथलीट्स का जो दुनिया भर में स्पोर्ट्स के जरिए लिमिट्स को चैलेंज कर रही हैं। तब तक के लिए मोटिवेटेड रहिए, एक्टिव रहिए और अपने ड्रीम्स को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। साइनिंग ऑफ विद वन फाइनल रिमाइंडर, हर चैंपियन करेज से बनता है और हर कहानी बिलीव से शुरू होती है। तो भाई सफा को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज कतर, एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
3: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामने किराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान में आप सबका खैर मकदम है। आज के इस हलके में हम खानदानी मसाइल, तलाक की बढ़ती हुई शरह, वालिदैन और औलाद के दरमियान फासले और मियाँ बीवी के ताल्लुकात में तनाव के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि बिलाखिर खानदान की असल बुनियाद क्या है, मुआशरा या वही, वही यानी कुरान और सुन्नत। आज की गुफ्तगू का मरकजी नुक्ता यही है कि खानदान उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक उसकी बुनियाद दुरुस्त न हो। यानी सवाल ये नहीं कि हमारे पास कितने कवानीन हैं, असल सवाल ये है कि हम जिंदगी के फैसले करते वक्त किसकी बात को आखिरी मेयार मानते हैं, कुरान की या मुआशरे की। सामने किराम, हम सब कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, कुरान और सुन्नत को अपना मर्जे मानते हैं, लेकिन अमली जिंदगी में क्या वाकई ऐसा ही है? बसाओकात हम जानते हैं कि कोई अमल शरीयत के मिजाज के खिलाफ है, फिर भी हम वही करते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। ये जुमला वज़ाहत छोटा है लेकिन इसके पीछे एक पूरी सोच मौजूद है। कुरान बार बार हमें याद दिलाता है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की अक्वाम भी यही कहती थी, قالوا ما وجدنا عليه آباءنا قالوا ما ألفينا عليه آباءنا। वो इस तरह के डायलॉग दिया करते थे कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरीके पर पाया है। वही कहती थी एक बात, मुआशरा कहता था दूसरी बात, और लोग मुआशरे के पीछे चलते थे। समीन किराम, इस सिलसिले में एक बहुत वाज़ह मिसाल शादियों की है। एक पाकीज़ा ख़ानदान कायम करने के ज़रिया इस्लाम में शादी है।

ऐसा भी होता है कि नौजवान शादी से पहले ही लाखों के बोझ तले दब जाता है, फिर वो नई जिंदगी खुशी से नहीं बल्कि इस खुशी के साथ साथ काफी सारी परेशानियां भी उसकी रहती हैं। सोचिए, जिस रिश्ते की बुनियाद सुकून पर होनी चाहिए थी, वो कर्ज, दबाव और दिखावे पर कायम हो जाए तो क्या नतायज निकलेंगे। यही वजह है कि बाज़ औक़ात छोटी छोटी रस्मों की वजह से बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते हैं। सामने किराम, कोई भी सामाजिक खराबी एक दिन में पैदा नहीं होती, पहले एक शख्स करता है, फिर चंद लोग उसकी नकल करते हैं, फिर वो रिवाज बन जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड सकाफत भी बन जाती है और आखिरकार सकाफत लोगों पर दबाव डालने लगती है और दबाव भी इतना कि उस मैयार तक न पहुंच सके तो दूसरे खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। इसीलिए कुरान हमें सिखाता है कि गलती को इब्तिदा ही में पहचानो, उसे मामूल न बनने दो। आज बहुत से लोग ताल्लुकात को सिर्फ कानूनी जाविये से देखते हैं। मेरा हक क्या है?

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। मुबारक मुस्तफ़ा कतर के मशहूर फुटबॉलर्स में से एक हैं, जिन्होंने 1990s और 2000 के दौरान नेशनल टीम और क्लब फुटबॉल में नुमाया परफॉर्मेंसेस दी। वो एक टैलेंटेड मिडफील्डर और फॉरवर्ड के तौर पर जाने जाते थे और अपनी क्रिएटिविटी, पासिंग और गोल स्कोरिंग सलाहियत की वजह से फैंस में बहुत मकबूल हुए। मुबारक ने ज्यादातर अपना क्लब करियर अल अरबी क्लब और अल खोर के साथ गुजारा, जहां उन्होंने कई इंपॉर्टेंट मैचेस में शानदार खेल का मुजाहरा किया। दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी कामयाबी कतर की कौमी टीम के साथ गल्फ कप और एशियन इवेंट्स में आई। मुबारक मुस्तफ़ा ने कतर के लिए कई अहम गोल स्कोर किए और टीम को रीजनल लेवल पर मजबूत मुकाबला करने में मदद दी। वो सन 2000 के एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स और गल्फ कप टूर्नामेंट्स में कतर के लिए की प्लेयर्स में शुमार होते थे। और अगर क्लब लेवल की बात करूं तो वहां पर भी कतर स्टार्स लीग में इम्प्रेसिव परफॉर्मेंसेस दी और अपनी लीडरशिप से टीम्स को कई विक्ट्रीज दिलाई। मुबारक मुस्तफ़ा को उनकी कंसिस्टेंसी और फाइटिंग स्पिरिट की वजह से कोचेस और फैंस दोनों की तरफ से बहुत इज्जत मिली। फुटबॉल से रिटायरमेंट के बाद भी वो कतरी फुटबॉल के साथ जुड़े रहे और नौजवान खिलाड़ियों को इंस्पायर करते रहे। आज उनका नाम कतर फुटबॉल के मोहतरम और यादगार खिलाड़ियों में लिया जाता है। इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म होता है। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
2: ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो। याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें। अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते। आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है। फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है। ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फौजी शफीक। आज हम बात करेंगे जिसका ताल्लुक बराह रास्त दिल की सेहत से है और वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही अक्सर अफराद इसे नुकसानदेह समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कोलेस्ट्रॉल एक चिकनाई नुमा मादा है जो हमारे जिस्म के लिए जरूरी भी है। ये सेल्स की तामीर और बाज़ हार्मोन्स की तैयारी और विटामिन डी बनाने में मददगार साबित होता है। मसला इस वक्त पैदा होता है जब उसकी मिकदार खून में हद से ज्यादा हो जाती है। आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल की दो अहम इकसाम के बारे में बात की जाती है। पहली किस्म है LDL कोलेस्ट्रॉल, जिसे अक्सर खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। जब उसकी मिकदार ज्यादा हो जाए तो ये शरियानों की, हमारे जो वेसल्स हैं उनकी दीवारों में जमना शुरू हो जाता है और इससे ब्लड सर्कुलेशन मुतासिर होती है और दिल के मसाइल या फिर फालिज का खतरा ज्यादा हो जाता है। अब दूसरी किस्म है HDL कोलेस्ट्रॉल, जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ये इजाफी कोलेस्ट्रॉल को खून की नालियों में वापस जिगर तक ले जाने में मदद देता है, जहां इससे जिस्म से खारिज कर दिया जाता है। इसलिए HDL की मुनासिब सतह दिल की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद समझी जाती है। अब यह कोलेस्ट्रॉल क्यों ज़्यादा हो जाता है जब हम चिकनाई और फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जिस्मानी जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल नहीं करते, या ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, या डायबिटीज़ है, या फिर ये है कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है ख़ानदानी, आप उसमें देखते हैं कि ख़ानदान में ज़्यादा है, इसके साथ साथ जो बढ़ती हुई उम्र है। अक्सर अफराद को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कोई भी वाज़े अलामत महसूस नहीं होती। सबसे अहम जो कदम है कि किस तरह से हम कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रख सकते हैं, तो बैलेंस डाइट है। अपनी खुराक में ताज़ा फल, सब्जियां, दालें, अनाज और फिश शामिल कीजिए। घी, बटर, तली हुई अशिया, बेकरी मसनूआत और प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट वॉक जो है वो बहुत ज़रूरी है। जिस्मानी एक्टिविटी जो है HDL यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में और LDL यानी ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देती है। क्योंकि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की अक्सर अलामत नहीं होती, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर किसी की उम्र 40 साल या उससे ज़्यादा है या ख़ानदान में दिल की बीमारी

है तो फिर कोलेस्ट्रॉल जो है अपना चेक करवाना ज़रूरी है। पर वक्त जो डायग्नोसिस है और जो मुनासिब एहतियाती तदाबीर हैं वो दिल के मसाइल, ख़ासतौर पर हार्ट अटैक और फालिज जैसे संगीन मसाइल के खतरात को कम कर सकती हैं। याद रखिए कि कोलेस्ट्रॉल मुकम्मल तौर पर बुरा नहीं है, बल्कि उसकी जो सही मिकदार और तवाजुन है वो बहुत अहम है। सेहतमंद ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश, मुनासिब वज़न और जो हेल्थ चेकअप है आपके दिल को तवील अरसे तक सेहतमंद रखने में मददगार साबित होते हैं। सेहतमंद ज़िंदगी इख्तियार कीजिए, क्योंकि एक सेहतमंद दिल ही एक खुशहाल ज़िंदगी की बुनियाद है।

साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मैं हूं आपकी होस्ट सफा, लेकर आई हूं एक और इंटरेस्टिंग और रिफ्रेशिंग सा सेगमेंट इको स्विच का, जहां हम बात करते हैं उन छोटी छोटी आदतों की जो हमारी लाइफस्टाइल को बेटर बनाती हैं और एनवायरनमेंट को अच्छा और कनेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो भाई आज हम बात कर रहे हैं इंडोर प्लांट्स लगाने की। चलिए एक बहुत ही रिलेटेबल सीन के साथ शुरू करते हैं। आप एक बिजी दिन के बाद घर वापस आते हैं, बाहर की गर्मी, ट्रैफिक, शोर सबसे थक हार कर आप सिर्फ सुकून चाहते हैं। आप रूम में एंटर करते हैं, लाइट्स ऑन होती हैं, एसी चल रहा होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी एक अजीब सी खाली सी फीलिंग होती है। अब जरा सोचिए, अगर उसी रूम में एक छोटा सा ग्रीन प्लांट हो आपकी टेबल पर, आपके शेल्फ पर या आपकी विंडो के पास, तो भाई एनवायरमेंट का फील कितना चेंज हो जाता है। मेरा तो होता है, आई एम अ प्लांट लवर। सिर्फ एक प्लांट रूम को और ज्यादा फ्रेश बना देता है। अब देखिए, समझने की कोशिश करते हैं कि इंडोर प्लांट्स सिर्फ डेकोरेशन नहीं होते, प्लांट्स नेचुरल एयर प्यूरिफायर होते हैं। साथियों, ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसके अलावा कुछ इंडोर प्लांट्स हार्मफुल टॉक्सिन्स को भी रिड्यूस करने में मदद करते हैं, जो इंडोर एनवायरमेंट में कभी कभी होते हैं, प्रेजेंट होते हैं हमारी। इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई प्लांट्स आपके घर की हवा को नेचुरली क्लीन और फ्रेश बनाते हैं। अच्छा, अब एक इसके पीछे ना इको स्विच आइडिया बड़ा सिंपल है। अपने लिविंग स्पेस में प्लांट्स इंक्लूड करें ताकि एनवायरमेंट और मूड दोनों इंप्रूव हो। इंडोर प्लांट्स लगाना सिर्फ गार्डनिंग हॉबी नहीं है, बल्कि एक इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल चॉइस है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इंडोर प्लांट्स लगाने का फायदा क्या है आखिर। देखिए, सबसे पहला फायदा तो यही है कि भाई एयर क्वालिटी अच्छी होती है, इंप्रूव होती है। प्लांट्स ऑक्सीजन लेवल को इंप्रूव करते हैं और हवा को नेचुरली फिल्टर करते हैं। दूसरा फायदा है मेंटल वेलबींग। देखिए, ग्रीन एनवायरनमेंट स्ट्रेस कम करता है और माइंड को रिलैक्स फील कराता है। रिसर्च के मुताबिक ग्रीनरी देखने से मूड बेटर होता है और फोकस इंप्रूव होता है। तीसरा फायदा है ह्यूमिडिटी बैलेंस। भाई ह्यूमिडिटी बैलेंस, देखिए प्लांट्स रूम की ह्यूमिडिटी को नेचुरली रेगुलेट करते हैं, जो ड्राई एयर कंडीशंस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। चौथा फायदा है एस्थेटिक इंप्रूवमेंट। देखो भाई, सिंपल रूम भी प्लांट्स की वजह से वाइब्रेंट और लाइवली लगने लगता है, ये बात तो है। अच्छा, अब एक और रिलेटिव बात बताऊं। जरा सोचिए, आपके पास एक स्टडी टेबल है, बुक्स, लैपटॉप और बेसिक सेटअप है। अब उस टेबल पर एक छोटा सा प्लांट रख दें, आप नोटिस करेंगे कि आपका स्टडी एनवायरनमेंट सडनली ज्यादा काम और फोकस लगने लगेगा। या फिर लिविंग रूम में एक कॉर्नर, जहां पर एक एम्प्टी स्पेस होता है ना,

अगर वहाँ एक मीडियम साइज का प्लांट जो है आप रख दें तो भाई आपके पूरे पूरे रूम का बैलेंस जो है ना वो बिल्कुल वेलकमिंग सा हो जाता है आपका रूम। लेकिन दोहा जैसे सिटी में जहाँ क्लाइमेट होता है बहुत ही ज्यादा हॉट और ड्राई, इंडोर प्लांट्स और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडोर एनवायरमेंट्स में एयर कंडीशनिंग का यूज ज्यादा होता है जिसकी वजह से ड्राइनेस भी फील होती है। प्लांट्स इस ड्राइनेस को बैलेंस रखने में हेल्प देते हैं। अच्छा, आप कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात की जाए तो भाई देखिए, इजी प्लांट से स्टार्ट करें, जैसे स्नेक प्लांट होता है, मनी प्लांट होता है या एलोवेरा प्लांट जो होता है, ये लो मेंटेनेंस प्लांट्स होते हैं और बिगिनर्स के लिए परफेक्ट होते हैं। डायरेक्ट सनलाइट का ख्याल रखें, हर प्लांट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है इसीलिए प्लेसमेंट इम्पॉर्टेंट है। तीसरी चीज ये कि ओवर वाटरिंग अवॉइड करें, ज्यादा पानी देने से प्लांट्स डैमेज हो सकते हैं इसीलिए मॉडरेट वाटरिंग करें। चौथी बात ये कि छोटे स्पेसेस से स्टार्ट करें ना, अगर आप बिगनर हैं तो पहले एक या दो प्लांट रखें, फिर ग्रेजुअली जब आप यूज्ड टू हो जाएं तो फिर आप और प्लांट्स ले सकते हैं। अच्छा हाँ, पांचवी चीज ये कि रूटीन केयर बनाएं, वीकली थोड़ा टाइम प्लांट्स को देखने में, क्लीन करने में, मेंटेन करने के लिए उनको टाइम दें। देखिए, इंडोर प्लांट्स सिर्फ एनवायरमेंट ही नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी को भी इम्पैक्ट करते हैं। ऑफिसेज और स्टडी स्पेसेस में आप देखेंगे कि ग्रीनरी ऐड करने से फोकस और क्रिएटिविटी आपकी ज्यादा बेहतर होती है, इसीलिए कई मॉडर्न वर्कप्लेसेस अब इंडोर प्लांट्स को अपना डिजाइन का हिस्सा बना रही हैं। अच्छा, एक और रिलेटेबल बात बताऊं, कितनी बार ऐसा होता है कि घर या रूम बोरिंग फील होते हैं और हम सोचते हैं कि भाई नया फर्नीचर डेकोरेशन ले ली जाए, कुछ चेंज किया जाए, लेकिन कभी कभी सिर्फ एक छोटा सा प्लांट ही पूरे स्पेस को ट्रांसफॉर्म कर रख देता है विदाउट हैवी कॉस्टिंग और एफर्ट्स। जब आप इंडोर प्लांट्स अडॉप्ट करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली नेचर के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है, आप पानी देते हैं उन्हें, उनकी केयर करते हैं और उस ग्रोथ को ऑब्जर्व करना एक पॉजिटिव रूटीन बन जाता है। तो भाई आज का इको स्विच बहुत सिंपल है, आज का चैलेंज ये है कि आज या इस वीक में कम से कम एक इंडोर प्लांट तो चूज करें और अपने लिविंग स्पेस में उसे ऐड करें और उसे सिर्फ डेकोरेशन नहीं बल्कि डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। अगर आप ऑलरेडी प्लांट्स रखते हैं ना अपने पास तो उनकी केयर और प्लेसमेंट और ज्यादा इम्प्रूव करें। साथियों, याद रखें कि नेचर को हम सिर्फ बाहर नहीं देखते बल्कि अपनी जिंदगी में इंक्लूड भी कर सकते हैं। इंडोर प्लांट्स हमें ये याद दिलाते हैं कि ग्रोथ, पेशेंस और केयर सिर्फ प्लांट्स के लिए नहीं बल्कि हमारी अपनी जिंदगी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटा सा प्लांट आपके घर को सिर्फ डेकोरेट नहीं करता बल्कि उसे ब्रीथ करता हुआ स्पेस देता है। तो भाई, मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं नेक्स्ट इको स्विच के साथ, एक और सिंपल हैबिट, एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

Assalamualaikum, आप सुन रहे हैं 60 Seconds of Baraka, FM 107 पर. मैं हूं आपकी आरजे माविश खान. आज हम बात करेंगे दूसरों की मदद के बारे में. दूसरों की मदद करना इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से है. जब हम किसी की मदद करते हैं तो असल में अल्लाह हमारी मदद करता है. मदद सिर्फ पैसे से नहीं होती. एक मुस्कुराहट, एक अच्छा मशवरा या किसी का काम आसान कर देना भी मदद है. सोचिए, अगर हर इंसान रोज सिर्फ एक छोटी सी मदद करे तो दुनिया कितनी बेहतर हो सकती है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि जो इंसान दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा करता है. आज का अमल ये है कि जानबूझकर किसी एक शख्स की मदद करें, चाहे वो घर में हो, ऑफिस में हो या रास्ते में. ये छोटे अमल ही बड़ी बराका लेकर आते हैं. ये था आज का मैसेज. आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका, FM 107 पर. मैं हूँ आरजे मावश. कल फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ.

0: step to 2030.
1: आज मैं बात करने वाली हूँ कि सस्टेनेबल सिटीज और स्मार्ट अर्बन लिविंग के हवाले से, शहर जो इंसान और नेचर दोनों के लिए बेहतर हो। सस्टेनेबल सिटीज वो होती हैं जहाँ डेवलपमेंट के साथ एनवायरमेंट और लोगों की कन्वीनियंस का ख्याल रखा जाता है। ग्रीन स्पेसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स, ये सब इसका हिस्सा है। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादातर लोग शहरों में रहते हैं। अगर शहर बेहतर होंगे तो लोगों की हेल्थ, हैप्पीनेस और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसकी रेलेवेंस आज के दौर में बहुत ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन रैपिडली अर्बन एरियाज की तरफ मूव कर रही है। स्मार्ट प्लानिंग के बगैर शहर क्राउड और पोल्यूशन का शिकार हो सकते हैं। तो आपका हमारा रोल क्या है, हमें और आपको क्या करना है? देखिए, आपका हमारा रोल है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, क्लीन लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें और सिटी रूल्स को फॉलो करें। सस्टेनेबल सिटीज फ्यूचर की जरूरत है जहां तरक्की और जिंदगी दोनों बैलेंस्ड हो। कतर नेशनल विजन 2030 इस बात पर यकीन रखता है कि जब तक सोसाइटी खुश, सेहतमंद और सिक्योर ना हो, डेवलपमेंट अधूरा है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ को सोशल वेलबींग से जोड़ना विजन का एक अहम हिस्सा है। एग्जाम्पल के तौर पर जॉब्स क्रिएट करने के साथ हेल्थ केयर सिस्टम्स, वर्कर्स सेफ्टी लॉज और एजुकेशन एक्सेस को भी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। फ्री एजुकेशन और एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज इसी सोच का नतीजा है। दोस्तों, जब लोग हेल्दी, एजुकेटेड और कॉन्फिडेंट होते हैं तो प्रोडक्टिविटी नेचुरली बढ़ जाती है। इससे इकोनॉमी खुद ब खुद बेहतर होती है। विजन ये इंश्योर करता है कि पैसा सिर्फ चंद लोगों तक लिमिटेड ना रहे बल्कि सोसाइटी की हर लेयर तक पहुंचे। यानी वन स्टेप टू 2030 हमें ये समझाता है कि सस्टेनेबल इकोनॉमी वही है जहां इंसान और मार्केट दोनों साथ ग्रो करें। आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2030.

दोस्तों एक बहुत बेहतरीन विला मिल रहा है, 3 BHK विला है, सिर्फ 2000 कतरी रियाल में आपको मिल सकता है। बच के रहिएगा, ये एक स्कैम हो सकता है, विच इज कॉल्ड फैंटम लिस्टिंग। जस्ट इमेजिन कि आप किसी सोशल मीडिया पे हैं जहां पर आपको ये फैंटम लिस्टिंग स्कैम दिखता है, यानी कि एक एडवर्टाइजमेंट दिखता है और ये प्रॉपर्टी का एडवर्टाइजमेंट है जहां आपको एक प्रॉपर्टी रेंट पे या सेल पर दिखाई जा रही है और बहुत कम दामों में, और आपको लगता है कि ये बहुत सही डील होने वाली है, या फिर आपको ईमेल या टेक्स्ट के जरिए, फोन कॉल के जरिए बताया जाता है कि रेंट और सेल पर एक बहुत अच्छा विला आपके लिए अवेलेबल है या बहुत अच्छा रूम आपको मिल रहा है लो रेंट पे, तो आप जल्दी से जल्दी इस पर एक्ट करिए और आपको ये रूम या फिर ये विला मिल जाएगा। ये एक स्कैम हो सकता है जिसमें आपको खबरदार रहने की जरूरत है। स्कैम अलर्ट। लेकिन अगर आपने जरा सा भी इंटरेस्ट दिखाया तो वो आपको अपफ्रंट एक डिपॉजिट करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और ये रिक्वेस्ट मंथली या फिर हो सकता है वो 6 महीने की रिक्वेस्ट करें कि 6 महीने का एडवांस जमा होगा, विच इज अराउंड 10-12,000 कतरी रियाल, और ये एक फेक एजेंट के थ्रू आपसे एक अनट्रेसेबल जगह पे पेमेंट करवाते हैं जहां ट्रेस नहीं किया जा सकता, और ये एक फेक एजेंट स्कैम भी है। स्कैमर्स रियल स्टेट एजेंट्स की तरह बिहेव करेंगे, एक लिस्टिंग बनाते हैं प्रॉपर्टीज की जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करती, वो कहीं पर मौजूद भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद तस्वीरें डालते हैं, और ये तस्वीरें निकालना कहीं से भी बड़ा आसान है और ये एक्चुअल नहीं होती। इस जगह पे आपको फीस देने के लिए कहा जाता है और कहा जाता है कि जल्दी से जल्दी करें। ऑलरेडी 5 लोगों ने इस घर को या इस विला को लेने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है। If you want this location, तो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, और आजकल कतर में ये बहुत आम हो गया है, बहुत आसान हो गया है कि इस तरह से स्कैम किया जा सके। लोग विला के लिए लोग रूम्स देखते हैं जो कि सस्ते हो, लो प्राइस में हो, और यहीं पर लोग फंसते भी हैं। लेकिन ऐसे में आपको सेफ रहने की जरूरत है, और सेफ कैसे रहा जाता है हम उसके बारे में करेंगे आज आपसे बात। तो कैसे आपको सेफ रहना है, इसके बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं जिनको आप अगर लेंगे तो आप इजीली सेफ रहेंगे। कभी भी अपफ्रंट पैसा मनी ना भेजें जब तक आप प्रॉपर्टी को देख ना ले किसी टाइम पे, क्योंकि कोई भी लेजिटिमेट लैंडलॉर्ड या एजेंट कभी भी आपसे डिपॉजिट के लिए नहीं कहता बगैर आपके विला या रूम देखे, और उसके अलावा परचेज एग्रीमेंट पर साइन किए बगैर आपको कोई भी नहीं कहेगा कि आप पेमेंट करें। उसके अलावा हमेशा वेरीफाई करना चाहिए, अगर आपको किसी वेबसाइट पर दिखा है उसकी लोकेशन आप पूछे किस जगह पे वो लोकेशन है, क्या बिल्डिंग नंबर है, कौन सी स्ट्रीट है, आप वहां पर पहुंचिए तब आप देख सकते हैं। इवन कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको वो बंदा दिखाएगा कोई घर, लेकिन जब आप पेमेंट कर देंगे वो बंदा नदारद हो सकता है। तो इसके लिए मीट इन पर्सन, आप उस शख्स से मिले जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं। हमेशा एक डेट या टाइम शेड्यूल करें और उसके बाद

प्रॉपर्टी को जरूर देखें और उस एजेंट से क्रेडेंशियल के बारे में भी पूछें। लाइक आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है रियल स्टेट एजेंट होने का, क्या ये घर जिसका है आप उससे मुलाकात करा सकते हैं, और पेमेंट करने से पहले एग्रीमेंट तैयार हो जाए तो ये सबसे बेस्ट होगा। कोई भी शर्माने की जरूरत नहीं है जब भी आप किसी से घर ले रहे हो या विला ले रहे हो। तो अगर आपको पता चले कि ये स्कैम है तो हमेशा रिपोर्ट द स्कैम। इफ यू हैव बीन टारगेटेड, आपको लगा है कि आप टारगेट किए गए हैं लेकिन आप फंसे नहीं है या फंस भी गए हैं, तो लोगों को जानकारी देना आपकी जिम्मेदारी है। लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, एजेंसीज में, रियल स्टेट अथॉरिटीज जो हैं उनके थ्रू आप बताइए कि किस तरह से आपके साथ स्कैम हुआ है। आप जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी उम्मीद है कि वो शख्स पकड़ा जाएगा, या ये भी हो सकता है कि आपके पैसे वापस भी आ जाएं। तो इस तरह के खास स्कैम को जानने के लिए सुनिए ये फ्रॉड अवेयरनेस का शो, जहां पर हर बार आपको एक नए स्कैम के बारे में पता चलेगा और आप अपने और आसपास के लोगों की सुरक्षा या सिक्योरिटी कर सकते हैं ऐसे स्कैम से। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी जल्द ही एक नए और खतरनाक स्कैम के साथ जिसमें हम आपको करेंगे अपडेट। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: कतर में आकर एक्सपर्ट तो बन गए, पर अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है। सुनिएगा जरूर इकोनॉमिक लेंस, इकोनॉमिक लेंस हर सैटरडे 1:30 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर। सिर्फ
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों वेलकम एंड खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं हमारा वीकली प्रोग्राम इकोनॉमिक लेंस मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है कि भाई क्या पैसा आपको मदद कर सकता है, क्या पैसा आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है। तो इसी के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं।

0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आज का हमारा जो मौजू है, जो हमारा मुद्दा है, जो हमारा टॉपिक है, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबकी जिंदगियों के बीचों बीच ही या इर्द गिर्द ही घूमता है। क्या पैसा असल में खुशी ला सकता है? देखिए, सभी लोग पैसा जमा करने की दौड़ भाग में लगे हुए हैं। हर किसी का यकीन है कि जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा खुशी मिलेगी। लोग समझते हैं कि सिर्फ पैसा ही उनकी जिंदगी में खुशियां ला सकता है, लेकिन असल बात यह है कि पैसा बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन पैसे की भी एक लिमिटेशन होती है। पैसा आपको कंफर्ट देता है, आपको ऑप्शंस देता है, आपकी बेसिक नीड्स पूरी करता है, आपको एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज और बेहतरीन लिविंग स्टैंडर्ड दे सकता है। अगर आपको अपने रोजमर्रा की रोजी रोटी की फिक्र ना हो, अपने बच्चों की फीस की टेंशन ना हो, या फिर आपकी हेल्थ का मसला पैसे की वजह से ना हो, तो आप जरूर रिलैक्स फील कर सकते हैं। ये पैसे का पॉजिटिव रोल है, स्ट्रेस कम करता है और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। लेकिन दोस्तों, इसकी एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के बाद पैसा असल खुशी नहीं खरीद सकता। चलिए जरा सोचिए, एक आदमी ने सारी जिंदगी पैसा कमाने में गुजार दी, सुबह से शाम तक मेहनत की, ओवर टाइम किया, फैमिली को हार्डली वक्त दिया, एंड रिजल्ट, उसके पास पैसा तो आ गया लेकिन रिश्ते टूट गए और फैमिली कनेक्शन खत्म हो गया। आज वो अमीर है लेकिन अकेला है। अब सवाल ये है कि क्या ऐसी जिंदगी खुशी वाली है? पैसा तो सिर्फ एक टूल है, आपका घर बनाने में काम आता है, लेकिन घर को घर बनाने के लिए मोहब्बत और रिश्ते चाहिए होते हैं। और अगर पैसे को सिर्फ अपने लिए खर्च करेंगे तो एक वक्त आएगा चीजें बोरिंग लगने लगेंगी। लेकिन उस पैसे से जब आप दूसरों की मदद करते हैं, चैरिटी करते हैं, किसी जरूरतमंद की मुसीबत दूर करते हैं, तो जो सुकून मिलता है उसकी कोई प्राइस टैग नहीं है। साइंस भी यही कहती है कि खुशी ज्यादा पैसे खर्च करने से नहीं आती, बल्कि मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप से आती है। दोस्तों, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाएं, एक लग्जरी कार लेना या फिर अपने बच्चों के साथ एक साल की पुरसुकून वेकेशन स्पेंड करना, आप क्या चूज करेंगे? ज्यादातर लोग पहले कार के बारे में सोचते हैं, लेकिन वक्त के साथ रियलाइज करते हैं कि वेकेशन की यादें और फैमिली के साथ गुजारे हुए लम्हे ज्यादा गहरी खुशी देते हैं। इसलिए पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा खुशी की गारंटी नहीं देता। असल खुशी रिश्तों में, सेहत में, एक्सपीरियंसेस में और अपने अंदर के सुकून में है। हाँ, पैसे का इस्तेमाल करना सीखना जरूरी है ताकि वो आपकी लाइफ को सपोर्ट करे, डोमिनेट ना करे। और याद रखिए, अगर जिंदगी का असल मकसद आपकी खुशियों के पीछे भागना है, तो पैसा उस सफर का सिर्फ एक साथी है, मंजिल नहीं। दोस्तों, एक बात का और जिक्र करता चलूं कि इस हमारे नए प्रोग्राम में हम सिर्फ आपको मालूमात ही फराहम नहीं करेंगे, बल्कि आपके मैसेजेस, एक्सपीरियंसेस और फीडबैक भी इस शो का हिस्सा बनेंगे, जिनको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 या हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर, जहां हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक पर आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। हैंडल हमारा इसी नाम से, FM 107। मैं हूं आपका दोस्त सरवर मिर्जा, आपका फाइनेंशियल गाइड फॉर अ हैप्पी लिविंग।

0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: समीन, चलिए कुछ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करते हैं जो हम आज के एपिसोड में यूज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वेल्थ और इनकम की। इनकम असल में वो पैसा है जो आपको रेगुलरली मिलता है, जैसे सैलरी, बिजनेस का प्रॉफिट या कोई सर्विस की अर्निंग। लेकिन वेल्थ अलग चीज है। वेल्थ का मतलब है वो असेट्स जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, जैसे घर है, जमीन है, सेविंग्स हैं या इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं। सिंपल लफ्जों में यूं कह लीजिए कि इनकम है आपकी जेब में गिरता हुआ पैसा, और वेल्थ है आपके पास जमा की हुई दौलत। तो भाई ये तो फर्क वाजे हो गया कि वेल्थ और इनकम में क्या होता है। अब आते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स पर। सेविंग का मतलब है पैसा साइड पर रख लेना, जैसे कि बैंक अकाउंट में डाल देना ताकि इमरजेंसी या फ्यूचर की सेफ्टी हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसे को काम पर लगाना, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना वगैरह, ताकि कल को ये पैसा और बढ़ सके। और तीसरा कंसेप्ट है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। ये असल में ये समझने की कोशिश है कि सोसाइटी में पैसा किस तरह बनता है। भाई क्यों कुछ लोगों के पास हजार करोड़ होते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोगों को रोटी की फिक्र ही रहती है। ये है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल। चलिए दोस्तों जरा बात करते हैं एक बिगनर की जिंदगी की। सोचिए कोई नौकरी शुरू करता है, और फिर कोई वेल एजुकेटेड लड़का जो एक गरीब फैमिली से आया है, उसने जिंदगी में कभी ज्यादा पैसा नहीं देखा, और अब करियर शुरू करते ही उसके हाथ में सैलरी आती है। कैश देखकर नेचुरली एक एक्साइटमेंट होता है भाई। लेकिन असल में मसला क्या है कि 99% ऑफ बिगिनर्स के पास पैसा हमेशा कम होता है। ये बात तो ऑब्वियस है, रिसोर्सेज लिमिटेड होती है, लेकिन ख्वाहिशें बहुत बड़ी। उन्हें गाड़ी लेनी होती है, सफर करना होता है, नए कपड़े खरीदने होते हैं, वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आजकल के हिसाब से सब कुछ चाहिए होता है, मगर सैलरी इतनी नहीं होती कि सब पूरा कर सकें। हर वक्त उनका ख्याल होता है कि सैलरी बढ़ जाए।

मिल जाए, बोनस मिल जाए और फिर जिंदगी और बेहतर हो जाए। तो ये हम सब की स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है ना। देखिए, इस स्टेज पर पैसा वाकई उनके फेवर में काम करता है, इसीलिए लोग अक्सर शेयर्ड एकोमोडेशन में रहते हैं, खासकर जब हम अपने ममालिक से निकलकर मिडिल ईस्ट वगैरह आते हैं या दूसरे ममालिक में जाते हैं, क्योंकि सैलरी इतनी नहीं होती कि इंडिपेंडेंटली रहा जा सके, अकोमोडेशन को अफोर्ड किया जा सके ना रेंटेड। और अपने खरीदने की बात शुरुआत के दौर में तो दूर ही रही। हर वक्त एक ख्वाब होता है कि कब मैं शेयर्ड रूम से निकल कर अपनी इंडिपेंडेंट स्पेस हासिल करूंगा। फिर धीरे धीरे ये सफर चलता है। जो स्टूडियो में रहता है वो 1 BHK का सपना देखता है, जो 1 BHK में है वो 2 BHK में चाहता है कि मैं शिफ्ट हो जाऊं, और फिर मल्टीपल BHK। यही वो एक सीढ़ी है जिंदगी की, जहां हर एडिशनल पैसा उनकी लाइफ में नई वैल्यू और अपग्रेड लेकर आता है। लेकिन यहां पे सवाल ये है कि क्या ये इक्वेशन जिंदगी भर चलती रहेगी? मतलब जितना पैसा आता जाए उतनी ही वैल्यू और उतनी ही खुशी बढ़ती रहेगी? जवाब है शायद नहीं, क्योंकि एक पॉइंट के बाद पैसा सिर्फ कंफर्ट देता है, असल खुशी और सेटिस्फेक्शन नहीं देता। जनाब, अब मैं अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए दूसरे लोगों की जिंदगी का एक एग्जाम्पल देता हूं। भाई, दुनिया में बहुत से रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, और उनमें से काफी खुश भी हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा जब ज्यादा होता है तो आदमी फिक्रमंद ही होता है। अब सवाल यह है कि उनकी खुशी का असल सोर्स क्या है? क्या पैसा ही उनकी खुशी का रूट कॉज है? भाई, शुरू में जवाब हाँ ही लग सकता है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक पहला लेयर या एक पहली परत है। इसके पीछे बहुत सी और चीजें छुपी होती हैं। पैसा उनके लिए बहुत सी प्रॉब्लम हटा देता है, जैसे भाई गाड़ी चकारी, कपड़े, वेकेशन या बेसिक कंफर्ट की फिक्र। मगर उनकी असली खुशी पैसे के अलावा चीजों से आती है, क्योंकि वो इतना लाइफ में बोर हो चुके होते हैं पैसे से और आसानियों से कि फिर आप अमूमन सुनते भी हैं कोई एक्ट्रेस कहीं और निकल गया, कोई घूमता हुआ दिख गया, कोई अपना चेहरा बदल के बाहर पब्लिक में आया है, तो वो सुकून की तलाश में होते हैं। भाई, एक और मिसाल के तौर पर बात करें कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट सोचिए। भाई, ये भी हो सकता है कि वो कोई ऐसे आइडिया पे काम कर रहा है जो जिंदगी में रेवोल्यूशन ले आए। उसकी खुशी हो सकती है कि उसने हजारों लोगों को नौकरी दी है, या फिर उसकी फैमिली, उसके बच्चे, या उसको जो रेस्पेक्ट मिलती है एम्प्लॉयज से, सोसाइटी से, इंडस्ट्री या कंट्री से। तो देखा जाए, पैसा सिर्फ एक फैसिलिटेटर है। असली खुशी पैसे के अलावा चीजों से आती है। अगर पैसा ही सिर्फ खुशी का सोर्स होता तो हर अमीर इंसान खुश होता, लेकिन असल में इसके जवाब में मैं कहूंगा ऐसा नहीं है। दोस्तों, मैं अपनी बात को और वाजे तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, रिच फैमिलीज में भी बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग डिवोर्स, सेपरेशन या लिटिगेशंस का सामना करते हैं। जब वेल्थ बहुत ज्यादा हो जाती है तो इसके इफेक्ट बच्चों पर भी पड़ते हैं। आपने अक्सर और बेशतर सुना होगा स्पॉइल्ड ब्रैट्स। ये क्या है? बच्चे जो हर चीज पाते हैं या हासिल कर लेते हैं या उनको मुहैया होती है जो भी वो चाहते हैं, इससे उनमें ईगो डेवलप होती है, एक ऑरा बन जाता है, और वो अपनी जिंदगी में एक्सेलेंस के लिए ड्राइव लूज कर देते हैं। भाई, नॉर्मल ग्रोथ मैकेनिज्म जो आम लोगों के बच्चे और जिंदगी में होता है, उनमें ऐसा नहीं होता। ऐसे बच्चे कभी कभी सोसाइटी और फैमिली के लिए बोझ बन जाते हैं। तो यहाँ एक चीज क्लियर हो जाती है, पैसा हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता और हमेशा खुशी नहीं देता। कभी कभी पैसा खुद प्रॉब्लम का रूट कॉज बन जा सकता है। इसलिए ये कहना बिल्कुल ऑब्वियस है कि जिंदगी के इनिशियल फेज में जब आपके पास पैसा कम होता है तो पैसा आपके लिए बहुत वैल्यू रखता है। थोड़ा पैसा आता है तो वैल्यू है, लाख, मिलियन, 10 मिलियन सब अपनी लिमिट तक वैल्यू देते हैं। मगर जब पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है तो एक वक्त आता है कि जब आप समझते हैं कि एक्स्ट्रा पैसा आपकी जिंदगी में एक्स्ट्रा खुशी या वैल्यू नहीं ला रहा,
एक पॉइंट आता है जब पैसा अपनी असल वैल्यू लूज कर देता है, जो आपको जिंदगी से चाहिए होता है। बहुत लोग परेशान होते हैं, अमूमन आपने कहते सुना होगा मुझे वो इन्वेस्टमेंट दिखाइए जो हाई रिटर्न दे, जो अच्छा कैश फ्लो दे, मगर असल में जिंदगी में पैसा और खुशी का इक्वेशन सिर्फ नंबर से नहीं चलता। दोस्तों अक्सर आपने लोगों को पूछते कहते सुना होगा कि भाई मैं ये इन्वेस्टमेंट क्यों करूं, मैं इतना पैसा क्यों कमाऊं। भाई इसी का सिंपल सा जवाब हो सकता है, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले ये बताइए कि आपका मकसद क्या है। हर इन्वेस्टमेंट के पीछे एक पर्पस होना चाहिए ना। तो जनाब इसके बारे में तो यही कहना बेहतर होगा कि अगर आप सेविंग प्लान शुरू करना चाहते हैं ठीक है, लेकिन पहले अपना स्पेंडिंग प्लान डिफाइन कीजिए। कभी भी सेविंग प्लान शुरू मत कीजिए जब तक आपको नहीं पता कि आप फ्यूचर में पैसा कैसे स्पेंड करेंगे। अगर आपको स्पेंड करना नहीं आता तो फिर सवाल ये उठता है, ये पैसा कमाने का असल मकसद क्या है। हमेशा याद रखिए कि आपका सेविंग प्लान आपके स्पेंडिंग प्लान के साथ मैच होना चाहिए। अगर स्पेंडिंग प्लान नहीं है, इसका मतलब है कि आप जरूरत से ज्यादा पैसा एक्युमुलेट कर रहे हैं। और क्या होता है जब आप बहुत ज्यादा पैसा जमा कर लेते हैं? कुछ लोग पैसा कबर्ड्स में रखते हैं, यूज नहीं करते, और ये पैसा वैल्यू लूज कर देता है। भाई जैसा कि इंडिया में डीमोनेटाइजेशन के वक्त हुआ, अगर आप सेविंग प्लान के साथ स्पेंडिंग प्लान को मैच करें तो हर बार आपने जो पैसा सेव किया है आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये यूटिलाइजेशन अलग अलग चीजों के लिए हो सकता है, बड़ा घर लेना, बड़ी गाड़ी, चैरिटी, बच्चों की एजुकेशन, सोसाइटी या अपने चाहने वालों के लिए मदद, किसी दोस्त या जरूरतमंद की मदद, ये सब आपके स्पेंडिंग प्लान का हिस्सा है। और दोस्तों वहीं वो पैसा जो आप लाइफ के एंड पर छोड़कर जाते हैं, वो पैसा अक्सर लाइफ में डीमोनेटाइज हो जाता है, मतलब उसकी असली वैल्यू खत्म हो जाती है। बहुत लोग वेल्थ को गलत समझते हैं, वो सोचते हैं सिर्फ पैसा होना ही वेल्थ है, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ पैसा होने से ही आप वेल्दी नहीं कहलाते। भाई अगर पैसा ही आपको वेल्दी नहीं बनाता फिर असली वेल्दी इंसान कौन है और वेल्थ का असल सोर्स क्या है? चलिए इसके ऊपर भी अब थोड़ी सी बात करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। भाई एक कार है, कार के बहुत से पार्ट्स होते हैं, लेकिन यहां हम बात को समझाने के लिए सिर्फ दो ही पार्ट्स लेंगे। भाई पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट लेते हैं चेसी। ये कार को स्टेबिलिटी देता है, लेकिन सिर्फ चेसी से कार मूव नहीं कर सकती और चेसी कार की वैल्यू भी नहीं बढ़ा सकता। भाई कार का चलना भी जरूरी है और कार तभी चल सकती है जब उसके चार व्हील्स हों, जो परफेक्टली बैलेंस्ड हों, स्ट्रक्चर्ड हों और चेसी के साइज के लिए सूटेड हों, तभी कार एक प्रॉपर व्हीकल बनकर काम करेगी ना भाई। अब ये एनालॉजी फाइनेंस में कैसे फिट होती है? भाई चेसी जो है वो रिप्रेजेंट करता है मनी को। भाई जब तक आपके पास एडुकेट, सिक्योर, फ्लोइंग और अवेलेबल पैसा नहीं है जो आपको जरूरत पड़ने पर मिले, तब तक आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सोशल लाइफ और बेसिक कंफर्ट नहीं बन सकता। चेसी यानी पैसा आपकी जिंदगी को बेस देता है, फाउंडेशन देता है, मगर चेसी या पैसा अकेला आपकी जिंदगी को वेल्दी नहीं बना सकता। अब चलिए देखते हैं कार के पहले व्हील का एग्जाम्पल, जो यहाँ रिप्रेजेंट करता है हेल्थ। हेल्थ वो व्हील है जो आपकी फाइनेंशियल बेस के साथ मिलकर आपकी लाइफ को चलाने लायक बनाता है। अगर पैसा हो मगर हेल्थ ना हो तो आप लाइफ की रियल कंफर्ट और हैप्पीनेस एंजॉय नहीं कर सकते। चलिए अब जरा सोचिए, अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आप अंदर से वीक हैं, एक कैबेज की तरह और कुछ नहीं कर सकते, तो ये पैसा आपके लिए क्या काम आएगा? चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी है जिसको डेंटल प्रोसीजर से गुजरना पड़ा और कुछ दिनों के लिए बहुत दर्द में रहा। उस वक्त चाहे लाइफ में कितनी भी अच्छी चीजें हो रही थीं,
वो लोगों से मिल रहा था या काम ठीक चल रहा था या वो काम देख रहा था, कुछ भी खुशी जो उसकी लाइफ में आ रही थी, क्या वो उसका सही इस्तेमाल कर पा रहा था या वो चीज उसको सही खुशी दे पा रही थी। भाई वो शख्स सिर्फ यही सोचता रहेगा कि ये दर्द कैसे खत्म

जाए मेरी जिंदगी में से तो मैं आगे बढ़ूं और कुछ कर सकूं। इस इंसिडेंट से एक चीज बहुत क्लियर होती है, हेल्थ सबसे पहला व्हील है जो वेल्दी लाइफ में जरूरी है। अगर हेल्थ नहीं है तो बहुत सारा पैसा भी यूजलेस है, इसलिए पैसा कमाने के साथ साथ अपनी हेल्थ में भी इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। और हेल्थ में इन्वेस्ट करना मतलब सिर्फ डॉक्टर के पास जाना नहीं, बल्कि डाइट मेंटेन करना, एक्टिव लाइफस्टाइल रखना, पॉजिटिव थॉट्स और हैबिट्स अडॉप्ट करना, जो भी आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रखें। ऐसे देखिए कि आपके पास पैसा भी है और हेल्थ भी, क्या ये आपको कंप्लीटली वेल्दी बनाता है? जवाब अभी भी है नो। दोस्तों एक बात का और जिक्र करता चलूं कि इस हमारे नए प्रोग्राम में हम सिर्फ आपको मालूमात ही फराहम नहीं करेंगे, बल्कि आपके मैसेजेस, एक्सपीरियंसेस और फीडबैक भी इस शो का हिस्सा बनेंगे, जिनको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 या हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर, जहां हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक पर आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। हैंडल हमारा इसी नाम से FM 107। मैं हूं आपका दोस्त सरवर मिर्जा, आपका फाइनेंशियल गाइड फॉर अ हैप्पी लिविंग।

0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: चलिए अब आते हैं दूसरे व्हील पर, और वो है टाइम, वक्त। ये व्हील रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ के सबसे प्रीशियस रिसोर्स जो आपके पास हमेशा लिमिटेड होता है। पैसा और हेल्थ होंगे, लेकिन अगर आप अपना टाइम वाइसली यूज नहीं करेंगे तो वेल्थ का असली मजा नहीं ले सकते। दोस्तों, अब आपके पास पैसा भी है, हेल्थ भी है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए, तो ये दोनों चीजें भी आपके काम नहीं आएंगी। सोचिए, अगर फैमिली कहती है कि चलो मूवी, शादी में चलो, या कोई आउटगोइंग पे चलते हैं, वेकेशन पे चलते हैं, या कहीं घूम के आते हैं, और आपके पास टाइम ही नहीं है, तब हेल्थ और पैसा भी आपको हेल्प नहीं कर सकता ना भाई। इसलिए पैसा और हेल्थ के साथ साथ आपको टाइम का स्पेस क्रिएट करना भी जरूरी है, ताकि आप इन दोनों का फायदा उठा सकें। तो दोस्तों, अब हमारे पास वेल्थ के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हो गए, मनी, हेल्थ और टाइम। अब आते हैं छोटा सा सीक्रेट, तीसरा व्हील, आपकी एबिलिटी टू स्पेंड मनी। काफी लोग मेहनत करते हैं, पैसा एक्यूमुलेट करते हैं और अपनी खुशियां बैंक बैलेंस, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टीज में ढूंढते हैं, लेकिन एक दिन आता है जब उन्हें ये पैसा स्पेंड करना पड़ता है, बच्चों की एजुकेशन, गाड़ी, प्रॉपर्टी या कोई और जरूरत, और अक्सर लोग इन औकात में अनहैप्पी फील करते हैं। इसलिए वेल्थ बिल्ड करते वक्त एक चीज प्रैक्टिस करें, डिजायर टू स्पेंड मनी। अगर आप पैसा स्पेंड करने की ख्वाहिश नहीं रखते तो खुशी सिर्फ बैंक बैलेंस देखकर मिलेगी, मगर पैसा खर्च करते ही वो खुशी उड़ जाती है। भाई, पैसे का असली वैल्यू तभी समझ में आता है जब उसको सही तरीके से स्पेंड करा जाए, खर्च करा जाए। चाहे आइसक्रीम खरीदना हो, चैरिटी देना हो या किसी की मदद करना हो, वेल्थ बिल्ड करते वक्त आदत बनाइए कि पैसा खर्च करते रहें जब जरूरत हो। अगर पैसा स्पेंड करना आपको अनहैप्पीनेस देता है तो आप अपने आप को वेल्दी नहीं कह सकते। तो भाई, अब वेल्थ का लास्ट व्हील है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप ही आपकी जिंदगी को कंप्लीट करती है, फैमिली, फ्रेंड्स और हमारे लव्ड वंस। पैसा, हेल्थ और टाइम तभी मीनिंगफुल हो जाता है जब आप इन रिलेशनशिप में खुशी और वैल्यू क्रिएट करें। चलिए अब जरा आपको फिर से एक सिचुएशन में लेके चलता हूँ। आपके पास पैसा है, हेल्थ है, टाइम है, और आपके पास पैसा स्पेंड करने का डिजायर भी है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं है। हम इंसान नेचुरली अपनी खुशी और दुख शेयर करते हैं किसी के साथ ना, फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड हो, कलीग हो, कोई भी हो। लेकिन अक्सर जब हम वेल्थ अक्यूमुलेट करते हैं, लाइफस्टाइल इंप्रूव करते हैं और रिलेशनशिप को इग्नोर कर देते हैं, तो सबसे डिजायरेबल लोग, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, क्लोज रिलेटिव्स हेजिटेट करते हैं आपके पास आने से। क्यों? क्योंकि वो फील करते हैं कि वो आपके घर, गाड़ी, बातचीत और पैसे के लेवल तक मैच नहीं कर सकते, और तब आप फील करते हैं जैसे फिश आउट ऑफ वाटर। हम सबको अपने क्लोज रिलेशनशिप्स की जरूरत होती है अपनी खुशी शेयर करने के लिए, अपने दुख शेयर करने के लिए। लेकिन अगर आप एंथुसियाज्म में वेल्थ एक्यूमुलेट करते करते इन रिलेशनशिप को इग्नोर कर देते हैं तो ये ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हो जाता है, यानी पेशेंट डेड, मतलब आपके पास बात करने के लिए कोई नहीं बचता। तो क्लियरली समझ लीजिए, बिल्डिंग वेल्थ के मल्टीपल पार्ट्स हैं, मनी, हेल्थ, टाइम, एबिलिटी या डिजायर टू स्पेंड मनी, मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप्स। अगर ये सब आपके पास हैं, तभी आप खुद को वाकई वेल्दी इंसान कह सकते हैं। और ये चीज एक प्रोसेस है, ये नेचुरली सबको नहीं आता। जब आप पैसा एक्यूमुलेट करते हैं तो एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर लगाएं, ताकि ये चार पहिए, हेल्थ, टाइम, स्पेंडिंग की डिजायर और रिलेशनशिप खो ना जाए। यही असली वेल्दी लाइफ का फॉर्मूला है। तो दोस्तों, जिंदगी असल में एक सफर है, एक जर्नी जो दो पॉइंट्स के दरमियान होती है। मैं इन दो पॉइंट्स को कहता हूँ हर्डल्स ऑफ लाइफ। सबके लिए कहानी एक ही है, सबको इन हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। पहला हर्डल है हर्डल ऑफ पॉवर्टी। हर इंसान जो पैदा होता है उसे ये हर्डल क्रॉस करना ही पड़ता है। कोई भी इंसान गरीबी में नहीं रहना चाहिए, हर किसी को मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और जो भी मुमकिन हो वो करना चाहिए ताकि ये हर्डल क्रॉस हो सके। अगर ये हर्डल क्रॉस ना हो तो इंसान जिंदगी की बुनियादी जरूरतों से ही महरूम रह जाता है, और जब बुनियादी चीजें ही नहीं हो तो खुशी का एहसास भी अधूरा ही रह जाता है। लेकिन जब आप हर्डल ऑफ पॉवर्टी क्रॉस कर लेते हैं तो आप अगले सफर की तरफ बढ़ते हैं, और ये है हर्डल ऑफ प्लेंटी। ये दोनों हर्डल के दरमियान का सफर सबसे रंगीन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप डिप्राइव्ड नहीं होते, आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान होता है। धीरे धीरे आप अपनी जिंदगी बेहतर बनाते जाते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब आप समझते हैं कि ज्यादा पैसा आपकी खुशी में ज्यादा इजाफा नहीं कर रहा। और जब आप हर्डल ऑफ प्लेंटी क्रॉस कर लेते हैं तो असल चैलेंज शुरू होता है, क्योंकि उसके बाद प्लेंटी खुद एक प्रॉब्लम बन जाता है, यानी बढ़ोतरी। उस स्टेज को संभालने के लिए एक नया स्किल सेट चाहिए, एक नई सोच चाहिए। अगर वो ना हो तो पैसा, वेल्थ और आपकी अक्यूमुलेटेड चीजें खुशी देने के बजाय प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। और फिर प्रॉब्लम क्या होती हैं? इंसान एरोगेंट हो जाता है, ज्यादा वेस्ट करता है, अनएथिकल चीजों में पड़ जाता है, अपनी पोजीशन का मिसयूज करता है। तो बहुत से लोग इन पॉइंट्स तक आते आते गिर जाते हैं, ढेर हो जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो इन हर्डल को क्रॉस करके एक बहुत खूबसूरत जिंदगी जीते हैं। मगर याद रखिए, हर्डल ऑफ प्लेंटी एक वार्निंग साइन है। उसके बाद का सफर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खूबसूरत होता है जो अपनी सोच, करेक्टर और स्किल्स को बेहतरीन बनाकर चलते हैं। दोस्तों, खुशी क्रिएट करना भी एक प्रोसेस है और इसमें बहुत सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, मूवी। भाई मूवी, 2-3 घंटे की लंबी फिल्म और मूवी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। मगर सोचिए, उस मूवी का क्लाइमेक्स सीन सिर्फ कुछ मिनट्स का होता है। अगर हम सोचें कि क्या सिर्फ वही क्लाइमेक्स सीन हमें खुशी दे रहा था, तो हम डायरेक्टर से कह सकते थे कि भाई सर, बस क्लाइमेक्स सीन दिखा दीजिए और खुश हो जाएं हम और चले जाएं। लेकिन असल में हमें खुशी पूरे प्रोसेस से मिलती है, इसीलिए मूवी आपको शुरुआत से आखिर तक एंटरटेन करती है। पहले सीन से लेकर क्लाइमेक्स तक का सफर, यानी मूविंग फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, यही हमें कॉन्स्टेंटली एंगेज और हैप्पी रखता है। और यही बात लाइफ में भी लागू होती है। जब आप लाइफ के एंड पर खुद से कहते हैं, मैं वाकई वेल्दी इंसान हूं, मैंने लाइफ में अच्छा किया, तो असल खुशी आपको उस प्रोसेस से मिलती है। स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व करना, हेल्थ का ख्याल रखना, रिलेशनशिप्स मेंटेन करना, अपना टाइम वाइजली यूज करना, ये सब प्रोसेस का हिस्सा है जो आपको खुशी देता है। मतलब हैप्पीनेस का सीक्रेट क्लाइमेक्स या रिजल्ट में नहीं, बल्कि प्रोसेस में है, और ये ही रियल वेल्थ और सेटिस्फेक्शन का फंडा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जिंदगी को मैनेज करना और वेल्थ का असल मजा लेना सिर्फ पैसा जमा करने से नहीं होता, बल्कि उसके साथ बहुत सी और चीजें हैं जिन पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि अपने रिश्तों, सेहत, करेक्टर और खुशी पर भी फोकस करते हैं, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप अपनी जिंदगी के किसी भी लम्हे में फख्र से कह सकते हैं, हाँ, मैं वाकई एक वेल्दी इंसान हूं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी एक नए टॉपिक, एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम इकोनॉमिक लेंस से सरवर मिर्जा को इजाजत।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और

हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोस्तों गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर होना एक अहम रोड सेफ्टी रिक्वायरमेंट है। हर थोड़े वक्त के बाद ये चेक करें कि वो वैलिड है या नहीं और गाड़ी में इसे ऐसी जगह रखिए जहां इमरजेंसी के वक्त आसानी से मिल सके और साथ ही इसके इस्तेमाल करने को भी यकीनी बनाएं। याद रखिए ये छोटी सी तैयारी किसी इमरजेंसी में जान बचा सकती है। फायर सेफ्टी को इग्नोर ना करें, खुद को और दूसरों को महफूज रखने की कोशिश कीजिए। गाड़ी में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना बेहद अहम है। अक्सर हम सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट का ख्याल रखते हैं लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर का सोचना भूल जाते हैं। आग किसी भी वक्त लग सकती है ओवरहीटेड इंजन, शॉर्ट सर्किट या फ्यूल लीक की वजह से। जब तक मदद आए आपका फायर एक्सटिंग्विशर ही आपकी पहली डिफेंस होता है। अपनी सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी उठाइए और महफूज रहिए और इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहिए। आज ही चेक करें क्या आपकी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर है और क्या वो वैलिड है। FM 107 आपके खुशहाल सफर की ख्वाहिश करता है।

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है. कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद. और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से. तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए. प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा. हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी. हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार.
3: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है. फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है, तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है. आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें. तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.

खुद ही अपने आप को खूब जानता है, चाहे कितनी ही माजरतें पेश करे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वही को जल्दी जल्दी याद करने के लिए अपनी जबान को हरकत न दो। इसको याद करा देना और पढ़वा देना हमारे जिम्मे है, फिर उसका मतलब समझा देना भी हमारे ही जिम्मे है। हरगिज नहीं, असल बात यह है कि तुम लोग जल्दी हासिल होने वाली चीज यानी दुनिया से मोहब्बत रखते हो और आखिरत को छोड़ देते हो। उस रोज कुछ चेहरे तरोताजा होंगे, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे, और कुछ चेहरे उदास होंगे और समझ रहे होंगे कि उनके साथ कमर तोड़ बर्ताव होने वाला है। हरगिज नहीं जब जान हलक तक पहुंच जाएगी और कहा जाएगा कि है कोई झाड़ फूंक करने वाला, और आदमी समझ लेगा कि ये दुनिया से जुदाई का वक्त है और पिंडली से पिंडली जुड़ जाएगी, वो दिन होगा तेरे रब की तरफ रवानगी का। मगर उसने न सच माना और न नमाज पढ़ी, बल्कि झुटलाया और पलट गया, फिर अकड़ता हुआ अपने घर वालों की तरफ चल दिया। ये रविश तेरे ही लिए सजावार है और तुझी को जेब देती है। हाँ, ये रविश तेरे ही लिए सजावार है और तुझी को जेब देती है। क्या इंसान ने ये समझ रखा है कि वो यूं ही मुहमल छोड़ दिया जाएगा? क्या वो एक हकीर पानी का नुतफा न था जो रहमे मादर में टपकाया जाता है, फिर वो एक लोथड़ा बना, फिर अल्लाह ने उसका जिस्म बनाया और उसके आज़ा दुरुस्त किए, फिर उससे मर्द और औरत की दो किस्में बनाई? क्या वो इस पर कादिर नहीं है कि मरने वालों को फिर से जिंदा कर दे?